और न ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते।

الحمد لله بل أكثرهم

अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया, उसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और कयाम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। उसने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा कर दीं जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रा तक तुम्हारे काम आती हैं। उसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साए का इंतजाम किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाहें बनाई और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है शायद कि तुम फर्मा बरदार हो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हें कुछ होश भी है कि उस रोज क्या बनेगी जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा

0: अपनी नीयत और फितरत में पैदा करनी चाहिए ताकि हम लोगों के ऐब नहीं उनकी खूबियां देख पाए। बिलाशुबा ये अमर इंसान की बख्शिश का वसीला है। याद रखिए कि जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते अल्लाह ताला उन्हें ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो किसी के वहम गुमान में नहीं होती। हमें हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी से नेमत महफूज और रिस्क में कुशादगी पैदा होती है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए और हम पर अपनी रहमत का साया कायम रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك يا

थीम, आप लोगों से कह दीजिए ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह यकीनन तमाम के तमाम गुनाह माफ कर देता है क्योंकि वो गफूर रहीम है। सामिन किराम, यहाँ जो कौम मुसवी के हवाले से बनी इसराइल के हवाले से काफ़ी लंबी चढ़ी गुफ्तगू हमने की, लेकिन जो कुरानी मोती हमें इनायात से मिलता है, पहली बात तो ये है कि अहद की खिलाफ वर्जी करना ये कभी मोमिन की शायन शान नहीं है। अब जब अहद है तो हाँ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो अगर तुमसे कोई खिलाफ वर्जी हो गई, लेकिन फिर रास्ते पर आ जाओ, तौबा की तरफ आ जाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह यकीनन तमाम के तमाम गुनाह माफ कर देता है क्योंकि वो गफूर रहीम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है, नेकों को आखिरत में अच्छा बदला और बुरों को उनकी बुराइयों का बदला दिया जाएगा। जो गुनाहों और खताओं में डूबा रहा और उसने तौबा न की तो फरमाया فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, वही लोग दोज़खी हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। सामिन किराम, आयत मुबारक से हमें जो कुरानी मोती हमने बताया कि हमने अक्स किया और वो ये कि अहद मुआहदा की पासदारी करना, और सिलसिले में जब कोई खिलाफ वर्जी हो जाए तो हमारे लिए जैसे कि अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से हर वक्त उसका दरवाज़ा खुला है कि भाई तौबा कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह यकीनन तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है क्योंकि वो गफूर और रहीम है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीअ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इनायत मुबारका में ये बात बताई जा रही है कि जब कोई शख्स बदी का इर्तिकाब करता है और उसमें कोई इबरत और नदामत का एहसास तक नहीं होता, वो मजीद दलेर हो जाता है, यहाँ तक कि रुश्द व हिदायत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। बल्कि यूँ कहिए कि वो तकब्बुर, गुरूर, ज़िद्द और हट धर्मी से खैर की तमाम राहें अपने ऊपर बंद कर लेता है, तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत भी उसकी निजात का जिम्मा नहीं ले सकती। अल्लाह के दरबार में सिर्फ और सिर्फ आमाल सालिहा ही निजात का जरिया है। इरशाद होता है يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, इस रोज़ न माल कोई फ़ायदा देगा और न औलाद, इल्ला ये कि कोई इताअत गुजार दिल लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नमा ही आमालुकुम अहसीहा लकुम थुम्मा युवफ्फीकुम इय्याहा فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. इसका तर्जुमा यूँ है, ये तुम्हारे अपने अमाल है जिनको मैं तुम्हारे लिए गिन कर रखता हूँ, फिर तुम्हें उनका पूरा बदला देता हूँ, बस जो भलाई पाए वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे और उसके अलावा पाए वो अपने ही नफ्स को मलामत करे। कुरान करीम ने मजीद कफ़ारा करत किया, यानी कोई शख्स किसी के गुनाह बख्श वाले, इस सिलसिले में फरमाया गया वला तकसिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, और जो कोई बुरा करेगा तो उसका बार उसी पर होगा, कोई शख्स किसी का बोझ न उठाएगा, यानी हर शख्स अपनी बदियों और नेकियों का बोझ खुद उठाए होगा। सामने किराम, बाज़ तो जो होता है ना औलाद को इस तरह मंसूब कर रहे होते हैं कि भाई वो उनका बेटा है, ये इनके इनकी नस्ल का ये वो, तो ये दरअसल बात यानी अगर हम नजात के हवाले से बात करें या क़यामत के दिन जो है ना कैसे बिहेव किया जाएगा, और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, तो यहाँ तो क्लियर पैगाम बिल्कुल वाज़ है कि अगर उसके पास अमल साले नहीं है तो ये इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल से नहीं था, क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। सूरतुल हूद की आयत का एक हिस्सा है। मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्त जिगर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को यूँ मुखातब करते हैं, या फातिमा तू बिन्त मुहम्मदिन इन्क़िदी नफ्सकी मिनन्नार फ़इन्नी ला उग़नी अन

0: 7 पर वेक अप।
1: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें।

अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।

0: हे बच्चों, आर यू रेडी गेम्स मस्ती स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
1: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
2: ये शो कौन सा है?
0: द सुपर किड शो।
1: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी। I love the Super Kid Show, Super.

0: FM 107 Time Check.
1: जब मुझे लगने लगा था कि शायद अभी चंद घंटे और बाकी हैं वीकेंड में, तभी सब कुछ ये अलग कहानी है. सिर्फ लोग कहते हैं आपकी तो दो दिन की छुट्टी है भाई साहब, वो एक दिन की लगती है, सिर्फ एक दिन की. दूसरे दिन तो संडे का वो रहता है जाने का, समझ रहे हैं आप, तो वो फील ही नहीं आती है. सैटरडे इज नॉट टेक्निकली अ हॉलीडे, सैटरडे इज लाइक अ फेयर फैक्टर का एपिसोड. तो आपको लगता है कल संडे, ये करते करते संडे आ जाता है. तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब. और डर ना लगेगा, यूं यह जो जहाज बना देंगे, जमा जहेज बना देंगे शो को. आप आ जाओ 666-22107 पे, 666-22107. संडे की तैयारी कर लेते आओ. अभी कोई ये पूछेगा क्या रहा वीकेंड पे, क्यों क्या किया, ये सब देखिए फेरी टेल है. आप आइए और आगे आने वाले हफ्ते की बात करते हैं. 666-22107 सुबह के अधिकार चलेंगे 10 मिनट 33 सेकंड, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. आज की कहानी, क्योंकि हम हफ्ता शुरू कर रहे हैं तो बहुत छोटी कहानी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कहानी को छोड़ नहीं सकता. पहले मैंने सोचा, मगर नहीं यार, नहीं ये बहुत छोटी कहानी हो जाएगी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. पर फिर दिल में था कि अगर मैंने ये नहीं सुनाई तो फिर ऐसे मरोड़े उठेंगे पेट में कि जिसकी हद नहीं. तो आज की शुरुआत एक अलग कहानी से, और छोटी छोटी है, बट देखते हैं कि क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है. तैयारी तो भाई की पूरी है, बाकी दुआएं करते रहिए. मॉर्निंग अस्कार, एंड उसके बाद आपसे मुलाकात. एंड हाँ, यस 666-22107 पे गुड मॉर्निंग खेल लीजिए. स्टे ट्यून्ड, जाना नहीं.
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دعاؤں کے ساتھ جو صبح کی شروعات ہوتی ہے اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا. بھائی یہ ایک ہی سیریس چیز ہے جس کے لیے میں بہت سیریس ہوں, باقی سب تو چلتا رہتا ہے. آ جاؤ جی. گڈ مارننگ, میں آپ کا انٹرٹینمنٹ دیتا جی, سیکیورٹی گارڈ. میرا نام ہے جیتو ہوڑا کبیر, FM 107 سن رہے ہیں آپ. بہت ہی بڑھیا اسٹیشن ہے, آپ آ جائیے کیونکہ ہفتے کی ہو گئی شروعات. ابھی بہت بہت کچھ ہے. ایک تو گرمی ہے, دیکھے نا دوپہر میں گرمی دیکھیے, یہ کوئی گرمی ہے ابھی؟ بھائی ابھی سے جلوے بکھیر رہی ہے, مطلب تھوڑا رک جانا چاہیے, ایٹ لیسٹ ایک مہینہ رک جانا چاہیے, لگے کہ ہاں ابھی موسم ہے, ابھی تو بنتا ہے, لیکن یہ کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. گرمی کہہ رہی ہے نہیں نہیں, یہ پہلے تیاری کر کے آئی ہے بھائی. ابھی تو مئی بس شروع ہی ہوا تھا, یہ کیا ہے, ایٹ لیسٹ جون تک جس حساب سے بارش وارش ہوئی تھی لگا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم ہم لگے گا. ٹھیک ہے تھوڑا لاڈ میں آئے گی گرمی, آرام سے آئے گی, جھیل لیں گے دیکھ لیں گے. پر کیا جھیل لیں گے دیکھ لیں گے, تو ابھی سے ہی اگر گاڑی آپ کی چھاؤں میں نہیں کھڑی رہتی ہے نا بھائی, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کے اندر کچھ مت رکھنا ایسا جو پگھل کے چپک جا. ابھی ریسنٹلی ایک بھائی کی پنی جو ہے نا گاڑی سے چپک گئی تھی, میں بتا رہا ہوں چیکیں نکل گئی اس کی. تو آپ بھی ذرا ان چیزوں کا دھیان رکھیں, اسپیشلی اگر آپ کی نوی نوی گاڑی ہے. ایک دو میسیجز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ میسیج کن صاحب نے کیا ہے؟ ایک تو بیٹری تھوڑی سی کم ہے تو میں فون تھوڑا سا سرک سرک کے بات کروں گا آپ سے. آئی میسیجز کھل رہی ہیں, تب تک آپ آ جائیے, میسیج کر لیجیے, میں ویسے بھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنے والا ہوں. تو ابھی آج ایک مووی جس کا ریویو میں اس ہفتے کروں گا وہ دیکھنے کا پلان ہے میرا, اس ہفتے دیکھنی تھی رہ گئی, لیکن اس بار وہ مووی ضرور دیکھی جائے گی جو کہ ہے مورٹل کومبیٹ, تو وہ دیکھی جائے گی. باقی ویکینڈ پہ آپ نے کیا کیا کیا نہیں کیا اس کا بھی لیکھا جوکھا بتائی دو بھائی میرے کو, میں ذرا یہ جو ہے چارجنگ پہ لگا لوں اس کو. ایک تو چیئر چڑھ گئی ہے بھائی صاحب تار پہ, اب آ گئی. ہاں اب بتائیے. السلام علیکم. میسیجز میں اب پڑھنا شروع کر رہا ہوں. کیا ہے؟ تھینکس بھائی. تھینکس بھائی کس چیز کے لیے؟ اچھا مجھے لگا میرے کو تھینکس بولا صبح صبح, کوئی اچھا کام وام کیا ہوگا میں نے, لیکن نہیں میرے کو نہیں بولا. ایک اور میسیج ہے. السلام علیکم ابو عاقب صاحب, جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اینڈ ایک اور میسیج کیا ہے. السلام علیکم, یہ بھائی صاحب کیا نام ہے جی آپ کا؟ اچھا فیصل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ. تو میں ایک کام کرتا ہوں, میں جو ہوں نا اس کے چارجر چورجر کا انتظام کرتا ہوں, آپ آ جائیے اینڈ اس کے بعد پھر معاملہ شروع کرتے ہیں. میں سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر آپ آرام سے واٹس ایپ پہ رپلائی کرتے رہنا. میرا سوال بڑا سمپل ہے, آپ کو یاد ہے خرم بھائی آئے تھے ہمارے, خرم شہزاد جنہوں نے میسج کیا تھا اس دن, اور انہوں نے کال پہ بھی بات کری تھی بہت ساری چیزیں. انہوں نے بولا بھائی میرے کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے, مجھے بس کچھ چیز جاننی. تو میں نے کہا یہ آدمی کی مین پریشانی, اس کو سالو کیا جائے کیونکہ بہت جینوئن پریشانی ہے. سالوں سال لوگ ایک دوسرے کو ایک ایڈوائس دیتے ہوئے آ رہے ہیں جو بہت ہی بہت ہی بہت ہی کامن ایڈوائس ہوتی ہے. آج نئے کام کرتے ہیں, لیٹس بی پروڈکٹیو, ہے نا؟ ہم کیونکہ بہت اچھے انسان تو بنتے ہی ہیں, اچانک سے کال پہ سارے کے سارے ایک دم نیک, او ہو ہو. تو ایک کام کرتے ہیں, اس نیکی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. 666-22-107 پر آپ مجھے بتا دیجئے آج کے حساب سے آپ کی فائنینشیل ایڈوائس کیا ہے. یہ مت کہنا پیسے سیو کرو, پھرانا کرو, ڈمکانا کرو. आज की दुनिया के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल एडवाइस क्या है, किसी को भी दुनिया में किसी को भी, और ऐसी एडवाइस बताइएगा जो आपके लिए भी काम करती है, आप खुद फॉलो करते हो। ये नहीं कि मेरी एडवाइस तो ये, लेकिन मैं जी इसको मैं तो बिल्कुल फॉलो ही नहीं करता, मेरे तो होता ही नहीं। ये नहीं, आपकी फाइनेंशियल एडवाइस क्या है किसी के भी लिए। ये सेविंग जरा हटके बताना, कुछ ऐसी चीज़ बताना जो प्रैक्टिकल हो, जो की जा सके। ये मत कहना कि मैं तो अपनी सैलरी से हर बार 500 अकाउंट में डाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, ठीक है। क्या एडवाइस है आपकी फाइनेंस को लेके, ये मेरे को बताना। लेट्स मेक इट अ वेरी जेन्युइन एडवाइस कि किसी के काम ही आ जाए। 666-22-107 नंबर है, इसको ज़रा लिख लें, मैं ज़रा चार्जिंग में लगाता हूँ। स्टे का ट्यून्ड।
2: आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं, तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा, एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
5: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है, तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है, बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है, बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है, तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है, बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें, तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है, जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
4: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो, तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो, तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो, जिसमें आपके घर के उस नन्ने शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सर्वर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे। हाँ जी, अब मैं चार्जर चूजर लगा के तैयार हूँ। अब जरा देखता हूँ कि क्या सच में कोई आया भी है। लोग तो कह रहे थे हमारे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। अब वैसे कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर, बहुत इजी नंबर है हमारा, इजी टू रिमेंबर, इजी टू कॉल। तो क्या है कि दुनिया जहाँ में बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले लोग हैं, है ना। आई वॉन्ट मेक इट सीरियस, इतना सीरियस कि लोग जो है उसमें बहुत सारा गंद, ये मत करो वो मत करो, बट मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कुछ सच में ऐसा है कि लोग अपने फाइनेंस को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पैकेज दे आर ऑन। ये मत बताइएगा कि देखो क्या होता है, लोग जब बताने लगते हैं फाइनेंशियल एडवाइस, तो वो सैलरी के हिसाब से नहीं बताते, मतलब जनरलाइज चीज़ें नहीं बताते, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं। इन्वेस्ट कर दो जी, इसमें डाल दो, नहीं उसमें डाल दो। देखो ये हर कोई नहीं कर सकता ना, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई इन्वेस्ट कैसे कर देगा। तो कुछ ऐसा हो जो किसी के काम ही आ जाए, मैं रिसेंटली एक शख्स से बात कर रहा था एंड ही इज एट अ गुड पोजिशन, पर उनकी एक बड़ी मैंने अच्छी आदत देखी. उन्होंने बहुत सारे एडवाइस दी जो मैं वो ज़रा खोल के मैं लास्ट में बताऊँगा, बट मैं बड़ा इंप्रेस हुआ. मैंने कहा भाई यार ये बढ़िया है. तो उन्होंने कोई मुझे फालतू का ज्ञान नहीं दिया, इधर डाल लो पैसे, उधर इन्वेस्ट कर लो, पैसे से पैसा बनाओ. आजकल बहुत सारी रीलें आती है ना आपके सामने जहाँ आप देखते हैं, हम पैसे से पैसा कैसे बनाए, 21 दिन में ये कर लें. भाई ये सब हेरा फेरी वाली अनुराधा है, लेके भाग जाएंगी पैसा. तो प्लीज़ अंधाधुन किसी भी लिंक पे पहली बात तो क्लिक मत करना, कोई आपके पैसे डबल कर नहीं रहा है. और लेट्स बी प्रैक्टिकल, रातों रात कोई यहाँ पे अमीर नहीं हो रहा है, अनटिल अनलेस यू डूइंग समथिंग शेडी, है ना. तो आपको सलीम शेडी नहीं बनना है और ईमानदारी से आगे बढ़ना है, देन देर आर मैनी वेज टू डू दैट. लेकिन उनके बारे में ही मैं बात करना चाह रहा हूँ. तो देखते हैं कि क्या लोगों ने बुलाया. मैं बस फ़ोन खुल जाए या लाज, फ़ोन क्यों इतना स्लो हो रहा है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं मीनवाइल 4434377 पर भी एंड लेट मी नो कि क्या है सीन, किधर गए. अच्छा एक साहब ने मुझे मैसेज किया है, इनका क्या नाम है, क्या एक सेकेंड, उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया. अनंत नाम है, अनंत भाई फ्रॉम दिल्ली आ रहा है मेरा भाई दिल्ली से. अनंत भाई कह रहे हैं कि भाई मैंने सैलरी यहाँ पे शुरू करी थी, मेरी 6000 रियल सैलरी थी, अब ठीक ठाक पैकेज पर हूँ. लेकिन तब से लेकर अब तक मैंने ये ध्यान कर लिया था कि मैं हमेशा 200-200 रियाल अपने घर पे भेजा करूँगा जो मेरे अकाउंट में जाएंगे, जिनको मैं छूँगा भी नहीं. और फिर मैं ये करता रहा, ऑटोमेशन पे मेरा ये आदत बन गई और आज की तारीख में आई एम रियली हैप्पी. चलो बढ़िया, ठीक है, नाइस. एक मैसेज है हमारी हफ्सा बहन, क्या कहती हैं, अरे हैं बहन ये क्या हुआ गाड़ी के साथ, गुड मॉर्निंग तो ठीक ही, गाड़ी के साथ क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ. कह रहे पैसा कमाना मियाँ का काम. आप देखिए कह रही है ऐसा है, पैसा कमाना मियाँ का काम है. ठीक है, ये भी सही है. ये भी सही है, उनका पैसा भी आपका और आपका तो है ही. ये तो देखिए इस्लाम ब्यूटी है ये, माशाल्लाह. एक मैसेज आया परवेज भाई, वालेकुम अस्सलाम. फिर इस तरह मोहम्मद इस्लाम भाई, हर मंथ बजट लिस्ट करके घर की ग्रोसरी ना, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना लेना जो ऑलरेडी घर में हो. ये भाई बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने बताया ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है. आप कल्ले रहते हो या आप परिवार के साथ रहते हो, साफ सीधी बात है आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए. अगर आपको है ना ज़्यादा पंख लगे हुए हैं तो दिक्कत हो सकती है, तो अपने पंखों पे थोड़ा काबू करें. एक मैसेज है, इन्वेस्ट इन BTC, दिस इज़ द फ्यूचर. मिर्ज़ा ज़ुबैर भाई, BTC थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या. देन वॉट इज़ अ टॉपिक, अस्सलाम वालेकुम ऑल लिसनर्स, हैव गुड मॉर्निंग. टॉपिक सिर्फ ये कि आज की तारीख में कुछ प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एडवाइस दे दूँ. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, सेकंड डे इज़ माय अरेबिक एग्जाम. अरे अलीना ऑल द बेस्ट बेटा, हाउ इज़ योर अरेबिक बाय द वे, मतलब इज़ इट वेरी गुड या इज़ इट कैफल हाल. कबीर अंकल फ्रॉम आयशा, अरे वाह माशाल्लाह आयशा, गुड मॉर्निंग. आयशा को मेरा बहुत सारा प्यार. कितने साल की हैं आयशा, आई फील लाइक आज मैं सफ़ा और अमिता की जगह किड शो भी करवा, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है. अच्छा एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम. देन अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम यासर भाई, गुड मॉर्निंग. एक और मैसेज है कमकम भाई को, वालेकुम अस्सलाम. फैसल भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत. एंड देन मैसेज आया गुड मॉर्निंग सुभाष भाई को, गुड मॉर्निंग. क्या एंड देन कलीम भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं कतर से कलीम आपका स्वागत करता हूँ. थैंक यू भाई. कारपेट नहीं नज़र आ रहा, रेड कारपेट. एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, अजीज़ भाई को सलाम. देन क्या कमिटी डाल के सेविंग हो जाती है, ट्रस्टेबल लोगों के साथ कमिटी. ओके वेरी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल, पर फिर भी बात कर लेता हूँ उस बारे में. तो इन्होंने बोला है कमिटी डाल के भी काम हो जाता है. आप देखिए यहाँ पे क्या है कि वो ट्रस्टेबल लोग मिलना बड़े मुश्किल है ना. अभी खुल के बात करते हैं इस बारे में भी.
6: अस्सलाम वालेकुम.
1: आपका नाम मेरे भाई
6: जी? भाई क्या हाल चाल है? मैं कम
1: भाई, क्या चल रहा है मेरे भाई? एक तो आपका नाम इतना यूनिक है ना, लेने में मजा आ जाता
6: है. ठीक ठाक चल रहे हैं
1: जी भाई. कोई एडवाइस है क्या, कोई प्रैक्टिकल ऐसी एडवाइस है जो किसी के काम आ जाए? मेरा भाई क्या कहना चाहोगे?
6: प्रैक्टिकल क्या है, यही ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं, तरक्की अपने आप सामने आएगी.
1: क्या क्या क्या, एक सेकंड, क्या
6: मैं ये बोल रहा हूँ?
1: हाँ.
6: ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तरक्की खुद ब खुद सामने आएगी।
1: अरे ये तो सुनने बड़ा अच्छा लगता है, ईमानदारी से काम करे तरक्की खुद कदमों में आएगी, वो ठीक है, ये तो किताबी बात है। कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकली हो रहा है मार्केट में, मतलब ये करने से कुछ हो रहा है, ये चीज का ध्यान रखे तो कम से कम थोड़ा सा पैसे की वो हो जाएगी, बचत हो जाएगी, वो चीज अगर है तो वो बताओ। ये तो कहने वाली बात है, ईमानदारी से चलो हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, पर कुछ प्रैक्टिकल भी तो हो, ये बताएं आप, कुछ है ऐसा या सोच के बताना चाहेंगे?
6: प्रैक्टिकल यही है पैसे बचाने का, कि फिजूल खर्चा मत करो।
1: क्या मत करो?
6: फिजूल खर्चे।
1: अच्छा आपका क्या फिजूल खर्चा है, कुछ करते हैं फिजूल खर्चा आप? यार बिल्कुल ही काबू कर रखा है।
6: नहीं यार पहले था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काबू है।
1: अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काबू, चलो अच्छी बात है। ठीक है कम कम भाई, नहीं यार मैं पता है, मैं खाना पीना तो है मैं, और घूमना फिरने को मैं फिजूल खर्चे में इंक्लूड करता ही नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये तो इतना तो आदमी को करना चाहिए, कब तक घुट घुट के मरेगा। तो ये तो ठीक है फिजूल खर्ची थोड़ी अलग अलग है फिजूल खर्ची, पर ठीक है कम कम भाई आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए भाई, जजाकल्ला, थैंक यू। और कम कम भाई के बाद जो है एक मैसेज है, हम सब टीचर्स डालती हैं, डस्टबिन ही होता है सब सेम जगह। ओके तो ये एक मेरे पास मैसेज है, आपका नाम आपने मेंशन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कहीं पे आपका नाम नहीं है इसमें। मैं ढूंढ रहा था अभी। ओके खैर मैं आपका मैसेज बताता हूँ। तो इनका कहना है कि कमेटी जो है अगर वो डाली जाए ट्रस्टेबल लोगों के साथ, तो ये पैसे को मैनेज करने का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, ऐसा इनका कहना है। पर वही है ना कि ये कमेटी डालने के लिए आपको फिर ट्रस्टेबल लोग चाहिए, एंड आई थिंक वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अगर मिल गए तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर कमेटी में कितने मतलब आपके पैसे जाते हैं यही बताइएगा। कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ बिटकॉइन, इट्स नॉट द बेस्ट मेरे भाई अजीज़ भाई, इट्स नॉट बेस्ट फॉर एवरीबडी, यू नो बड़ा कैलकुलेटिव माइंड चाहिए। ये नाजिश फ्रॉम बाहरी ने मैसेज, नाजिश थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
1: फैजान ये कौन आ या दिल में हुई हलचल, कैसे फैजान भाई क्या चल रहा है?
7: जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो सवाल है आपका उसके वाले से

0: चार पॉइंट्स हैं जो मैं अभी उस पर अमल कर रहा हूँ।
1: कह दो मेरा भाई।
0: कि जब भी आपने लेट से आपने शॉपिंग करने के लिए जाना है या ग्रोसरी के लिए जाना है ना, तो घर से खाना वगैरह खा के जाएं आप।
1: अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही भाई, ये बहुत अच्छी बात है।
0: जी जी हाँ। आप एंटर होते हैं, खुशबू आती है, आप कहते हैं यार, तो आपके एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पे लग जाते हैं।
1: बहुत कमाल की बात है, अग्री।
0: जी जी। और उसके अलावा अपने पैसे कभी भी किसी बंदे को ना दें, वो कमेटी की मद में हो, वो बोरो हो।
1: हाँ।
0: अगर कोई बंदा आपके पास आता है ना, कहता है यार मेरी ये प्रॉब्लम है,
1: हाँ।
0: तो नए प्रॉब्लम और जो है ना कुछ घंटे के लिए उसको प्रोलॉन्ग कर दें, 3-4 घंटे के लिए, ठीक है?
1: अच्छा ओके।
0: अगर तो 3-4 घंटे के बाद भी आपको लगता है यार बंदा वाकई नीडी है या मुझे देने चाहिए पैसे या मुझे मिल जाएंगे दोबारा,
1: हाँ।
0: तो आप उसको 200-500 हज़ार तक आप उसको दे दें। अदरवाइज आप जो है ना उससे कहें अच्छा यार चलें देखते हैं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उससे ये होगा कि जब आप एक चीज को प्रोलॉन्ग कर देते हैं तो आप इमोशनली नहीं, इमोशनली फूल नहीं बनते,
1: आप प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हैं, राइट?
0: जी जी जी जी जी। तो ये हैं दो चीजें। और सेकंड नंबर जो है ना, तीसरी चीज है कि ये जो सेल्स लगती हैं, तो सेल में कभी भी ना जाएं। आप एक्स्ट्रा चीजें बाय कर लेते हैं और आपका जो है ना सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता
1: है। ये वाला टॉपिक बड़ा कमाल का है, क्योंकि ये जो आपने बात कही ना, ये समझना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि सेल्स को देख के ना खुद आदमी कंट्रोल नहीं करता। वो लगता है कि यार चलो ठीक है, इधर 5 रियाल इधर 10 रियाल बचा रहा हूँ, तो क्यों ना 2 ही ले आऊं। एंड वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, पर ये इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग माइंड चाहिए भाई। बट डू यू फॉलो इनमें से बहुत ज्यादा कोई रिलीजियसली कोई चीज फॉलो करते हैं आप?
0: जी, ये तीनों चीजें ही मैं करता हूँ, क्योंकि ना पहले मैं मिसाल के तौर पर कोई दोस्त है कोलीग है यार 500 चाहिए 1000 चाहिए मैं ना दे दिया करता था। अभी मैं इस चीज को ना प्रोलॉन्ग कर देता हूँ, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ना किसी को पैसे नहीं दिए हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैं ले चुका हूँ दोबारा। क्योंकि ना कहीं पहले होता था कि अपने पैसे मांगते हुए शर्म आती थी, तो अब तो नहीं आती। खैर जाहिर है पैसे जो है वो सबको चाहिए होते हैं, किसको
1: आपको
0: नहीं है
1: वापस मिल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई।
0: जी।
1: ये भी
0: सारे मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या बात है भाई, ये तो अलग किस्म के अचीवमेंट है, ये कैसे किया आपने, इसके बारे में भी जरा इस पे थोड़ी रोशनी डाले फैजान भाई, ये तो कमाल कर दिया आपने। तो ये जो आपने एडवाइस दिया कम्प्लीटली एग्री मेरे भाई, सेल्स वाले में हमेशा नहीं फंसना है, अनटिल और अनलेस कि वो बहुत ही बढ़िया सेल्स है और आपको किसी चीज की बहुत टाइम से चाह रही है, तब बात दूसरी है।
0: जी जी जी जी
1: ऐसे। ओके ठीक है फैजान भाई, बट जेन्युइनली आपने बहुत अच्छा बताया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार फैजान भाई को, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई, के बाद एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जबीर अहमद
1: भाई। अरे ये कौन विमलेश बेटे, कैसे हो बच्चे, सब बढ़िया? मैं जी बच्चे बढ़िया, स्कूल जा रहे हो, बड़ी शैतानी कर रहे हो, मैंने सुना आपने ट्यूबलाइट फोड़ दी स्कूल की। कैसे हो बेटे? क्या विमलेश भाई, क्या एडवाइस है यार, आप माशाल्लाह इतनी ज्यादा चीजें देख चुके हैं अभी तक जिंदगी में, मैं आपको जानता हूँ, क्या है आपका सीन?
2: देखो पहली बात तो मैं बता दूं कि तुम्हारे लिस्टर से फिर मैं, क्योंकि मैं सेविंग में ना थोड़ा कच्चा हूँ।
1: हाँ।
2: ये जो मार्केट की बातें होती ना कि ये कर लो वो कर लो,
1: हाँ, मुझे भी नहीं हाँ, मैं हाँ।
2: मैं कच्चा हूँ बिल्कुल, तो किसी ने बोल दिया पैसे लगा दो, मुझे लग रहा है कि पैसे लग रहे हैं बस ठीक है, कभी कभी तो मिलेगा ऐसा वाला चीज।
1: हाँ, हाँ।
2: लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है घरेलू पैसे बचाने के तरीके जो होते हैं, कैसे कब क्यों, ये मुझे अच्छे से पता है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, कतर में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल गए ग्रोसरीज के, है ना, तो अगर वहाँ पैसे बचाने चाहते हो तो ऑनलाइन ग्रोसरीज खरीदो।
1: अच्छा ओके
2: ठीक है, उसमें पैसे बचते हैं क्योंकि आप वहाँ पे एग्जैक्टली वही सामान मंगाते हो जो आपको चाहिए।
1: और होता भी है ना कि जब आप ऑनलाइन ले रहे होते तो नीचे अमाउंट लगातार आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि कितना जा रहा है।
2: और दूसरा ऑनलाइन वाले ना आपको ऐसे ऐसे अच्छे ऑफर देते हैं, कभी 20%, 30% और कभी कुछ ऐसा वैल्यू वाला, 1 रियाल 2 रियाल 5 रियाल वैल्यू, ठीक है ना। और तो उसमें देखो ऐसा नहीं है सुपरमार्केट जाने वाले भी पैसे बचाते हैं, बट उनमें क्या होता है हाथ चला ही जाता है एक दो जगह, पहले ये ले ही लेता हूँ।
1: हाँ, कुछ आंखों को ज्यादा ही अच्छा लग गया, फिर आप प्राइस उस टाइम नहीं देखते हैं।
2: ठीक है, नहीं देखते। जैसे कल ही की बात है, हमें दाल लेना था सिर्फ, ठीक है, दाल की प्राइस 9 रियाल 10 रियाल मान लो 12 रियाल, ठीक है, बिल बना 182 रियाल का, क्योंकि हम चारों लोग साथ में गए थे पूरी फैमिली। तो यहाँ पे आपके पैसे बचते हैं। और दूसरा एक जो मैं यूज करता हूँ, लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए।

0: हाँ
1: लेकिन क्रेडिट कार्ड रख के बहुत बहुत काइंड ऑफ मतलब हेल्प है आपका। एक तो क्रेडिट कार्ड कतर में तो उतना नहीं है, लिमिटेड है, बट इंडिया जैसी कंट्री में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा था इंडिया में, मैंने जितनी भी शॉपिंग है जरूरत की सबके सब क्रेडिट कार्ड से करता था।
0: ओके।
1: और बिल जनरेट होने से पहले मुझे पता होता था कि मैंने मान लो 20,000 की शॉपिंग की, मैं पे कर देता था, मेरे पास कैश होता था तभी तो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ ना। तो पॉइंट्स प्लस क्रेडिट कार्ड, और वो क्रेडिट कार्ड में कतर में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो आपका इमरजेंसी फंड जैसा है। इनकेस आपके पास पैसे नहीं है, आपकी लिमिट 20,000 है, तो आप इमीडिएटली उसको ले भी सकते हो।
0: अगर क्रेडिट कार्ड आपको सही से यूज करना आता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू यूज। वो आपको जैसे एक तरीका, इमलेश भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे आपने कहा कि आपने यूज किया और मंथ के एंड में आपने उतना उसे वापस कर दिया, तो इस तरीके से आपका जो हार्ड कैश है वो भी आपके मैनेज रहता है, और एक तरीके से आप क्रेडिट कार्ड भी मैनेज करवाते हैं, प्लस यू आर गेटिंग द पॉइंट्स ऑन इट। तो ये भी होता है, और कतर में भी बहुत सारे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। सही कह रहा हूँ मैं?
1: मुझे 11 साल हो गए कतर में।
0: हाँ।
1: और मुझे, मैं बैंक का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन मेरे बैंक ने मुझे ऑलमोस्ट 7,000 रियाल दिए हैं पॉइंट्स।
0: अरे भाई साहब, कितने सालों में, कितने सालों में?
1: 11 सालों में 7,000 मिले मुझे, लेकिन मैंने वाइजली यूज किया उसको। ठीक है। और जो ऑफर्स होते थे या कुछ होते थे, जब नया कार्ड आ रहा होता था, मैं उनसे पता कर लेता था कि आप इसमें कुछ पॉइंट्स दे रहे हो मुझे। हाँ, बोलते थे हम, जी हाँ, हम आपको 26,000 मतलब 2600 रियाल जो है हम आपको गिफ्ट में देंगे, या हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दे देंगे जिसमें एक होटल का एप्लीकेशन फ्री मिले।
0: हाँ, मतलब साथ में कुछ ना कुछ एक सॉर्ट ऑफ वाउचर टाइप का कुछ ना कुछ दे देंगे ना।
1: तो तुमने एक बहुत अच्छी वर्ड अभी एक लाइन यूज करी कि खाना और घूमना जो होता है वो खर्च नहीं मानना चाहिए।
0: हाँ, नहीं,
1: वो इन्वेस्टमेंट मानना।
0: मैं नहीं मानता हूँ इसको, फिजूल खर्ची नहीं है भाई, मतलब क्या है ये?
1: घूमो और मजे से रहो, वो आपके मेंटल हेल्थ का इन्वेस्टमेंट है, सीधे सीधी बात है।
0: हाँ, मतलब आदमी, हाँ, उसमें भी आदमी अगर कुड़कुड़ के रहेगा तो फिर दिक्कत है। अगर आप थोड़ा बेहतर खा सकते हैं, अब ये नहीं कह रहा कि सीधा जाके 5 सितारा में खा लो, मगर ये है कि अगर आप अपनी चाहत से कुछ खा रहे हैं तो उसमें कुछ वो फिजूल खर्ची नहीं है, मतलब उतना तो होना चाहिए।
1: तुम्हारे केस में मुझे पता है कि तुम्हारे केस में कुछ लोग कहते होंगे कि तुमने क्यों नया वाला वर्जन का PS ले लिया, है ना? लेकिन वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, मुझे अच्छे से पता है। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ की मेंटल हेल्थ आपका इंक्रीज करो, भाई उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ही नहीं।
0: हाँ, वही ना, वही चीज है। अब वो कई मरतबा वो है ना, शौक हमेशा नहीं मारना चाहिए, ठीक है, कई मरतबा मजबूरी जाती है, हर बार नहीं मारना चाहिए शौक, कई बार पूरा कर लेना चाहिए।
1: बच्चे थे मम्मी पापा के पास, नहीं तो किया ना आपने, मम्मी पापा ने किया, आपने भी समझा, आपने किया, अब आपके पास है तो कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट करो कि आपको लगे कि हाँ
0: इतना, हाँ इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। यह बात,
1: यही था भैया, हमको इतना ही पता था, हमने बता दिया।
0: बहुत बढ़िया बताया मिलेश भाई, चाय पेंडिंग है आपकी, याद रखिएगा आप, मैं, मेरी नजर है,
1: हम भी इंतजार कर रहे हो सुबह,
0: हफ्ते जा रहे हैं, और मैं उस चाय का जब से फोटो भेजा है आपने, तब से जो है मैं भी उबल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी मेरा भाई, इसी हफ्ते, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई, ख्याल रखिए मेरा भाई। तो विमलेश भाई ने जो कहा, मैं बहुत सारी चीज़ों से, इनफैक्ट सारी चीज़ों से अग्री करता हूँ, क्योंकि यही हम लोग जानते हैं। कुछ मैसेज पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक बड़ा सिंपल है, टॉपिक ये है कि आज की तारीख में एक बहुत ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एडवाइस देना, ये नहीं कि इधर डाल दो पैसा उधर डाल दो पैसा, नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपकी प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है, आपका भेजा क्या कहता है, कि एक्चुअल क्या एडवाइस है ये। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम
2: वरहमतुल्लाहि
0: वबरकातुह। भाई क्या हाल है आपके? भाई मैं तो भाई चाय पी रहा थी, आप बताओ क्या हाल है?
2: भाई मैं भी चाय पी रहा थी, गाड़ी चला रहा थी।
0: गाड़ी चला रहा सी, बॉलीवुड वाली पंजाबी थी। गाड़ी चला रहा सी, अच्छा दी सानू दसो। पर आज आज छोड़ी, ये प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूँ, मुझे बताइएगा तला भाई, डू यू हैव एनीथिंग? बिकॉज आप, मैं जानता हूँ लोग आपको सिर्फ समझ रहे कि मजाक करता रहता आदमी, लेकिन मुझे पता है अंदर इंदिरा दी बहुत चालू है ये। तो मुझे बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: इन अ गुड वे चालू है। तो ये फाइनेंशियली क्या आपको कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को, प्रैक्टिकली आज की तारीख में इन द 21st century क्या है आपका?
2: यार विमलेश की ना बात बड़ी, बहुत प्रिसाइज बात करी, बेहतरीन बात करी, जितना अगर उससे इंटेक लेना है ना आज का,
0: हाँ,
2: तो वो विमलेश की बातों से ले लो।
0: हाँ, है ना,
2: उसने बहुत अच्छी बात करी कि क्रेडिट कार्ड का जो है ना कॉन्सेप्ट ही गलत है हमारी नजर में।
0: हाँ।
2: हम क्रेडिट कार्ड लेके समझते हैं बाबा ये तो अब्बा का अंधा पैसा है और उसको उड़ाओ, रिटर्न नहीं है। जबके वो गलत है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड जिसका आप बोरो कर रहे हो तो बैंक से, और योर फैसिलिटी आपकी टाइमली फैसिलिटी फैसिलिटाइज करता है आपको, और आपने उसको पे करना है तो आप अपने औकात के मुताबिक उसको खर्च करो, लेकिन टाइमली पे करो, आपको दर्द नहीं देगा। और सेकेंडली जो उसने बात करी ना कि आप इसको एज अ इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो पूरे पूरी लिमिट को, बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने किया है ऐसा, एक या दो दफा मैंने ऐसा किया है। मैंने हैंग इनकैशमेंट निकाला है क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट में जरूरत थी, और भाई विदिन अ सेकेंड मुझे कैश मिला है। मतलब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मुझे किसी के तल्ले मिनते नहीं करने पड़े बैंक के या कुछ भी है। मैं गया हूँ, मैंने एप्लीकेशन के थ्रू उसको इनकैश किया और सारा हो गया मेरा।
0: हाँ वही मैं वही कह रहा हूँ, अगर यूज करना आता हूँ ना तो बहुत बढ़िया चीज है, पर ये अभी क्या हवा बन जाएगा ना देसी फैमिली, और एक क्रेडिट कार्ड ये तो बहुत गलत चीज है, हवा बना दिया
2: उसको। भाई देख, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया और भेजा दिया है ना भाई, तो इस्तेमाल करो ना मेरी जान, इधर उधर की अफवाह में क्यों पढ़े हो बिला वजह।
0: हाँ थोड़ा खुद पढ़ लाए, पढ़ाई कर लो
2: खुद भी कर ले यार, अल्लाह के बंदे तोड़ता हाथ पर हिला ले यार, क्या तुम गोश्त का टूदा बन के बैठा हुआ।
0: आइए अच्छा, क्या गोश्त का क्या बन के बैठा हुआ, एक सेकेंड,
2: गोश्त का टूदा
0: ये क्या होता है?
2: मतलब वो पीस ऑफ मीट
0: बड़ा, ओह माय गॉड, पीस ऑफ मीट। ओके क्या हो गया आज, वो कहता है फैंसी हो गया एकदम, ये पांच सितारा बातें करने लगा आज तो, वाह वाह वाह वाह वाह।
2: हाँ और भाई मेरी ये प्रैक्टिस है ना पर्सनली, मैं अपने पे इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं तो पहले नहीं करता था, आपको पता है मेरा वहाँ माशाल्लाह से जो मामला है, तो उसके अलावा जो मैं अपने पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, जब से थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी घर की, अच्छे बड़े होने शुरू हुए, तो 15% ऑफ मेरी सैलरी जो मेरी इनकम है ना, मतलब सैलरी का कहा तो इनकम जो मेरी जो भी इनकम जनरेट होती है 15% मैं उसका मंथली सेव करता हूँ।
0: 15% आप पूरी इनकम सेव करते हैं? ओके
2: 15% जो है मैं उसको सेव करता हूँ।
0: ओके
2: अच्छा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं मतलब मेरा कॉन्सेप्ट है भाई छोटी सी जिंदगी है, ज्यादा जमा नहीं, इतना कर लो अपने बच्चों को दे जाओ बस, दैट्स इट, इनफ।
0: ओके ये भी बड़ी बड़ी सीधी एडवाइस है यार, वेरी गुड यार थाला भाई।
2: हाँ
0: सही एडवाइस,
2: क्योंकि भाई अपन ना दिल नहीं मारते, तुम्हारी बात बहुत अच्छी, मुझे यकीन करो चुम्मेश्वरी वाली बात, भाई ख्वाहिशन मार मार के 60 पहुंच जाओ, उसके बाद बोलो यार मस्तंग ले लेता हूँ मैं, अबे भाई तेरा पैडल नहीं पड़ रहा, तेरा तेरे पैर से एक्सीले का दब दे रहा, तू मस्तंग ले रहा है।
0: और वो देखा है ना आपने, कुछ लोग हमारी जो मेंटेलिटी वो क्या है कि यहाँ से कमाया वहाँ पे एक फ्लैट डाल लिया, अब सुनने में बहुत ही इन्वेस्टमेंट बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आदमी ना उसके लिए फिर कुड़ कुड़ के खाता है, ऐसा रहा चिड़िया के दाने खाने लगता है कि नहीं मुझे वहां पे घर बनाना है, और जिस घर में उसे कभी रहना नहीं है, वो जिस घर में कभी जाके रहेगा भी नहीं।
2: ये बोलने वाला था मैं कि मैं जो हूँ ना, मैं फ्लैट लूंगा, मैं बंगला ले रहा हूँ भाई पाकिस्तान में ना, मैंने ले लिया, अब भाई मैं रह तो वहां रहा नहीं हूँ, क्या कर लूंगा वहां पे भाई, वही जो पैसा यहाँ पे मैं उसको हल्का थोड़ा सा कुछ सेव करके अपने यहाँ पे आयाशी में निकाल लूँ, ज्यादा बेहतर नहीं। और यार ये देखो मैरिड बंदों के लिए ना, इनके बच्चे उनके लिए बहुत जरूरी है, बच्चों को ना अपना टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाओ, ठीक है, और उनको ये भी सिखाओ कि भाई अपनी ख्वाहिशात नहीं माननी, हाँ आयाश नहीं बनना, संजय दत्त नहीं बनना भाई, पचास तोला नहीं कर देगा, लेकिन भाई 20 तोला तक तो कर सकते हो, बांगिया बन जाओ, बांगिया बन जाओ, संजू बाबा नहीं बन रहे बांगिया बन जाओ दो प्रोफाइल में, लेकिन अपनी भाई ख्वाहिशात नहीं मारो मेरी जान, सबको बोल रहा हूँ मैं ख्वाहिशात नहीं मारो, कल का किसी को नहीं पता, पैंडेमिक गुजरा ना हमने देखा ना, जंग जंग जवान जवान बंदे चलेगा अपनी आंखों के सामने, ठीक है ना। अब अबे भाई मुझे सिखाई है तो यार अल्लाह की कसम यार, कैसा बदतमीज आदमी है।
0: हमारी एक बहन का मैसेज, वो कह रही ये आवाज और ये बातें मैच नहीं हो रही।
2: अल्लाह अल्लाह वाला वाला
0: देख रहे हैं
2: यार, ये तो बेचती होगी सुबह सुबह
0: मार्केट में, देख रहे हैं क्या चल रहा है आप को लेके।
2: यार मेरी तो यार यकीन करो, मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें, एक मैसेज करूंगा मैं अभी, नाम ले लूं उस बंदे का।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अब मिट रही हो, अब मिट रही हो,
2: छोड़ो छोड़ो। तो वो मुझे तो वो वाला लग रहा है, उसका डाउनफॉल बेचारे का जनवरी तक ऊपर था, वो फरवरी में नीचे आ गया वो, और मुझे भी वही लग रहा है कि यार मेरी में कितनी वाली हो गई है।
0: नहीं भाई ये वाली बेहतर है उस वाली में से, समझ रहे हो, उस वाली से बेहतर है ये।
2: अरे यार लोग तो यार कसम से मुझे संजीदा ले ही नहीं रहा,
0: कोई ले नहीं रहा समझ। मैं सीरियस हूँ, शेर आया, करण नहीं शेर।

0: नहीं आए, अरे शेरा
1: असल में मैं समझ रहा था मुझे सिर्फ घर में संजीदा नहीं लिया जाता, मुझे तो बाहर भी संजीदा नहीं लिया जा रहा भाई।
0: कुछ कीजिए तला भाई, कुछ कीजिए, दिस इज गेटिंग आउट
1: ऑफ हैंड। क्या करूं यार, अब तो मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में तो बच्चे छोटे तो मेरे प्रेशर में आ जाते, वरना तो मुझे आने वाले वक्तों में चलो भाई चलो तुम्हें अब्बा रखा हुआ काफी नहीं है।
0: अरे यार तला भाई, पर थैंक यू सो मच मेरे भाई।
1: अरे तुम्हारी वजह से भाई है भाई, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये जो दिन देखना पड़ रहा ना मुझे, सब तुम्हारी वजह से।
0: मेरे वजह से क्यों भाई?
1: तुम यकीन करो, तुम केतु भी हो राहु भी, कौन कौन हो तुम हमारे लिए, वो सब हो तुम, शनि राहु केतु जो होता है यार पंडित, तो बताओ क्या होता है।
0: अरे क्या बात है यार, बहुत हिंदी पिक्चर है देखी हमने, इसका पता चला भाई।
1: भाई बॉलीवुड फाड़ कर रखा हुआ तुम्हारे भाई ने, क्या बात कर रहे हो।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है तेरा भाई।
1: थोड़ी दिल्ली की गलियां पता है आपके भाई को।
0: कल एक शख्स ने बोला कि आप भोपाल के लगते हैं, पता है आपको?
1: अरे भोपाली मैं नहीं कर रहा, भोपाली नहीं, पानवान नहीं खाता मैं।
0: पहले नहीं तो वही था कल मैंने वही बताया, मैंने तला भाई को सुन के समझ में आता कि कराची सिर्फ दिखता मुंबई की तरह है, दिल्ली की तरह, तो ये सेटल कर दिया आपने।
1: तुम कहा भाई मुझे आउटडोर क्यों डिस्कस कर रहे हो तुम?
0: मैं, अरे बड़ा जरूरी है गॉसिपिंग के बिना मैं कैसे जीऊंगा, मुझे भी तो चाहिए गॉसिप भाई। नहीं नहीं मुझे गॉसिपिंग चाहिए भाई, ये तो सॉरी आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू। तो ये तो चलेगा
1: बाबू, मैंने थाला खा लिया,
0: थाला खा लिया ना, ठीक है, थैंक यू सो मच तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलो बाबू अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज,
1: चलो अल्लाह।
0: तो तला भाई के बाद कुछ मैसेजेस हैं ना, मूड देखा, मूड आ गया ना फिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोमी भाई ने मैसेज किया है, इनका तला भाई के लिए लॉट्स ऑफ लव, ये मैसेज इरफान भाई ने किया है। क्या एक सेकेंड, एक और मैसेज आया मेरे पास, ट्राई टू सेव योर मनी इन कतर बिकॉज यू कैन मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट एंड येस अग्री विथ क्रेडिट कार्ड, आई एम यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड फॉर इवन वन रियाल्टी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया मगर ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और लिखा है, डोंट बाई थिंग्स जस्ट टू शो ऑफ एंड डोंट बाई आइटम्स यू रियली डोंट नीड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फोन स्टिल वर्क वेल फॉर 5 years, देर इज नो नीड to buy a new phone because others in your group have newer phones. बहुत ही सटीक and I love this. ये वाली advice बहुत जरूरी है भाई, शोशेबाजी ना करो भाई। एक call और आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, मैंने call उठाई नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या
0: मेरे भाई, कैसे मेरा भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: नदीम भाई क्या चल रहा है फिर?
2: तला भाई क्या advices दे रहे हैं, पैसा बचाओ, फाइनेंशियली स्टेबल रहो, क्रेडिट कार्ड पे पैसा बचाओ, कैसे
0: कैसे कैसे करने का? अंदर का मुंबईया निकला आपका, अरे कैसे बाबा। तो क्या क्या आपका क्या नदीम भाई, क्योंकि आप आपने काफी कुछ बताया है, लाइक ड्रॉपलेट्स आपने बीच बीच में एडवाइसेस दिए, बट व्हाट इज योर आइडियोलॉजी?
2: मैं देखे, मैंने एक चीज तो जो विमलेश भाई ने बोली, मैं खुद वही बोलने वाला था स्टार्टिंग में, कि ग्रोसरी है ना ऑनलाइन करना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है कि आपको जो चीजें चाहिए आप वही लेते हो, क्योंकि मैं जब भी मैं खुद नोटिस किया है कि मैं अगर ग्रोसरी लेने खरीदने जा रहा हूँ खुद से, और सबसे मेन चीज है कि फैमिली मत लेके जाओ, अगर ग्रोसरी करनी है तो अकेले जाओ, ठीक है?
0: अच्छा,
2: और जो चाहिए वो लेके आओ, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ग्रोसरी करने जा रहे हो तो आप जो 200-250 रियाल खर्चा करने वाले हो ना, वो 500 रियाल हो जाएगा।
0: अच्छा,
2: 450 रियाल खर्चा हो जाएंगे। और ऑनलाइन के अंदर हमेशा यही होता है कि लिस्ट बनती है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और उसके अंदर आपका कंपैरिजन हो जाता है, जैसे 4-5 सुपरमार्केट से बड़े वो सारे देख लो कि किसमें आपको कहाँ पे अच्छा ऑफर मिल रहा है हर चीज में। जैसे अभी एक सिंपल सी चीज है, एक जगह सर्फ आपको 45 का मिलेगा, एक जगह वही सर्फ आपको 32 में भी मिल रहा है,
0: ठीक है?
2: तो आप वो कंपैरिजन भी कर सकते हो ऑनलाइन बैठे बैठे।
0: हाँ, और ये जो मेजर पार्ट है ना, कि साथ साथ आपको दिखता रहता है कि प्राइसिंग कहाँ पे जा रही है, कितना प्राइस पहुंच
2: रहा है, कहाँ तक आपकी लिमिट है, उधर आपको रोक देना। और जरूरत की चीजें ही आप मंगा रहे हो, मतलब अब ये चीजें चाहिए, ये हमने ऐड कर ली काउंटर में, उससे ज्यादा फिर आप ऐड नहीं करते उसके अंदर के, चलो उतना ही। अब वहां जाओ तो ये दिख रहा है ये भी उठा लो, अरे ये देखो इस पे अच्छा ऑफर है ये भी उठा लो, तो वो पहुंच जाता है बिल उसका।
0: हाँ ओके, हाँ दैट मेक सेंस। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आप ज्यादा, आप यही कह रहे ना कुल मिलाकर?
2: हाँ, मैंने बहुत महीने हो गए कबीर भाई, मैं गया ही नहीं हूँ सुपरमार्केट।
0: अच्छा, मतलब ओहो, ऑनलाइन ही सिस्टम।
2: हाँ,
0: मतलब अगर मजबूरी ना हो तो घर से ही कर लो, ज्यादा बेहतर है।
2: हाँ, घर से ही कर लो, ऊपर से एक तो आपकी मेहनत भी बच रही है।

0: या घर वालों के लिए कोई चीज ले रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि यार सबसे सस्ता वाला उठाओ, ऐसा नहीं होता। जो अच्छी चीज है वो उठाना है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जा रहे बलमेल से खरीद रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी चीज उठाओ जो मतलब ऐसा लगे भी कि हाँ पहन रहे तो चलो ठीक ठाक चीज है। इतना भी कंजूसी नहीं करनी है कि साला अपने ऊपर पहनने खाने में
1: हाँ
0: वो करे, एकदम कोताही कर दे उसके अंदर।
1: ठीक है, पॉइंट टू बी
0: और
1: नोटेड
0: बाकी गेम्स
1: धन्यवाद।
0: में तो अपना कोई बजट नहीं है भाई।
1: गेम्स के मामले में बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं बिल्कुल, मैं सब जगह
0: हाँ
1: क्रिटिसिज्म चलेगा
0: उसमें कोई बजट नहीं है
1: उसमें कोई
0: उसमें।
1: बजट
0: हाँ
1: नहीं है
0: उसमें वो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा टाइम का सबर कर लेते हैं कि यार हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन फिर वो नहीं हो रहा है तो फिर अरे छोड़ो यार पैसे आ गए ले लो।
1: इसी चीज से हमारे घर वाले परेशान हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है वो किस बात से परेशान है। नदीम भाई आई कम्प्लीटली
0: अरे
1: एग्री।
0: मैं पता है कभी मैं बताऊँ, मैं पीसी में बैठा रहता होता तो वाइफ पीछे बैठे रहती है, ठीक है। तो अब कुछ कुछ गेम्स ऐसे हैं जैसे मैं सर्वाइवल गेम्स खेलता हूँ तो उसमें है ना बेस बनाने के लिए स्किन्स है, फिर उसके अंदर पैक्स है, कपड़ों के पैक्स है। तो मैं अगर कुछ करने जाऊंगा ना तो अब जब मैं कभी भी अपना मतलब वो खोलूंगा ना, एक स्टीम अकाउंट होता है पीसी पे, वो स्टीम अकाउंट खोल के अगर मैं डिटेल डालने लगा और पीछे बैठ के देख रहे कितना डाल रहे क्या
1: ये कहानी हर गेमर की है मेरा भाई, कंप्लीटली
0: हाँ तो
1: कंप्लीटली।
0: वो फिर वो उस टाइम पे ना कर दे वो टेंशन आ जाती है कि यार ठीक है चलो बाद में करेंगे जब कोई नहीं होगा
1: ये
0: आसपास
1: राज क्यों इतना एक्सपोज कर रहे हो
0: फिर।
1: भाई?
0: और वो तो हो जाता है,
1: हाँ
0: वो तो हो जाता है फिर। अब वो मेरा बेटा भी वो गेम खेल रहा है साथ में,
1: हाँ
0: तो भाई वो अभी कभी स्किन स्किन लगा लो या कुछ ऐसे कर लो तो वो आके जोर से बोल देगा अबू जी ये आपने ये तो मनी का है ये कब खरीदे
1: ये भाई सिखाओ उसको थोड़ा सा, वरना जो है आपका सीपीयू आपका मदरबोर्ड खराब कर दिया जाएगा।
0: भाई पोल कॉल हो जाती है फिर।
1: अरे नहीं बाबा, बा, थैंक यू सो मच नदीम भाई। बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए भी आ रहे हैं, जजाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू।
0: ओके
1: तो नदीम भाई ने जो बोला वो गेमिंग कम्युनिटी में एकदम सच है। बाकी कुछ और मैसेज पढ़ देता हूँ मैं। एक मैसेज आया है, पैसे सेव करने का तरीका है भाई, SIP करो, छोटी रकम से स्टार्ट करो, बस करो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे आप सिर्फ SIP को बढ़ाते रहो, बहुत अच्छा है। मैं 1,000 से स्टार्ट किया हुआ था भाई, अभी 5,000 मंथली जाता है, अब मज़ा आ रहा है। अब सोच रहा हूँ ये पहले क्यों नहीं स्टेप लिया। ओके, तो ये SIP वाली जो बात कही है भाई ने, बिल्कुल ग्राउंडेड अप्रोच। जीशान मैंने मैसेज किया, एक मैसेज है भाई, ये फाइनेंशियल एडवाइस ने डेविड फिलिप दे सकता है, मस्त स्टोरी दी भाई थर्सडे की, थैंक यू सो मच भाई। सुभाष भाई का मैसेज है। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में आपकी फाइनेंशियल एडवाइस क्या है, हो सकता है किसी काम आ जाए भाई। देखो हर किसी के अपने अपने तरीके हैं, कोई क्रेडिट कार्ड के हक में है कोई नहीं है, पीपल आर डिवाइडेड, बट आप क्या कहना चाहते हैं। एक कॉल और उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
1: जी
2: कैसे
1: मेरे भाई,
2: हैं कबीर भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
2: बोल
1: जी बताइए
2: जी। ये डिग्री वाले भी जो जिसने डिग्री नहीं भी ली हुई, खुद के पैसे बचा बचा के, खुद के पैसे बहा बहा के जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर हर कोई बन ही जाता है।
1: नहीं वो तो ठीक है, आपकी क्या एडवाइस है, आप ही की वजह से सवाल निकला ये पता है ना आपको।
2: मेरी ये एडवाइस है कि आप कभी कभी आपने ग्रोसरी तो मंगवानी है ऑनलाइन, तलहा भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी आपको जो है कहीं ना कहीं से जो है वो सेविंग मिल जाती है 50% इसी तरह जो है वो लगी होती है ऑफर उसमें बच जाते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा हफ्ता जो है वो घर में खाना खाने वाले और वीकेंड में बाहर जाके खाना खाते हैं तो आपको वीकेंड में भी जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरीज जो है उसमें 50% 70% ऑफ मिल जाती है। लेकिन वही आप जो है वो अगर जाके खाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं तो वो आपको फुल पेमेंट पे करनी पड़ती है।
1: हाँ ठीक है, तो आपके क्या कहना है कि घर पे खाओ ये कह रहे हैं
2: नहीं बाहर खा लो, ऑनलाइन मंगवा लो, कहीं में मिया पार्क चले जाओ या कहीं चले जाओ ऐसी जगह पे।
1: हेलो, आपकी आवाज चली गई मेरा भाई। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज ही चली गई, बताइए अब क्या बोलूं। अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम। एक और भाई ने मैसेज किया है, ये कह रहे हैं फरद भाई, फरद भाई कह रहे हैं फैमिली को मत लेके जाओ। भाई ये तो सही है, लेकिन वो लोग को के बिना क्या दिल नहीं

0: अच्छा ओके okay. हाँ काफी काफी ये कमेटी वाला तो मुझे लग रहा है बहुत ही कॉमनैलिटी हो चुकी है, बहुत सारे लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं कमेटी करो कमेटी करो कमेटी करो. बट ये कि एक तो गोल्ड बिस्किट्स के लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आदमी जरा फोकस करे इस बारे में, लेकिन भाई बीच में गोल्ड ऐसा गिरा था ना लोगों के दिल हाथ में आ गए थे. पर ठीक है
1: गोल्ड गिरा था
0: हाँ तो लोग
1: अदर ऑप्शन भी है ना, अभी फोन पे वगैरह पे भी आ रहा है गोल्ड लेने के लिए.
0: ठीक है ठीक है मेरे भाई, फेयर एंड स्क्वायर देखते हैं आगे और क्या कहते हैं लोग. जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन थैंक यू. ओके भाई अल्लाह हाफिज़. वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम. ज़रा मैं जिंगल चला दूँ, मैसेजेस बहुत सारे हैं पेंडिंग जो मैंने पढ़े नहीं हैं. मैं माजरा चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे घमंडी की कीमत पुकारिएगा, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है. बाकी मैं अभी से कहता हूँ घड़ी में होंगे 7-2, पहले कह रहा हूँ 7-2 होने वाले, आप भी मेरा साथ देते रहो प्लीज़. आपके बिना जी कुछ नहीं चलने वाला. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 टाइम चेक।
1: हाँ जी, साथ दो, और मैं तो कहना जी साथ देते रहो बंदा। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एक दो मैसेजेस हैं, मैं ज़रा पहले वो पढ़ देता हूँ क्योंकि वो मैसेज मुझसे बहुत ज़्यादा मिस हो चुके हैं। अहमद भाई को कॉल करने, अहमद भाई कह रहे हैं कि टाइम मिले तो कॉल। भाई ऐसी क्या बात कर दी, टाइम मिलेगा? टाइम बिल्कुल है अहमद भाई, टाइम है, मैं कॉल लगा रही हूँ आपको, लेकिन पहले मैं ज़रा मैसेज पढ़ लूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। तो एक तो मैसेज था, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू? वीकेंड डे वी आर गोइंग टू कैच फिश, बट माई बैड, आई डिडंट गेट माई फिश लोकेशन। समय समा, थैंक यू। ये बता रहे हैं कि मच्छी पकड़ने निकले थे नूरुल्लाह भाई, मच्छी मिली नहीं और ये वापिस आ गए, लोकेशन नहीं मिली इन्हें। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक ये जो मैसेज आया है तला भाई के लिए नहीं, एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। एंड देन एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ग्रोसरी अकेले बेहतर है? ओके, पैसे फाइनेंशियल एडवाइस है, बिल्कुल सुनिए गौर से। तला भाई फ्रॉम अलखोर कह रहे हैं ग्रोसरी अकेले बेहतर है, ऑनलाइन तो सब है, ऑनलाइन तो सब आला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। ओके तौफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम। दैन एक मैसेज है, सितरा बहन के लगती हैं, गोल्ड प्रेजेंट है, सिल्वर फ्यूचर है, सिल्वर में इन्वेस्ट करो। एक और गुजराती की एडवाइस, भाई साहब मैं गुजरातियों की एडवाइस को बहुत सीरियसली लेता हूँ, बहुत सीरियसली लेता हूँ। ये लोग अलग खोपड़े गए हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, जिनको भी इंडियन गुजराती मिले जो वो बता रहा है ना आपको पैसे के बारे में, बैठ के सुनना, इधर उधर का फ़ोन यूज़ मत करना, मैं सीधे बताऊँ। ठीक है बहन, आप कह रही हैं तो गुजराती भी हैं ऊपर से। तो बहन कह रही है सितरा बहन के गोल्ड प्रेजेंट है लेकिन सिल्वर फ्यूचर है, सिल्वर में इन्वेस्ट करो। एक और गुजराती की एडवाइस, मान लो फराज भाई कह रहे हैं गोल्ड और सर्टन बिग अमाउंट ऑफ सेविंग्स पे ज़कात का फैक्टर ज़रूर याद रखना और पे करना है। वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अतला भाई कह रहे हैं यू मिस्टर गबंडी, तो क्या हो गया मैं, तो क्या हो गया, आप भी तो हैं मेरे साथ ही। वैसे इन शॉर्ट 50-30-20 रूल हैं। अच्छा आओ, अच्छा ओके, आप समझा। अफसर बहन, मुझे भी घमंडी कह रही हैं क्या बहन, मेरे दिल पे लगी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करूँ। हादी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर राइमिंग, गाड़ी में साथ दो मुझे भी सबसे बुरी राइमिंग थी, इसकी तारीफ नहीं करनी थी हादी भाई। वालेकुम सलाम सुरजीत भाई, एंड देन गुड मॉर्निंग। एक और भाई जिन्होंने मैसेज किया है, सुशील भाई, आपको राइमिंग तो दिखाएंगे सुनाएंगे खादिर भाई, देखते रहो अभी आप, एक बहुत जल्दी प्रोमो आएगा। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, नोमी भाई कहते हैं भाई खुल के स्पेंड करो विदाउट कंजूसी, अल्लाह भी विदाउट कैलकुलेशन है, अल्लाह भी विदाउट कैलकुलेशन देगा इंशाल्लाह। द मोर यू होल्ड द लेस यू एंजॉय एंड गेट। भाई कह रहा है उड़ा दो पैसा मार्केट में, क्या है ये पैसा, हाथों का मेल। मत ना हो, रुको एक सेकेंड। ये मैं ज़रा कॉल कर लूँ हमारे अहमद भाई को, बहुत डांट पड़ेगी, बहुत देर से कॉल कर रहा हूँ मैं बेचारे, कब उन्होंने मुझसे बोला था और आज जाके मैं कॉल कर रहा हूँ, अब जाके सॉरी। जमाल शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने ही सलाम और आपने ही वालेकुम सलाम कर दिया सब। बताइए अहमद भाई क्या कहना चाह रहे हैं। खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं।
2: हम तो ये पूछना चाह रहे थे कि हमें तो कोई आइडिया भी, तो बुआ ने पैसा बचाना कि तो 10 साल से हम भी विदेश में है और जब भी घर जाना होता है तो जेब में कुटी कौड़ी हो जाती है, तो आप कुछ ज्ञान है तकलीफ दीजिए कि क्या किया जाए कि जो पैसा बचे।
1: तो ये तो सवाल मैं पूछ रहा था ना रेडियो पे, ये तो आपने दोबारा पूछ लिया। ये क्या हुआ, सपने में सपना है? नहीं, मेरे से मत सीखो भाई, मैं तो खुद सीखना चाह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मेरा फाइनेंस बस अल्लाह मियां संभाल रहे हैं, तब तक संभाल रहा है, वरना मुझे कुछ नहीं आता। ये जो लोग इन्हें एडवाइस दिए, मैं खुद
2: हूँ। हाँ, कंट्रोल है
1: किसके, आपके?
2: हर चीज में सब जितना सैलरी आता है उसमें से कुछ
1: रुपए 200 से 100 निकाल के पूरा बैलेंस सेव है, लेकिन फिर भी जेब में नहीं रहता। तो फिर ये कृपा कहाँ रुकी हुई है, ये आपको देखने की जरूरत है।
2: जी?
1: ये कहाँ रुका हुआ है सिस्टम, ये कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसे कैसे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है मेरा भाई। फिर तो
2: कुछ पैसा रखे रहते हैं तो कुछ मांगने वाले आ जाते तो उनको देना पड़ता है या फिर घर पे चला जाता है पूरा का पूरा बजट।
1: अच्छा,
2: बचता है ही नहीं।
1: चलो देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया लेकिन मैं भी यही मार्केट में पूछ रहा हूँ, तो ठीक है बात करते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच मेरे भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, वालेकुम सलाम। तो अहमद भाई ने वही पूछ लिया जो मैं ऑलरेडी पूछ रहा हूँ. तो आपने दो मरतबा सवाल सुन लिया है, अब मत कहिएगा कि सवाल क्या है. एक मैसेज है भाई, फैसल भाई ने मैसेज किया है, कह रहे हैं भाई फ्राइडे मॉर्निंग को हमारा उम सलाल मोहम्मद के अकोमोडेशंस के एसी में आग लगी थी. अच्छा, सब सो रहे थे. हैं सब सो रहे थे. आगे लिखते हैं, एक लड़का उठा तो उसने सबको उठा के सब निकल गए बाहर रूम. एक सोया हुआ रह गया हेडफोन्स लगा के, फिर एक बंदा गया उसको उठा लिया. अल्लाह का करम है सब ठीक है और सेफ है. बाद में अफवाह फैली, दोस्तों में एक ही चीटी जल रही थी जिसको लास्ट में उठा के लेके आ रहे मेरा भाई. एक तो ये इतना हेडफोन लगा के, ये मेरी भी आदत बुरी है, हेडफोन लगा के कई मरतबा नींद आ जाती है, बहुत दिक्कत हो सकती है भाई, प्लीज़ ऐसा ना करें. कादिर अब्दुल आदि भाई वालेकुम अस्सलाम. समीर भाई का मैसेज है, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. ओके, ज़्यादा पैसा है तो गोल्ड इज द बेस्ट, बस ज्वेलरी में नहीं. कम पैसा है तो सिल्वर में करो, गोल्ड हो या सिल्वर, ये स्टॉक मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो, सब फ़ायदा ही देगा. भाई हर किसी के बस का नहीं है समीर भाई, वो इन्वेस्टमेंट करना, समझ लो स्टॉक में स्पेशली, कह रहे हैं स्टॉक में हर किसी को नहीं घुसना चाहिए. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच. अगला पॉइंट आपका अच्छा है, गोल्ड सिल्वर को भी ले सकते हैं. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड. अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम
1: कमल भाई. कबीर भाई, बढ़िया भाई, आप सुनाइए कमल भाई, क्या चल रहा है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, सब अच्छा चल रहा है.
1: जी मेरा भाई बताइए.
0: भाई हमने तो कभी कभी इन्वेस्ट का सोचे नहीं है, लेकिन बस ये है तरीका कि जो कमेटी की बात हो रही है ना, अब कैसा है, मेरा पैसा नहीं बचता भाई, इसलिए मैं जो है हर मंथ जो है सैलरी में से अपने खर्चे का निकाल के और कोई जरूरत का निकाल के बाकी सब भेज देता हूँ. उसमें जो है हमारी वाइफ जो है कमेटी चलाती है, मतलब दूसरी जगह भी डालती है.
1: अच्छा.
0: लेकिन बस ये है कि कमेटी को आप चलाना है तो और डालना है तो पहले देखिए कि जो चला रहा है वो भरोसे का है कि नहीं, वो वसूल सकता है या नहीं.
1: यही तो मुश्किल काम है, यही ढूंढना कि ये भरोसेमंद मार्केट कहाँ है. हर किसी को नसीब नहीं होता,
0: यहाँ नहीं डालना चाहिए.
1: हाँ.
0: कमेटी लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं लेकिन यहाँ नहीं डालना चाहिए. क्यों? यहाँ पे बहुत से ऐसे कांड हो गए कि लेके आदमी बताया भी नहीं, टिकट भी कर लिया और भाग लिया. यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई अलग अलग से है.
1: और अलग अलग की बात भी है. और क्या है कि कई मरतबा वो प्रेशराइजिंग सिचुएशन हो जाती है, हो नहीं पाता है तो बड़ी दिक्कत भी होती है लोगों को. आई सीन दैट पर्सनली. तो वो भी चीज
0: होती है कभी. हाँ. लेकिन क्या है ना कि चीटिंग करने वाले ऐसे हैं कि कुछ लोग आग के सामने ही कर लेते, आपको पता नहीं चलता. तो यहाँ पे ज्यादातर हो जाता है क्योंकि आप दिल्ली से हैं, मैं मुंबई से हूँ, कोई जो है यूपी से है तो कोई कहीं से है. अब उसको कहाँ ढूंढने आप जाओगे?
1: करेक्ट करेक्ट.
0: जिसका प्रॉपर है वो जो डाल रहा है वैसा होता है. तो हमारा 20,000 मंथली जो है जाता है कमेटी में.
1: अच्छा अच्छा, ओके.
0: और उसी से, हाँ, और वही कमेटी से मैंने घर लिया, उसी कमेटी से मैंने बेटी की शादी किया.
1: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो फिर तो आपके बहुत काम आई भाई, फिर तो आपके बहुत ही काम आई माशाल्लाह.
0: हाँ, मेरा बहुत काम आती है भाई.
1: तो भरोसे
0: जाना है 2027 में,
1: भरोसेमंद
0: बेटी की शादी करने का.
1: अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे भाई, अभी से मुबारकबाद और अल्लाह ताला सब आसानी से करे, बढ़िया तरीके से करे.
0: तो तो अब जाऊंगा, मेरी जो है 7-8 लाख की कमेटी है, वो मिल जाएगी इधर उधर से.
1: क्या बात है भाई, ये आपने पहले अच्छा, आपकी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई है, ये मैं बड़ा खुश हूँ.
0: नहीं, मेरी प्लानिंग नहीं है भाई,
1: ये भाभी
0: मेरी वाइफ की प्लानिंग है. मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है, अगर मेरे पास रहेगा ना.
1: हाँ.
0: तो इधर उधर, अब जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि जो है घर का, तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे अभी अपने एटीएम में जमा करो. हाँ. या इंडिया के अकाउंट में, और ऐसे अकाउंट में जमा करो जो कोई निकाल ना सके.
1: राइट.
0: जब उस टाइम पे कोई मांगेगा भी तो आप दे नहीं सकते हो ना, अपने पास रखोगे तो कोई मांग लेगा दे दोगे.
1: ये वही है ना कि वो अपनी पॉकेट में रख के भूल जाओ और बाद में जब वो मिलते हैं नोट. हाँ. तो बड़ा अच्छा लगता है, कह रही वाह
0: अच्छा लगता है.
1: उस टाइम पे 20 रुपए का नोट भी चलता
0: है क्योंकि मेरे पास, मेरा भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी ने मांग लिया और नहीं भी मांगेगा ना, कोई तकलीफ में दिख गया या कोई ऐसा है और ढूंढ रहा है, कितना चाहिए यार भाई लेके जा, बाद में देना, ऐसा सिस्टम है.
1: नहीं नहीं,
0: इसलिए जो है अभी डाल देता हूँ, अभी पर्सनल अकाउंट है उसी में डाल देता हूँ.
1: हाँ.
0: उससे पड़ा रहता ना, घर वाले निकाल सकते हैं, जब मैं जाऊंगा तभी निकलेगा.
1: तो फिर तो भाभी जी ने सही सिस्टम लगा रखा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ये ये लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए. वो बड़े खुश हुई जान गए. तो कमल भाई फिर तो ठीक है, फिर तो लाइफ इजी है, अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: ठीक है मेरा भाई, जब जब आप बिटिया का ब्याह करें, शादी करें, तो जरूर याद कीजिएगा मेरा भाई. मुंबई में करेंगे?
0: हाँ मुंबई में.
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, याद जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच भाई. ओके भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ एंड मैं कुछ मैसेज पढ़ दूँ मे गॉड ब्लेस हिज डॉटर भाई आपके लिए अभी से दुआ रही है कमल भाई बहुत सारा प्यार कह रहे हैं उसके लिए बीवी समझदार होनी चाहिए भाई कुछ बीवियाँ बहुत खर्चा करवाती हैं हफ्सा बहन ये जो आपने लिखा है ये इशारा आपका ये उंगलियाँ सारी अपनी तरफ है या किसकी तरफ है क्या हो रहा है ये एक कॉल और आ रही अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: जी भाई बताइए जमाल भाई क्या चल रहा है मार्केट में
3: अरे सर शेविंग का तरीका चल रहा है किसी तरह से महसूस हो गया
1: क्या चल रहा है जमाल भाई कैसे बचा रहे हैं आप शायरी सुना के तो नहीं बचा रहे पैसा ये बताइए आप
3: नहीं नहीं मैं आपको एक छोटा सा तरीका यहीं पर जो मैंने किया था वो हाँ। ये चीज मुझे भी नहीं समझ में आए
1: हाँ।
3: और काफी देखिए अच्छा खासा टाइम गुजर गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से बचाया जाए
1: अच्छा फिर
3: मैं
1: क्या किया
3: आज जो जो जो मैंने अपना एक छोटा सा तरीका मतलब बताया है वो बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने किया है अमली तौर पर यहाँ पे और शायद आप मेरे उन दोस्तों के साथ मिल भी चुके हैं
1: अच्छा
3: जैसे हमारे अभी भाई अभी गस्ट जो गए वो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं करना चाहिए तो अगर आप मोतबर इंसान ढूंढेंगे तो हर जगह मिलते हैं और गैर मोतबर भी हर जगह है कि नहीं
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: फिर भाई आपको याद होगा आपने हमारे रूम पर एक बार जो साथ में मिलकर हम खाना खाए थे
1: जी जी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स
3: वही 8-10 लोगों ने इस चीज को एक बार सोच के इजहार किया कि यार ऐसा कुछ करते हैं
1: हाँ।
3: थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं
1: अच्छा।
3: एक बच्चे के पास वो मस्जिद में अपना औकाफ में काम करते हैं
1: हाँ।
3: सारे लोग उनको एक बार भी करते हैं
1: हाँ।
3: बहुत बड़े इंसान है तो कहा ठीक है अब यह है कि दोस्तों 10-12 दोस्त हैं जो हम लोग उन लोगों ने कहा कि 200 रियाल महीने का कम से कम इतना तो अफोर्ड कर सकता है हर दो इतना मुश्किल नहीं है तो 200 वो और हर 200 पे 10 रियाल जो वो 10 रियाल है वो किसी का नहीं वो किसी के हाथ भी कोई रिसाई काम होगा कोई परेशानी वाली बात आएगी तो उसको भेज दिया जाएगा
1: वो इनकेस इमरजेंसी जब होगा तब ऊपर से 10-10 रियाल
3: नहीं वो किसी पर्सनल के लिए नहीं वो अल्लाह के लिए
1: अच्छा अच्छा
3: तो बिलिल्ला रहेगा वो
1: ओके ओके मेक सेंस ठीक है ठीक है ठीक है
3: किसी गरीब की जरूरत के तहत तो 210 रियाल के हिसाब से सब लोगों ने जमा करना शुरू किया
1: ठीक है
3: तो मैं 3 नाम पे जमा करता था 630 रियाल क्योंकि मुझे बेटी की शादी का प्लान था मेरा लगा इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं तो पिछली जनवरी से उसको जमा करना शुरू किया मैंने
1: ये पिछली जनवरी मतलब 2025
3: 2025
1: ठीक है
3: 2024 खत्म हुआ 25 से शुरू किया मैंने
1: ठीक है
3: तो अभी तक तकरीबन 10-15 महीने हो गए थे तो अब मुझे जाना था तो लड़के वालों की तरफ से ये हुआ क्या नहीं है

0: वे हम पोजीशन में नहीं है, थोड़ा वक्त और जाएगा। अभी इसी बीच में हमारी बीवी ने एक दिन कहा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे घर चाहिए, बिना घर के हम लोग 10-15-20 साल से जो बाहर गुजारे गुजार लिए, अब घर चाहिए। तो वो इमोशनल कर गई, तो मतलब थोड़ा सा देखा मैंने उनकी आंखें भर गई। मैंने कहा नहीं यार, घर से ज्यादा कहीं ज्यादा कीमती इस बीवी का एक आंसू है, नहीं होना चाहिए ऐसा। जब इन लोगों ने वक्त भी डाल दिया है
1: तो कितने कितने निकाले आपने कुल मिला के
0: वहां पर? तो हमारे पास मतलब जो भी जमा हुए थे तकरीबन 2,80,000 हो गए थे। और ये हुआ कि हम अपनी कुछ मतलब बेटा भी आ गया है, तो दोनों की सैलरी इस महीने इकट्ठा करके और तभी से काम शुरू करते हैं। और शुरू करेंगे तो 2-4-6 महीने में इंशाल्लाह घर तैयार हो जाएगा।
1: भाई भाई भाई आपको अल्लाह बेस्ट भाई, बहुत बहुत बहुत सारी दुआएं मेरे भाई जमाल भाई इस चीज के लिए। तो काफी
0: तो हमने शुरू किया भाई। तो देखिए एक बात बताए, आपको उसमें से कोई इंसान नहीं है जिसने जब कहा हो कि मैं जा रहा हूँ तो उसको पैसा नहीं दिया उन्होंने एकदम वक्त पर।
1: अच्छा।
0: इवन एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि अब जब लड़के वाले तैयार नहीं है अभी तो मुझे शायद अक्टूबर नवंबर में चाहिए पैसा, अभी नहीं चाहिए।
1: ठीक है।
0: तो एक दूसरा साथी जा रहा था तो वो घर बनाने के लिए सोच रहा था, तो उसको उन्होंने बोल दिया कि ठीक है यार, उसको जब अभी नहीं चाहिए तो तू ही जा, तू ही कर ले, वापस आके अपना इतना जमा कर देना। तो एक हफ्ते के बाद ऐसा कुछ मैटर हो गया हमारा कि कुछ सामान नुकसान हुआ बारिश की वजह से, फिर भी इमोशनल हो गई। तो मैंने उनको फोन करके बोला कि नहीं यार, मेरे प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है और ऐसा ऐसा हो गया है और मैं रात भर सो नहीं सका। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यार, बीवी ने रो दिया, बड़ी बात है, उसको नहीं रोना चाहिए।
1: ओहो भाई, आपकी तो बैकग्राउंड में स्टोरी भी चल रही है, क्या बात है। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर
0: तो वो बेचारा उसने खुद से कहा कि नहीं यार, घर तो तेरे लिए जरूरी है, बच्चे तेरे पढ़ गए, पढ़ा लिया तूने अल्हम्दुलिल्लाह, अब तेरे लिए घर जरूरी है तो ठीक है तू शुरू कर, मैं जैसे भी करके मैनेज करके तेरा पैसा देता हूँ। फौरन से दिया उस बंदे ने, बोला हमको 1 तारीख को जब तेरी सैलरी के साथ भेजना है तो 1 तारीख को मैं भी तुझे दे दूंगा। और वो 30 तारीख के रात को ही उसने खबर कर दिया कि जब तू मिलता है आज कल सुबह ही भेजना हो तो अभी आके लेके जाओ।
1: ओके ठीक है।
0: तो इस तरह से देखो ऐसा रहता ना कि कभी कभी यार होता है कि हमारे खर्चे बहुत होते हैं और हम लोग घर के लिए आते हैं, अपने परिवार के लिए आते हैं, है ना। तो जब घर वालों को भी इंतजार होता है, हमें भी इंतजार होता है, उसके बीच में बहुत सारे मसाइल खड़े भी हो जाते हैं। तो एटलीस्ट उसमें से ऐसा होता है कि इतना निकाल के कहीं एक जगह जमा किया जाए जिससे आपको कोई इफेक्ट ना हो, आपका घर भी चलता रहे, आपके भी अपने खर्चे चलते रहे, लेकिन थोड़ा एक छोटा सा। तो अगर वो छोटा एक लंबी मुद्दत तक, यानी आपके सफर कंप्लीट करने तक अगर वो आप करने में कामयाब हो जाते हैं बिल अदरेस, तो इंशाल्लाह से वो आपको जब आखिर में मतलब 2 साल के बाद अगर आप उसको लेते हैं ना तो एक पता हुआ मिलता है, यानी एक जो टुकड़े टुकड़े की शक्ल में, जर्रे की शक्ल में होता है, तो फिर वो एक क्या कहते हैं पत्थर की शक्ल में बड़ा सा हो जाता है
1: बीच बीच में, मतलब ठीक है। चलो जमाल भाई, थोड़ा सा टाइम की कमी है, इंशाल्लाह फिर इस बारे में बात करेंगे, पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: नहीं, एक तरीका था जो मतलब मेरे साथ हुआ है अभी पर्सनली।
1: भाई भाई अभी थोड़ा सुनो ना बाकी बता देना, अभी क्या टाइम थोड़ा सा बहुत ही कम मेरे पास, और बहुत सारे और मैसेजेस और कॉल्स हैं, मैं इंशाल्लाह इस बारे में और बात करूंगा, ठीक है, आप कर देना मैसेज, ठीक है। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद जो है कुछ और मैसेज भी है जो आए हैं। वन शुड रीड रिच डैड पुअर डैड, क्या रिच डैड पुअर डैड टू लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड एसेट्स इन इन्वेस्टमेंट्स। ये ताहिर भाई ने कहा, ये इस पे तो अलग शो हो सकता है। एक मैसेज कह रहा है, भाई बचत को मारो गोली, सैलरी बढ़ाओ, सब एडजस्ट हो जाएगा। ये प्रिंस भाई कह रहे हैं, मेरा भाई चादर बंधना, वो चादर को बड़ा कर दो। एक मैसेज है के साथ हमें, वाह वाह शैम्पी भाई, क्या शैम्पी भाई ने तो कुछ किया ही नहीं। एक मैसेज है, आज की लाइफ में क्या है बहुत मुश्किल है, एहतियात ही अच्छी बात है, ठीक है। एक मैसेज है, मियां बीवी दोनों को कोऑपरेशन क्या हो गया मुझे, कोऑपरेशन ज़रूरी है, कुछ भी करना फैसला लाइफ का बिल्कुल ज़रूरी है। कह रही हैं हफ्सा बहन कि मैंने घर बनाया है सेविंग करके, अल्हम्दुलिल्लाह बहन। सेविंग कैसे करी आपने बताइए, एक कमेटी इन्वेस्ट क्या है भाई, एक कमेटी भाई 5-6 लोग या 10-12 लोग, इतने भी लोग समीर भाई मिलके जो है डिसाइड करते हैं एक अमाउंट महीने में डालेंगे, और उसके बाद जो है उसको जब किसी की ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से बांटेंगे। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, पर आपके आसपास ही मिलेंगे लोग ऐसे नए नए आए हैं कतर में। आप अब्दुल रहमान साहब ने मैसेज किया, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, सेविंग्स होती ही नहीं है, इसलिए मैंने घर का सारा अकाउंट्स वाइफ को दे दिया है और

कमाल की सेविंग्स होने लगी हैं। हकीम भाई ये हर घर की कहानी है। याया भाई कह रहे हैं भाई गोल्ड भाई फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट जीसीसी रेसिडेंट शुड कीप इन माइंड दैट गोल्ड इज लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड रिमेंबर फॉलोइंग गोल्ड बिस्किट्स आर मोर लाइकली टू कस्टम चेक बट वेरेबल ज्वेलरी इज लेस लाइकली बट सिल्वर पर चेक करो। ये अपने गुजराती भाई इन्वेस्टमेंट बोलकर बैकग्राउंड में खुद सेल कर रहे हैं। ये तो फैक्ट है। एक मैसेज है घर के एक्सपेंसेस अपनी वाइफ को दे दें। लेट्स से इफ आई एम स्पेंडिंग 2000 ग्रोसरी प्लस फूड इफ यू आर गिविंग दिस अमाउंट टू योर वाइफ शी विल डेफिनेटली सेव 200 मंथली। इट इज हैपनिंग टू मी। ये मैं कह रहा हूँ नौशाद साहब ये हर घर की कहानी है। फॉर बिग इन्वेस्टमेंट्स बाय गोल्ड और सिल्वर ईच मंथ इन अ ग्राम एंड वेन यू विल बाय अ प्रॉपर्टी देन यू कैन सेल दीज और यू कैन कीप इट। इरफान भाई का मैसेज है देखते हैं। सलाम कबीर भाई होप यू आर वेल। थ्री थिंग्स आई यूज क्रेडिट कार्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ पॉइंट्स फॉर 3 months विद दोज पॉइंट्स आई कैन बाई ग्रोसरी शॉपिंग एज वेल। कंजूसी कफायत शायरी है। फिर लिखते हैं मेरी राय ये है कि कुछ पैसे घर वालों को दीन और कुछ पैसे अपने पास रखें मतलब सेविंग एग्जांपल 1500 सैलरी में 800 सेंट घर बाकी 200 चाय पानी 500 सेविंग्स क्या के मांगना पड़ सकता है। ठीक है। खादर अब्दुल भाई कह रहे हैं कबीर भाई वी आर गोइंग टू हैव हाँ वो तमिलनाडु को मुबारक हो। भी तमिलनाडु में नए सीएम विजय थलापति विजय सॉरी। फैसल भाई क्या कह रहे हैं फैसल भाई का मैसेज पढ़ा था मैंने। हाँ पढ़ा तो है। ठीक है। मैसेज है भाई का अब सबके सब साथ में डिनर हो रहे हैं हमें टोपी है कौन सा डिनर हो रहा है। अरे ये कब की बात बता रहे तला भाई आपको पता है दिस इज प्राचीन युग की बात जब मेरे पास काम नहीं था। फराज भाई कह रहे वालेकुम सलाम हैदराबाद में कमेटी को चिट फंड भी बोलते हैं। चिट फंड नाम सुन के थोड़ा स्कैम नहीं लगता कि ये हैदराबादी हमारे भाई डेयर डेविल है हर चीज में। चिट फंड में इन्वेस्ट करो मेरी अनुराधा। खैर एनीवे मैं गाना चलाता हूँ कहानी कुछ देर में आएगी बी रेडी। आज की कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है बट आई होप कि आपको अच्छी लगी। मीनवाइल मूव 722 में दो हमारा कबीर। Yeah.

चला भाई कह रहे आदर्श तो तुम्हारा रफ्तार चला रहा है भाई, क्या कर रहे हैं? देखिए रफ्तार बाजी में मेरी आवाज ना थोड़ी बहुत सेम है जलो नहीं बेटे जलो नहीं है तो इसलिए क्या है कि मैं इसलिए शो में रफ्तार भाई चलाया था, लगता है कि यही गा रहा है, मजाक कर रहा हूँ रफ्तार भाई की आवाज बहुत अच्छी है पर क्या करूँ, पर्सनैलिटी भी है होती है ना आरजे की, उसके साथ मैच करने के लिए गाने चलाने पड़ते हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, एज रिकमेंडेड बाय यू लास्ट वीक आई वॉच द ड्रामा, अच्छा सॉरी पुराना मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम नाज़िम, मैंने वही सोचा, मैंने ड्रामा सजेस्ट किया, मुझे क्या हो गया। फरहत भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं पैसा पैसा पैसा, कतर में कितना कंजूस और कितने दिल वाले हैं सब पता चल रहा है आज भाई। ये मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं ऐसे ऐसे लोग बताऊँगा आपको जिनके इंडिया में महल बने हुए हैं लेकिन यहाँ पे वो पाँच पाँच दो दो तीन तीन रियाल तक का हिसाब लेके चल रहे हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे अच्छी बात तो है, ये सेविंग तो है, पर ये ऐसे घुट घुट के मैं नहीं जी सकता भाई। ठीक है, अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी का माली चीज़ों में तो मोहताज ना बनाए, आमीन, लेकिन ये फैक्ट है भाई, पाँच पाँच दो दो तीन तीन रियाल अगर मैं खाने के वक्त सोच रहा हूँ और मेरा इंडिया में महल है जहाँ कोई नहीं रह रहा है तो फिर मुझ में दिक्कत है। फरहत भाई कह रहे हैं हैदराबाद में बोलते हैं कि हवेली बिक गई परवाह नहीं लेकिन शान में फ़र्क नहीं आना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। एक मैसेज है सादिक भाई का, सादिक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम्प्लॉयड 50-30-20 रूल अप्लाई, वो एम्प्लॉयड आपको ऑटो करेक्शन सादिक भाई कह रहे हैं 50 फॉर रेंट्स एंड यूटिलिटीज़, 30 फॉर इन्वेस्टमेंट्स, 20% ऐसी जगह डालो जहाँ ट्रांसफ़र करने तुम खुद भूल जाओ, मस्त बचत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसी जगह पर अगर आपको सेविंग करनी है ना तो ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र मारो और ज़्यादा नहीं, 20% चलेगा, लेकिन ऐसा ट्रांसफ़र जहाँ से आप निकाल ही नहीं सकते जब तक आप बिल्कुल उसमें जिद्दोजहद ना करें और अल्टीमेटली वो पैसा सेव हो जाता है। सादिक भाई वेरी गुड, क्या है तो खिला दो बिल्कुल, तला भाई कैसे अब तो बिरयानी खिलानी पड़ेगी, ये आदमी नहीं मान रहा बनता है बनता है आपको तला भाई, आपको तो बनता है। अच्छा तो ये कुछ मैसेजेस जो हैं आज फाइनेंशियल एडवाइजेस पाएँ, कुल मिला के जो हमने आज सीखा है होता ना आज के आज से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई पहली बात समझ में आ गया कौन कितना पानी में चल रहा है, कौन कितना बचा रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। हमारे गुजराती जितने भाई बहन हैं वो कह रहे हैं गोल्ड नहीं सिल्वर की तरफ इन्वेस्ट करो, गोल्ड वाले कह रहे हैं बिस्किट खरीद लो, तीसरा आके बोल रहा है जी गोल्ड बिस्किट मत लो आप ज्वेलरी ले लो। तो ये सब चीज़ें को अगर हल अलग कर दिया जाए है ना, ये तो बहुत कॉमन एडवाइसेस हैं, बट देन हमने जो सुबह सुबह डिस्कशन किया दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से डर लग रहा है तो एक बार क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लीजिए कि कैसे यूज होता है, अगर आपको यूज़ करना आ गया तब आपकी ज़िंदगी एकदम सेट है। ठीक है चलो, इससे अभी आपको डर लग रहा है इसको बात को भी साइड में कर लेते हैं। दूसरी बात इसके अलावा, जैसे सुबह सुबह हम बात कर रहे थे विमलेश भाई ने और तला भाई ने, बहुत सारे लोगों ने बोला, नदीम भाई ने बोला, जब आप ऑनलाइन जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए इट इज़ बेटर इन अ वे इन अ लॉट ऑफ वेज, क्योंकि आपके सामने एक अमाउंट चल रहा होता है, आपको पता है मैं कितना खर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके तो वो भी एक तरीका है कि आप जो है थोड़ा फिजूल खर्ची से बच जाते हैं। अगला पॉइंट जो हमने आज जान लिया है, और प्लीज़ इसे मान भी लो, खुद के लिए खाना घूमना फिरना ये कोई वो थोड़ी है फिजूल खर्ची हैं, इतना घुट घुट के मत जियो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही निकल जाता है आदमी, पता भी नहीं लगता कब कौन किधर फारिग हो गया, निकल गया, ज़ाया हो गया। तो इसलिए ये जो चीज़ें ना अपने खान पान को लेकर थोड़ा घूमना फिरना, अपने में थोड़ा खर्च करना, हर शौक नहीं मारा जाता, ठीक है, तो प्लीज़ शौक मारना बंद करें। मैं बता रहा हूँ मेरी आधी दोस्तियाँ इसलिए ख़त्म हो गई, आधे लोगों से कॉन्टैक्ट इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि मैं उनसे मिलता हूँ और मुझे लगता है कि आदमी क्या कर रहा है ये। ठीक है भाई तुम मेरे अंदर तो कोई ऐब नहीं है, मैं ये नहीं करता वो नहीं, ठीक है वेरी गुड, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम 5-10 रियाल के लिए मतलब हिसाब किताब करोगे, वो भी खुद से नहीं जमेगा। एनीवे ये आज की कुछ फाइनेंशियल एडवाइसेस थी जो हमें मिली है, इस पे से जो आप अमल करना चाहे कीजिएगा। जो मुझे समझ में आया भाई ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़िया ग्रोसरी शॉपिंग तो ऑनलाइन ही करेगा आज सबका भाई। एक मैसेज है कहानी पे आओ, बहुत हो गया पैसा वैसा ठीक है गुस्सा नहीं। तो आज का जो किस्सा है वो थोड़ा छोटा है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, मैं इस कहानी को सुनाने नहीं वाला था इनिशियली, बट मैंने सोचा कि नहीं सुनानी पड़ेगी वरना पेट में मरोड़े आ जाएंगे, सुनाया कैसे नहीं। एक लास्ट सवाल बोल देता हूँ, एक भाई ने आउट ऑफ द ब्लू मुझसे पूछा है कि आपका फेवरेट आरजे कौन है।
वो नहीं पता भाई, पर हमारे जैसा तो दौर में एक ही बार आता, इतना जान लो बस। डायलॉग फिट करना था मुझे। अच्छा सवाल पूछ लिया आपने फिट करने के लिए। आ जाता हूँ, कहानी आने वाली है 666-22-107 पे। एंड एक सेकंड भाई, मैं एक जरा लगा दूंगा ना उसके बाद। सो अगर आप लाइव सुनने वाले हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, इन केस यू आर लिसनिंग टू मी लाइव, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। कितने गया जी, कितने गया गाना? एक सेकंड, ये रहा जी, इस गाने से उस पार मिल दे, ठीक है। क्या है मैसेज? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, दो मिनट और 50 सेकंड के बाद आज का किस्सा, छोटी कहानी है, प्लीज बेयर विद मी। हफ्ते की शुरुआत, दलजीत पाजी का गाना है, गाने का ना की है, गाने का ना है जी वाटर।

दलजीत बाजी तो कह रहे हैं जरूर सुनो बेटे प्लीज हां जी माई सेल्फ डंबलप्रीत सिंह फ्रॉम हैरी पुत्तर गुड मॉर्निंग कुछ मैसेजेस मैं लास्ट पढ़ दूं तबस्सुम बहन लिख रही है अस्सलाम वालेकुम ये सही बात है हिसाब रखना तो सही बात है लेकिन छोटी मोटी खर्चों के लिए काउंटिंग करने से क्या फ़ायदा पता नहीं कल सुबह होकर आप ऊपर ही चले जा अरे बहुत बहुत ज़्यादा ही सीधा लिख दिया आपने हसरत तो दिल में रह जाएगी दिल कहाँ बचेगा हसरत के लिए एक मैसेज है गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई का मैसेज ओके तो आ गए तमाशा देखने मतलब कहानी सुनने के लिए आप तैयार हैं आज का जो किस्सा मैं फिर से बता दूं भाई इससे पहले मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करें क्योंकि बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म मिलता है कि कहानी इतनी छोटी क्यों थी क्या था ये कहानी आज की ऑलरेडी छोटी है शुरुआत से मैं कह चुका हूँ ये मत कहिएगा बताया नहीं था तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ आप भी अगर कोई रिकॉर्डिंग करे तो मुझे बताइएगा उसमें बैकग्राउंड स्कोर आ जाता है तो बढ़िया रह जाता है सबसे पहले तो इस कहानी का डिस्क्लेमर तो इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड मैं बता रहा हूँ ये मैं बिल्कुल इग्नोर करने वाला था लेकिन मुझसे हो नहीं पाया तो मैंने कहा नहीं छोटा किस्सा ही सही लेकिन सुनाना तो पड़ेगा तो वॉल्यूम ज़रा बढ़ा ली

যায়। तो जी मैं दोहा वाला कबीर एफ 107 पे, और आज का जो किस्सा है सुनाने के लिए कई कई साल पीछे जाना पड़ेगा। क्या दुनिया हुआ करती थी यार 1800s की, स्पेशली द होल 19th सेंचुरी इज टोटली डिफरेंट। जितना भी मैं जानता हूँ पढ़ता हूँ उसके बारे में, मुझे उतनी हैरानी होती है। तो आज का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इन द ईयर 1885, लॉन्ग बैक। और ये साल भी ख़त्म होने जा रहा था, ये तारीख इस वक्त थी 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर का किस्सा है 1885 का। बंदे का नाम था सैमुअल वॉर्डल। सैमुअल था, सैमुअल न्यूयॉर्क सिटी में रहता था, लेकिन ये सुनते ही आपके जहन में आया होगा न्यूयॉर्क सिटी, माय गॉड सो फैंसी। लेकिन उस वक्त न्यूयॉर्क इतना फैंसी नहीं था, और ऊपर से सैमुअल वॉर्डल जो था वो एक बहुत ही छोटे से वन बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, और जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। वो अपने शहर को छोड़ के यहाँ पर आया था, और इस वक्त सुबह 5 बजे वो उठा था, और बहुत ही हैरानी से उठा था। अब हैरान परेशान होकर उठने की आदत उसे हो गई थी, क्योंकि जानबूझ के उसने अपने लिए ऐसी चीज़ें पैदा करी थी कि वो हैरानी से ही सही लेकिन उठकर तैयार हो जाए। दरअसल वो हैरान होकर क्यों उठता था, क्योंकि उसका जो अलार्म था वो बजता था, और बहुत तेजी से बजता था, और अलार्म क्लॉक भी उसके ऐसा नहीं कि साइड टेबल पर हो बैठ के, अलार्म क्लॉक उसकी वो बेड के राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा चलने के बाद एक शेल्फ के नीचे रखता था। तो वो उठा, अब अलार्म क्लॉक वरना बंद नहीं होगी, तो वो उठा चल के गया, और फिर उसने बंद किया, और फिर वो जग गया। एंड दिस इज हिज डेली थिंग, क्योंकि डेली उठना उसके लिए बहुत जरूरी था, और इसीलिए कि वो कहीं सोता ना रह जाए तो अलार्म क्लॉक के साथ वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि भाई मिस ना हो जाए। बस उसकी प्लेसिंग भी बड़ी अजीब थी, चीजें भी बड़ी अजीब करता था कि उसे जबरदस्ती उठना पड़े, क्योंकि अगर वो एक बार उठ गया, चल के गया अलार्म बंद करने के लिए, तो चलने की वजह से उसकी नींद टूट जाएगी और मामला सेट हो जाएगा। एंड ये अमूमन लोग बोलेंगे ये कोई बात होती है आदमी उठ जाता है, नहीं नहीं नहीं नहीं साहब, पीपल आर बैड स्लीपर्स। मैं अपना भी एग्जाम्पल दूं, इसलिए भी ये कहानी मेरे लिए जरूरी है। जिन लोगों की नींद बड़ी ख़राब होती है, कभी आती नहीं और आ गई तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, तो ये अलार्म सिस्टम आई कैन रिलेट टू, एंड लॉट ऑफ पीपल वुड रिलेट टू कि ऐसा होता है। तो ये जो भाई था इसके लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर से ये बहुत ही बैड स्लीपर कि भाई सो गया तो फिर सो गया, तो जितना अलार्म क्लॉक लाउड होगी उतना बेहतर है। तो सैमुअल जो था वो सालों से अपने काम पर एक मरतबा भी लेट नहीं हुआ था। तो उसके लिए तो ये रिचुअल ऐसा था कि कोई कह भी दे कि सैमुअल सब बकवास की बातें हैं, उठ जाया करो, ये करा करो, वो करा करो, नींद अच्छी आएगी, तो वो क्यों सुनेगा, उसके लिए काम चल रहा है ना। अच्छा, सैमुअल वॉर्डल की जॉब बड़ी यूनिक थी, बहुत यूनिक जॉब थी, जो अब ये जॉब एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में। 1885 में न्यूयॉर्क में लैंप लाइटर्स की जॉब होती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है ये। तो ये जो लैंप लाइटर्स की जॉब है, ये लोग क्या करते थे, स्ट्रीट लाइट्स जो आजकल बहुत अलग तरीके से चलती हैं, पहले ये सारी स्ट्रीट लाइट्स गैस बर्निंग स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती थी, गैस से चलती थी, तो मैनुअल सिस्टम था। तो बेसिकली दो शिफ्ट होती थी इन लैंप लाइटर्स की, एक नाइट शिफ्ट वाला बंदा होता था कोई दूसरा जो आएगा और रात होते वक्त इन लैंप्स को जला देगा, फिर एक अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी जो सैमुअल की होती थी। सैमुअल जो था वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठेगा और लाइट्स को बुझा देगा, तो लाइट्स को बंद करने की उसकी जॉब थी। सैमुअल को ये जॉब बिल्कुल नहीं पसंद थी, मतलब अंदर ही अंदर वो कुड़ता था ये क्या नौकरी है, लेकिन फिर उसे पसंद आने लगी थी जॉब ओवर द ईयर्स, क्योंकि एक तो पूरा शहर जैसे उसका दोस्त हो गया था, कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ जाने अनजाने चेहरे, एंड वॉज ऑल कि पूरा शहर जैसे उसका दोस्त हो, एंड एवरीबडी वॉज फ्रेंडली टू हिम, बात करते थे लोग, पहले तो फोन होता नहीं था तो पीपल यूज टू जस्ट टॉक एंड टॉक एंड टॉक, तो लोग उससे बात करते थे, एंड उसे सच में लगता था कि यार चलो ठीक है सुबह की नींद मेरी ख़राब होती है, बट उस मसले के अलावा इट्स ऑल रियली ब्यूटिफुल, अच्छी नौकरी, और नौकरी की ज़रूरत भी थी उसे, तो वाई नॉट। बहरहाल 24 दिसंबर की बात ये थी कि अभी जैसे छुट्टियों का सीजन शुरू हो जाता है, लोग जो हैं वो थोड़ा सा आराम करने के जोन में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग, मगर इसकी जॉब कभी ख़त्म नहीं होती थी। सैमुअल को तो कुछ भी हो
लैम्प ये स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखना ही रखना है। मगर उसने फिर सोचा चलो ठीक है मैं भी थोड़ा चिल तो करूं, मुझे भी हक बनता है कि मैं भी थोड़े मजे करूं। तो उसने क्या किया, उसके यहाँ पे जितने लोग काम करते थे और बाहर दो तीन जो न्यूयॉर्क के सड़कों पे जो उससे मिले थे वेंडर्स थे, बहुत सारे लोग जो अपनी दुकानें लगाते थे, उनसे उसकी दोस्ती हो गई थी। उसने कहा चलो हम सब मिलके ना एक बड़ी सी पार्टी करते हैं। एंड ये बड़ी सी पार्टी करने के लिए वो बड़ा एक्साइटेड था। डिसाइड हुआ कि भाई शाम में मिलते हैं, ठीक है, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, मस्त मौज करेंगे एकदम। तो तैयार हो गया वो, अपना काम धाम करके घर पे पहुंचा और वन बेडरूम अपार्टमेंट है, वन बेडरूम अपार्टमेंट। एंड ऑफ द नाइट की तरफ मैं आपको सीधे ले जाता हूं, फास्ट फॉरवर्ड करता हूं कहानी को। सारे काम वाम खत्म करने पे घर पे उसके दोस्त जो आने शुरू हुए, ऐसा लग रहा था कि अब बस घर जो है सांस नहीं ले पाएगा। एक सिंगल रूम में अराउंड 25 to 30 पीपल, तकरीबन 30 लोग थे इसके वन बेडरूम अपार्टमेंट पे। लेकिन इतना मजे कर रहे थे ये लोग, इतने मजे कर रहे थे, हल्ला गुल्ला खाना पीना हो। और फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा ये लोग नशे में भी थे, थोड़े से हालत आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहे थे, मगर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट क्योंकि ये लोग अलग दुनिया में थे उस दिन, तो जम के पार्टी हो रही थी। बहुत घंटों तक इन्होंने जो है खाना पीना किया। अब ऐसा हो रहा था कि आंखें भारी हो रही हैं लेकिन मजा भी आ रहा है, रोका भी नहीं जा रहा है। और सैम्यूल सोच रहा था यार अगले दिन मेरी नौकरी भी है, सुबह उठना भी है, ये लोग तो जा ही नहीं थे अपने घर पे, और इसको खुद भी मजा आ रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि यार भाई चले जाओ, चलो पार्टी खत्म करते हैं, सुबह उठना है मुझे, ये खुद भी नहीं कह पा रहा है। और सारे अपने मौज में एकदम मजे चल रहे हैं, सोने की जल्दी है भी और नहीं भी है, चलो ठीक है यार एक मरतबा ऐसे भी करके देख लेते हैं। अब वो तैयारी कर ही रहा था कि अब मैं बोल देता हूँ फाइनली कि चंद घंटे बचे यार सो जाता हूँ मैं, इतने में एक दोस्त जो था इसी वन बेडरूम अपार्टमेंट में वो पार्टी के बीच में उठा बोला, और वो बाय द वे बिल्कुल आउट था माइंड से, बोला चलो भाइयों एक काम करते हैं, हम लोग एक बॉक्सिंग मैच रखते हैं, क्या बोलता है सैम्यूल। सैम्यूल की तरफ देखा, अब सैम्यूल जो था वो तो पैर प्रेशर में आ गया, 25-30 लोग सामने खड़े हुए, सब लग रहा है कि हाँ हाँ ही भर रहे हैं, तो वो कौन होता है ना करने वाला। तो उसने कहा ठीक है यार देखी जाएगी। उसने बोला हाँ चलो चलो बॉक्सिंग मैच रखते हैं। अब जब उसने ये बोला तो उसके कमरे का जो पूरा फर्नीचर था इधर उधर तितर बितर करके बीच में उन्होंने एक रिंग सी बना दी, छोटी सी रिंग, और आसपास इकट्ठे हो गए। टोटली क्रेजी, मतलब मैडनेस, पर सैम्यूल वॉज रियली रियली हैप्पी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे वक्फे के बाद वो इतने मजे कर रहा था, वो भी उन लोगों के साथ जिनके साथ उठता बैठता है, लाइक बहुत वो ग्राउंडेड वाले मजे होते हैं ना, वो कभी पॉश जगहों पे खाने वाले नहीं समझ सकते। ये वो वाले मजे थे जो लोग समझते हैं कि महंगे रेस्टोरों में जाके ही मजे होते हैं, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। सैम्यूल वो वाले मजे कर रहा, देसी अपने लोगों के बीच में जहाँ पे कोई सोच विचार नहीं है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट एंड यू जस्ट पार्टिंग। तो बहुत ही क्रेजी, बहुत ही मैडनेस वाली रात ही बीत रही थी। बॉक्सिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, सैम्यूल वॉज सो हैप्पी। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरे साल में वो उतना कभी खुश नहीं हुआ था। पर बैक ऑफ द माइंड उसके चल रहा था यार अब भी अगर ये लोग नहीं गए तो सुबह की ड्यूटी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मगर द मैडनेस कंटिन्यूड, और उसके बाद उसे नजर आए लोग धीरे धीरे थकने लगे हैं। अब उसने धीरे धीरे ना एक एक को बहुत सटल तरीके से बोलना शुरू किया, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता था, तो बोला अरे भाई है आंखें भारी हो रही है ना, आप सच में सुबह जाने ही यार, मुझे भी काम पे जाना है। हाँ वही मुझे सुबह भी जाना है, 5 बजे बताओ सुबह जाना है। और हर किसी को बार बार वो एक सटल तरीके से बताना चाह रहा था कि भाई चले जाओ, हो गई पार्टी, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, प्लीज़ चले जाओ। पर वो डायरेक्टली ना बोल के ऐसे इनडायरेक्टली बोल रहा था, सबको बता रहा था अपनी टाइमिंग्स। कुछ लोग समझ गए थे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, बट एंड ऑफ द डे सब जो थे धीरे धीरे उठ के निकल गए। अब पूरे कमरे में, पूरे डिस्ट्रॉयड कमरे में, इस कमरे की इन्होंने पूरी ऐसी तैसी फेर दी थी, इधर का उधर हो रहा है फर्नीचर, और सैम्यूल जो है अब बीच में रह गया है पूरे घर में अकेला। उसने पैसे पहले तो घड़ी को देखा, घड़ी की तरफ जब उसने देखा तो सिर्फ 2 घंटे बचे थे, सुबह के 5 बजने वाले थे 2 घंटे के बाद, और उसे इन्हीं 2 घंटे में सोकर उठना भी है। उसके दिमाग में आ रहा था ओह माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया यार, कैसे होगा, इतनी पार्टी हो गई, हाँ ठीक है टोटली वर्थ इट, मजा बहुत आया, लेकिन अब मैं करूंगा कैसे, मैं कैसे उठूंगा सुबह।
उसने इधर उधर ढूंढा, मेरा बेड किस तरफ गया, क्योंकि फर्नीचर सारे के सारे हटा दिए गए थे। बेड किधर गया, किधर गया, किधर गया, उसे बेड नजर आया, अच्छा अच्छा ओके इधर पड़ा हुआ है। वो बेड की तरफ गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करी उसने, और जैसे ही वो बेड पे गिरा सीधा उसकी आंख लग गई, मतलब हार्डली एक मिनट लगा होगा, गॉन एकदम गहरी नींद में। दो घंटे के बाद 5 बजे घड़ी में सुबह के ड्यूटी का वक्त फॉर सैमुअल वार्डल, अलार्म भी बजा। दूसरी तरफ पता लगा कि ड्यूटी पर नहीं आया है सैमुअल वार्डल। लेकिन कुछ घंटों के बाद पुलिस ऑफिसर, बकायदा 2 ऑफिसर्स और एक मेन जो ऑफिस स्टेशन हेड होते हैं, वो पहुंचे सैमुअल वार्डल के घर पे, फ्रंट डोर पे। इस वक्त अच्छा खासा मौसम ठंडा भी हो रहा था, इट वॉज रियली चिल्ड, खूबसूरत वेदर, दिसंबर का आखिरी मौसम, आखिरी जो कुछ दिन होते हैं। बहरहाल वो पहुंचे वहां पे, और सैमुअल वार्डल के घर पहुंचते उन्होंने फ्रंट डोर पे सबसे पहले नॉक किया। दरअसल पुलिस वालों को भेजा था सैमुअल वार्डल के बॉस ने। सैमुअल वार्डल के जो बॉस थे वो सैमुअल को जानते थे कई सालों से, और उन्हें पता था ये बंदा किसी भी साल में कभी भी किसी भी तारीख पे 7 डेज काम करने के बाद एक मर्तबा भी लेट नहीं हुआ है। तो ये जो एक मर्तबा ये अभी लेट है, ये हो नहीं सकता कि कुछ ना हुआ हो, इट हैज टू बी समथिंग, हो ही नहीं सकता कि ये लेट ऐसी हो गया। उन्होंने फिक्र के मारे सीधा पुलिस को भेज दिया कि प्लीज चेक कीजिए, वो बंदा कभी लेट नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ है। और बाकायदा उन्होंने जिद करी, पुलिस वाले ने बोला अरे ठीक है वेकेशनल वो चल रहा है मामला, छोड़ दो उसे, जीने दो थोड़ा सा। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, बात ये नहीं कि मैं उसे जॉब पे चाहता हूँ अभी के अभी, मैं बस चेक करना चाहता हूँ इजी ओके और नॉट, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि वो लेट पहुँचा या नहीं पहुँचा, क्योंकि वो साल भर से नौकरी कर रहा है, बहुत सालों तक मेरे साथ रहा है, प्लीज चेक कीजिए। तो इसलिए पुलिस अभी फ्रंट डोर पर पहुंची हुई थी, क्योंकि बॉस ने लिटरली जिद करी थी। अब पुलिस ने जब दरवाज़ा बजाया और कोई भी नहीं आया, तो उन्होंने डोर हैंडल को घुमाने की कोशिश करी, उन्हें लगा दिखा कि बाकायदा लॉक है, लेकिन दरवाज़ा और ये घर छोटा सा ही था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये तो तोड़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी आवाज़ें लगाईं, सैमुअल सैमुअल सैमुअल, नहीं आया, इज एनी बडी देयर, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर पुलिस वाले मजबूर हुए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही पुलिस वाले अंदर आए अपार्टमेंट के, उन्होंने देखा और वो समझ गए कि सैमुअल आज के दिन काम पे क्यों नहीं पहुंचा। दरअसल हुआ ये था कि जब पूरी पार्टी हो चुकी थी और जब सबके सब अपने अपने रास्ते चले गए थे सोने के लिए, तो सैमुअल जो था वो भी सोने के लिए गया था, पर सैमुअल अपनी बेड को वापस उस बेड की पोजीशन पे लाना भूल गया था, जहां पे उसका बेड लगा होता था यूजुअली, वहां पे वापस उसे लाना भूल गया, क्योंकि एक तो वो होश में नहीं था, नींद में बहुत भारी नींद में भी था, तो उसे पोजीशन पे नहीं लाया, वो बस गया उस पे पड़ गया और सो गया। फर्नीचर थोड़ा सा इधर उधर खिसका के जगह बना के, जैसे यूजुअली हम लोग लड़के स्पेशली हम लोग क्या करते हैं जब हम सिंगल रहा करते हैं, तो हमारी यही आदत है, वैसे ही सैमुअल ने कहा। अब उसका जो बेड था वो अक्रॉस द रूम बिल्कुल कोने में था, उसका बेड वहीं पर था जहां पे वो शेल्फ थी जहां पर उसकी अलार्म क्लॉक रखी हुई थी, और ये जगह सबसे बुरी जगह थी, सबसे बुरी जगह। नाउ लिसन टू मी रियली केयरफुली, उसने लगाया था 5 बजे का अलार्म, ठीक है, अपने अलार्म क्लॉक में, लेकिन ये कोई नॉर्मल अलार्म क्लॉक नहीं थी, उसमें भी उसने एक जुगाड़ लगाया था उसे और ज्यादा लाउड बनाने के लिए, ताकि ज्यादा जोर से बजे, ना ज्यादा शोर आए, उठ ही जाए बंदा। एंड उसका आइडिया वाज फेयरली यूनिक, थोड़ा सा हटके था। उसने क्या किया, उसने अलार्म क्लॉक पे, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अलार्म क्लॉक जो है यूं समझ लीजिए जो घंटी वाली बजती है ना, बाकायदा गोल वाली ऊपर दो उसकी घंटियां होती है, वो वाली अलार्म क्लॉक। तो वो वाली अलार्म क्लॉक जो थी वो शेल्फ के नीचे रखी हुई थी, एक छोटी सी टेबल पे, ज्यादा जगह नहीं थी उस पे। और अलार्म क्लॉक में से एक वायर जो था वो उसने कनेक्ट किया था ऊपर वाले शेल्फ पे। शेल्फ क्या है, शेल्फ की हिंजेस होती है ना, यूं समझ लीजिए वो हिस्सा जो शेल्फ को खींचता है, ठीक है। तो ये शेल्फ ऐसी थी कि आप इसको
चाहे तो दीवार की तरफ बंद कर दें और चाहे तो वापस उठा के इस पे कुछ रख सकते हैं, पर अगर आप बंद कर देंगे तो ये दीवार की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये वैसे वाला शेल्फ था।

से शेल्फ के ऊपर, शेल्फ के ऊपर सैमुअल ने रखा था 4.5 किलो का पत्थर, 4.5 किलो का पत्थर। प्लान ये था कि अलार्म क्लॉक ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग करती हुई आगे आएगी, खींचेगी हिंजेस को, शेल्फ जो है वो दीवार की तरफ फोल्ड होगी, उस पे रखा हुआ 4.5 किलो का पत्थर नीचे गिरेगा, आवाज होगी और वो उठ जाएगा। मगर क्योंकि वो बेड की पोजीशन चेंज करना भूल गया था, वो बेड शेल्फ के ठीक नीचे था, अलार्म क्लॉक बजी, वाइब्रेट होती हुई आगे गई, शेल्फ के हिंजेस को खींचा और वो 4.5 किलो का पत्थर सीधा सैमुअल पे जाके गिरा। जब पुलिस वाले सैमुअल वॉर्डल के घर पे पहुंचे थे तो दे वर लिटरली इन शॉक। उस हॉस्पिटल ले जाया गया, पता लगा कि स्कल ब्रोकन है। वो कोमा में रहा काफी टाइम। जब वो कोमा से बाहर आया तो फिर ये कहानी वहां पे थोड़ी सी मेडिकल मिस्ट्री हो जाती है। जब वो कोमा से बाहर आया, ही डिड नॉट रिमेंबर एनीथिंग, उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। उसे इतना याद था कि उसकी अलार्म क्लॉक किसी ने शायद चोरी कर ली है, और वो बार बार अपनी अलार्म क्लॉक को मांग रहा था कि मेरे अलार्म क्लॉक, मेरे अलार्म क्लॉक, एंड कंटिन्यूसली उसे अपनी अलार्म क्लॉक की पड़ी हुई थी। जब वो होश में आया भी, घर वालों का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, पर अलार्म क्लॉक याद थी। एंड जो लोग उससे मिलने भी आए थे उन्होंने एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखा। जब इस सर पर उसकी चोट आई थी कोमा से, जब वो उठा कोमा से बाहर आने के बाद भी, वो बंदा यूजुअली राइट हैंडेड था, पर सडनली वो जो सारे काम कर रहा था वो लेफ्ट हैंड से कर रहा था, विच इज वेयर्ड फॉर द डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर भी परेशान थे, ये क्या अजीब चीज है। बहरहाल सैडली मेमोरी वापस पूरी तरह से नहीं आ पाई सैमुअल वॉर्डल की, एंड वो कुछ टाइम बाद दुनिया से चल बसे। मगर कहानियां खत्म नहीं होती। ये चीज जब फैली न्यूयॉर्क में, स्पेशली इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि बाकी अमेरिका के लिए बहुत छोटी सी खबर थी, कोई इस पर इतना ध्यान देता भी नहीं। एक बंदा नॉर्मल सा अलार्म क्लॉक की वजह से उल्टी सीधी हरकतें करी, पत्थर गिर गया, नोबडी केयर्ड उस टाइम पे। मगर न्यूयॉर्क सिटी ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, एंड जो नौकरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली यू नीड टू बी देयर, क्या आप लेट नहीं हो सकते, आपको बताया जाता है कि ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे लेबर लॉज को चेंज किया गया जस्ट बिकॉज ये हुआ, जस्ट बिकॉज एक प्रेशर उसने अपने सर पे ले लिया था कि उसे सुबह जगना ही जगना है, जबकि वो एक बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं था। एंड ड्यू टू हिम बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स और ओपन की गई। आपने देखा कुछ कंपनीज में 3 शिफ्ट्स 4 शिफ्ट्स भी होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ सैमुअल बहुत सारे काम इस तरीके से भी शुरू किए गए। एंड नॉट जस्ट दैट, ये जो लैम्प मास्टर वाला सिस्टम था, जहाँ पे लैम्प लाइटर्स वाला सिस्टम था कि सुबह सुबह लैम्प जलाने होते हैं, वो सिस्टम भी बहुत जल्द उसके बाद अबॉलिश कर दिया गया, इट वॉज डन एंड डस्टेड। सो या, दिस वॉज अ स्टोरी, काफी यूनिक भी है, फॉर मी इट वॉज क्वाइट वियर्ड। लेकिन आपका क्या कहना है? देखिए अमूमन हम हंसते ना लोगों पर, कह रहे मैं सब छोड़िए, पूरी दुनिया को हटाइए, मैं खुद 5 से 6 अलार्म लगाता हूं, क्योंकि हमारे में लेट आने की वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, है ना। बट अलार्म के साथ ऐसी चीजें मैंने कभी नहीं सुनी थी, तो दैट्स व्हाई दिस स्टोरी वाज सो यूनिक कि मुझे सुनानी ही थी। बाकी आपके ऊपर है, 666-22107, 666-22107, आपके मैसेज का इंतजार करूंगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे जरूर जरूर जरूर जरूर बताएं, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि आपका इस पर क्या रिएक्शन है। आई नो बहुत सारे डिवाइडेड रिएक्शन इस पे आ सकते हैं, बट लेट मी नो। ठीक है, विशाल दानी की आवाज में मी अमोर, फ्रेंच काश थोड़ी बहुत भी आती, क्या लगती है लैंग्वेज ये, मी अमोर। 7:55 मैं दो हवाला कबीर एफएम 107 पे आपके मैसेज के इंतजार में।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्ट करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: बात सारी ऐसी है कि 8:01 हो गए, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे जो भी अलार्म क्लॉक से एक बारी मुड़ जा रहे हैं, वेरी गुड क्लैपिंग। लेकिन जो मेरी तरह है, 4-5 अलार्म लग ही रहे हैं भाई साहब, हमारे लिए कहानी है ये। पत्थर पुत्थर मत बांधने लग जाना अपने अलार्म क्लॉक के साथ। मैं पता है मैं इस कहानी ने मेरे साथ क्या असर किया, आज की कहानी ने। मैं एक फिजिकल अलार्म क्लॉक लिटरली लेने वाला था, मैं कहा नहीं यार फोन में फील नहीं आ रही है, फोन जगा नहीं पा रहा है, एक फिजिकल अलार्म क्लॉक ले लेते हैं। लेकिन अब प्लान में चेंज है, प्लान में चेंज है। लेकिन अगर आप मेरी अलार्म की टोन सुन लेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, एक दो मोहल्ले तो जग ही जाएंगे इससे इतनी खतरनाक मैंने उसमें वो लगाई है। और पता कौन सी लगाई है, आप गेस नहीं कर सकते मैंने क्या टोन लगाई होगी। वो देखिए जहाज जब आ रहा होता है, है? जहाज जब आ रहा, वो वाली मैं निकाल भी नहीं पा रहा, बहुत गंदी आवाज निकाली बट वो वाली आवाज लगा रखी है मैंने। अच्छे अच्छे मुर्दे जग जाते हैं भाई उससे। यूसुफ भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच। कबीर लिखते हैं, कबीर एक अलार्म ने इंसान के जाने लिए बहुत ही अजीब लगा सुन के, आज की कहानी टोटली डिफरेंट। ये जो लोग हैं ना रात रात भर मोबाइल काम, नहीं नहीं सिर्फ मोबाइल की बात है ही नहीं यूसुफ भाई, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, दोज आर नॉट मॉर्निंग पर्सन, आर नॉट मॉर्निंग पर्सन। आप कुछ कर लीजिए, मैं फोन नहीं यूज करता हूँ रात में, मेरे को क्यों नहीं आती नींद मैं तो कुछ कर भी नहीं था, फिर भी मैं ना तो सोशल मीडिया पे एक्टिव, ना कहीं पे ना कुछ देख रहा, ना रीले देख रहा, फिर भी नहीं आ रही है। तो ये है गेम में होते हैं तो लोगों के लिए सुबह उठना अजाब हो जाता है। आप भी हैं, अब नहीं मैं हूँ लेकिन मैं गेम वीकडेज में नहीं खेलता, मैं जो रात में जल्दी सो जाते हैं खुद ब खुद आँख खुल जाती। देखो ये कहना बड़ा आसान है, जल्दी सो जाओ खुद ब खुद आँख खुल जाएगी, नहीं होता भाई। आदत एक बार ख़त्म हो जाती है ना तो बहुत मुश्किल होता है आदत बनाना। अभी जैसे मैं सुबह मैं आ रहा हूँ तो मेरी आदत बन गई है ऑटोमेटिकली, 6-7 बजे आँख अपने खुल जाएगी अगर छुट्टी भी होगी तो। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं रात में जल्दी सो जाऊँगा, समझ रहे हैं आप। तो मैटर सुबह उठने का नहीं है मैटर सोने का है। एक बात है, कोई इवेंट या कुछ फंक्शन हो तो देर सोते हैं, ये एक्सेप्शनल है। तो कहानी का सारांश यही है कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, सेहतमंद रहो, ठीक है, वेरी गुड। और अमन जमवाल भाई ने मैसेज किया, अमन भाई कह रहे हैं भाई कहानी सच में सैड है, बताओ बंदे को उसके बाद भी हॉस्पिटल में जाके भी अलार्म ही याद आ रहा है, क्योंकि रात में नींद ही नहीं आती है। अलार्म्स की बात भी सही मैटर है, सोने का नहीं उठने का। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कैसे समझाए आदमी, कह रहे रोज डांट पड़ती है वाइफ से, उठ जाती है और मैं सोया करता हूँ। भाई ये हर घर की कहानी है। अफजल उस्मानी भाई हाई फाइव भाई, चलो मेरी साइड को ये है। फरद भाई ने मैसेज किया है, कह रहे हैं कि अगर आपको सुबह फ्रेश उठना है तो सोने से पहले स्मोक ना करें। करेक्ट, मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट बात है, जो स्मोक कर रहे सोने से पहले स्मोक मत करो, और एक्चुअली में ये चीज़ काम करती है। एक ज़रा मैं कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: जी भाई,
3: क्या भाई आज आपने अलार्म के चक्कर में उसका ही अलार्म गायब कर दिया?
2: बताइए बताइए बताइए, ये हो रहा है मार्केट में, देख रहे हैं आप अलार्म क्लॉक एक ऑल्सो डेंजरस
3: उसकी जो है हाँ बस खाली अलार्म याद रहेगा, बाकी सब कुछ खत्म।
2: हाँ बताइए। तो ये मैं सोचता हूँ
3: भाई, अलार्म तो मैं भी लगाता हूँ 4:30 बजे का, 4:35 का, 4:40 का।
2: अच्छा,
3: दूसरे मोबाइल में, दो मोबाइल में लगाता हूँ ये टाइमिंग है।
2: दो मोबाइल में लगाते
3: कभी कभी, तो मैं दो मोबाइल में लगाता हूँ, मतलब 6 अलार्म लगता है टोटल।
2: अच्छा,
3: और दूसरे दिन 5:30 का।
2: ये पता, मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे बेचारे को कोई फोन करके भी उठाने वाला नहीं था। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि चलो अलार्म से उठूंगा, कोई हो सकता है कॉल कर ले मुझे, लोग कहते हैं ना मुझे कॉल करके उठा देना, ये भी बेचारे का फैसिलिटी नहीं।
3: अलार्म पे टून रखा हूँ कॉल वाली, ताकि ये लगे कि मैडम का कॉल आ रहा, उठ जाओ कभी कभी तो मैडम को कॉल करके उठाती है भाई,
2: खुद ही को धोखा देना कितना अच्छा लगता
3: है। 6 अलार्म के बाद भी जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैडम को खुद कॉल करके उठाना पड़ता है।
2: अरे रे रे रे रे रे। तो ये अभी कुछ कम हुआ है या फिर, क्योंकि आप कितने टाइम से सुबह ही जग रहे हो?
3: कभी ऐसा हो जाता है, 5 महीना 6 महीना ऐसा।
2: तो रात में सोने का टाइम क्या है आपका कमाल में, वैसे यूजुअली कितने बजे तक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, कब तक?
3: 11 बजे तक सो जाता हूं।
2: 11 बजे सो जाने, फिर तो ठीक है नॉर्मल है। पर कहानी कैसे लगी आपको कुल मिला के?
3: कहानी अच्छी थी भाई, हाँ, कि कोई ऐसा खतरनाक काम मत करो, कि अपने सर पे गिर जाए।
2: ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, चुपचाप सलाम लगाओ और उठो, सीधी सीधी बात।
3: क्योंकि जब आदमी थका रहता है तो उस टाइम पे ध्यान थोड़ी देता है कि कहां क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं, बस सो जाओ एकदम। अब उसने बॉक्सिंग किया, ये किया, वो किया और उसी के नीचे जाके सो गए।
2: हाँ,
3: मतलब केयरफुल रहना जरूरी है। हाँ, ऐसा कुछ मत करो। और दूसरी बात है कि देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो काम पे अगर छुट्टी नहीं है तो फिर अलार्म को और हर चीज को जो है ना एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो कभी टाइम पे नहीं उठ पाओगे।
2: करेक्ट करेक्ट है। मैं सिर्फ टाइम टेबल वीकेंड पे सोता हूं, बाकी सब रहता है।
3: हाँ, अब किसी किसी को जो है अपना वो देखने की आदत है ब्लॉग व्लॉग, तो वो आदमी जो है बस एक बार चालू कर लिया फिर वो कहां सो पाता है, फिर लात मार के उसको सुबह उठाना पड़ता है।
2: हाँ, ये है वो एक अगर आप चाहें कि आपको दिखना ही दिखना है तो फिर आपकी आंखें जो है आप बोलेंगे ठीक है देख ले भाई तू, फिर एक वक्त के बाद जो है ना नींद सच में टूट जाती है, तो उस लेवल तक मत जाओ जहां पे नींद टूट जाए। कुल मिला के ये है,
3: सबसे अच्छा है कि एकदम बेड के साथ ही स्टैंड लगाया हो मोबाइल का।
2: अच्छा।
3: रख के एक दो गेम खेला, जैसी नींद आई प्ले ऑफ किया सो गया।
2: सेट है मामला भाई का,
3: एकदम सेट है।
2: ठीक, ये अच्छी बात है। ठीक है कमल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद जो है एक और मैसेज क्या है सादिक भाई ने, सादिक भाई अस्सलाम वालेकुम। सादिक भाई के मैसेज पढ़ता हूँ, पूरा उर्दू में लिख दिए। प्रिंस भाई कह रहे हैं कि भाई स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग इन योर वॉइस, एब्सोल्युटली इट्स वेरी रियलिस्टिक एंड फुल ऑफ सस्पेंस, बट टच वुड ही डिडंट डाई ऑन द सेम नाइट, लेटर इट्स हिज डेस्टिनी। देखो कह रहे उस रात तुमने कम से कम उसको नहीं मारा, बाकी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, लेकिन सबका भला कर दिया। हेड्स ऑफ टू सैमुअल, बेचारा कुर्बानी देके गया है वो। एक मैं ज़बरदस्त स्टोरी, अबू आकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अबू आकिब साहब का जवाब भी बहुत अच्छा था, जो आपने बोला ना कि पैसे बचाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो हम बात कर रहे थे। शो ऑफ करना बंद करो, भीड़ का हिस्सा बनना बंद करो भाई, जो चीज़ ज़रूरत की वही लो। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, 3 alarms और समटाइम्स 4 एज वेल, मेरे में 7 alarm लगे हैं माजिद भाई, पूरे 7 alarm। और अहमद भाई कह रहे हैं अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग। अहमद भाई क्या ऐसे मेरा भाई, अमेजिंग स्टोरी तो है ही भाई, इसी बात के तो पैसे हैं। और इनके अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल जावेद, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच अब्दुल जवाद साहब। एंड हफ्सा बहन बता नहीं रही हैं आप, ये गाड़ी आगे खोखा कैसे खुल गया इसका। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रमेश भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड देन तला भाई कह रहे हैं, भाई ये वाला अलार्म सिस्टम फॉर यू फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच, कितना स्वीट सोचते हैं आप मेरे लिए। 4.5 किलो का पत्थर था ये तला भाई, मैं यहीं से ये कहीं से एक रोड़ा बढ़िया सा उठा के लेके आऊँगा, एक नहीं दो पत्थर आराम से दोनों आंखों के लिए। एक मैसेज जासिम भाई लिखते हैं, कबीर भाई मैं अलार्म एक ही लगाता था बट 10 times उठकर देखता था कि टाइम क्या हुआ, फिर उस अलार्म में से नहीं उठता था, बाकी सब घर वाले उठ जाते थे, मैं नहीं उठता था। ब्रेकफास्ट पर सब मुझे बोलते थे वो भाई अलार्म मत लगाया करो, ये मेरे, दिस इज़ माई वीकेंड स्टोरी जासिम भाई। मेरे अलार्म से घर उठ जाता है लेकिन मैं नहीं उठता, इसलिए मैंने 7 alarm लगाए, जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि इस बार बंदा ना उठे, मतलब उठ जाए ना उठे। क्या कह रहा हूँ। एक बजे फैसल भाई कह रहे हैं, मैं क्या भाई, मैं कितनी भी गहरी नींद में होता हूँ हल्की सी आवाज़ से उठ जाता हूँ भाई, मैं पिछले हफ्ते बोला था 10 मिनट भी सो लेता हूँ, पता है भाई क्यों, 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सो पाता हूँ, मैं सोता हूँ 2:30 बजे, उठ जाता हूँ 5:30 बजे। ये ख़तरनाक आदत है वैसे, मैं आपकी बताऊँ, आप फ्लैक्स तो कर रहे हैं 3 घंटे का, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। और एक सेकेंड में क्या, 11 बजे सुबह होती है क्या, हॉस्टल में एक दिन अम्मी की 99 कॉल्स थी और मैं सो रहा था, तो फिर अफजल उस्मानी भाई जो आपको सुनने को मिला होगा ये तो आप बता नहीं पाएंगे मैं जानता हूँ, फिर भी एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम
4: भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहु। भाई जान मैं ना इन के बाद आपकी कहानी नहीं सुनूंगा।
2: अच्छा क्यों, क्या हो गया, अलार्म क्लॉक से डर लग गया
4: भाई? तुम्हारे पास बंदा जिंदा क्यों नहीं रहता है?
2: क्या मजा नहीं आता उन कहानियों में जैसे बच्चा
4: वो तो मैंने तुम्हारे लिए बुक कर लिया, मसला नहीं है, पहुंचाया घर पे, वो तो पंगा ही नहीं है ना। और मैं तो भाभी से कॉन्टेक्ट में रहूंगा, मैंने कहा भाई देखो कुछ भी हो ना इसको सुनाना यहाँ पर है।
2: तो आपके क्या सिस्टम है, अपना तो बताओ, कैसे उठते हो?
4: यार देखो मुझसे नहीं कुरी दो यार, तुम पुक
2: नहीं नहीं है, अरे ऐसे कैसे मनोरंजन जी बताओ।
4: मैं देखो शातिर, मैं होशियार हो गया तुमसे बात कर करके ना, तुम जो कुरेते हो ना ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा नजर लग जाएगी,
2: मैं नहीं बताऊंगा। तो कोई
4: सिस्टम ये है कि अपनी अपना अलार्म जो है ना उससे मैंने जो है ना 2016 में शादी कर दी थी।
2: क्या जवाब है, क्या जवाब है भाई, ये पता है सिर्फ जवाब नहीं है, शेर का मतलब है ये, बता रहा हूँ ये, इस पे कुछ लिखा जा सकता है बाकायदा।
4: बस यार मैं गहरी कर जाता हूँ, मुझे खुद ही पता हूँ ना मैं कर क्या रहा हूँ,
2: इंटेंशन नहीं होती है।

0: अगर हो जाता है गलती से,
1: हो जाता यार कुदरती कैलिंग ना, मतलब कुक कुक के भरा हुआ है
0: यार। ये तो फैन पेज बनाना पड़ेगा आपको, ये तो फैन पेज बनाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा।
1: बहुत बहुत डेंजर हो रहा हूँ मैं आजकल, ना पूछो मुझसे।
0: आज ही
1: मैं वापिस उसको ना आ जाऊँ ना, मैं जो तो गली कर दिया ना वो बाजी ने
0: उन्होंने बोला कि बता जम नहीं रही है बात
1: हाँ ना बाजी ने मुझे, हम कहते बाजी कर गए, बाजी ने मुझे करा दिया होगा भाई कर गए मेरा यार ये अपने जो प्रोसेसर बनी करो वही रखो रो, ये सीरियस बात है अपने को सूट नहीं करके सही करिए बाजी।
0: और उस दिन मैं खुद डर गया था आपकी सीरियस बात सुनकर, जब आप सरोवर भाई से बात करते, मैंने कहा ये बंदा ये कुछ और है, कोई और है क्या, ये क्या भैरूपी अपरिचित है क्या, अपरिचित
1: तुम मुझे क्या करो, स्टॉक स्टॉक तो नहीं करो क्या चाह रहे हो, मैं बात नहीं करूँ सर्वर से, मोहब्बत शो नहीं करूंगा
0: नहीं बिल्कुल, मैं आज वेट करूंगा कि आप मोहब्बत शो करें,
1: आज ही नहीं करूंगा, आज ही नहीं करूंगा बेटा, आज ही नहीं करूंगा, अचानक से करूंगा, अचानक से
0: अचानक से, ठीक है मैं इंतजार करूंगा,
1: अचानक से करूंगा मैं बगैर बताया ना, और सर भाई बोलूंगा सर भाई प्राइवेट कॉल ही म्यूट कर लो सब, किसी को नहीं सुनने में आएगा, अपन दोनों आपस में करेंगे भाई।
0: मेरा नाम बंटी बोलो, बंटी बंटी कैसे बंटी,
1: मेरा नाम शैम्पी है,
0: शैम्पी ठीक है शैम्पी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
1: भाई तुम्हारे पास ना जब मैं सुन लेता हूँ तुम्हारी क्या कहते हैं स्टोरी, तो दो कॉलें हो जाती है, पर लोग बहुत दलील करते हैं यार ये बंदा बहुत लंबी बात करता है क्या करूं मैं मजबूर हूँ, मोहब्बत जो करता हूँ।
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे, ये लास्ट वाला जो आपने बिरयानी के लिए टोकन डाला है इसको जरूर कंसिडर किया जाएगा,
1: खिला दे अल्लाह के बंदे, खिला दे अल्लाह की कसम, खिला दे मेहमान
0: जरूर जरूर,
1: कसम खुदा की अबे क्या जरूर जरूर भाई, इसको इसको गैरत दिलाओ कोई लोगों, ये जरूर जरूर हर दफा कॉल पे जरूर जरूर टोपी कराता था,
0: नहीं नहीं नहीं नहीं मैं
1: दस दस लोगों के साथ डिनर चल लिया है, हमें टोपियां चला रही है,
0: वो जमाना और था मेरे भाई।
1: अरे चल भाई चल, अबे भाई भाई
0: ठीक है भाई चलो ठीक है, तला भाई मजा ही आ गया। तो तला भाई की बात जो है अगली कॉल जो आ रही है उठा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, ये जो आज आपने अलार्म वाला किस्सा सुनाया है इससे मुझे अपने बचपन के दो नहायत मजेदार वाकयात याद आ गए।
0: प्लीज
2: हम छोटे से होते थे और हमारे मामू की शादी थी और मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, तो मेरे मामा और बाबा जो है वो बच्चों के शूज लेने के लिए, जैसे वो होता था ना पहले तरीका के सब बच्चों के जो पाँव के साइज ले लिए जाते थे कि साथ सबको ले जा नहीं सकते, सुबह स्कूल है तो इनको तो सोना है, तो उनके पाँव के साइज जो है ना उसको पेपर पे लेके तो वो सब लोग शूज लेने चले गए और मुझे इतनी ताकीदें की उन्होंने कि आपने ना उठ के दरवाजा खोलना है। आप यकीन करें कबीर भाई सारा मोहल्ला उठ गया, मैं नहीं उठी।
0: ये कौन सी नींद है आपकी, ये आज भी ऐसी ही बेखबरी वाली नींद आपकी बरकरार है क्या है?
2: ये बचपन की नींद हुआ करती थी,
0: अच्छा
2: अब तो अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छा जो जहन में सोचा उस टाइम खुद ही आंख खुल जाती है।
0: क्या बात है, ये कमाल, ये कोई ट्रिक व्रिक है इसके पीछे, कैसे कर रही हैं आप, कितने बजे उठना पड़ता है वैसे?
2: बस वैसे फजर के लिए जब उठना होता है, आज भी जब मैं उठी हूँ तो फजर की जमात हो रही थी।
0: अच्छा और कितने बजे आप, कितने बजे
2: बात होती है ना कि इतने बजे उठना है, खुद ही आँख खुल जाती।
0: तो रात में कितने बजे पूरा घर सो जाता है? लगभग
2: 12 बजे तक सो जाता है, 11:30-12 बजे तक।
0: और फिर भी अपने आप उठ रहे हैं लोग?
2: हाँ उठ जाते हैं,
0: ये कौन सा मैजिक है?
2: उसके बाद उठ जाते हैं, उसके बाद दोबारा सोने का मौका मिल जाता है ना,
0: फिर भी 12 बजे सो गए मतलब फजर उठना, ये सच में स्टंट है।
2: दूसरा वो तो सुन लीजिए, हमारे वहाँ पे ना बरसात में बहुत बारिश होती थी, तो मैं मामा बाबा के बैठते साइड पे कारपेट बिछा के सो गई, कारपेट पे तकिया रख के सो गई। आप यकीन कीजिए इतनी बारिश बरसती है वहाँ से, जो उसी कॉर्नर से इतनी लीकेज हुई, पानी आ गया सारा मेरा तकिया सब, जब मैं सुबह उठी तो तकिया सारा भीगा हुआ और मेरे घर वाले हैरान परेशान कि ये यहाँ पर सो रही थी
0: ये पता है आपका वो हॉलीवुड की मूवीज होती है ना जिसमें पूरी दुनिया अफरा तफरी का माहौल हुआ हुआ है, बाढ़ आई हुई है लेकिन एक बंदा सोया पड़ा बेखबर
2: और एक बंदा बीच में पड़ा
0: सोया मैंने भी रिसेंटली मूवी देखी थी, उसमें बंदा सोया पड़ा रह गया था और वहां पे शार्क घूम रही थी आसपास, उसको कोई टेंशन नहीं
2: ऐसी नींद हुआ करती थी किसी जमाने में, उठना भी मुश्किल था, अब जब सुबह सुबह बच्चों को उठा रहे होते हैं ना और उनको उठा के बाथरूम तक ले जाना इतना मुश्किल लग रहा होता है, तो अपना वो जमाना याद आ जाता है
0: नहीं पर थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी, बहुत अच्छे से बताया भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कि आपको बिना अलार्म के आंख खुल रही है, वरना यहाँ तो साथ साथ
2: लेकिन मेरे मियाँ ऐसे है कि जिनको 4 अलार्म लगाने पड़ते हैं और फिर भी वो अलार्म बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं।
0: फिर ये ठीक है, ये अगर ये मेल परेशान
2: होते हैं या कोई और बंद करता है या कोई और बंद करता है या वो बंद करके सो जाते हैं, और जब वीकेंड टाइम से लगाया हुआ अलार्म बजते हैं ना उस वक्त तो बहुत कॉफ होती है, क्योंकि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता ना कि उसकी दोबारा आंख लगे।
0: देखिए ये है नॉर्मल जिंदगी, समझ नहीं आप, इससे पहले जो आपने बताया वो मेरे नॉर्मल, ये है नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी जहाँ पे आदमी खुद अलार्म, मैं भी ये करता हूँ, खुद को डरा देता हूँ, मैं 4 बजे का अलार्म लगाता हूँ, खुद डर के सो जाता हूँ वापस, तो ये अच्छा है। थैंक यू सो मच और मेरा सलाम दीजिएगा, जज़ाकअल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो ये जो हम मर्द हजरात का चल रहा है मामला, खुद ही अलार्म लगाए, खुद ही सो जा रहे हैं बंद करके, कह रहे मुझे भी चाहिएगा। ये नहीं तला भाई, ये तो आप भी करते होंगे यार, मुझे क्यों लपेट रहे हो। एक मैसेज है, भाई को कॉल करनी है तो मैं ज़रा कॉल कर लेता हूँ, इससे पहले ये कॉल आ गई है, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम।

0: अरे भाई मेरे को बिल्कुल ही जमाना बता दिया, प्राचीन युग से आए ले भाई।
1: अरे नहीं फिर भी भाई मतलब
0: अच्छा बताओ क्या मैटर कर लिया आपने?
1: अभी समझ रहे भाई, मैं ये 3 दिन पहले की बात है, यानी जुमेरात की बात है भाई। मैं तुम्हारे को सुनते सुनते ना रोड पे जा रहा हूँ भाई, दोहा वाले रोड पे जा रहा हूँ मैं, और दोहा वाला कबीर अपने गाड़ी पे बज रहा है।
0: ठीक है भाई।
1: मेरे सामने ना भाई एक ओडी चल रही है,
0: ठीक है,
1: वो भी टैक्सी है भाई, टैक्सी है।
0: अरे भाई
1: ओडी है, टैक्सी है भाई, और मेरे पास जो गाड़ी है वो निसान पेट्रोल है। और मेरे ना ये फास्ट ट्रैक पे ना मैं चल रहा हूँ मीडियम ट्रैक पे, और फास्ट ट्रैक पे ना एक टैक्सी वाला और आ गया।
0: ठीक है,
1: दो टैक्सी वाले आ गए भाई, एक सामने और एक राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में ना भाई अपना एक बस चल रही है जिसमें 3-4 बच्चे, मतलब स्कूल के बच्चे लोग जा रहे हैं उसके अंदर, और बीच में मैं हूँ भाई। मेरी स्पीड कम से कम 85-80 की स्पीड में जा रहा हूँ मैं, और सामने वाला ओडी वाला भी मेरी स्पीड पे चल रहा है। वो ओडी ने ना अचानक से सडनली ब्रेक मार दिया,
0: ठीक है,
1: ब्रेक मार दिया तो इधर जो राइट वाला जो था ना भाई बंदा, वो क्या किया, सिग्नल दिया और सीधा अंदर घुस गया।
0: अच्छा,
1: सिग्नल देते ही सीधा अंदर घुस गया भाई, ना राइट ना देखा मेरे को, गरीब इंसान हूँ या अमीर इंसान हूँ, सीधा घुस गया भाई वो।
0: ठीक है फिर।
1: अभी भाई समझ रहे, मैं लेफ्ट में जा नहीं सकता भाई, क्योंकि उसके अंदर संजय दत्त जा रहा है बच्चे लोग को लेके पिकनिक पे।
0: संजय दत्त जा रहा
1: और भाई समझ रहे, आगे ना शीला की जवानी चल रही है।
0: अच्छा ठीक है।
1: और इधर से मुन्नी बदनाम मेरे समझ रहे भाई एकदम अंदर घुस गई।
0: हाँ फिर।
1: और पीछे है परेश रावल।
0: ठीक है परेश रावल, ठीक है।
1: पीछे परेश रावल है भाई, वो उसको मालूम ही नहीं कि आगे हो रहा क्या सीन चल रहा है,
0: वो अपनी दुनिया में घूमे। ठीक है,
1: वो अपनी दुनिया में मस्त है, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ भाई। अब जॉनी लेवर क्या करा भाई मालूम, डाला गेयर में हाथ, गर गर ब्रेक मार दिया भाई।
0: हाँ
1: अब मैं जॉनी लेवर हूँ भाई, मैं ब्रेक मार दिया, मेरे को तो रोकने का ना गाड़ी भाई। तो फिर जाके भाई मैंने जाके उसको सामने वाले को मुन्नी बदनाम मूवी को मैंने पप्पी ले लिया।
0: अच्छा ठीक है।
1: अब भाई वहां पर लग गया ट्रैफिक, वो बोलता है कि तुमने क्यों मेरी गाड़ी को मारा। मैं बोला भाई तो एक बात बता, सामने एक गाड़ी चल रही है उसके अंदर फासला नहीं है, मेरे सामने हमारी गाड़ी है, एक गाड़ी का फासला है, तू इधर अंदर घुस गया। अब तुम बताओ भाई गलती किसकी इसके अंदर, या मेरी गलती है या उसकी गलती है, किसकी गलती है
0: भाई? ये पब्लिक कोर्ट में मामला आ चुका है, लोग अभी जवाब दे रहे हैं। लगा था
1: यही चाह रहा हूँ भाई, प्लीज भाई पब्लिक ज्यादा नहीं भाई, मेरी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, संजय दत्त के पास मैं जा नहीं सकता, शीला की जवानी वहां पर स्टॉप पर जो मुन्नी बदनाम सीधा मेरे सामने आ गई है, और परेश रावल मेरे पीछे आ गया एकदम। मैं इसमें क्या करूं बताओ भाई?
0: भाई ऐसा है, मैसेज बहुत भर के आ रहा है। एक बार कह रहा हूं कॉल पे,
1: मेरे को सुनने का भाई, कान लगा के सुनने का, पब्लिक क्या बोलना चाह रही है भाई।
0: ठीक है भाई, भाई भाई अभी मैं कॉल लगा रहा हूँ तुरंत, एक भाई ने बोला कॉल लगाओ मेरे को बात करनी है इस बारे में, तो सुनो।
1: शुक्रिया,
0: ठीक है मेरा भाई, ओके थैंक यू। तो एक काम करते हैं, कॉल में लगा ही देता हूँ, उसके बाद ही गाना चलाऊंगा मैं। ये भाई ने बोला है कॉल करने का तो करने का, अब किसकी गलती है मेरे को नहीं पता, जॉनी लीवर ने क्या किया। अरे भाई साहब मैं कॉल लगा रहा हूँ, उठा लो अमन भाई, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज पिक अप द कॉल। हाँ जी अमन भाई, क्या हाल है मेरे भाई?
2: गुड मॉर्निंग कबीर भाई, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग भाई। क्या भाई, क्या क्या बोलेंगे आप? दो तीन चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बताओ भाई
2: जी। एक तो भाई भाई ने पीछे से हिट किया है, पे द फाइन।
0: तो फाइन भरना तो पड़ेगा, ठीक है
2: भरना पड़ेगा एज पर लॉ। अगर कार कहीं से भी आ रही है, किसी ने ब्रेक जानबूझ के भी मारी, आपकी गाड़ी लग गई पीछे से, तो आप कसूरवार हो।
0: मतलब इसमें कोई सुनवाई नहीं है, साफ सीधी बात,
2: कोई सुनवाई नहीं है। एज पर लॉ आपने कार को बैक हिट किया है, आपने किया है, तो आपको फाइन भरना ही पड़ेगा।
0: ठीक है जी, हो गया है, तो फैसला 2 मिनट में सुना दिया आपने, बहुत फास्ट जज हैं आप
2: जी। और दूसरी बात जो अलार्म वाली बात है, सैमुअल भाई,
0: सैमुअल भाई
2: उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था अपना बेड से उठ के जाने के लिए, वो भी अच्छा सिस्टम था। लेकिन सैड पार्ट ये था कि सारी जिंदगी उसने काम किया, डेडिकेट किया अपने आप को, एंड में उसी की वजह से ही वो मुसीबत में पड़ गया।
0: ओवर डेडिकेशन हो गया भाई का, थोड़ा ज्यादा ही
2: ओवर डेडिकेशन हो गया।
0: हाँ।
2: जी मैं उन 3% लोगों में से हूँ जो मैं 3 बजे सोऊंगा तो 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, और मैं 8 घंटे ड्यूटी भी कर सकता हूँ।
0: क्या क्या भाई, टर्मिनेटर वर्मिनेटर हो गया, मतलब ये कि अमन भाई क्या सीन है? क्या अलार्म कितने लगा रहे हो?
2: मैं 2 अलार्म लगाता हूँ, एक 6:25, एक 6:30, 5 मिनट बाद।
0: पांच मिनट, हाँ ये तो हम सब करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब
2: जी
0: काफी, अभी तो मेरे ख्याल में

0: ड्यूटी भी काफी दूर है ना, मतलब सुबह सुबह निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं।
1: जी मैं रावदत अल हमामा में हूँ अभी।
0: अच्छा ओके।
1: और मैं पहले दोहा में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे घर से 35 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है इस्तेमाल रोड पे।
0: हाँ ओके ओके,
1: इसलिए आपकी स्टोरी भी रिकॉर्ड करके आपको भेज दी मैंने।
0: मैंने सुनी भाई, भाई थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट मेरा भाई, थैंक यू सो मच।
1: जी वेलकम कबीर भाई। और एक और किस्सा मैं भी सुनाऊं?
0: सुना दो भाई, 2 मिनट का सुना दो, सुना दो।
1: जी मुझे मेरे घर वालों ने 6th स्टैंडर्ड में हॉस्टल में भेजा था।
0: ठीक है।
1: और सुबह जो पीटी सर होते हैं, जो एक्सरसाइज वाले सर होते हैं, 5 बजे 5:30 बजे उठने को बोल देते थे। मैंने पहले शूज पहन के ही सो गया मैं, क्योंकि अगर नहीं उठते थे 5:30 बजे तो डंडे मारता था सबके सोते हुए लड़कों के।
0: हाँ ये हॉस्टल भाई, हॉस्टल की कहानी सुबह उठने की बहुत यूनिक है।
1: ये किस्सा मुझे याद आया था, जो सिस्टर ने सुनाया था, मैंने सोचा मैं भी सुनाऊंगा रेडियो पे।
0: नहीं बढ़िया, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें कॉल करके उठाएं। फिर एक जमाना था जो लोग ये अलार्म क्लॉक वाला, और मैं तो सोचता हूँ कि उस टाइम पे भाई ने ये जो इन्वेंशन किया, जो आज लोग कहते हैं ना अलार्म दूर रखो ताकि उठ के चल के जाना पड़े, बंदा 1885 में कर रहा था वो। तो समय से
1: आगे जी फर्स्ट वाइब्रेशन पे उठ जाता हूँ, लेकिन फिर उसको अगर सोने का मूड रहेगा 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, लेकिन उठ जाता हूँ।
0: ये 5 मिनट का रेस्ट ना, ये समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट
1: है, बहुत डेंजरस है ये।
0: बहुत डेंजरस है,
1: सेकंड मिस हो गया तो खत्म।
0: रिस्की है, रिस्की
1: ये रिस्की है।
0: ठीक है अमर भाई, थैंक यू सो मच ये 5 मिनट का रेस्ट।
1: यूट्यूब पर भाई,
0: यूट्यूब पर भाई,
1: थैंक यू।
0: ओके ओके। तो अमन भाई ने तो बता दिया है, मैं एक गाने के बाद कॉल वॉल करूंगा जरा, क्योंकि खबरें भी हैं और 2-3 भाई कह रहे हैं कॉल करने के लिए भी। तो एक गाने के बाद मिलते हैं। ढाई मिनट का गाना है जी, ढाई मिनट का बस। रंधावा आई रेटेड गबरू, और मैं जी दोहा था गबरू।

0: Добро. अस्सलाम वालेकुम. एक जरा मैसेज आया मेरे पास, तुरंत मैं जरा कॉल लगा लेता हूँ. अरे कॉल आ भी गई है, इसके बाद लगाता हूँ कॉल. एक सेकेंड. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम प्यारे कबीर भाई.
0: अरे करीम भाई, क्या हाल है भाई की?
1: कहाँ है मेरा भाई, बिल्कुल चांद की तरह जाहिर हो जाते हुए फिर 14 दिन तक गुम चांदनी की चांद. वो कौन सी गाना है
0: भाई? बहाने से कुछ नहीं होता. गायब तो आप हैं, बहाने से कुछ नहीं होता करीम भाई, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा. सुबह आप नहीं आए भाई, हम तो धरी हैं.
1: सर मैं कोशिश कर रहा था, बस मसले मसाइल है ना, वही वाली बात है जो अलार्म पे बात हो रही है ना. क्या करें, जब बंदा अपना काम भी करे साथ में किसी और के साथ भी भाग दौड़ तो फिर ये चीजें आते रहते हैं यार.
0: अब देखिए ये तो बहाने हैं, जैसे आप बहाना बना रहे हैं.
1: नहीं सर, बहाने तो खत्म होते हैं ना. एक बंदे ने बहाने करते थे ना स्कूल से मसलन या किसी ऑफिस से जाने के लिए, कभी कहता था माँ बीमार है, ऐसे चलते चलते चलते फैमिली में सब खत्म हो गए. तो फिर एक बंदे ने पूछा भाई अभी किसकी बहाना करोगे.
0: तो आप तो मतलब सुबह उठ नहीं पा रहे आजकल, मतलब यूजुअली तो आप मिल जाते थे सुबह सुबह करीम भाई, अभी क्या सीन चल रहा है आपका?
1: सर मैं उठता हूँ नमाज पढ़ के फिर सो जाता हूँ. मैं तकरीबन 3:45-35 पे मेरे ये उठने का टाइम है.
0: अच्छा ठीक है.
1: उठ के नमाज पढ़ता हूँ फिर सोता हूँ, क्योंकि देर हो जाती है ना, मसले मसाइल होते हैं उधर भाग दौड़, इस वजह से तो नमाज के लिए उठना पड़ता है कबीर भाई. क्योंकि ये दुनिया की हर उस चीज से, ये सुबह का जो 2 रकात नमाज है ना सर, इसकी कीमत नहीं है.
0: ऑफ कोर्स तो कहने वाली बात ही नहीं है.
1: तो इसकी इस पे कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है ना सर.
0: तो हमारे शो से भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, थोड़ी मोहब्बत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हमारी तरफ भी आइए.
1: बिल्कुल बिल्कुल सर. अभी देखो मैं जैसे ही रेडियो मैंने ऑन की, ये अभी गाना जो चल रहा था इससे पहले मैंने कॉल लगाया, तो बस आपसे आपने बस यहाँ जैसे मैंने कॉल मिला दी वहां से आपने गाना क्लिक किया, मैंने कहा चलो यार बात कर लेता हूँ भाई के साथ.
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई, आपने ऐसी ख्याल क्यों जुड़े रहिएगा मेरे साथ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: क्यों नहीं सर, आप हमारे भाई हैं. आप ये जो लोग देखो सुन रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं यहाँ पे काफी लोग, यकीनन बहुत बहुत सारी चीजें. तो खुश रहो सर
0: मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: अल्लाह आपको खुश रखे.
0: जजाकअल्लाह मेरे भाई. अल्लाह हाफिज़. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. और एक ये भाई ने मुझे जो बुला है इनको ज़रा मैं कर ही लूँ. किधर गई. ओके एक सेकंड, मैं नंबर ठीक से मिला लूँ. और एक भाई जो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, मेरे भाई व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठा सकता मैं, मतलब उठेगी ही नहीं, समझ रहे हैं आप? ये समझाना बड़ा मुश्किल है इन टेक्निकल टर्म्स, लेकिन नहीं उठ पाएगी. बाकी एक कॉल मैंने मिला दी है, किनको मिला मुझे खुद को नहीं पता है, बट मिला दी है. क्या नाम है भाई का? मुर्शिद भाई है. मुर्शिद भाई, अरे मुर्शिद भाई फोन तो चक्को. मुर्शिद भाई, भाई मुर्शिद अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
0: अस्सलाम रहमतुल्लाह. हेलो का बर्थडे भाई, पूरे नहीं उठा जी. मुर्शिद भाई बताइए.
2: नहीं, और कैसे, खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह. बताइए
2: जी. वो भाई साहब का सुन रहा था, वो गाड़ी हिट किया जो, हाँ तो जो बैक से हिट किया था, खलास उनका भी गलती आ गया. चाहे जितना भी कुछ भी करे,
0: जितना भी कुछ भी
2: पुलिस स्टेशन भी जाएगा, हाँ पुलिस स्टेशन भी जाएगा तो वो 100% उनका ही गलती बताएगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका था एक बार.
0: अच्छा
2: जी. okay. तो मैं भी जा रहा था, पीछे से आके सडनली आके कोई ब्रेक मारा, तो मैं भी ब्रेक मारा तो मेरे पीछे कोई आके मार दिया. ठीक है.
0: अच्छा,
2: तो पीछे आ गया तो फिर वो बोलता तुम्हारा गलती है. ठीक है चलो, मैं पिक्चर उठाया सीधा पुलिस स्टेशन गया तुमामा में.
0: हाँ.
2: वहाँ जाके पिक्चर दिखाया, वो सीधा बोल दिया वो पुलिस वाले ने, 100% उनका गलती है खलास. वो पेपर मेरे को दे दिया, बोला आप पे करो जाओ खलास, और उसमें कुछ भी नहीं हो, भाई का गलती है पूरा.
0: तो भाई अभी जो आपने कॉल करके पूछा था वो अभी अगर है यहाँ पे, हाँ तो कह रहे हैं भाई पब्लिक बहुत डेंजर है भाई. यहाँ से भाई हो गया काम, भैया से भाई अब पे करना पड़ेगा. आसिफ भाई
2: जी
0: कितनी भी कहानी बनाई
2: है
0: तो ठीक है, बचने का कोई चांस नहीं है. आपने कुल मिला के बोल दिया,
2: कोई चांस नहीं, उनका गलती है पीछे से, क्योंकि कम से कम मैक्सिमम नहीं भी तो 10 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए उनको.
0: हाँ ओके,
2: तभी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना.
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई. ओके मेरे भाई, ख्याल रखिए. ओके अल्लाह हाफिज़. तो आसिफ भाई ये तो आपके लिए मैं साउंड इफेक्ट मुंह से ही चलाना चाहूंगा, कोई चांस नहीं है भाई, पे करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स, थैंक यू सो मच फैसल मिर्ज़ा भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। फिर अस्सलाम वालेकुम अभी प्रावा, हाँ जी प्रावा किदां, एक रिफत जी का मैसेज है, एंड देन भाई गल्फ का सिस्टम ये जो हिट करेगा फाइन वही भरेगा, साफ सीधी बात। 2000 अच्छा एक एक और कॉल ले लेता हूँ, लो जी लो। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाइए क्या हाल है?
3: अल्लाह का एहसान है
0: जी भाई, बताइए क्या कहना चाह रहे?
3: मैं 11 बजे सोता हूँ, फिर फजर में नमाज पढ़ता हूँ, जमात से वापस होके फिर 7 बजे उठता हूँ।
0: ये कैसा पैटर्न है भाई?
3: लेकिन फजर की नमाज में अलार्म लगा के ही सोता हूँ, क्यों उसमें उठने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अलार्म लगाए कब भाई चार्ज मिस हो जाता है तो उठने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी मैं 100% लगा के सोता हूँ।
0: अच्छा ओके ठीक है, मतलब मामला सेट है, मतलब फिर भी ये थोड़ा अलग ही किस्म का है, पर ठीक है ठीक है।
3: और
0: बस भाई बढ़िया चल रहा है, आप सुनाएं क्या हाल है?
3: कबीर भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास वो तेस्टे वाला है ना, कितना आदमी लोग तारीफ किया वो स्टोरी यार, निकल गया यार।
0: कौन से वाले?
3: वो भेजने का प्लीज, आप जुमेरात को सुनाया था वीकेंड पे।
0: वीकेंड पे मैंने क्या सुना था? अच्छा ओके ओके ओके, हां हां हां हां हां, एक बार मैसेज कर दो ना मुझे, मैं दे देता हूं।
3: मैंने मैसेज कर दिया है, और एक बार वो कर दो, जावेद बोल रहा हूं मैं।
0: हां वो मैं समझ गया जावेद भाई, लेकिन आप मुझे मैसेज कर दो, कर दिया ना आपने मैसेज उससे?
3: एक एक बार आज तो किया है मैंने, डॉट लगा के भेजा है।
0: ठीक है ओके ओके, मिल जाएगा
3: फिर भेजो अभी।
0: हां नहीं नहीं अभी काफी काफी काफी मिल गया ना मुझे काफी।
3: हां नहीं सुबह में भेजा था मैंने, 8:05-8 पे कुछ भेजा,
0: फिर बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। तो जी जावेद भाई ने कर दी है कॉल, उसके बाद मैसेज किया फैसल भाई ने, कहते हैं 2003 में सऊदी अरब में था, ड्राइवर की जॉब, मैडम बैंक में मैनेजर थी, मुझे मैडम को पिक करने जाना होता था 4:30 बजे, 2 दिन लेट हो गया सिर्फ 10 मिनट, मैडम ने कफील को बोल दिया, मेरे कफील ने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों लेट हो जाते हो, क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट डे 4:10 पे मेरी आँख खुली, टाइम देखा 4:10 हो रहे थे, पहली फुर्सत में मैडम को कॉल किया था, मुझे आने में 10 मिनट लेट होगा, मैडम बोलती टाइम देखो, जब ध्यान से देखा तो 4:10 हो रहे थे, मैं फिर सो गया। ये तो बहुत ही खतरनाक रिस्की बिहेवियर है मेरे भाई, भाई ये पक्का ख्वाब देख रहा होगा। बाकी कुछ मैसेज मिस होंगे, यूसुफ भाई का मैसेज है, कबीर ये तो आप कह रहे हैं आई एग्री, जल्दी सोना मुश्किल होता है, यस बट थोड़े दिन के लिए ऐसा होता है, कब तक आपकी बॉडी ये शेड्यूल एक्सेप्ट ना करे फिर नॉर्मल हो जाता है, बेचारे की जान चली गई लेकिन दूसरों को फ़ायदा हो गया। हाँ वही तो देखिए, ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं। एक मैसेज और है कबीर भाई, क्या लिखा? आपका शो ज़बरदस्त है, मैं कभी नहीं छोड़ सकता, आप प्लीज़ शाम में मत जाइएगा, मैंने सुना है आप शाम में जा रहे हैं। अरे भाई मैं इस टॉपिक को बदलना चाहूँगा, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो एक गाने के बाद मिलते हैं, फिर ज़रा खबरों पे आते हैं, ठीक है? थोड़ा डेंजर टॉपिक है ये, इस पर वो हो सकती है, क्या हो सकती है? अरे वो बहसबाजी, टग ऑफ वॉर, बाउंस, शुभ द गाना इसकी उस पार मिल रहे हैं, बात करते हैं फिर, गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बढ़िया चल रहा है सब? मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये शो जो है जून से वापस चेंज हो जाएंगे, तो ये ज़रा खबर आपको मिली गई है तो मैं कितनी छुपाऊं अब बताना ही पड़ेगा। तो जून में भाई, जून की एक तारीख से, अभी टाइम है, अभी तो कितना हो रहा है, क्या तारीख है आज, मेरे ख्याल में 10 तारीख हो गई। तो जून की एक तारीख से शाम का शो शुरू हो जाएगा, मैं शाम में आना शुरू हो जाऊँगा, तो ये बता दिया मैंने, बताना पड़ेगा। मैंने कहा न्यूज़ ब्रेक तो करनी पड़ेगी, मैं नहीं तो कोई और कर ही देगा, और सबने कर ही दिए तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ भाई। तो ये बता दिया मैंने जी। अब सब है ये जून एक से है ना, जून एक से हो जाएगा। ओके, अब ज़रा खबरों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने मेजर खबर दे दी है, अब ज़रा और भी मेजर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली बात, एज अ डेस्टिनेशन फॉर वर्ल्ड रेनाउंड लग्जरी ब्रांड्स, हमेशा से माना भी जाता है कि दोहा में कुछ ना कुछ होता रहता है, लग्जरी ब्रांड्स का हमेशा इवेंट आते ही रहते हैं। इस बार भी गैलरीज लफायत दोहा में, इटालियन लेबल है एक, उसका नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, तो वो आने वाला है, और उनका पॉपअप लॉन्च है अप्रैल 23 तारीख कुछ जो हुआ था, वो अब इस तरफ आने वाला है। तो इवेंट जो है एनवीड हो चुका है, एंड दिस इज गोइंग टू बिगिन अनदर चैप्टर इन कतर। इसके अलावा बहुत सारे बीचेस हैं, उनका जिक्र किया गया है, जो कि आपकी लिस्ट में होने चाहिए इन केस यू प्लानिंग के मैं कौन से बीच पर जाऊं, किधर जाऊं। तो अगर आपने अभी तक नहीं डिसाइड किया तो पूरी बीचेस की जो लिस्ट है वो कतर में भी जारी कर दी, लोगों ने बता भी दिया है। वैसे मेरा इनलैंड सी है, अगर आपके पास वो 4x4 गाड़ी है भाई साहब, तो इनलैंड सी ज़रूर जाइएगा, बेहतरीन बेहतरीन मामला है। अभी थोड़ा डस्टी नहीं है, जब डस्टी नहीं होगा तब जाना। इसके अलावा नामी बीच, 974 बीच, वेस्ट बे बीच, सी लाइन है, इनलैंड सी है, मेरे को तो बहुत पसंद है। और एंड ऑल्सो यूनेस्को ने लिस्ट किया हुआ है उसे नेचुरल रिजर्व में। इसके अलावा फुवायरत है, अलमरोना है, और एक जो मेरा फेवरेट है आउट ऑफ ऑल दिस, जो इस लिस्ट में भी मैंशन नहीं है, अजरबैजानी बीच। वह थोड़ा है, मतलब वॉशरूम के लिए थोड़ा सा आपको किलोमीटर के हिसाब से दूर जाना पड़ता है, बट आई थिंक वर्थ मेंशनिंग अगर आप अजरबैजानी बीच नहीं गए। अलमरोना क्योंकि मेंशन किया गया, अलमरोना के ही साइड में ही है, मतलब पड़ोसी है उसका ये, तो वहाँ पर भी आप जरूर जाएं इनकेस यू हैवंट विजिटेड दैट। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से रिसेंटली एक नेशनल वर्कशॉप हुई है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्वेलेंस को लेकर, एंड दिस वॉज पार्ट फॉर इनोवेशन मेडिकल सिमुलेशन इन हमद बिन खलीफा मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें 100 से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने पार्टिसिपेट किया है, 2 दिन की वर्कशॉप रही है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, सेमी गवर्नमेंटल एरिया से भी, सेक्टर से भी, और प्राइवेट सेक्टर से भी, सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। एंड इसमें क्वालिटी एश्योरेंस और किस तरीके से पब्लिक सेफ्टी और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर रखी जाए, स्पेशली फॉर नर्सेज, फिजिशियंस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स, उस बारे में बात हुई है। एंड इसके अलावा अगेन प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन ने कोलेबरेट किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ और पार्टिसिपेट किया इन द वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे। एंड इस बार का जो कैंपेन था वो था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अब ये मत भूलिएगा कि अब कोविड का वेट कर रहे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अभी चला गया, इसका मतलब नहीं हाथ धोना भूल जाए, अभी हाथ धोने पे कहानी भी सुना चुका हूँ मैं आपको। इसके अलावा कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है गर्मी पड़ेगी बढ़िया वाली, और ये बताने की जरूरत है भी नहीं अभी से ही, लेकिन अभी थोड़ी हवादार गर्मी रहने वाली है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द होल डे इनफैक्ट। आज का थोड़ा सा विंडी मौसम रहेगा लेकिन गर्मी भी बढ़िया से पड़ेगी, तो मोस्टली सनी वेदर है। तो अगर आप गाड़ी को छांव में नहीं रख रहे हैं तो फिर भी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रखें जो कि इनफ्लेमेबल हो, या फिर आपकी गाड़ी नई गाड़ी है आपकी और उस पर आपने अंदर की पन्नी नहीं उतारी है, भाई वो चिपक जाएगी सीट से। रिसेंटली ऐसा किस्सा मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से, तो प्लीज़ किसी किस्म की पन्नी ना चिपकी रह जाए आपकी सीट पर, वो हटा लेना, बाकी तो आपकी गाड़ी है, मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ। कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास, मैं ज़रा वही पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कल क्या कहानी भेज देना प्लीज़, मिस कर दी कल की कहानी, कल तो कोई थी नहीं कहानी। एक मैसेज है जी, कॉल मी, अच्छा जी आपको भी कॉल करनी है, रुको मैं कॉल कर लेता हूँ एक सेकंड, और ये मैंने कॉल मिला दी, रुको। इनके अलावा जो है एक और मैसेज है, ज़बरदस्त सॉन्ग शुभ, थैंक यू सो मच ओकनन साहब, वालेकुम अस्सलाम। और चीमा भाई कॉल उठा लो, चीमा भाई नहीं उठाई है मुझे लग रहा है, अभी तक तो नहीं उठाई है, तो हम रिंगटोन क्यों सुना रहे हैं लोगों को भाई, नहीं उठाई उन्होंने, चलो कट की कॉल, क्या कल नहीं भाई आज, अच्छा आज की, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया भाई, सॉरी। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते पब्लिक, इन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम भाई, और आपको ऑनलाइन सुनने का क्या तरीका, ऑनलाइन सुनने का तरीका ये कि urduradio.qa

उर्दू रेडियो डॉट क्यू ए इस वेबसाइट पर जाइएगा एंड फिर आप आराम से सुन सकते हैं। मैसेज है भाई आज एसी फारिग हो गया गाड़ी का, रे रे रे रे रे, रे भाई इस पर मैंने देखो म्यूज़िक तक बंद कर दिया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। मैं भी इस सिचुएशन में आया था बीच में, आया था शाम भाई प्लीज़ एसी रिपेयर करा लो। भाई क्या हो गया, क्या ख़राब हो गया पहले चेक करो। आज पूरे दिन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम आया था शाम भाई यही है एसी। इसको गाड़ी का घर का एसी दो मिनट के लिए खराब हो जाए चलेगा, गाड़ी का एसी नहीं भाई। वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई, गर्मी का नाम बार बार बोल के मत डराओ यार, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं कौन होता हूँ गर्मी को समन करने वाला, ये तो ऐसे कह रहे जैसे मैं झाड़ू हाथ में लेके बैठा हूँ और मेरे कहने से भी गर्मी जो है एकदम से आ जाएगी। चलो मैं नहीं बोलता, ठंड है, ठंड हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है? आ गई ठंड। कमाल करते हो पांडे जी, कमाल करते हो आप, है जी कमाल कर देता। Say whoa! डर गए ना, गाने की स्टार्टिंग कैसी है? हार्डी सांगो किरण बजवा, मैं खुद डर गया।

ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 8:48 ਵਾਓ ਮੈਂ ਜੀ ਦੁਹਾ ਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਐਫ 107 ਪੇ ਐਂਡ मैसेज तो बहुत सारे माशाल्लाह बेफिक्र हो जाए गाने अब तक पहुंच जाएगी डोंट वरी एक कॉल आ रही है मेरे पास लेकिन भाई टाइम नहीं है कॉल का क्योंकि मुझे ये भी कवर करना है ये बहुत ज़रूरी है आज कौन कौन से दिन है जो मार्क्ड किए गए हैं इन द इंटरनेशनल कैलेंडर्स तो दुनिया जहां में आज श्रिम्प डे भी है जो लोग श्रिम्प वाले चिप्स चिप्स खिला दो मालिक तो श्रिम्प वाले चिप्स एक्चुअल श्रिम्प्स खाना पसंद करते हैं मेरी तरह हाई फाइव आज हमें श्रिम्प्स खाने पड़ेंगे जवानों आज रुकना नहीं है आज श्रिम्प्स खाने पड़ेंगे बहुत टाइम हो गया है आज श्रिम्प डे भी है इसके अलावा आज है मदर ओशन डे मैं आजकल बता रिसेंटली आई एम नॉट इवन किडिंग ये मेरे सामने आ गया तो मैं बोल रहा हूँ बनाने के लिए ना आज कल मैं सिर्फ और सिर्फ समुद्र की वीडियो देख रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया है पॉइंट नीमो देख रहा हूँ मैरियाना ट्रेंच देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है मैं खुद ही एक साइंटिस्ट हूँ पर बहुत ही फैसिनेटिंग है अगर आपने ओशन एक्सप्लोरेशन थ्रू वीडियोज़ भी नहीं देखा है तो देखिए आप इतनी सारी चीज़ें हैं ना आपको ये लगेगा मेरे किस काम की है लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा ये बिल्कुल वैसा है एंड आज दिन भी है तो इसी बहाने ही देख लो मदर ओशन डे आज है एक और दिन जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है वो है वन डे विदाउट शूज़ डे भाई मैं कुछ लोगों को इमेजिन नहीं कर पाता हूँ चप्पलों क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मैं बिना जूते के घर से बाहर नहीं निकलता हूँ मैं परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन पर आज चप्पलों का दिन भी है

तो आप बना सकते हैं चप्पलदार दिवस या टेक्निकली विदाउट शूज़। इसके अलावा है मदर्स डे, बट यहाँ पे नहीं है, वैसे मनाया जाता है, मनाना चाहें तो मदर डे तो हर दिन होता है, ऐसा मनाना क्या है। अभी जैसे ही बता दूंगा लोग खामखा की सेल्फी लेने लग जाएंगे। वो आपने देखा है यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर है कतर में वो भाई ऐसी वीडियो बनाता है, मैं नाम नहीं ले सकता, उसमें जो है वो मम्मी को भी रखता है, फिर बैकग्राउंड में भी रहता है, मम्मी से भी एक्टिंग कराता है, खुद भी एक्टिंग करता है और बैकग्राउंड में एक मम्मी वाला गाना भी चला देता है। भाई सलाम है भाई तेरे को क्या बताओ। इनके अलावा आज है क्लीन योर रूम डे, क्लीन योर रूम डे, रूम की सफाई कर लो पारी, मेरी गाल सुन लो, जितने मेरे तरह रहे हैं पहले बैचलर पार्टी सफाई कर लो भाई, वरना फिर वो बिस्तर से खजाने निकलते, नीचे से चिप्स के पैकेट निकल रहे, नोट निकल रहे, सिक्के निकल रहे। बता रहा हूँ जितना बैचलरों के घरों में सफाई में खजाना निकलता है उतना कहीं नहीं निकलेगा, एक्सकेविशन यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा आज है ट्रस्ट योर इंट्यूशन डे, अपने पे भरोसा रखना, दिल दी गल सुना करो, थोड़ा सा उसके हिसाब से भी चला करो। इसके अलावा यूके में आज बच्चों का दिवस है, पता नहीं क्यों हमारे साथ नहीं मनाते, इनको हर चीज़ अलग करनी है। इसके अलावा है स्मॉल बिजनेस डे, जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उसका ज़रा उन सबको मुबारक हो जिन्होंने छोटे छोटे बिजनेस बड़ी हिम्मत से खोले हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत दे आपके काम में। एक मैसेज है कर लो रूम सफाई कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत खजाने मिलते हैं मेरे जान। क्या है लोग गाड़ी का गिलास आई क्या है गाड़ी का गिलास चला रहे हैं, मैं समझा नहीं क्या कह गए आप। बाकी मैं कहानी भेज दूंगा, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, वैसे भी 8:50 ऑलरेडी ऑन द क्लॉक, इनफैक्ट 51। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई बात के साथ, एंड प्लीज़ जो आज हमने डिस्कस किया, द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस फॉर यू इज मेरी तरफ से भाई, शोशेबाजी में देखा था कि कोई चीज़ मत खरीदना, कि सामने वाले ने

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: न्यूज एट 9 AM फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
3: FM 107 उर्दू रेडियो आपसे मुखातिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप सीम से आज का पहला नशरिया समाप्त कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने हफ्ते की शाम 2026 अमीर कप फुटबॉल फाइनल में शिरकत की। साहिब सुमो अमीर ने 2026 अमीर कप फाइनल में कामयाबी पर अल गर्राफा स्पोर्ट्स क्लब को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। और क़तर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने अमीर कप के फ़ाइनल के शानदार इंतज़ाम और टेक्निकल मेयार को सराहा है। और अब पेश खिदमत है FM 107 से आज का पहला मुफसल नशरिया।

और राफा को अमीर कप ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स दिए, जबकि असद टीम को सिल्वर मेडल्स दिए गए। फाइनल में साहिब सुमो अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल थानी, शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा अल थानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल थानी, शेख जासिम बिन खलीफा अल थानी, शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम समेत मुतअद्दिद मुअज्ज़ज़ शुयूख और वुज़रा ने भी शिरकत की। इस मौके पर दोस्त ममालिक के आला हुक्काम, अरब और बैनुल अक्वामी स्पोर्ट्स फेडरेशन के सरबराहान, मीडिया नुमाइंदगान और फुटबॉल शायकीन भी मौजूद रहे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हामद अल थानी ने 2026 अमीर कप फाइनल में कामयाबी पर अलगर्राफा स्पोर्ट्स क्लब को मुबारकबाद दी है। अलगर्राफा ने हफ्ते की शाम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में असद को 4-1 से शिकस्त दी। अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी पैगाम में साहिब सुमो अमीर ने अलगर्राफा को ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी और असद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जनाब शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कतर और सऊदी अरब के दरमियान तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। बातचीत में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, ख़ास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़फ़ायर की कोशिशों और कशीदगी कम करने के लिए जारी सिफारती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ज़ोर दिया कि तमाम मुल्क सुलह और बातचीत की कोशिशों का मुस्बत जवाब दें, ताकि मुज़ाकरात और पुरअमन ज़राए के ज़रिए बुहरान की बुनियादी वजाहत का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें एक पायदार मुआहदे तक पहुंचने के लिए ज़रूरी हैं, जो खित्ते में दोबारा कशीदगी को रोक सकें। वज़ारत इंसाफ के अंडर सेक्रेटरी और नेशनल कमेटी फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के चेयरमैन जनाब सईद बिन अब्दुल्ला स्वेदी ने कहा कि हर साल 9 मई को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ डे मनाने का मकसद इंसानी और कानूनी इकदार को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि जंग के हालात में इंसानों का तहफ्फुज़ सदियों से तहजीबों और कानूनी निज़ामों का अहम हिस्सा रहा है। कतर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब जासिम बिन रशीद अल-बुएनेन ने अमीर कप के 54वें फाइनल के शानदार इंतजामात और टेक्निकल मयार को सराहा है। अलगर्राफा की जानिब से असद को 4-1 से शिकस्त देकर तारीख़ में 9वीं मरतबा टाइटल जीतने के बाद उन्होंने इवेंट के इनेकाद में शामिल तमाम हुकूमती स्पोर्ट्स सिक्योरिटी और मीडिया अदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में शायकीन के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करने की कोशिशों को भी सराहा, जहाँ स्टेडियम के क़याम की 50वीं सालगिरह भी मनाई गई। उन्होंने अलगर्राफा को ट्रॉफ़ी जीतने पर मुबारकबाद दी और 2025-26 सीज़न में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम क्लब्स की कारकर्दगी को सराहा। कतर रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने 8 मई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे की मुनासबत से तकरीब मुनाकिद की, जिसका इस साल का उन्वान यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी था। अपने बयान में QRCS ने इंसानियत को अव्वलीन तरजीह देने और इमदादी कारकुनों के एहतराम पर जोर दिया, जो अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की मदद करते हैं। इस मौके पर QRCS के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर इब्राहिम बिन हाशिम अस्सादा ने कहा कि QRCS गुज़िश्ता कई दहाइयों से कतर की इंसानी खिदमात की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि इदारा दुनिया भर में मुतासिरा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए सरगर्म अमल है। वज़ारत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली ने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 मनाया, जिसका उन्वान था एवरी बर्ड मैटर्स, योर ऑब्जर्वेशंस मेक अ डिफरेंस। वज़ारत ने कहा कि इस मुहिम का मकसद हिजरत करने वाले परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कुदरती माहौल की हिफाजत के लिए अवामी शऊर बेदार करना है। बयान में कहा गया कि ये परिंदे माहौल के तवाज़ुन और कुदरती वसाइल की पायदारी की अहम अलामत समझते हैं, यानी समझे भी जाते हैं। मुशर्रफ प्रॉपर्टीज़ ने 4 कम्युनिटीज़ अवार्ड्स हासिल किए हैं।
جو ادارے

0: की हिमायत करने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। यह इजलास दोहा में जुमेरात के रोज मुनक्किद हुआ, जिसमें कतर चैंबर और कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के अफराद ने शिरकत की। ये मुलाकातें वजारतों और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मुसलसल मशावरती सिलसिले का हिस्सा हैं। वजारत तजारत और सनत ने कतर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल के तआवुन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनोवेशन की सलाहियत को फरोग देने के लिए एक खास वर्कशॉप का अहतमाम किया। इस वर्कशॉप में फैक्ट्री मैनेजर्स, टेक्निकल लीडर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम्स ने हिस्सा लिया, जहां नजरियाती मालूमात के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव अंदाज में पेश किया गया। मुशायरे प्रॉपर्टीज को 4 कम्युनिटस अवार्ड्स से नवाजा गया है, जो एक बैनुल अक्वामी पहल है जो उन इदारों और कंपनियों को तस्लीम करता है जो अपनी कम्युनिटीज में मुस्बत असर पैदा करती हैं। मुशायरे प्रॉपर्टीज के मुताबिक ये तीनों पायदारी अवार्ड्स जीतना इसके माहौलियाती असरात को कम करने के अज़्म को जाहिर करता है। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस, स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन, विद मोहम्मद
2: अमीन। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में अलगराफा स्पोर्ट्स क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए असद को एक के मुकाबले में 4 गोल से हराकर आमिर कप का खिताब बरकरार रखा और अपनी तारीख का नवा टाइटल हासिल किया। यह मुकाबला खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हफ्ते को खेला गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने हफ्ते को ब्रेंटफर्ड को 3-0 से शिकस्त दी। IPL T20 क्रिकेट में गुजरात ने राजस्थान को 77 रन से मात दिया और आज चेन्नई का लखनऊ से और बेंगलोर का सामना मुंबई से होगा। विमेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे विमेंस टीम के दरमियान 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। यह सीरीज 12 से 15 मई तक कराची के नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। MotoGP में खोर्गे मार्टिन ने जबरदस्त ओपनिंग लैप के साथ फ्रेंच ग्रां प्री स्प्रिंट रेस जीत ली, जबकि जेफरिंग वर्ल्ड चैंपियन मार्क मार्केज रेस के आखिरी मराहिल में क्रैश का शिकार हो गए। और अर्जेंटीना के निकोलस ओटामेंडी और मोइसेस कैसेडो फीफा वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे, क्योंकि फीफा ने क्वालिफाइंग कैंपेन से कैरी फॉरवर्ड होने वाली डिसिप्लिनरी सजाओं को खत्म करने का फैसला किया है। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद सरवर मिर्जा।
0: साहब सुमो अमीर ने हफ्ते की शाम 2026 अमीर कप फुटबॉल फाइनल में शिरकत की। साहब सुमो अमीर ने 2026 अमीर कप फाइनल में कामयाबी पर अलगराफा स्पोर्ट्स क्लब को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम और वजीर खारजा ने सऊदी अरब के वजीर खारजा से टेलीफोन पर बातचीत की है। और कदर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने अमीर कप के फाइनल के शानदार इंतजामात और टेक्निकल मियार को सराहा है। सामिन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरी आपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया से मोहम्मद शाह और न्यूज रूम से मोहम्मद अमीन, सीम खान और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी रात को सोते वक्त अचानक एक सवाल आ जाता है ना, मैं सब क्यों कर रहा हूँ? काम चल रहा है, रूटीन सेट है, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू है, फिर भी कभी कभी एक खाली सी फीलिंग रह जाती है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं पर्पस इन लाइफ की। पर्पस कोई हैवी वर्ड नहीं है, ना ही ये सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के लिए होता है, और सक्सेस भी आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वेल, पर्पस का मतलब होता है सुबह उठने की वजह। ये जरूरी नहीं कि पर्पस आपका प्रोफेशन हो, कभी कभी पर्पस होता है किसी का ख्याल रखना, किसी को इंस्पायर करना, या बस अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बेटर बनाना। हम अक्सर पर्पस को फ्यूचर के साथ जोड़ देते हैं, जब ये अचीव हो जाएगा ना तब लाइफ मीनिंगफुल लगेगी और मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, पर ये सच नहीं है। पर्पस हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। जब आप किसी का दिन अच्छा बना देते हो, जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो, वो सब पर्पस के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। वेल, रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस फील होता है, वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, और फिजिकली भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब पर्पस सिर्फ इमोशनल नहीं, हेल्थ से भी डीपली कनेक्टेड होता है। पर्पस बॉडी को एक डायरेक्शन देता है। जब डायरेक्शन होती है तो डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। क्या प्रायोरिटी है, क्या अननेसेसरी है, ये सब चीजें इजीली समझ आने लगती है, और जब क्लैरिटी आती है ना तो एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है। वेल, कभी कभी पर्पस बहुत क्वाइटली आता है बिना किसी अनाउंसमेंट के, जैसे किसी हॉबी में लॉस्ट हो जाना, या किसी के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के बाद अच्छा फील करना। ये सब साइंस होते हैं कि आप अपने पर्पस के पास हो। और अगर आज आपको लग रहा है कि लाइफ थोड़ी डायरेक्शनलेस है, तो भी कोई बात नहीं, पर्पस एक दिन में नहीं मिलता, वो एक्सप्लोर करते करते मिलता है, एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रायल एंड एरर के थ्रू। बस एक चीज जरूरी है, रुकना नहीं है, खुद से सवाल पूछते रहना है, और जवाब ढूंढने का प्रेशर खुद पर ना डालना है। टाइम के साथ आपको हर चीज के जवाब मिलते जाएंगे। तो आज का एक जेंटल सा थॉट, अपनी जिंदगी का मतलब कंपैरिजन से डिसाइड मत कीजिए कि किसने कितना अचीव किया तो अब मेरा पर्पस क्या होना चाहिए। उसे अपनी फीलिंग्स से समझिए, क्योंकि जब आप अपने पर्पस के साथ जीते हो, जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, महसूस होने लग जाती है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
3: Qatar ka pehla desi radio station FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर्स शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का एक चमकता हुआ सितारा है दोस्तों, जो अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग और डेडली स्विंग की वजह से दुनिया भर के बैट्समैन के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होने की वजह से उनका एंगल और वेरिएशन उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया के खिलाफ मैच थी, जहां उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे टॉप बैट्समैन को अर्ली ओवर्स में आउट करके मैच का रुख बदल दिया था। उनकी यॉर्कर्स, बाउंसर्स और न्यू बॉल स्विंग उन्हें एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनाती है। सिर्फ बॉलिंग ही नहीं दोस्तों, शाहीन ने बैटिंग में भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं जब टीम को जरूरत पड़ी। आज के दौर में वो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के बॉलिंग अटैक का स्पीयरहेड हैं और उन पर टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंजरीज के बावजूद उन्होंने कमबैक करके अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन का सबूत दिया है। दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा नाम है जो जुनून, टैलेंट और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस का परफेक्ट कम्बिनेशन है। उनका फ्यूचर रोशन है और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी उम्मीद है। उम्मीद है कि आपको आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकील अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: हे बच्चों, आर यू रेडी? गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए
2: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
3: ये शो कौन सा है?
1: द सुपर किड शो।
2: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107.

0: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
4: फ्रॉड अवेयरनेस।
5: सर कंग्रेचुलेशंस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक। आपका पर्सनल लोन अप्रूव हो गया है बिना इनकम प्रूफ, बिना सिबिल चेक के। बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग फी देना होगा।
6: जब पैसों की जरूरत होती है तो दिमाग नहीं उम्मीद चलती है, और ऐसे में आप वो पैसे दे बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, मेरा नाम है वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। फेक लोन स्कैम्स लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। स्कैमर खुद को बैंक एग्जीक्यूटिव या लोन एजेंट बताता है, आपको अप्रूवल लेटर, रेफरेंस नंबर, यहाँ तक की फेक स्टाम्प भी दिखा देता है। फिर आता है असली ट्रैप, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस चार्जेस, GST, वेरिफिकेशन अमाउंट, एक के बाद एक पेमेंट वो मांगता है। इन सारी पेमेंट्स के बाद लोन कभी क्रेडिट नहीं होता। सच ये है कि जेन्युइन बैंक कभी लोन देने से पहले पैसा नहीं लेते, चार्जेस हमेशा लोन अमाउंट से डिडक्ट होते हैं। तो अगर कोई बोले पहले पैसा फिर लोन, समझ जाए स्कैम शुरू हो चुका है और उस कॉल को वहीं पे काट दें। रैंडम व्हाट्सएप लोन ऑफर्स, अननोन एप्स, टेलीग्राम एजेंट्स, सब डेंजर साइन है भाई। तो लोन मदद के लिए होता है, मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं। तो किसी को आपका फायदा उठाने मत दो।
4: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Excuse me, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो
1: देखो इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
0: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में।
3: किफाक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये शो कतर 101, और हर हफ्ते जैसे कि हम आते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और आज का भी टॉपिक यही है, यानी कि अरबिक लैंग्वेज। मैंने शुरुआत में कोशिश की थी और थोड़े थोड़े लफ्ज़ जो है वो बोलना इंसान को आना भी चाहिए ना। ये अरबी जो लैंग्वेज है ये बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत है, और इस अरबी लैंग्वेज में आपको एहसास होता है यार कि you know, जो लफ्ज हैं और जो चीज़ें हैं वो थोड़े से टफ ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप एक बार सीख लें और इस डायलेक्ट को सीख लें, इस लैंग्वेज को सीख लें, तो आपकी वैल्यू ऐसा बढ़ जाती है। नहीं आपको कहीं पर अगर जॉब चाहिए तो वहाँ पर भी ये चीज़ें रखी होती हैं कि भाई देखिए अरबिक में अगर आप फ्लुएंट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अंग्रेज़ी आती है तो अच्छा है, क्योंकि आप जिस मुल्क में काम कर रहे होते हैं उस मुल्क की लैंग्वेज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जिस शहर जाते हैं वहाँ का डायलेक्ट सीख लेते हैं, और इवन हमारे मुल्क में भी अब होने लगा है, यू नो आप जब मुंबई जाते हैं तो आपको मराठी थोड़ी थोड़ी सीखनी अच्छी भी लगती है, आपको बोलते हुए भी अच्छा लगता है, उसके अलावा आप तमिल जाते हैं तो वहाँ पर भी आप सीख लेते ना। सही है, तो आज जो है हम कतर 101 में इसी अरबिक लैंग्वेज के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो एक बार फिर से इस्तकबाल, ये शो कतर 101 जहां पर हर हफ्ते हम लाइफस्टाइल, कल्चर और ट्रेडिशन के साथ साथ कतर के बारे में बात करते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है अरबिक लैंग्वेज। दोस्तों ये अरबिक जो लैंग्वेज है वो कतर की आइडेंटिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। अगर आप कतर में या गल्फ कंट्री में जाएंगे तो अरबिक में लोग आपसे बात करेंगे, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं और रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स भी इवन 30-40% ऐसे हैं जो अरबिक सीख गए, सालों से रहते रहते अरबिक सीख गए। इसलिए कतर की आइडेंटिटी या गल्फ की आइडेंटिटी का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है बल्कि कल्चर, रिलीजन और हिस्ट्री का एक सिंबल है। कतर में हर ऑफिशियल काम, गवर्नमेंट सिस्टम और लीगल डॉक्यूमेंट्स अरबिक में होते हैं। आपको याद होगा वो दिन, वो वक्त जब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर आप अपने किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन चाहिए होता है। आपके अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपने MBA किया हो, BCom किया हो, इंजीनियरिंग करी हो या फिर कुछ भी किया हो, कोई भी काम किया हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसका ट्रांसलेशन चाहिए था, आपके बोनाफाइड का ट्रांसलेशन चाहिए था। थोड़ा सा मेहनत का काम था, लेकिन आपके अपने मुल्क में यानी कि आपके इंडिया में, पाकिस्तान में, वहाँ पर भी ट्रांसलेशन के कुछ ऐसे स्टोर या ये कह सकते हैं ऑफिसर्स होते थे जो ट्रांसलेट करते थे बाकायदा। तो वहाँ जो ट्रांसलेशन करने वाले होते हैं वो जो ट्रांसलेशन करके देते थे, फिर आप अपने यहाँ पर कतर में अपनी कंपनी को, अपने गवर्नमेंट कंपनीज को ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देते थे। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगे थे यार, अपने को यहाँ नौकरी पाने में बड़ी मेहनत लगी है। तो वो सारा सिस्टम ऐसे ही चलता है कि कतर में हर ऑफिशियल काम में, गवर्नमेंट सिस्टम में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में अरबिक ज़रूरी होती है। ये लैंग्वेज लोगों को उनकी रूट्स और ट्रेडिशन से दोस्तों कनेक्ट रखती है। जब हम अरबिक बोलते हैं हम सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलते बल्कि अपनी पहचान को भी एक्सप्रेस करते हैं। कतर जैसे मॉडर्न कंट्री में भी अरबिक लैंग्वेज अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखती है और हर जनरेशन के लिए एक कल्चरल ब्रिज का काम भी करती है। अगर हम मॉडर्न कतर के बारे में बात करें जिसमें ग्लोबल कंट्री या इंटरनेशनल जो पीपल हैं, जैसे कतर में बहुत से अलग अलग मुल्क से लोग आकर काम कर रहे हैं, कतर को खूबसूरत बना रहे हैं, मॉडर्न कतर एक ग्लोबल कंट्री बन चुका है अब, जहां दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, काम करते हैं और काम करते करते बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक्सपैट्स की जो पॉपुलेशन है कतर में अच्छी खासी है, मिलियंस में कतर में एक्सपैट्स जो हैं वो काम करते हैं। इस वजह से डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स एक साथ मिलते हैं। दोहा जैसे सिटीज में मॉडर्न बिल्डिंग्स, इंटरनेशनल स्कूल्स और ग्लोबल बिजनेसेस नजर आते हैं। इस डाइवर्सिटी ने कतर को एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बना दी है।
2: लेकिन इस ग्लोबल लाइफस्टाइल के साथ लोकल आइडेंटिटी को मेंटेन करना भी बेहद जरूरी है। अरेबिक लैंग्वेज इस डायवर्सिटी के बीच कतर की कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। अगर हम अरेबिक लैंग्वेज एज आइडेंटिटी बात करें तो अरेबिक कतर की नेशनल आइडेंटिटी का कोर पार्ट है। गवर्नमेंट, एडुकेशन और लॉ सब अरेबिक लैंग्वेज पर बेस्ड है, जो इसको एक ऑफिशियल और पावरफुल आइडेंटिटी बनाता है। कुरान की लैंग्वेज होने की वजह से अरेबिक को रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस भी मिलती है। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का तरीका नहीं होती, बल्कि एक नेशन की वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे अपने मुल्क में इवन सिर्फ मराठी बोलने को लेकर या हिंदी को बोलने को लेकर ना अलग अलग किलोमीटर पे ये लिंग्विस्टिक जो चेंजेस हैं वो हो जाते हैं चेंज। जैसे मराठी बोलने का जो मुंबई में तरीका होगा, हो सकता है कि महाराष्ट्र के दूसरे सिटीज़ में मराठी बोलने का तरीका अलग हो, डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। ऐसे यूपी में है, ऐसे ही हमारे कश्मीर में है, हमारे कर्नाटका में है, तो थोड़े थोड़े जो चेंजेस हैं वो हो जाते हैं, इवन डायलेक्ट के चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही अरेबिक में भी लिंग्विस्टिक चेंजेस जो हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ शहरों में नहीं, यहाँ पर कंट्रीज बा कंट्रीज। जैसे कुवैती जो अरेबिक है वो थोड़ी सी अलग है, यूएई की थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी सी आपको फर्क नजर आएगी, सऊदी की अरेबिक थोड़ी अलग है, और ऐसे ही कतर की जो अरेबिक है वो थोड़ी सी अलग है। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि एक नेशन की वैल्यूज, हिस्ट्री और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है। अगर लैंग्वेज वीक हो जाए तो आइडेंटिटी भी इम्पैक्ट होती है। इसलिए अरेबिक को प्रिजर्व करना सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं, बल्कि कल्चरल सर्वाइवल और नेशनल प्राइड का मैटर है। आपने देखा होगा, चाहे ये फानार की बात हो, चाहे यहाँ पर अरेबिक क्लासेस के बारे में बात हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन आपको अरेबिक सिखाते हैं, और असल में अरेबिक की जो नीड है, ये नीड ऑफ द आवर है। आप देखें अलग अलग मुल्कों में अरेबिक की डिमांड, खास तौर पे जो गल्फ एरिया हैं वहाँ पर अरेबिक की डिमांड अच्छी खासी है। अगर आपको अरेबिक आती है, आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी पकड़ स्ट्रांग है अरेबिक में, तो आपको नौकरी मिलना आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। आपके अपने काम कहीं पर रुक रहे हों, अटक रहे हों, अगर आपको अरेबिक आती है तो वहाँ पर आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हैं। इवन अगर आप देखें, कई कंपनीज में ऐसे लोग होते हैं जिनको अरेबिक ही आती है या थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो ऐसे में अगर आपको अरेबिक आती है, आप अपने बॉस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिन लोगों को अरेबिक नहीं आती है तो बॉस से कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और बॉस को एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जितना वक्त आप गुजारते जाएं, अगर कतर में हैं या कहीं पर भी हैं, थोड़ी थोड़ी अरेबिक मुझे लगता है सीखनी भी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इन्फ्लुएंस जो है वो भी देखने को मिल रहा है। आज के कतर में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो गया है, ये जाहिर सी बात है। चाहे वो स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों और वर्क प्लेसेस में इंग्लिश वाइडली यूज़ होती हैं। कतर एक इंटरनेशनल हब है जहां एक्सपैक्ट्स की लार्ज पॉपुलेशन जो है वो रहती है। इस वजह से इंग्लिश कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन गई है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी इंग्लिश को डोमिनेट करते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से अरेबिक और इंग्लिश का मिक्स डेली लाइफ में नॉर्मल हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश अरेबिक को रिप्लेस कर रही है या सिर्फ उसका सपोर्ट सिस्टम बन रही है। तो वैसे जहाँ तक मेरा अपना मानना है, अगर आप कितना भी अंग्रेजी पढ़ लें, कितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़े हों, बट आप जब गवर्नमेंट एंटिटी में काम करते हैं या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर अरेबिक बोलना बेहद इंपॉर्टेंट भी है और उसकी नीड भी है कंपनी में बोलना अरेबिक, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इंग्लिश कितनी भी बोल लें, आप अरेबिक धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। आपको मजा भी आता है, आप लोगों से पूछते भी हैं, इवन हमारे FM 107 पे भी अरबी की कुछ क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। स्कूल और वर्क प्लेसेस के बारे में अगर हम बात करें, इंग्लिश एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया के कुछ क्वेश्चंस भी उठते ही हैं। कतर के स्कूल और वर्क प्लेसेस में इंग्लिश का यूज़ बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के बारे में बात करें, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करें या वर्क प्लेसेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अरेबिक प्लस इंग्लिश भी चलती है। तो अरेबिक कहीं ना कहीं आपको हर जगह सुनने को, देखने को मिल जाएगी। उनके अगर आप यहाँ पर कतर में भी जाएंगे तो इस जगह है ना कॉर्निश पे, तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े क्राफ्ट या फिर स्कल्पचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अरेबिक में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से आकर काम करते हैं, इसलिए इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट भी इंग्लिश कॉन्टेंट को प्रमोट करते हैं, जिससे यूथ ज्यादा इंग्लिश यूज करता है। इस सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या इंग्लिश अरेबिक को रिप्लेस कर रही है या सिर्फ सपोर्ट सिस्टम ही बनी है। ये बैलेंस समझना जरूरी है ताकि लोकल आइडेंटिटी और ग्लोबल कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रांग हो।
4: यूथ और लैंग्वेज के बीच एक गैप भी है दोस्तों। आज की यंग जनरेशन कतर में अरेबिक और इंग्लिश दोनों को मिक्स करती है। इवन हमारे हिंदी में भी होता है ना, उर्दू में भी होता है कि उर्दू का 6 लफ्ज होते हैं तो 3 लफ्ज उसमें से अंग्रेजी के जो है इस्तेमाल कर लेते हैं हम। बहुत से बच्चे जो हैं यू नो टीनएजर्स भी अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में अरेबिक सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश वर्ड ऐड करते हैं। जो मैंने ये लैंग्वेज बोली है ना अभी इतनी देर में, या दो लाइन जो बोली है कि बहुत से बच्चे और टीनएजर्स अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में अरेबिक सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश वर्ड्स ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसमें कितने बार अंग्रेजी वर्ड आए हैं, जैसे कि टीनएजर्स, डेली कॉन्वर्जेशन, वर्ड्स ऐड, ये जो लफ्ज़ हैं ये अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं, तो उर्दू में अंग्रेजी के लफ्ज़ भी एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ भी है कि आपने अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे लफ्ज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक नॉर्मल ग्लोबल ट्रेंड भी है, लेकिन इससे अरेबिक लैंग्वेज का डीप यूज़ धीरे धीरे कम हो जाता है। सिंपल अरेबिक फ्रेजेस जो पहले हर घर में

कॉमन थे, अब उनका यूज बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया। कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और अरेबिक को सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट समझते हैं। इस वजह से एक लैंग्वेज गैप क्रिएट होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच भी। पेरेंट्स अरेबिक प्रेफर करते हैं जबकि चिल्ड्रन इंग्लिश या मिक्स्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है। लेकिन वो घर जहाँ अरेबिक में बात होती है, जहाँ पर अरेबिक में कम्युनिकेशन होता है, उसके अलावा स्कूल में भी अरेबिक है, अपने दोस्तों के बीच भी अरेबिक है, तो वहाँ पर एक तरह से ये अरेबिक जो है लव्ज़ या कहें अरेबिक जो लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग है। और असल में अरबी जो वर्ड है, अरबी जो लैंग्वेज है, ये स्ट्रॉन्ग इन्हीं जगहों पे रहेंगी और धीरे धीरे कतर में ये ऑब्वियसली काफ़ी लंबे वक्त तक चलने वाली हैं और काफ़ी लंबे वक्त तक रहेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया भी इस गैप को थोड़ा सा वाइड ज़रूर करता है। देखिए, दो तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक, सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लोग जो उर्दू इंग्लिश जान रहे हैं और उसमें बात कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया उनका भी है जो अरबी में यूज़ कर रहे हैं। हम उनसे इतना मुखातिब नहीं हो पाए हैं, जो हमारे दोस्त हैं या हमारे यार हैं वो अरबी नहीं जानते, तो अरबी में लिखते भी नहीं हैं और अरबी में सोशल मीडिया में ना पोस्ट करते ना कॉन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जैसे कतरी जो भाई लोग हैं वो सिर्फ कतरी ही लफ्ज़ में या कतरी ही अरबिक लैंग्वेज में या अरबिक डायलेक्ट में बात करते हैं, तो उनकी कॉन्वर्जेशन, उनका सोशल मीडिया एक है और वो सब एक है। तो ऐसे में क्योंकि हम कतर में रहते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अरबिक का एक अलग सोशल मीडिया कह सकते हैं चल रहा है जहाँ पर हम नहीं जानते हैं। और ऐसे ही अरबिक जो बोलना जानते हैं उनको ये लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले कम लोग। लेकिन दोस्तों, एट द सेम टाइम सोशल मीडिया इस गैप को और भी वाइडन करता है। शॉर्ट मैसेजेस, इमोजीज और स्लैंग लैंग्वेज यूज होने से फॉर्मल अरबिक राइटिंग और स्पीकिंग वीक होती जा रही है। यूथ अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन ग्लोबल कल्चर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने की वजह से अरबिक एक्सप्रेशन वीक हो जाता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूथ कंप्लीटली अरबिक को छोड़ नहीं रहा है। बहुत से यंग लोग अरबिक सीखने और इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, स्पेशली स्कूल और फैमिली सपोर्ट के थ्रू। ये एक मिक्स्ड सिचुएशन है जहां अडेप्शन भी हो रही है और लॉस का रिस्क भी है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए जरूरी है कि घर में अरबिक यूज हो, स्कूल में प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो और मीडिया अरबिक को अट्रैक्टिव बनाए। अगर बैलेंस बना लिया जाए तो यूथ ग्लोबल भी बन सकता है और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी स्ट्रॉन्ग रख सकता है। इसी तरह देखा जाए, कई ऐसे लोग हैं जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से कतर में हैं, गल्फ में हैं, उन्होंने अरबिक सीख लिया, तो साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अरबिक स्कूल में डालें, साथ ही साथ अपने बच्चों को अरबिक सिखाएं, किसी इंस्टीट्यूशन जहां पर अरबिक सिखाई जाती है वो भी सिखाएं, ताकि ये प्रिजर्व तो रहे। लेकिन फिर जब आप एक लैंग्वेज और सीख लेते हैं तो आपकी अपनी आइडेंटिटी में एक और एडिशन हो जाता है। आप थोड़े और लोगों के बीच बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं, आपके काम भी मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका अपना कोई बिजनेस है और उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी एक अरबी आदमी को समझाना है ना, जो कंट्री में रहा है, जो कतर में रहा है, जो गल्फ में रहा है, उन्हें तो अरबी ही आती है और उन्होंने शायद इंग्लिश इतनी नहीं पढ़ी हो और उन्होंने या तो कल्चर इतना स्ट्रांग रखा अपना कि हम अरबी में ही बात करेंगे। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो ऐसे में आपको अरबी आनी चाहिए। और यही रीजन है कि जब भी किसी कंपनी की हायरिंग होती है तो वहां पर अरबिक लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। इसलिए अगर आप या आपके बच्चे अरबिक सीख लेते हैं तो आपके बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने में बहुत मदद मिलेगी। अपने बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, जो कोई बंदा है या कोई ऐसा शख्स है जिनको सिर्फ अरबिक आती है, तो उससे आपको कम्युनिकेशन करने में आसानी मिलेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हम हर तरफ देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल में भी और इंस्टीट्यूशन में भी ये खासतौर पर पढ़ाया जाता है। इवन हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में भी अरबिक की क्लासेस होती हैं। स्कूल और एडुकेशन के बारे में बात करें तो स्कूल्स कतर में अरबिक लैंग्वेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडुकेशन सिस्टम में अरबिक कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं लेकिन साथ में इंग्लिश भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये डुअल सिस्टम एडुकेशन को ग्लोबल और लोकल दोनों स्किल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज सीखना काफ़ी नहीं होता, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बेहद ज़रूरी है। स्कूल का मेन रोल ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ना दे बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी

0: भी स्ट्रॉन्ग करे। जब स्टूडेंट्स अरेबिक लिटरेचर, पोइट्री और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका कनेक्शन अपनी रूट्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये उन्हें अपनी आइडेंटिटी समझने में भी हेल्प करती है। आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का यूज भी ज्यादा हो गया और टेक्नोलॉजी में अरेबिक नहीं अंग्रेजी लफ्ज ज्यादा चलता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूरोप की तरफ से आती है और वहां पर अंग्रेजी लफ्ज ज्यादा चलता है। इस वजह से जब टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर इंग्लिश लफ्ज आपके सामने आते हैं। हालांकि अब इस मॉडर्न दुनिया में अरबी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा आसान तरीके से सिस्टम में किए जा रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने हैं तो ऑब्वियसली अरबी जो है वो लैंग्वेज आ रही है। उसके अलावा जो भी सिस्टम जहां पर अंग्रेजी ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब क्योंकि इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, AI का जमाना आ गया है, तो आपको अरबी समझना भी, अरबी लिखना भी थोड़ा सा आसान हो गया है और ये सिस्टम अरबी में भी आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। स्मार्ट बोर्ड्स, ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल लर्निंग ने एजुकेशन को इजी बना दिया है, लेकिन इस डिजिटल एनवायरनमेंट में अरबिक लैंग्वेज को एंगेजिंग बनाना एक चैलेंज जरूर है। टीचर्स को क्रिएटिव मेथड यूज करने पड़ते हैं ताकि स्टूडेंट्स अरबिक को बोरिंग सब्जेक्ट ना समझे। स्कूल्स एक ब्रिजेस का काम करते हैं जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को कनेक्ट करता है। अगर स्कूल्स अरबिक को कल्चर के साथ लिंक करें, जैसे स्टोरी टेलिंग, डिबेट्स और कल्चरल इवेंट्स, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। इस तरह लैंग्वेज सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी बन जाता है। फिलहाल दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। जब आप कतर जैसे या गल्फ जैसे मुल्क में घूम रहे हों, टहल रहे हों, इंजॉय कर रहे हों गल्फ कंट्री को, गल्फ मुल्क को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करें और क्या ना करें इन गल्फ कंट्री में अरेबिक लैंग्वेज को लेकर। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Excuse me. अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो
1: देखो, और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये खास शो आप सुन रहे हैं अरबिक लैंग्वेज पर, जहां अरबिक लैंग्वेज क्यों जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है। आजकल मिक्स्ड अरबिक लैंग्वेज बोली जा रही है जिसमें अरबिक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश का भी इस्तेमाल है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अरबिक बोलते हैं। तो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे अरबिक लैंग्वेज हमको आनी चाहिए और हमारे बच्चों को भी आनी चाहिए ताकि आइडेंटिटी के साथ साथ हमारा काम भी एक्सपेंड हो सके, हमारी आइडेंटिटी भी बढ़ सके, हम स्ट्रांग रह सकें ऐसे मुल्क में जहाँ पर अरबिक लैंग्वेज की पकड़ स्ट्रांग है। तो ऐसे में इंग्लिश में बात करना, अरबिक में बात करना, ये दो एक अलग चीज़ है। इंग्लिश इसलिए है क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है, और अरबी इसलिए क्योंकि हमें हमारी आइडेंटिटी, और कतर में अगर आप रह रहे हैं, गल्फ में अगर आप रह रहे हैं, तो ये अरबिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए भी क्योंकि आप जो है इस खूबसूरत लैंग्वेज के पास रहते तो आप एक लैंग्वेज और जानते हैं, आपकी अपनी शख्सियत में एक बढ़ावा मिलता है। पिछले कुछ मिनटों में हमने काफ़ी अहमियत जो है अरबिक लैंग्वेज की समझी है, और अब मॉडर्न स्टैंडर्ड जो अरबिक है उसे भी समझते हैं, गल्फ अरबिक को समझते हैं, और फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब हम कतर में या गल्फ में रहें। तो दोस्तों दो अलग तरह की अरबिक लैंग्वेज है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक और दूसरा है गल्फ अरबिक यानी कि खलीजी। एक है फुशा जो थोड़ी सी टफ कह सकते हैं, या ट्रेडिशनल ज़्यादा सही लफ्ज़ है, जो ट्रेडिशनल कह सकते हैं, जो लिखने पढ़ने में, न्यूज़ में, स्कूल्स में सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और एक है गल्फ अरबिक यानी कि खलीजी। ये वो लोकल डायलेक्ट है जो लोग अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी और बातचीत में बोलते हैं, जैसे हमें समझना और आपको समझना आसान भी हो जाता है। और ये वो लैंग्वेज है जिससे मतलब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप अरबी लोगों से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में, क्या आपको करना चाहिए जब आप अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हो। तो देखिए, बेसिक ग्रीटिंग करना आपको ज़रूर सीखना चाहिए जब आप दूसरे मुल्क में हैं, जैसे कि सलाम करना, सलाम वालेकुम, जिसका मतलब है पीस बी अपॉन यू, मरहबा यानी कि हेलो, शुक्रान यानी कि थैंक यू, और फिर है अफवान यानी कि यू आर वेलकम, या फिर अफवान का और भी तरीका है लेकिन यू आर वेलकम इसका सही मतलब भी है, या फिर सॉरी में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ अरबिक लैंग्वेज के लफ्ज हैं, प्रोनंसिएशन का रिस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने प्रोनंसिएशन की रिस्पेक्ट नहीं करी तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आपको गलत समझा जाएगा कि आप मजाक उड़ा रहे हैं. तो अगर आपको गलती हो रही है आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन सीखने का, सामने से जब कोई सिखाए आपको, कोई बताए, तो उस बात की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो आप ट्राई करेंगे लेकिन परफेक्ट नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी आपके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाएगा. उसके अलावा एक और चीज़ आपको करना चाहिए, फॉर्मल अरेबिक को सीखना, लर्न करना, न्यूज़ रीडिंग करना, न्यूज़ को समझना, अरब कंट्रीज़ को समझना, उनके कल्चर को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अरेबिक का इस्तेमाल करना भी सीखें. उसके अलावा डू अंडरस्टैंड डायलेक्ट डिफरेंट एज वेल, जैसे कि कुछ वक्त से हम बता भी रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री में डायलेक्ट भी चेंज हो जाता है. अरेबिक अलग अलग कंट्री में अलग अलग साउंड करती है, जैसे इजिप्शियन अरेबिक अलग है, लेबनीज अलग है, मोरक्कन अरेबिक अलग है. फिलहाल आप कतर में हैं तो कतर की क्या अरेबिक है, किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे आप समझें. पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, है ना. कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, है ना, वो ऐसा लगता है कि आप हिटिंग कर रहे हैं. ऐसे ही जैसे उर्दू में अगर हम बात करें या फिर हिंदी में हम बात करें कि तमीज़ से रहो. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कोई सही से आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप उसे हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि तमीज़ से रहो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी हार्ड लैंग्वेज हो गई. वहीं आप अगर उर्दू में ये बात कहना चाहेंगे तो के आप इस लैंग्वेज में बोलेंगे, आप इस खूबसूरती से बोलेंगे कि वो तमीज़ सीख भी जाएगा और आप बोलेंगे भी हल्के कि अरे जनाब थोड़ा एहतराम करें, है ना. तो ये देखिए, आपने बात भी बोल दी, आपके लफ्ज़ भी चले गए. तो उर्दू लफ्ज़ में थोड़ा सा एक है भाई तमीज़ भी, हालांकि उर्दू वर्ड है लेकिन तमीज़ और थोड़ा हिटिंग वर्ड है. लेकिन अगर आप एहतराम करिए भाई ये बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. वैसे ही आपको पोलाइट वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मिन फदलक, मिन फदलिक, इसमें इसका मतलब है प्लीज़. फिर है लो समहत, यानी कि एक्सक्यूज़ मी, जज़ाकल्ला खैर, मे गॉड रिवॉर्ड यू विद गुडनेस, तो इसका मतलब ये है. ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूर आपको आना चाहिए, मिन फदलक, मिन फदलिक, या फिर लो समहत, या फिर जज़ाकल्ला खैर, ये कुछ ऐसे आसान लफ्ज़ हैं. फिर राइट टू लेफ्ट राइटिंग, ये खैर ऐसी चीज़ है आप आमतौर पर अरबिक नहीं लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है आप लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, बट अरबी में राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं. लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं. इसकी वैल्यू या कहें इसका भार ज़्यादा है. क्या करना चाहिए ये तो हमने बता दिया, आप करें ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए. डोंट अज्यूम वन अरबिक फिट्स ऑल. डायलेक्ट जो है अलग अलग हो सकते हैं. एक वर्ड कतर में जो इस्तेमाल किया जा रहा है अरबिक का, वो यहाँ अलग हो सकता है, लेकिन जो गल्फ में बाकी जगहों पे, कुवैत में, सऊदी में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका अलग हो सकता है, मायने अलग हो सकते हैं, डायलेक्ट अलग हो सकते हैं. तो बड़ा ज़रूरी है कि जो आप कतर में बात कर रहे हैं वो अरबिक जब आप सऊदी में जाएँ या फिर यूएई में जाएँ तो वहाँ पर समझ के साथ बात करें. जेंडर फॉर्म्स का भी इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. शुक्रान लक टू अ मैन, अगर आप किसी मर्द को कहना चाहते हैं शुक्रान लक, तो एक मर्द को कहना है शुक्रान लकी, तो ये है एक विमेन के लिए. तो ये फ़र्क भी आपको एक समझ में आना चाहिए कि मेल को आप क्या कह रहे हैं और फीमेल को आप क्या कह रहे हैं, है ना. तो ऐसा ना हो कि आपने फीमेल के लिए मेल का वर्जन इस्तेमाल कर लिया और मेल के लिए फीमेल का. डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, अगर आप गलती कर रहे हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सीखने के लिए जो एफर्ट होता है वो करते रहना चाहिए. मिसाल के तौर पर आपने कुछ गलत बोल दिया, ऐसे में कोई अगर आपको समझाए तो उस पर हंसने की या उस बात पर हंसने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अरे मुझे ज़रूरत नहीं, है ना. आप लगातार सीखते रहेंगे तो ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाती है ये अरेबिक लैंग्वेज. एक गोल्डन रूल है कि धीमे बोलें, ध्यान से सुने और रिस्पेक्टफुली उसे सीखें, अरेबिक लैंग्वेज को सीखें. ये एक खूबसूरत बात है. अरेबिक एक लैंग्वेज नहीं है, ये कल्चर, हॉस्पिटैलिटी और आइडेंटिटी को कैरी करती है, इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इसकी रिस्पेक्ट की जाए. तो दोस्तों ये था कुछ डूज एंड डोंट्स जिस पर हमने बात करी, लेकिन जो कुछ चैलेंजेस हैं ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं. अरेबिक लैंग्वेज को आज के टाइम में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज मिक्सिंग है, जहां अरेबिक और इंग्लिश स्लैंग एक साथ यूज़ होती है. इससे प्योर अरेबिक वोकेबलरी का यूज़ कम होता जा रहा है, जिससे लफ्ज़ जो हैं वो खो रहे हैं. डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने शॉर्ट फॉर्म्स और इमोजीज को प्रमोट किया है, जिससे प्रॉपर अरेबिक राइटिंग और स्पीकिंग वीक होती जा रही है. यूथ ट्रेडिशनल अरेबिक एक्सप्रेशन को कम यूज कर रहा है. अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो डीप कल्चर लैंग्वेज स्किल्स भी इम्पैक्ट हो सकती हैं, जो कि आने वाले वक्त में हमारे और आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी होगा. फ्यूचर क्या है अरेबिक का कतर में, इस पर अगर हम एक नजर डालें तो बात यह है कि अरेबिक का फ्यूचर कतर में स्ट्रॉन्ग रह सकता है अगर फैमिलीज, स्कूल और मीडिया इसको एक्टिवली प्रमोट करें तो. और ये बात तो बड़ी वाजे है कि कतर की गवर्नमेंट, कतर के लोकल्स, कतर के रेसिडेंट्स, कतर के जो सिटीजन्स हैं वो बड़ी ही स्ट्रांगली, उनकी जो फैमिलीज हैं, स्कूल्स हैं, ये अच्छा खासा अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. चाहे आप कल्चरल इवेंट्स में देखें, चाहे आप दरबलसाई के खूबसूरत प्ले को देखें, चाहे आप यू नो फनार में अरेबिक सीखने की बात को देखें, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ पर जो पोस्टर होते हैं वो भी अरेबिक में होते हैं. ऑल्दो बाकी लोगों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है अंग्रेजी या अलग लफ्ज का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये कंट्री सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक है, सबको बराबर इज्जत मिलती है. लैंग्वेज का सर्वाइवल सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज पर नहीं होता, लेकिन दोस्तों डेली यूजेज पर भी डिपेंड करता है. अगर पेरेंट्स घर में अरेबिक यूज करें और स्कूल्स कल्चर एडुकेशन को स्ट्रांग बनाएं तो फ्यूचर जनरेशन अपनी लैंग्वेज को मेंटेन कर सकती है. और कतर में तो ये हम देख सकते हैं और वाजे भी है कि हम अरेबिक को स्ट्रांग होता हुआ देख रहे हैं. मीडिया भी अवेयरनेस क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो कर भी रही है. अरेबिक सिर्फ पास्ट का हिस्सा नहीं बल्कि फ्यूचर आइडेंटिटी का भी स्ट्रांग पिलर है. प्राइड और कंसिस्टेंट यूज दोनों बेहद जरूरी है. अरेबिक लैंग्वेज कतर की आइडेंटिटी, कल्चर और सोल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं बल्कि एक कंप्लीट हेरिटेज सिस्टम है जो हिस्ट्री, रिलीजन और वैल्यूज को कनेक्ट करता है. दोस्तों मॉडर्नाइजेशन ने कतर को ग्लोबल कंट्री बना दिया है जहां इंटरनेशनल पीपल यानी कि इंटरनेशनल लोग और कल्चर्स एक साथ रहते हैं, लेकिन इस डाइवर्सिटी के बीच अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना भी लाजमी जानते हैं. आज के टाइम में इंग्लिश और ग्लोबल कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अरेबिक वीक है. दोनों लैंग्वेज का बैलेंस मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. यूथ को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन साथ ही अरेबिक को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा भी जरूर बनाना चाहिए. आखिर में दोस्तों ये टॉपिक हमें एक बहुत गहरा मैसेज देता है. प्रोग्रेस और आइडेंटिटी साथ साथ चलनी चाहिए. कंट्री इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कर सकती है, लेकिन उसको अपनी कल्चरल फाउंडेशन नहीं भूलनी चाहिए. कतर में अरेबिक लैंग्वेज प्राइड, यूनिटी और बिलोंगिंग का सिंबल है. और कंक्लूजन में कहें तो ये टॉपिक हमें सिखाता है कि अपनी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करो, अपने कल्चर को वैल्यू दो और मॉडर्न लाइफ को बैलेंस के साथ एक्सेप्ट करो. ये याद दिलाता है कि असली डेवलपमेंट सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता बल्कि अपने रूट से कनेक्टेड रहना भी होता है. तो दोस्तों ये था आज का शो जहां पर हमने अरबी लैंग्वेज के बड़े ही इम्पॉर्टेंट कुछ लफ्ज भी सीखे. अरेबिक लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे हमें रूट से जोड़े रखेगी, कैसे हमें एक्सपेंड होने में मदद करेगी, ये सारी बातें हमने जानी. और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जहां पर हम और भी नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे, साथ ही समझेंगे. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
6: ये कौन सा नया स्मार्ट टूल है,
7: इतने कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊँ?
6: I know this AI, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं?
8: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट है?
6: इन सारे सवालों का एक ही जवाब, AI Unlocked.
9: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked
10: With RGV.
9: Every Sunday शाम 7:15 PM. Only on FM 107. दिल से बीसी.
11: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो

0: बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स RJ नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Time Check.
2: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम अहलन व सहलन स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून एक्सप्रेस
1: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सरवर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं आपके साथ इस शो में जिसका नाम है आफ्टरनून एक्सप्रेस, और पूरे 2 घंटे आपके साथ कहाँ गुजर जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा और आपके कहाँ गुजरने आपको भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए वो है हमारे नंबर्स, यानी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चिट चैट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स हैं 666-22107। यहाँ पर हम आपके सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ले सकते हैं। वहीं अगर आप डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर जरूर लिख लीजिए, नंबर है 4434377।
2: बिल्कुल भाई, और सबसे शुरुआत में क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खबर ये है कि अमीर कप के हिसाब से जो हमें बात करनी है शुरुआत में,
1: और ये बहुत ही जबरदस्त सी बात, और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जो थे वो कल अमीर कप फाइनल्स जो है वो आपने खुद जाके वहां पे पर्सनली विटनेस किया जो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। और इस फाइनल मैच में देखा जाए तो अल गराफा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अल सद को 4-1 से शिकस्त दी और अमीर कप का टाइटल अपने नाम किया है।
2: क्या बात है भाई, यासीन इब्राहिमी की वो शानदार ट्रिक स्कोर की जब अल गराफा ने अल सद को 4-1 से शिकस्त देकर खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुजूम था भाई लोगों का, वहां पर 37,823 की मौजूदगी में बेहतरीन मैच जो है खेला गया हमारे अपने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, और अमीर कप टाइटल जो है वो बरकरार रखा यहाँ पर लोगों ने, जीत लिया पूरे तरीके से। और वहीं साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अल गर्राफा क्लब को अमीर कप जीतने पर मुबारकबाद दी, उनको ताज पहनाया और रनर्स अप अलसद के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम दिया सुमोल अमीर ने और कहा कि अल गर्राफा क्लब को जीत पर मुबारकबाद और अलसद के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का भी जिक्र किया उन्होंने। अल गर्राफा ने 2026 के अमीर कप के फाइनल में अल सद को 4-1 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप हासिल कर ली है, और ये बता दूं कि ये मुकाबला 54th एडिशन का फाइनल था जो सैटरडे शाम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया।
1: और इसी के साथ ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर सर्वर के, अल गर्राफा ने अपना 9th अमीर कप टाइटल हासिल किया है, और ये लगातार उनकी दूसरी बार हुआ है बैक टू बैक सीरीज में कि उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है जिसके बाद अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है।
2: क्या बात है, मबरूक अल्फ मबरूक चैंपियंस को और रनर्स कप को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से। भाई एक बहुत बड़ा इवेंट होता है अमीर कप, हम सबकी जान होता है, और इसमें इतना अच्छा परफॉर्म करना माशाल्लाह काबिल तारीफ है, और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों ही टीम को और चैंपियंस को खासतौर पर।
1: तो चलिए यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे नोट पे हमारे शो का जो है आगाज हो रहा
2: अच्छी,
1: है
2: अच्छी खबर के साथ,
1: अच्छी खबर के साथ, एक बहुत ही अच्छी न्यूज के साथ। बट हाँ, ये एक लेसन जो मुझे देखने को मिला, मैं पर्सनली तो नहीं जा सकी, लेकिन एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज साहिब सुमो अमीर की जानिब से जो सबको पहुंचा है वो ये कि जो जूनियर टीम के जो कैप्टन्स थे वो वहाँ मौजूद थे, जिस तरह से साहिब सुमो अमीर ने हक किया उनको जो है विश किया, तो इट वॉज समवेयर ऑर द अदर, कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन था कि आने वाले दौर के आप चैंपियन हैं, आप ही को जीत जो है वो जीतने हैं कप्स, और आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा माहौल था, बड़ा ही जबरदस्त नजारा। अब मुझे नहीं मालूम, आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको मौका मिला था कि आप फाइनल्स विटनेस करने गए थे कि नहीं,
2: अगर कोई देखने गया था या वैसे भी मैच अगर देखा हो किसी ने ऑनलाइन तो भी हमारे साथ जिक्र करें।
1: सर मिर्जा का तो एक बहुत अच्छा हुआ, दूसरा
2: कल मैं भी मैच में था एक्चुअली,
1: ये थे खलीफा के इर्द गिर्द खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द ये घूम रहे कह रहे मैं हूँ आस पास ही
2: यार हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में तो जगह बनाने की कोशिश करी मगर क्योंकि एक दूसरा मैच मेरा आ गया था जरूरी तो मुझे वहां जाना पड़ा आपको मालूम है तो भाई आप भी शेयर कर सकते हैं कि आपने अपना वीकेंड जो है वो कहाँ गुजारा है किस तरह गुजारा है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने नए हफ्ते का आगाज और इस हफ्ते क्या खासम खास करने वाले हैं ये भी आप शेयर कर सकते हैं। मजीद ये आफ्टरनून एक्सप्रेस अब चल पड़ी है जहां पर खूब सारी बातचीत होगी इसी तरीके की खूब सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाएंगी। हंसी मजाक तो अपनी जगह चलता ही रहेगा फिलहाल अभी के लिए करते हैं बाकायदा आगाज और बढ़ते हैं नगमा की जानिब। देखते हैं नगमा क्या कह रही है आज।
1: हाँ, देखते हैं।
2: तू मेरी मैं तेरा तू मेरी गाने में विशाल डाडलानी ऐसा कहते हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक आफ्टरनून एक्सप्रेस में सरवनाथ आपके साथ दिल से
1: दही सी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।

0: You are listening to
1: Afternoon Express. Afternoon Express. Afternoon Express.
0: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाज़िया और आरजे सर्वर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस सर्वर और नाज़िया हम दोनों आपके साथ हैं 11:15 ऑन द क्लॉक यस वापस आ चुके हैं
2: बिल्कुल वापस आ चुके हैं और अब जरा मौसम का हाल अहवाल जानते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे लाइंस भी ओपन करने वाले हैं हम और आपसे वार्तालाप भी होगी और मैसेजेस भी आपके रिसीव करेंगे कॉल करने के लिए नंबर 443-443-77 है और वहीं मैसेजेस के लिए नंबर है 666-221-077 डिग्री इस वक्त का टेम्परेचर है और हवाएं जोरों शोरों पर हैं 31 किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवाएं चल रही हैं वहीं ह्यूमिडिटी 18% पर बताई जा रही है भाई अपनी रोजाना फोरकास्ट में डिपार्टमेंट ने भी कुछ बताया है मेट डिपार्टमेंट ने और ये कहा है कि संडे आज शाम 6 बजे तक इंश्योर एरियाज में मौसम जो है वो गर्म से ज्यादा गर्म रहेगा जबकि मुख्तलिफ औकात पर बादल ही जो है या बादल थोड़े बहुत छाए रहेंगे ऑफशोर एरियाज में भी कभी कभी ऐसे ही मौसम रहने के इम्कान है वहीं इंश्योर एरिया में नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं जो हैं 10 से 20 नॉट की रफ्तार से चल रही हैं और इसी दिन के दौरान ये झोंकों की शक्ल में तब्दील हो सकती हैं और 32 नॉट तक पहुंच सकती हैं जहां मैंने आपको अभी अभी बताया कि इस वक्त की सूरत हाल 31 किलोमीटर पर आर के हिसाब से है ऑफशोर एरियाज में हवाएं इससे ज्यादा तेज रहेंगी जो 14 से 24 नॉट के दरमियान हो सकती हैं और झोंकों की रफ्तार 33 नॉट तक जा सकती है समुद्री हालत की बात करें तो इंश्योर एरिया में लहरों की जो बुलंदी है वो 3 से 5 फुट रहने के इम्कान है जबकि ऑफशोर एरियाज में 4 से 8 फुट तक हो सकती हैं और कभी कभी 11 फुट तक भी जा सकती हैं तो भाई बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं या उसमें जा रहे हैं तो ज़रा सा ख्याल कीजिएगा विजिबिलिटी की बात करें तो इंश्योर एरिया में 5 से 10 किलोमीटर के दरमियान बताई जा रही है जबकि ऑफशोर एरियाज में 5 से 9 किलोमीटर तक रह सकती है तो ये कुछ हाल अहवाल आज के मौसम का है
0: बिल्कुल तो मौसम की बातचीत हो चुकी है और अब और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से
2: टॉपिक के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे भाई हम अपने फोन को हर जगह इस्तेमाल करते आए हैं अपनी फैमिलीज के लिए अपने दोस्तों के लिए अपने काम के लिए अपनी खामियां छुपाने के लिए कैसे पूछिए कैसे नाज़िया आजकल जो AI है हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं कि भाई
0: हमारी जबकि हम उसके सबसे लोअर लेवल सबसे लीस्ट वर्जन मतलब फ्री वाले वर्जन तक ही हैं
2: इस्तेमाल कर रहे हैं
0: देखो अब मुझे एक चीज समझ में आ गई है AI इज नो मोर अ चॉइस It has become mandatory. अभी अगर आपको नहीं आएगा तो आप ऑब्सोलीट हो जाओगे
2: मगर इतनी जरूरत मिस नाज़िया
0: हाँ इतनी ही

0: और नहीं, लाइफ कितनी आसान हो गई है. जस्ट इमेजिन अगर आपके पास ये टूल ही ना होता,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: आप अपने आप को बचा पाते. ऑफिस में पूछ रही हूँ.
1: नहीं, बिल्कुल नहीं बचा पाते. ये बात तो सही है. तो मैं देखिए
0: इम्पोर्टेंट काम
1: बिल्कुल
0: है,
1: हल्का फुल्का सामने का संडे है तो इसी हवाले से बात करेंगे. तो कहने का मकसद ये है कि आज आपने बहुत आसानी से और नॉर्मल सी बात ये बतानी है, क्या आपका ये जो फोन है आपके कभी काम इस तरह आया है कि आपको बहुत बड़ी परेशानी या मुसीबत से बचाया हो. बुराई तो हम करते हैं कि भाई ऐसे है और एक्सप्रेस है और टेक्नोलॉजी है, हमें घेर लिया है चारों तरफ से और हमारी जिंदगी को बदल दिया है और हम कैसे इससे डिटॉक्स करें और यूं करें वो करें, ये सारी बातें अपनी जगह है. बट क्या कभी इस फोन ने आपको बचाया है,
0: रियल टाइम प्रॉब्लम से निकाला. हाँ, जो वाकई आपके लिए था कि हाँ दिस लाइक इट्स अ बिग इशू, और आपकी मदद की. और किस टूल ने पर्टिकुलरली की, कौन सी ऐप थी जिसका इस्तेमाल आप फ्रिक्वेंटली करते हैं या किया आपने उस टाइम, उससे आपकी हेल्प हुई और वो आपके फोन में थी ऐप. सो वो इंसिडेंट, वो किस्सा, वो स्टोरी आप आज हमारे साथ सोच के आराम से इत्मीनान से शेयर कीजिए. एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं. हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैम जी.
0: जयपाल जी, इतने टाइम तक कहाँ थे आप, कहाँ थे भाई? हाँ चलिए, खैर बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली अब आप हैं हमारे साथ और आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे जरूर, है ना. आपकी फैमिली, बच्चे सब लोग बढ़िया, सब ठीक है?
2: 15 मार्च की पढ़ाई हो गया बच्चे का, मैं जा नहीं पाया.
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. चलिए अब जरूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अच्छे से शादी. और ये बताइए कि कभी आपकी फोन में कोई ऐसी ऐप या फोन ही चलो पूछ लेते हैं, आपकी सच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और फोन की वजह से वो हल हो पाई. नहीं होता तो वो प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती थी. क्या है? क्या अच्छा, मित्राश मित्राश बोल रहे हैं क्या? नहीं, बहुत अच्छी आपने आप जो है उसका यहाँ पे जिक्र किया. एंड दैट्स ट्रू, बैठे बैठे सारे काम आसानी से.
1: अपने काम की सारी बातें याद है जयपाल भाई को. बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात की शुरुआत करी
0: के
1: आसानी के लिए. और वहीं हमारे कतर की जानिब से जो आसानियां हमारे लिए हैं, हम सबके लिए हैं, उसका जवाब ही नहीं. और उसमें क्या बात है, ऐप के दौरान ऐप से या फिर आप फोन करके अपनी इमरजेंसीज जो हैं उनके हवाले से भी आप मदद हासिल कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड,
0: बहुत सही.
1: नादिया जी, फोन नहीं है जिंदगी है जयपाल जी की.
0: हाँ नहीं, देखिए परेशानियां भी होती हैं बट मुझे लगता है कि इससे बहुत फायदे भी हैं. जैसे आपने मित्राश का जिक्र किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ऐप है, आप QID रिन्यू करें, वीजा, ट्रैफिक परमिट, मतलब जितनी चीजें, जितनी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम है वो सारा के सारा आराम से घर बैठे हो जाता है. तो देखिए कितनी आसानियां भी हैं.
2: हाँ
0: सही सही.
2: यारी दोस्ती से कई मुलाकात करनी है तो हमें फोन में ऑन करके बुला लो, आ जाओ उधर आ जाओ सब मुलाकात हो जाती है. कई होटल पर खाना खाना हो, दोस्त को बुलाना हो तो होटल में फोन बहुत बढ़िया चीज है.
0: चलिए अच्छी बात है कि आप इस ऐप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. हाँ ये तो है, सच बात है.
2: मैं खुद कमा रहा हूँ.
0: अच्छा, अच्छा जी, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी.
2: मोबाइल में देख लो TXS मलेशिया इंटरनेशनल आदि रहती, उसमें पेस्ट, साबुन, मतलब 50 आइटम है, 300

0: भाई क्या, क्या बात है, क्या कहले आपने तो खूब सारे फायदे बता दिए एक साथ ही, इतने दिनों बाद तशरीफ लाए मगर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं भाई।
1: माशाल्लाह।
2: दो बच्चे इसी फॉर्म पे ऑनलाइन छोड़ भी दिए और मैंने बिजनेस इंडिया में चालू करवा दिए दो बच्चे।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है।
1: जयपाल जी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं
0: सबको सेटिंग करने में। और
2: छुट्टी वाले दिन में सोता नहीं हूँ, मैं और भी आगे जॉब करने के लिए घूमता रहता हूँ। तो वहाँ तक
0: क्या कहने भाई, वाह
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है।
2: और मेट्रो का भी मीटिंग भी कराता हूँ मैं।
1: अच्छा, वेरी नाइस।
2: मीटिंग मीटिंग को करना पड़ता है ना,
1: सरवर मिर्ज़ा आप अपना फोन देख लीजिए।
2: हाँ, बीपी हाई लो शुगर के लिए मेरे पास डीएसएम ब्लैक कॉफी भी है।
0: क्या बात है।
1: अच्छा चलिए,
2: मैं बीमारी खत्म कर लूंगा कर की शुगर की बीपी है।
1: चलिए इंशाल्लाह, बड़ी अच्छी सोच है अगर आपकी ये है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा जयपाल जी, बहुत टाइम के बाद आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन चलिए फाइनली जुड़े। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप साथ खैरियत की शादी अपनी निपटा के जब लौटेंगे बच्चे की, तो वापस हमारे साथ फिर कनेक्ट होइएगा, हमें बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है,
2: ओके मैम जी, थैंक यू,
1: थैंक यू जी, ओके बाय, टाटा बाय। आज इन्होंने सर्वे आपको आफत नून लिखा, आई वाज रियली मिसिंग दिस लाइन। हां
0: भूल गए,
1: आफत नून जी
0: के ये भी अच्छा
1: आफत नून जी।
0: भूल गए, काफी दिनों बाद आए हैं। ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम मेरे फैन भाई, कैसे हैं भाई जान?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अच्छे हैं। करीम भाई आप कैसे हैं? वेलकम, अहलन व सहलन।
3: तो अल्लाह, मैं तो अल्लाह से राजी हूँ यार।
0: अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। कैसा रहा आपका वीकेंड? अच्छा गुजरा इंशाल्लाह ताला।
3: बिल्कुल सर, पहले जैसा घूमो फिरो, पैसे भी कमाओ, जगह भी देखो, मेरा तो बस सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आता वीकेंड में।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएं।
3: आम दिनों की तरह, बिल्कुल जैसे आम दिन होते हैं वीकेंड पे ऐसा ही होता है सर।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, हर दिन एंजॉय करते हैं इसीलिए खुश भी रहते हैं और इसीलिए फिट भी रहते हैं करीम भाई हमारे।
3: मेरे पास बस खुशी खुशी है, कमी किस चीज की, बस जो कुछ अल्लाह ने दिया है सोच समझ के दिया है, हमने भी कबूल किया है ना
0: भाई। करीम भाई ये बात तो बहुत वाकई अच्छी है और खुश रहना वाकई हर वक्त जरूरी है। तो करीम भाई आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? फोन आपकी जिंदगी में
3: सर।
0: अच्छा, तो फोन के हवाले से हम बहुत उसकी बुराई भी करते हैं, आई की भी आजकल चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो भी हैं, बट कभी इस फोन ने आपको बचाया, आपकी हेल्प करी, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो आप शेयर करना चाहते हैं?
3: सर ने 2004 में मेरे ख्याल तीन के 11वें महीने की कुछ 15-14 तारीख था मेरे ख्याल में, साबी माह रमजान, मैंने फोन लिया है। कितने साल हो गए अभी तक?
0: कब से बताया, कौन से सन से?
3: 2003 की 11वां महीने की कोई 15-14 तारीख थी, माह रमजान,
0: 23 साल
3: से मैं यूज कर रहा हूँ। उस टाइम मैं दुबई में था।
0: ओके।
3: उस दिन से लेके आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई काम हो जो फोन के जरिए मेरा हो चुका होगा। मैं जब भी कॉल करता हूँ मैं पहुँचता हूँ उधर, खुद हाजिरी देता हूँ। यानी जब कोई भी काम हो, जब फोन पे बात होती है, एक तो नॉर्मल तो आम काम तो ये नहीं है कि चलो मेरा दोस्त आ गया उसको, ये तो आधी बात है, जिस तरह हम रोजमर्रा की गुफ्तगु होती है ना, मतलब कुछ जो जिस आपने जो सवाल उठाया, कुछ ऐसा काम नहीं पड़ा है अल्लाह के फजल और करम से, ऐसा कोई भी काम नहीं पड़ा, लेकिन जब भी कोई ऐसा काम हुआ है तो मैं फोन के बजाय खुद जाता हूँ। मैं कोशिश मेरा यही है कि मैं वहाँ खुद जाऊँ।
1: मतलब आप ये कहते हैं कि आप अभी भी इन टूल्स को या इन चीजों को उतना ज्यादा इन पर रिलाय नहीं करते हैं, आप इन पर्सन अपनी एबिलिटीज और उसके जरिए ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना उसी में बिलीव करते हैं। दिस इज व्हाट यू से, ये आप कह रहे हैं ना?
3: बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा नौबत आया भी नहीं, अगर मुझे लगता है कि ये नौबत आती है तो उससे पहले मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पे।
1: आपको नौबत
0: सुपरमैन,
1: क्या ये नौबत के कोने में बैठे होते हैं एकदम?
0: बिल्कुल पता है,
1: आने से पहले
3: तजुर्बा होता है ना, आप जब कुछ कर रहे हैं आपको अंदाजा होता है ना।
0: क्या बात है।
3: अगर इस चीज को आप डिले करते हैं या इसको टाइट करते हैं तो अल्लाह ताला ने
1: पर करीम जी आज के टाइम में पॉसिबल भी तो नहीं है ना फिजिकली कि आप हर जगह अवेलेबल हो और

0: इतनी सारी चीजें आपको एक दिन में करनी होती हैं, तो इतनी एनर्जी भी नहीं है कि हर इंसान एक जगह अवेलेबल हो, पर्सनली जाए करे. तो ये एप्स हैं, हाँ, उनके जरिए आप आसानी से काम कर सकते हैं, तो फिर क्यों अपने आप को तकलीफ दें?
1: लेकिन मैंने एक चीज को इतना पुश किया ही नहीं ना कि मुझे जरूर रिकॉल, मैं एक सैंपल लाइफ जी रहा हूँ ना, बिल्कुल सैंपल. हालांकि मेरे भी जितना भी काम है, मैं मेरा मोबाइल की माता है दो रहा है, जो भी काम है मैं कर रहा हूँ इस मोबाइल की माता है दो रहा है. लेकिन अल्लाह ने बस ये, मैं क्या समझू, अल्लाह का अपना एक नजर है, करम है. लेकिन वो ये जो सवाल आपने उठाया, ये वो जो सुनने वाले है, ये उनकी मन में ये चीज आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है. लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक चीज को आप किस तरह लेके जाता है.
0: जैसे मैं आपको करीम जी अपना एग्जांपल दूं, जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली गाड़ी ड्राइव करना सीखा था, तो मुझे रोड्स का, रास्तों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था.
2: और मेरे
1: बिल्कुल
0: अब तो फिर भी है. अच्छा. पहले और आज तो मेरे एप्स है ना, बहुत सारे मैप्स हैं, एप्स हैं. लेकिन अब जो है, उस टाइम मेरे पास बहुत सारे
2: जो आपके अंदर बहुत है, खैर
0: आप ऐप है, मेरे पास
2: ऐप की बात कर रहे हैं,
0: ऐप तो आपके.
2: अच्छा,
0: तो जो भी मैप्स या जीपीएस जो भी मतलब सिस्टम हो सकते हैं नेविगेट करने के, वो मेरे पास नहीं था कोई भी ऐप. तो मुझे एहसास हुआ मैं भटक गई बहुत बुरी तरह से, अब मुझे रास्ता समझ में नहीं आया. पहली बार
2: थोड़ी
0: मैं चलती जा रही हूँ करीब जी, और मैं रोने लग गई लिटरली, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ. फिर मैं कॉल भी कर रही हूँ घर वालों से, पूछ भी रही हूँ. फिर मुझे मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी पार्क करो और ये ऐप फौरन अभी के अभी जो है वो डाउनलोड करो, उसमें इंस्टॉल करो और उसको देख के तुम घर वापस आओ. तो इस तरह से मेरी एक रियल प्रॉब्लम उस वक्त मुझे सच में सिचुएशन से निकाला.
1: जी देखो, जब आप, अगर कोई बंदा दुबई गया होगा तो आप बोर्ड पर आपको गोल गोल निशान आते हैं.
0: हाँ.
1: तो उस टाइम ये फोन वगैरह, ये व्हाट्सएप लोकेशन नहीं थे, तो वो निशान को देकर बताते थे कि ये निशान आपको शहर से बाहर निकालेगा, ये निशान आपको अंदर देकर आएगा शहर में.
2: सही.
1: तो हम उस बोर्ड को देखते थे और वहाँ पर भी हमने डिलीवरी का काम किया है कि
2: करीम भाई,
1: हमें जब फोन करना पड़ता था ना, तो हमें बताते थे.
0: करीम जी मैं बता रही हूँ, मैं अंदर के किसी एरिया में स्टक हो गई थी और मुझे समझ में.
2: अच्छा, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब करूंगा और रोकूंगा, माजरत, क्योंकि अजान का वक्त है, तो एक हमें ब्रेक लेना जरूरी है, लाजमी है. करीम भाई, इंशाल्लाह ताला अजान के बाद आप जरूर तशरीफ लाइए, आपसे बातचीत बरकरार रखेंगे. थैंक यू सो मच.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Hello?
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट.
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा. Daily live with morning news bulletin only on FM 107. Dil se Desi.
4: Parenting sirf parvarish nahi, ye samajh aur pyar ka safar hai. Ye show baat karta hai modern parenting, roz ke challenges aur un family values ki jo bachcho ko behtar insaan banati hai. Simple baatein, real experiences aur har walidain ke liye rehnumai. पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM.

0: are listening to
1: Afternoon Express. Afternoon Express.
0: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी. Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं आफ्टरनून एक्सप्रेस सरवर नाजिया. हम दोनों आपके साथ हैं 11:36 ऑन द क्लॉक. एंड यस, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे सरवर साहब आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जिस पे बात हो रही है उस पे आप बात नहीं कर रहे. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए तो चलिए इनसे बात कर लेते. हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. काबू आ गया मैं सरवर भाई के. बस वो कहेंगे, बस जनाब वही ना,
3: बहुत देर की मेहरबानी.
2: आप जो कहते हैं ना, आपसे बात करें, फिर आप जो अक्सर कहते हैं ना, बातों का शौक नहीं करता हूँ समझाने के लिए, अपनी सैलरी पाने के लिए.
0: बहुत ही जबरदस्त.
3: क्या बात है सर, कहाँ थे आप इतने दिनों से?
2: बस तैयारी कर रहे थे, वर्ल्ड कप आ रहा है ना.
3: ओहो, क्या बात है,
2: वर्ल्ड कप आ रहा है. हम देख रहे हैं आप भी कहीं जा रहे हैं, जैसे 500 के वाउचर बेच रहे थे, $500 दे रहे हो जनाब. यूएसए कनाडा मैक्सिको में हो रहा है ना.
3: क्या बात है भाई, जहाँ ये जहाँ खबर मिल रही मुझे भी बता दीजिएगा.
0: ये खुद वहीं खड़े होंगे.
2: हम तो खुद इस आस में है कि हम भी कहीं देखें. और सुनाएं फिर.

0: आपकी तबीयत कैसी है और काफी दिनों बाद आप तशरीफ लाए हैं, उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला।
1: बस दुश्मनों को पता चल गया था कि इस वक्त हम कनेक्शन होते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए काम
0: तार काट दिए।
2: ये बात है। अच्छा आज हम पूछ रहे हैं कि फोन ने आपकी कभी सच में रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की, कोई ऐसी मदद जो वाकई आपको लगा कि वो इट्स सच अ सेवर।
1: एक तो सिमिलर वो जो आप अभी बता रही थी, लेकिन मैं ना रोया ना उसके लिए
2: नहीं, मेरे साथ क्या था, मैं पहली बार थी तो मैं भटक गई बहुत बुरी तरह से, मैं अंदर घूम घूम के वहीं आती जा रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं एग्जिट हूँ
1: वहाँ से। बड़ा बंदा तंग होता है और वहाँ से आपको एग्जिट भी अच्छे खासे डिस्टेंस से मिलते हैं।
0: मैं वो याद करके मुझे हंसी आ रही है,
2: रेजिडेंशियल एरिया मतलब ऐसे मैं चाह रही हूँ किसी मेन रोड तक पहुंचो, मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, इधर से टर्न उधर से टर्न ले लेके
1: इधर से टर्न
2: भूलैया। मैं सच में मैं बहुत रोई, मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से शहर कैसे निकलूंगी,
0: अब जिंदगी यही इख्तिताम होगी
2: और
0: यहाँ से आगे कुछ।
2: सच में हुआ क्या था, मगरिब का वक्त था अच्छा खासा और रात भी होनी शुरू हो गई थी, अब मैं भटक रही हूँ, सोचिए क्या पोजिशन थी, तो फिर मैंने बकायदा फिर आप जो है वो अपने फोन में डाली और फिर मैं जैसे तैसे वहां से निकली, वरना मुझे हमेशा कहा जाता था, मुझे लगता अरे बाद में अभी कोई जरूरत नहीं है। बट देन आई रियलाइज्ड कि हाँ इट वाज रियली अ लाइफ सेवर फॉर मी एट दैट टाइम।
0: फिर मुश्किल होती है
1: खास तौर पे हाईवेज में जहां आपके पास क्लोज मल्टीपल एग्जिट्स हो, तो वहां आप एक भी मिस कर लें और जरा से रॉन्ग पे चले जाएं तो आपको लंबा चक्कर मिलता है, और खास तौर पे आप उस इलाके में जहां यूज्ड टू ड्राइव नहीं कर रही हूँ। मैं इसीलिए बता रहा था कि रमजान ईद में मेरी बेटी ने कहा जी मेरी फ्रेंड है हमने वहाँ जाना है, तो काफी अरसा हो गया ये वकराव में सईद के एरिया में यहाँ पर, यानी ये वर्ल्ड कप के दौरान है, ये नई हाईवेज वगैरह बनी थी, तो वैसे मेरा रूटीन में जाना नहीं होता, तो हमने उसको लोकेशन वगैरह निकाली, बस बंद करके बैठ गए, हमने कहा जाते हैं ठीक है। तो वहाँ अभी काम खत्म नहीं हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन भी था बेसिकली, मैप ने जो हमें रूट बताया था उसके हिसाब से हमें वहाँ, उसने अंडर कंस्ट्रक्शन का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस वहाँ से कट होना था, तो समझे सामने घर है वहाँ जाए, उस जगह पे ब्लॉक था कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हमें उसका आइडिया नहीं हुआ, हमने कहा ये हो रही है, तो अगली से कट गए, तो हमने वक्रा की जगह मैं सही पहुंच गए।
2: एक और भी किस्सा है मैं बताऊं क्या आपको,
0: ये बहुत
2: मेरे साथ हुआ है, बहुत
0: नॉर्मल सी बात है, वाकई किसी ना किसी के साथ जरूर हुआ है ऐसा। हाँ इतना नहीं कि बहुत ही ज्यादा लंबा निकल गए हूँ, मगर फिर भी होता है ऐसा, तो फिर क्या क्या इलाज हुआ उसका आगे, मतलब कैसे
1: इलाज ये हुआ, तो फिर हमने उनको कॉल किया कि ये सिचुएशन हुई है, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये मेन रोड तो बंद है, आप इस रोड पे आ जाएं, हम आपको यहाँ से रिसीव कर लेंगे। तो लेकिन ओवरऑल इसका बहुत फायदा रहा कि जब हम लोग, अच्छा इसमें ऐप जो है ना, हमने ट्रांसलेशन वाली बड़ी यूज की, जब मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जॉर्जिया गया तो वो जॉर्जियन बोलते हैं और वो बोलते हैं रशियन बोलते हैं, तो अब उनसे कहीं भी जाना या टैक्सी के लिए, तो हमने उनकी ऐप इंस्टॉल की।
0: ओके
1: तो वो उसकी ट्रांसलेशन जो भी लिखे, और बड़ा हमने उसका एक्टिव वहाँ देखा, कहीं ग्रोसरी शॉप्स में या उसमें थैंक्स के वो पढ़ लेते हैं, तो उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन उसकी देख के, तो उस वो बोलते थे तो उसको हमें ट्रांसलेशन मिल जाती थी। तो बाकी आजकल के दौर में इन चीजों का बहुत फायदा है, लेकिन तंग भी हूँ मैं इससे, बहुत तंग भी बहुत हूँ भाई, ये भी सुने।
2: अच्छा तंग भी है क्यों?
1: हाँ तंग भी है, ये जो सेल और ऑफर वाली है ना, इन्होंने जान को अजाब डाला है, जो घर में बैठे हुए हैं ना देखते रहते हैं भाई, उनके फोन में से मैं कैसे डिलीट करूं।
2: मुझे लगा शायद आप अपने फोन में, हाँ नहीं दूसरे फोन,
1: मेरे फोन वाले को तो दफा करें ना, वो उन्होंने हाँ जी ये सेल चल रही है, ये प्रमोशन चल रही है, उसकी तैयारी होती है।
2: ये तो वाकई बहुत मुश्किल है कि भाई, और ये हम लोग के लिए ना बहुत ही रिलैक्सिंग भी है, क्या आप देखते रहते हैं सेल, आपको पता चलती रहती है यहाँ पे वहाँ पे, तो फिर आप आराम से अपने इत्मीनान से शॉपिंग प्लान कर लेते हैं, शॉपिंग करें ना करें प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं।
1: क्या बात, तो सुनो यार खुदा के लिए, तुम तो मेरे ऑपोजिट जा रही हो, ये तो वही बात है, हम सामान ले आते हैं और फिर सोचते हैं इसका करना क्या है, और ये फिर वही बात है,
0: ये मेरे घर में आखिर क्या कर रहा है, ये क्यों लाई हूँ मैं आखिर,
2: आप जब 5 चिकन खरीदते हैं आप सोचते हैं कि आज क्या आज खाऊंगा,
0: मैं तो अल्लाह का शुक्र है सब इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो है अपना है
1: जो है नहीं, और उसके अलावा जो ऑफर होती है 500 खर्च करके 50 रियाल की बचत करें, लो ये कैसी बचत है भाई, पहले 500 खर्च करें फिर 50 रियाल की बचत करें,
0: क्या बात है।

0: ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से कह दी है ज़ुल्कर्नैन साहब
1: कि 50 की बचत बचत नहीं है ज़ुल्कर्नैन,
0: ये नाजी देखिए देखिए आप समझिए आप देखिए अब आप लोग के सामने पूरा जीता जागता एग्जांपल।
1: इसी बात में मुझे लो 50 रुपए दीजिए सर, मेरे साहब मुझे दीजिए इस बात में 50 रुपए।
0: नहीं मुझे अभी नहीं देंगे पैसे,
1: ये कभी नहीं देंगे, और 50 की बचत को बचत नहीं मान रहे।
2: आप इनके लिए 50 रियाल बिल्कुल मत छोड़िएगा।
1: मैं
2: वैसे बड़े अच्छे बाद बड़ा मजा आया
0: ये जानना छोड़े
1: बहुत अच्छा लगा।
0: खैर आप तशरीफ लाए और अच्छी बात भी करी है।
2: बाहर हो गई बिल्कुल ना, टेंशन दूर हो गई, रिलैक्स हो गया। अभी जितने आवर्स हैं ड्यूटी के हम लोग बिल्कुल
0: खुश रहो। थैंक यू
1: तो ये थे हमारे साथ ज़ुल्कर्नैन जी, जिन्होंने बताया कि वाकई किसी ना किसी तरह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एप्स या जितने टूल्स आ रहे हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ?
0: अंशु है हमारे साथ।
1: अंशु, हाँ मुझे बात है, इनकी वॉइस लो क्यों आ रही है?
0: अंशु भाई थोड़ा क्या हेडफोन या ब्लूटूथ से बात कर रहे हैं, वरना मोबाइल को थोड़ा सा करीब ला के बात करिए।
3: मेरी आवाज ही स्लो है।
0: नहीं नहीं आवाज नहीं, तो आपकी बहुत आपकी। अच्छी है, मगर अब साफ आ रही है। साफ आना
1: नहीं आ रही थी।
0: और हल्की आना मुख्तलिफ है, तो साफ आ रही है अब। कैसे हैं आप, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने?
3: बहुत बेस्ट है।
1: अच्छा बताइए क्या ऐड करना चाहेंगे?
3: जैसे हमारे इंडिया में अभी वो वोटर लिस्ट वाला मामला चल रहा था।
1: अच्छा,
3: वोटर आई डी वाला, हम तो कतर में थे, किसी ने हमें बताया कि वोटर आई डी का ये आप फॉर्म है, ये चाहिए, इस्तेमाल करो, इसमें अब तक ढूंढ लो, भर लो फॉर्म।
0: राइट,
1: हाँ
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया, उससे फॉर्म भरा, मेरा आ गया।
1: अरे नाइस, देखो
0: कितना हेल्पफुल रहा देखिए।
1: हाँ कितनी चीजें जो है आसान हो गई है, वरना ऑल द वे ट्रैवल करके जाना कितना मुश्किल है और कितना एक्सपेंसिव भी है, कितना हेडेक भी है।
0: पैसे बचाए, वक्त बचाया फोन ने
1: बिल्कुल, और स्ट्रेस बचा, वो आपकी एनर्जी जो खामखाई जाया होती आने जाने और सारा हेडेक वो सब कुछ बचा, तो कितनी चीजें जो है आसान हो गई हैं। तो वाकई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टूल या कोई ऐसी ऐप होती है जो आपके लिए वाकई रियल लाइफ सेवर बन जाती है। कहीं ना कहीं आप इतनी बुरी तरह से फंसे होते हैं, आपने उस ऐप को कभी भी नहीं अपने फोन में रखा है, बट देन यू रियलाइज कि हाँ इसका होना इज क्वाइट मैंडेटरी, और इसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाया। तो दैट्स राइट,
3: इंडिया में यूपीआई पे जो ऐप चल रहा है वो भी बहुत इजी है जिंदगी।
1: बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही। तो ये सारी ऐप जो है बहुत ही यूजफुल है,
3: इस वजह से जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी मोबाइल और ऐप के जरिए बहुत आसान हो गई, इजीली हो गई है।
1: बिल्कुल, तो मतलब आज जैसे हमने शुरुआत की कि हम बहुत ही आसानी से ना ब्लेम करने लग जाते हैं ऐप्स को, टूल्स को, इसकी वजह से हमें एनर्जी ड्रेन हो रही है, हमारा टाइम जो है वो जाया हो जाता है, हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बर्न आउट की सिचुएशन आ जाती है। बट द गुड पार्ट इज कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है अगर हम इनका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, और कई बार आपके लिए लाइफ सेवर भी बन जाती है।
3: यही है कि ऐप जो है उसका सही इस्तेमाल करें तो हर ऐप जो है अल्हम्दुलिल्लाह फायदे के लिए यही है।
1: सर मिर्ज़ा सही से ज़बान का आप इस्तेमाल करें तो हर ऐप आपका छुप सकता है।
0: क्या हंस रहे हैं जी भाई, यही कहना चाह रहे थे, आपने मेरे दिल की बात कह दी नासिया जी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भाई, बड़ी अच्छी बात करी है, बड़े अच्छे अच्छे आउटपुट्स आ रहे हैं आज जिस टॉपिक के ऊपर। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भाई, थैंक यू,
1: अल्लाह
0: हाफिज़। अहले व
1: सर, यहाँ तो हम अपने कॉलर्स के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर ही रहे हैं, बट आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको वाकई किसी ऐप
0: ने? यार बहुत कुछ बता नहीं सकता मैं, जान भी बचाई है,
1: कोई तो बता,
0: जिंदगी भी बचाई है फोन ने, और आपको बताऊंगा अभी जब ब्रेक होंगे ना, जब बताऊंगा तो आप।
1: अच्छा मेरे साथ एक और भी किस्सा हुआ था सर, मुझे आज अभी भी याद आ रहा है, वो भी मेरा भटकने से ही था।
0: वो तो यार देखिए
1: वो पुरानी आदत
0: है, एक के साथ अब एक इंसान के साथ ये खासियत है, तो वो खासियत ही पूरी जिंदगी आगे बढ़ती है।
1: क्योंकि मैं इस साइड एरिया में कभी आती नहीं, दरबल साइड में गई थी, ठीक है, किसी कवरेज के लिए कुछ तो उसके बाद
0: मैं खाली सुन के ही इमेजिन कर पा रहा हूँ नादिया कि आप वहाँ कैसे पहुंची होंगी और वहां से कैसे वापस आई होंगी।
1: चलिए पहुंच गया अल्लाह तेरा शुक्र।
0: एक्चुअली मैं बताऊं दोस्तों को कि इनको मैप की जरूरत जो है वो इस हिसाब से है कि मैप वाले इनके पास एक आदमी भेजे जो इनके साथ बैठे या यहाँ तक स्टेयरिंग भी संभाल ले कि आओ भाई जरा सा हमें यहाँ जाना
1: जी नहीं वहाँ पे काम चल रहा था सर्वर आपको पता होना चाहिए वहाँ पे काम चल रहा था और काफी उसमें जो थे वो डाइवर्जेंस थे। अब एक डाइवर्जन मिस हुआ चलो खैर हम दरवल साई तो पहुंच गए वो तो बहुत ही अच्छा सीन था पहुंच गए। अब वहां से हमें वापस यहाँ कतर मीडिया आना था।
0: वाह
1: सबसे अच्छा सीन ये हुआ कि हमने रात में मैप पे बिना देखे लगाया कतर मीडिया मतलब लिखा होगा वो सिर्फ लिख गया था कतर।
0: क्या बात है और उसके बाद ये पहुंची सीधा सलवा बॉर्डर।
1: उसके बाद मैं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ एकदम सारा शहर खत्म होता जा रहा है मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं देख रही हूँ
0: नादिया
1: बिल्कुल ऐसा एरिया मैंने कभी देखा नहीं।
0: तारीफ के जितने किस्से चर्चे हैं चारों ओर वो वाकई हकीकत में असल हैं और ये
1: जो मुझे लगा और मैं फोन करके घर वालों से कह रही मुझे रोको रोको मैं क्रॉस ना कर
0: घर वालों से कह रही भाई ब्रेक लगाओ किसी तरह ये गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहे मैं क्या करूँ या अल्लाह मैं कहाँ जा रही हूँ
1: और अकेले सोचो हम एकदम चले जा रहे एकदम सुनसान एरिया आ गया।
0: क्या बात है
1: जैसे वो नो मैन्स लैंड पहुंच गई मैं
0: वो
1: मुझे समझ ही नहीं आ रहा
0: कि पहुंची कहाँ। आप किसी गांव निकल गई मेरे ख्याल में
1: मुझे भी लग रहा है
0: कोई कैसे
1: हाँ, कोई गांव पहुंच गया
0: क्योंकि मैप भी कह रहा होगा कि यार इन्होंने इतना दुखी किया है मुझे आज इसको जरा घुमा के लाता हूँ चलो इसको थोड़ा घुमाओ।
1: बाकी वो एरिया मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था वो बिल्कुल सुनसान एरिया कुछ मतलब कुछ था ही नहीं दोनों साइड ना लाइट थी
0: वही तो देखिए कैसे कैसे चीजें और कैसी कैसी हकीकत सामने आ रही हैं।
1: फिर मैंने भाई किसी तरह रोका वापस उसे स्टॉप किया वापस से सेट किया अपना लोकेशन तो मैंने देखा उसमें सिर्फ कतर ही में लिख के छोड़ दिया।
0: वाह वाह नादिया आपकी जितनी तारीफ करी जाए मैं ऐसे थोड़ी करता रहता हूँ जग जाहिर है नादिया जग जाहिर है।
1: सर ये मेरे तो छोटे छोटे कैसे आपके खुलेंगे तो आप खोलने नहीं देंगे सही से।
0: तो भाई अब लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अपनी अपनी जगह खैरियत से पहुंचे जो भी हमें इस वक्त सुन रहा है और सुन रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं हमारा नंबर आपको पता ही है 443-443-77 पे आप अपने हाल अहवाल और टॉपिक के ऊपर बातचीत भी कर सकते हैं और वहीं अब से थोड़ी देर में फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग गेम भी खेलेंगे। आज का गेम बेहतरीन बॉलीवुड के ऊपर होगा और मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 666-22-107 जहां पर मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं और मैं वापस आने के बाद आपके सारे मैसेजेस शेयर भी करने वाला हूँ। फिलहाल सुनते हैं एक ट्रैक ज्योति नुरैन राहत भाई ने हल्की सी लाइन बोली है मगर गाना अपने नाम किया। जीरो मूवी से ये मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है आप भी बताइएगा।
1: नहीं नहीं अगर आपका है तो नहीं है मेरा।
4: तू हैया रूठी परछाइयां जाने
0: एंजॉय कीजिए ट्रैक सर्वनाथ जी आपके साथ
1: दिल से
0: देश।

0: बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
1: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है, और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम, स्पोर्टकास्ट। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक Alright guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस सरवर और नाज़िया हम दोनों आपके साथ हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 12:04.
2: You are listening to Afternoon Express. Afternoon Express.
3: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाज़िया और आरजे सर्वर के साथ
4: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: यस तो इस वक्त हमारे साथ जो है कॉलर यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं हेलो
5: हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
6: व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहलन व सहलन कौन है हमारे साथ
5: जी मैं सैयद फैजल बात कर रहा हूँ
1: ओके कैसे हैं सैयद फैजल जी आप खैरियत से
5: जी अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोग कैसे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह
5: मैं नाज़िया आपकी मैंने बात सुनी अभी आपकी जो आप कह रही थी वो लोकेशन से भटकने वाली बात तो मुझे भी एक मतलब इंसिडेंट याद आया तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ
1: जी जी
5: लेकिन सर्वर भाई मुझे लगता है ये नाज़िया आपकी मतलब ये पूरी कम्युनिटी जो लेडीज है उनके साथ प्रॉब्लम है लोकेशन वाली
6: बहुत भटके हुई है नाज़िया की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की नहीं कर रहा
5: कसम से सर्वर भाई मैं अपने गाँव में था मैं अपने वाइफ के साथ जा रहा था उसके पासपोर्ट के काम से मिनिमम 60 किलोमीटर डिस्टेंस है हम लोग के यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस का
6: अच्छा
5: तो मैंने उनको लोकेशन दिया उनसे कहा कि आपको लोकेशन मतलब आता है देखने के लिए तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हो जाएगा भाई साहब मैं 160 किलोमीटर मेरी बाइक चली है
6: 160 मतलब 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा
1: मेरे ख्याल से सिटी निकल गया
5: 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलिए वो लेफ्ट की जगह राइट की जगह लेफ्ट
6: क्या कह ले वाह भाई बहुत अच्छे
1: नहीं मैं इतना नहीं भटकती हूँ एक बार तो मेरे पास थे ही नहीं आप मैंने इंस्टॉल ही नहीं कर रखी अपने फोन में
6: क्या मालूम आप कितने किलोमीटर चल रही है नाज़िया आप 3-4 किलोमीटर नहीं 3-4 घंटे एक्स्ट्रा चली
5: आपने तो अच्छे बार कॉल कर लिया नहीं तो आप तो कौन सन्नाटे में चली गए थे कहीं बॉर्डर क्रॉस हो जाता था
1: नहीं वो तो मैंने
6: थी
1: पता है उसमें मेरे पास ऐप थी लेकिन मैंने शायद रात में जल्दी में कतर मीडिया कॉर्पोरेशन के सिर्फ कतर डाल दिया और वो मुझे पता नहीं कहाँ
6: चलिए अब ये देखिए कवर हो नहीं रहा नाज़िया एक्चुअली पता चल गया
1: सच था और अब मैं सोच रही हूँ शॉर्टकट से मुझे ले जा रहा है मुझे थोड़ा आइडिया है ऑफिस का अपने पर मैंने कहा ये वो रास्ता नहीं जहाँ से हम आए मैंने कहा हो सकता है शॉर्टकट से हमको ले जा रहा हो सही जगह और चलते जा रहे और मैं बिल्कुल सही बोला इन्होंने मैं विलेज पहुंच गई थी
6: लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लेने का नाज़िया का ऐसा कहना है
1: हाँ नहीं वाकई फिर मुझे रियलाइज
5: उस टाइम मेरे दिल पे जो बीत रही थी मैं ही जानता हूँ
6: 100 किलोमीटर भाई ने एक तो पूरी टंकी जो है तेल की वो लगा दी एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए कि कोई ये नहीं बता पा रहा कि राइट सही जाना या लेफ्ट सही जाना बताइए तो कितना जुलम है भाई
5: बहुत और कुछ बोल भी तो नहीं सकते सर भाई
6: कुछ भी नहीं बोल सकते
1: मैं ये कहती
6: खुदा ना खास्ता ना बाइक रहेगी ना

0: टंकी कुछ भी नहीं रहेगा भाई, ना पेट्रोल ना कुछ और चीज।
1: नहीं मुझे
0: खामोशी से चलते चले जाओ एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर नो प्रॉब्लम,
1: 200 चलेंगे
0: और 100 चलता हूँ मैं, आप क्या बात कर रही हैं।
1: नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब गलत आपको आइडिया लगी क्या के हो रहा है,
0: हिम्मत कहाँ है,
1: किस चीज का इंतजार कर
0: रहे हैं? तो उतनी है जितनी अल्लाह ने बना के भेजी है, पेट्रोल तो फिर भी आ जाएगा, पेट्रोल
1: एक आध चटक भी जाए तो फिर संभल जाएंगे।
0: अरे यार तो नहीं, अरे यार पसली आप समझ रही है कितनी जरूरी चीज है पेट्रोल का क्या है, है पैदल भाई आता जाता रहेगा।
2: सही बात है,
0: सही बात,
2: जिंदगी प्यारी। मैं बोल रहा हूँ कि शायद गलत हो रहा होगा, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
0: एक तो ये बहुत खतरा, इसका आज तक जवाब नहीं मिला, नहीं हम कह रहे हैं सही है, अब क्या करूं, घर पे भी सुनना हूँ यहाँ भी यही सुनना हूँ,
2: सही है तो सही
0: जो
2: है।
0: कह रही है वो सही है तो ठीक है भाई, सही
1: सरवर
0: है
1: मिर्जा, सही है
0: सरवर मिर्जा, सही है सरवर, सरवर मिर्जा कर दिया आपने
1: मिर्जा मिर्जा। देखिए मैं कह रही हूँ मशीन लाया कीजिए, आपको सुनने की प्रॉब्लम है।
0: फैजल भाई मैं आपके साथ हूँ, मेरी सहानुभूति है।
1: ऐसा नहीं है फैजल जी कि सिर्फ ये फीमेल्स के साथ होता है, कोई ना कोई ऐसा मेल बंदा भी होगा जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे
0: भाई, आपने कभी बात बहुत अच्छे से अपना जवाब खुद ही दे दिया।
2: कोई ना कोई, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ नादिया आप, लेकिन वो बंदा मुझे आज तक टकराया नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता।
0: कोई ना कोई
1: आप आपसे नहीं टकराया, मिर्जा बेग से तो कई बार टकरा के वापस बाउंस बैक हो।
0: भाई अच्छा तुम भी यहाँ पे हो, कैसे आए, गलत आ गए थे भाई। वाह फैजल साहब बहुत बढ़िया,
1: नहीं लोग
0: बहुत
1: गलत भटकते हैं और हाँ, और कैसे क्यों नहीं, एक हम लोग है ग्रुप में सर्वर,
2: लेकिन जो हमेशा भटकते
1: हाँ नहीं बहुत जरूरी है एंड समटाइम्स रियली अ लाइफ सेवर, मतलब आप बहुत प्रॉब्लम में होते
2: हैं। मेरी गाड़ी जो है ना 6 लाइफ पे खराब हो गई, उस टाइम में मेरा फोन ही था, मेरा साथी जो मेरे काम आया, नहीं तो अगर फोन नहीं होता तो मैं क्या करता।
1: बिल्कुल सही,
2: 120 वाले रोड पे गाड़ी खराब होना, उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं,
0: सही बात है, उसी के जरिए फिर आप, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप दूसरों से जुड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, और मैं भी आपको बताऊं फैजल जी, मुझे भी उस मोमेंट, क्योंकि दोनों तरफ अंधेरा और कहीं दूर दूर तक पेट्रोल स्टेशन भी नहीं होगा और मैं कहां पहुंच रही हूं मुझे खुद आइडिया नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं डेफिनेटली कॉल ही करूंगी 999 पे, अगर इन केस मैं यहाँ से सही वापस नहीं निकल पाई तो आई विल स्टॉप माय कार समवेयर और मैं वहाँ से कॉल करूंगी।
0: जाहिर बात है भाई, जब
1: उसके अलावा कोई ऑप्शंस तो
0: ये एक मैसेज
2: नहीं है ना आपके पास, आप किसको, आप किसी को रोक नहीं सकते वहाँ पे, कोई था भी नहीं,
1: कोई नहीं, आप सोच लीजिए ये एरिया इस तरह का मैंने पहली बार देखा था।
0: तो हम इंडिया पाकिस्तान वाले हैं, हमें देख के
2: बात बता दिया, अब आपके साथ जाने
0: नहीं नहीं, अब ये अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया
2: पूरी तैयारी के साथ।
0: अगर नहीं बताती और रात में ये वहाँ किसी को रोक लेती, आदमी भूत चुड़ैल समझ के भाग जाता भाई कि ये क्या हो रहा है, ये अपने यहाँ तो किससे खानी
1: है, वो चलती
2: है।
1: अभी भाई, अभी भाई ने बोला है आप कितने बजे मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, अभी अच्छा हुआ अब नहीं ड्रॉप करूंगी सर मेरे साहब,
0: मैंने क्या कहा ना, अभी
1: नहीं ड्रॉप,
0: ये तो फैजल भाई कह रहे हैं, अरे सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूं,
1: देखा कैसे बदल गया,
0: अरे मैं, अरे लेकिन वो
1: अब नहीं ड्रॉप करूंगी।
0: फैजल भाई बहुत अच्छी बातचीत हमेशा की तरह, और बड़ा मजा आया भाई आपसे बात करके, और बड़ी
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच,
0: हकीकी बातचीत करी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: सच तो नहीं बोला पर चलो,
0: बहुत शुक्रिया फैजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर,
0: भाई कॉलर और गेम भी करना है आज या नहीं, आज हम
1: तो
0: खाली इसी के
1: ऊपर।
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम,
1: आज हम बैठा करें,
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, कौन है हमारे साथ?
3: जी सैयद
0: शोएब,
3: सैयद
0: शोएब, अहलन व सहलन, कैसे हैं शोएब भाई? माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है और हम पे भी अल्लाह ताला की रहमत है कि हम लोग साथ खैरियत के आपसे बातचीत कर रहे हैं भाई। तो शुएब भाई क्या शेयर करना चाहते हैं आज के मुद्दे के हवाले से?
3: अभी जैसे कि बात चल रही है गुम होने की,
0: बात असल में कहीं और से शुरू हुई थी मगर गुम होने पे पहुंच गई, तो वही ठीक है आप कम से कम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं।
1: आप सर्वर भाई,
3: नहीं अभी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सच में, अभी लास्ट वीक का ही है
1: भाई। सच बोलिएगा अगर आप खुद भी गुम हुए हैं, हाँ नहीं उसमें ऐसे फीमेल एंगल मत डालिएगा, हाँ ठीक है, नहीं लोग उसमें फीमेल एंगल डालते हैं।
0: अच्छा,
3: और वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी मुशायरे बेसमेंट 2,
0: ओके
1: ठीक है,
3: और जहाँ पे मैंने पार्क की उसके मैंने फोटो क्लिक कर ली, क्योंकि मुझे पता है
0: मैं भी यूजुअली भाई मैं भी यही करता हूँ, मैं भी करता हूँ।

0: बताओ, मैं तो उसके जगह का बताओ मालूम नहीं था।
1: पता ही नहीं था बस, अन्य तो वो घूमने के इरादे से निकले थे एक्चुअली। वो अब्बास भाई वो उस दिन अकेला महसूस कर रहे थे, किसी दोस्त की तलाश थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई इसी बहाने चलो कतर थोड़ा घूम लेते हैं।
0: हो सकता है उसका बाला था, लेकिन उसका लकशन का पूरा कीगर उसका भैया लेके जा, पता नहीं फिर हाजिर लेके गया कीगर कीगर लेके गया। मैं बोला बाबा इधर थोड़ा दोस्त कोई नहीं।
1: मगर ये कितने प्यारे हैं अब्बास भाई कि उन्होंने बर्दाश्त किया, ये देखिए लेके घूमते रहे। मैंने आपसे सिर्फ एक वक्त की लिफ्ट देने के लिए कहा नाजिया, आपने वो मना कर दिया। यार ये क्या बात हुई,
2: मैंने दी आपको 5 मिनट की लिफ्ट दी, उसके बाद मैंने लिफ्ट दे नो लिफ्ट कर दिया।
0: मालूम है ये लोकेशन कभी कभी मालूम है क्यों, कतर बीच में बन गए रोड में, ये
2: नहीं कभी कभी ऐसी लोकेशन।
0: नाजिया का गलती नहीं, नाजिया का यानी
1: कई नाजिया का गलती नहीं है, नाजिया का दिमाग का गलती है अब्बास भाई। नया नया नहीं था, इधर 7-8 साल गुजार चुका था, उसके बाद उधर गया।
2: नया ड्राइवर तो था, ड्राइवर तो नया था,
0: छोटी थी हवा थी, कभी कभी हवा थी ऐसा जल्दी घबर जाता है।
2: देखो कितना अच्छा आदमी, इतनी बढ़िया बात की अब्बास जी ने, कुछ सीखो सर्वे ऐसे बोलोगे तो मक्खी
1: चली।
0: सही बात है, कल यार आमिर का बहुत मास्टर है आप लोग के
1: लिए, हमने मिस किया, हमने मिस किया। और हमारी तरफ से सभी को मुबारकबाद, जीतने वाली टीम को भी, गर्राफा टीम को भी,
2: राइट
0: गर्राफा टीम। चलो मालूम है, मैंने मालूम है ये किया था, मैं बोला तीन और एक, बात मेरा सही लेकिन एक ज्यादा किया,
1: चार एक ज्यादा किया। हाँ। जबकि देखा जाए तो असद टीम के जो फैन है ना नाजिया, वो अपने आप में भाई क्या फैन है। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी जीता
0: उसका
1: उसको
0: पार्टी बहुत ज्यादा था। सही सर, उसका पार्टी
1: वो है हमेशा से, मैं बचपने से देख रहा हूँ असद का जो फैन है ना भाई, वो तो भाई आला
0: बहुत ज्यादा था मालूम, लेकिन बीच बीच में पूरा निकल गया।
1: क्या बात, क्या बात, आपने एंजॉय किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और आपने बताया कि कोई हमारे साथ जुड़ा जिसने कल मैच एंजॉय किया।
0: मैं 2 टिकट दूसरा आदमी को दे दिया बाद में, और एक 3 आदमी हम लोग गया बाद।
1: चलिए साहब बहुत अच्छी बात कि आपने एंजॉय किया, और आगे भी इसी तरह से एंजॉय कीजिए और दुआएं देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, हमारे साथ जुड़ते रहिए।
0: दुआ करिए इंशाल्लाह, आप लोग इंशाल्लाह
1: सब खैर रहेगी इंशाल्लाह ताला, हमारे कतर पे इसी तरह से रहमतें बरसती रहेंगी और हम सब खुशहाल रहेंगे यहाँ पे, और कतर आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह ताला।
0: इंशाल्लाह आज हवा बहुत चल रही है,
1: हाँ वो इसी मारे नाजिया आज बाहर नहीं जा रही है,
2: मुझे छू भी नहीं सकती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू सो मच,
1: ख्याल रखिए, मासलाम मासलाम।
2: आज हमारा टॉपिक ही सर्वर
1: आज बिल्कुल है। हम आज गेम की जानिब नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पास अभी अपडेट्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं, और यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा
2: देखिए
1: हफ्ते की शुरुआत है तो इसी तरीके से होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और पूरे हफ्ते हमारे साथ कनेक्टेड रहे। हेलो सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
1: भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम भाई।
3: वालेकुम भाई, कैसे
1: है
3: भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ ये तो बताइए।
3: मेरा नाम शाजेद है।
1: शाजेब, शाजेब या जहाजेब?
3: शाजेद,
1: शाजेब
3: जी जी।
1: कैसे हैं शाजेब भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे, आप दोनों कैसे?
1: हम लोग बिल्कुल ठीक है शाजेब भाई। क्या पहली बार बात हो रही है आपसे या काफी दिनों बाद बात हो रही है?
3: नहीं मैं वो सफाम का साथ बात करता हूँ कभी कभार। मेरा नाम, मेरा मुल्क बांग्लादेश है।
2: अच्छा।
1: बांग्लादेश के हैं, सफा मैडम से बात हो रही है, हमसे पहली बार बात हो रही है।
3: जी जी भैया जी, लेकिन फेसबुक पे आपको देखता हूँ, आपका जो रील वगैरह होता है ना 107 का, आपका प्रोग्राम भी सुनता हूँ।
1: अहलन वसहलन, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत नवाजिश शाजिब भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बांग्लादेश में किधर से?
3: बांग्लादेश सिलेट।
1: हाँ सिलेट में किधर से?
2: अब आप इनके घर पहुंचे
3: भी बाजार भाई, आपको सब मालूम है भाई।
2: इन्हें मालूम हो ना हो ये पता पूछ के घर, डाइनिंग टेबल, खाना क्या है, बस पहुंच गए
1: सिलेट में। वो है ना वो अपना मच्छी बाजार से आगे वाला राउंड अबाउट। अरे यार देखो हजरे कुछ समझ गए, बस उधर से ही वो तीसरा वाला जो गली है
3: भाई, ये

0: ये बहुत पुराना हो गया तुम्हारी बातचीत. नानी अपना फोन दे दीजिए मुझे.
1: ये ना भाई आज का जो टॉपिक है ना भाई, मैं बताऊँ. हाँ. ये जो पीछे वाला रमजान है ना.
0: हाँ.
1: फेस्टिवल सिटी में मैं गाड़ी रखा, तो हाँ. मैं गाड़ी रखा, प्राइवेट ड्राइवर हूँ मैं.
0: ओके.
1: गाड़ी रखा भाई 34 Q गेट में. लेकिन मैं मैडम बोला नमाज में चला जाओ, नमाज पढ़ के आ जाओ, तब तक मेरा खलास हो जाएगा. भाई मैं नमाज में गया, फेस्टिवल में एक मस्जिद है, ढूंढ के नमाज में गया. तो मेरा अभी नया लाइसेंस मिला मेरे को, 8-9 महीना हुआ. मेरा घर का पास ही अलकिजा में पास में है. भाई मैं क्या बताऊँ, मैं नमाज में गया, बहुत बिंदास गया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ा, अच्छा करके बस मस्जिद से निकल रहा था. फोन दिया, बोला आओ जल्दी. अभी तो भाई क्या बताऊंगा भाई, एक तो रमजान था भाई, मैं तो पिक्चर भी नहीं खींचा भाई.
0: वापसी का रास्ता भूल गए.
1: वो पिलर का भी मालूम नहीं मेरे को, कौन सा पिलर का पास गाड़ी रखा था. भाई दौड़ते दौड़ते क्या बताऊं भाई, ना जिंदगी खराब हो गया. पूरा 20-25 मिनट ढूंढने का बाद निकला.
0: एक तो खुद गायब और फिर गाड़ी भी गायब और उस पे वेट भी करवा रहे. क्या बात है भाई,
2: क्या बात है भाई,
1: क्या बताऊं भाई. मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई. अभी जब भी मैं जिधर ही जाता हूँ भाई, पहले फोटो खींचता हूँ.
0: फोटो नहीं तो हम तो फोटो के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे यार. शादी भाई
2: आप अपनी फोटो खींचिए और दे दिया कि
0: ये भी हो रहा होगा शायद, क्योंकि मैं सेल्फी खींच.
1: क्या बताऊं, मेरा मेरा अस्थि निकल गया, मेरा जिब्बा बाहर आ गया दौड़ते दौड़ते. एक तो रमजान डूबा था, दूसरा तो गाड़ी नहीं मिल रहा. लेकिन मेरा पास रिमोट है, मैं रिमोट भी मैं क्या कर रहा हूँ. लेकिन
0: हॉर्न बजाने के लिए
1: लाइट नहीं चल रहा. क्या परेशानी बताऊंगा भाई.
0: तो फिर कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे वहां तक, कैसे मिली गाड़ी, कैसे पहुंचे
1: बाद में भाई. बाद में भाई दौड़ते दौड़ते, लेकिन मैं गाड़ी के पास आके 2-3 दफा घूम के गया गाड़ी के पास.
0: मतलब गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी के बराबर में से निकल गए. क्या कहने यार शादी भाई,
2: क्या पहचान है
1: निकला भाई.
0: वाह वाह, ऐसी आदमी ढूंढ रहा था मैं. शादी भाई नंबर देना का क्या है, मुझे ऐसी आदमी की तलाश थी
1: भाई. मैं
2: अपनी गाड़ी भूल गए,
1: पास से निकला भाई,
2: कमाल हो गया.
1: लेकिन क्या बताऊं, जब
0: टाइम शायरी है
1: भाई, क्या बताऊं.
2: आपको पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गए.
0: मैं ढूंढ रहा था ऐसी आदमी,
2: कोई तो मिले, आगे निकल गए.
0: क्या बात है, गाड़ी के पास से 3 बार निकल गए.
1: दो 3 दफा निकला भाई गाड़ी के पास से. क्या बताऊं भाई, मेरा जिंदगी में बहुत बहुत खलास. बस अभी जिधर भी जाता हूँ, पहले
2: मैं फैजल भाई को ढूंढ रही हूँ, जिन्होंने औरतों के लिए एक बहुत प्यारा कमेंट किया था. फैजल भाई निकल के आइए बाहर.
0: ये देखिए आप, एक से एक
2: नुमाया भाई निकल के, और अब देखिए
0: एक से एक नुमाया शख्सियत हमारे साथ है.
2: हो जाता है भाई, हो जाता है.
1: मेरा मेरा क्या हालत हुआ, मैं जानू और मेरा खुदा जाने, अल्लाह
0: जाने.
2: समझ सकते हैं,
0: क्योंकि रोजा था ना, ये भी तो बात है ना. वैसे ही दिमाग सही से आप समझ नहीं है कि उस वक्त परेशान होगा. बहरहाल
2: बहरहाल
0: बहुत बढ़िया भाई, शादी भाई अल्लाह ताला आपको.
1: इतना डरा मैं क्या बताऊ. इधर मैं 20 दफा फोन किया, तुम किधर हो, तुम किधर हो. बाद में जब मैं गाड़ी के पास आया, गाड़ी स्टार्ट किया, मैम बोला मेरे को मालूम है तुम घूम गया था, क्यों नहीं फोटो खींचता है. अभी दोबारा जिधर जाओ पहले फोटो खींचो, इधर भी गाड़ी पार्क करो पहले फोटो खींचो, खींचो मेरा को.
0: हम अगर गाड़ी की फोटो खींचना है ना, अपनी सेल्फी थोड़ी लेनी है. मुझे ऐसी किसी ने कहा फोटो खींचो, मैं तो अपने सेल्फी पाउट वाउट बना के वहां से निकल लिया. मैंने कर ये तो मिल जाएगी, लौटते में देख रहे हैं तो खुद ही अपने आप को देख रहे हैं फोटो में. बहरहाल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा,
2: लेकिन अच्छा
0: आगे के लिए जरा सा ख्याल करिए और इंशाल्लाह फायदा होगा. बहुत
1: बहुत शुक्रिया.
0: अरे एहलन वसहलन, एनी टाइम एनी टाइम.
2: थैंक यू,
0: आप बहुत अच्छे आदमी हैं. आप भूल जाते हैं, पर्स अपना अपने साथ रखिए, इंशाल्लाह जब मुझसे मुलाकात होगा अपना. ओके शादी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू.
0: कह रहे नहीं भाई अभी नहीं करूंगा ऐसा,
2: कह रहे अब मेरी आदत सुधर गई है, अब सुधर चुका हूं, अब नहीं भूलता हूं.
0: नादिया क्या कहती है, एक ब्रेक ले लिया जाए.
2: हालांकि कॉल्स आ रही हैं,
0: कॉल हम ले लेते हैं फिर. आज हम गेम क्योंकि नहीं खेल रहे हैं और आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हफ्ते की शुरुआत ही है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. कौन है हमारे साथ? तलहा भाई.
3: तलाभाई आपकी वजह से ना मैं बदनामियां फेस कर रहा हूँ, आप मुझे भूल जाते हमेशा.
0: अरे नहीं यार तलाभाई, कैसी बातें कर रहे हैं यार. खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आप बदनाम हो. अल्लाह

0: लहर दोमान में रखे क्या हो गया ऐसा?
1: मतलब आप भूले हैं ये बात करेक्ट है?
0: मैं भूला हूँ ये बात करेक्ट?
1: हाँ, इस पे आपने वो एक वो नहीं करा ना कि अल्लाह ना करे मैं भूला नहीं हूँ आपको।
0: नहीं नहीं मैं आपको नहीं भूला हूँ यार, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मगर मैं क्या भूल गया हूँ मैं ये जानना
2: चाहता हूँ। याद भी नहीं है ना सही, भूले नहीं है लेकिन याद नहीं आ रहा सही।
0: अरे यार अब ज्यादा भूला भूला मैं जॉनी रिवर हो जाऊंगा, भूला राजिया आप मुश्किल में आ
1: जाएंगे।
2: मेरे लिए तो ये कि आप भूले हम झूठे।
0: तो हुआ अच्छा तला भाई क्या हो गया ऐसा ये तो बताइए, हम तो यहाँ गाड़ी ढूंढते फिर रहे
1: हैं। आपसे जब भी मेरी बात हुई ना संजीदा टॉपिक पे, आज बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैंने कहा अपने मैं ना इमेज सही करूं।
0: नहीं तो संजीदा को हम कहीं भी छोड़ सकते थे, जरूरत क्या थी संजीदा को साथ में लाने की?
1: भाई मसला ये है ना मेरी इमेज खराब हो रही ना, अब मैं सुबह के समय बात करता हूँ कबीर से ना।
0: अच्छा
1: संजीदा बात होती नहीं है कभी भी, ठीक है? अब शाम में दोपहर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो संजीदा टॉपिक हो रहा, सुबह वाले करेंगे रात दोपहर में बात कर रहा, नाम सेम है लेकिन बंदा
0: हरकतें क्यों अलग है?
1: यार कसम खुदा की सुबह वाले मुझे बोल रहे हैं इस मुंह पे ये बातें थू के नहीं कर रही।
0: नहीं अच्छा ये बताइए कभी ऐसा कुछ हुआ था भाई वैसे ये भूलने भुलाने के ऊपर गाड़ी और
1: अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हूँ भाई मैं, क्या बात कर दिया करोगे आपको छोड़ दूंगा मैं कभी, हो सकता है ऐसा?
2: आप एक बार वो कह रहे हैं आप एक बार भूले मैं 100 बार,
0: कोई ऐसा किस्सा सुनाने वाला थला भाई?
1: भाई ये देखो कॉमन है ना, पार्किंग हो गया ये हो गया सारी चीजें ना भाई,
2: कुछ नया है? मैं
1: हाँ हाँ बिल्कुल नया है। आपका भाई जो है पार्किंग में बाइक खड़ी, पाकिस्तान से उन्होंने कराची से ना मैंने बाइक खड़ी करी, फार्मेसी पे गया चीजें नहीं, वापस आया दूसरी बाइक पे बैठा, गाड़ी में वो चाबी लगी हुई थी, मैं स्टार्ट करके
0: क्या शेर सुनाया, तालियां क्या बात है,
2: आपने कमाल ही कर दी,
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत पसंद आई
2: मेरे खाली का हिट रहा
0: हमें बहुत पसंद बिल्कुल
1: और वो मोहल्ले में ही था, वो लग ऐसा कि वो फार्मेसी वाला जानता सारा भाई, 15-20 मिनट बाद मैं आया घर पे ठंड प्रोग्राम में बैठा हुआ, कॉल आई मुझे साला भाई कहाँ है आप, मैंने कहा घर पर, कहला यार वो बैटरी चुराने का काम कब से शुरू कर दिया, मैंने क्या मतलब, अरे भाई बाहर आओ जरा घर के, मैं घर के बाहर आया वो बेचारे मेरी बाइक धकेल के लेकर आया पैदल पैदल।
0: नहीं तो मेरे ख्याल में सिमिलर होंगी एकदम देखने में एक ही कंपनी की, और
1: बिल्कुल सिमिलर
0: ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी गलती हुई है तो
1: चाबी भी लगाई हुई ना,
0: क्या
1: तो मैंने कहा ये तो सीन हो गया मेरे साथ, चलना भाई कंप्लेन करने वाला था, मैंने बोला जानने वाला बंदा है तो बचत हो गई। ओह माय गॉड
0: क्या बात है भाई, यही एक किस्सा रह गया था आज के टॉपिक में झुंडने से, वो तला भाई ने पूरा कर दिया एक तरीके से।
1: बाकी सलवा पे जो वो नहीं है बुलबुले या बनी हुई ओवरहेड ब्रिजेस की और ये
0: जी जी
1: जी माशाल्लाह,
0: वो तो भाई
1: जो जब भी जाता है
0: नहीं कोई भी हो
1: तो एक दो सिग्नल बार
0: मैं भी उनमें से वो तो भूल जाओ,
2: तो बस आपने मुझे काम का ही बोल रहे हैं।
0: नहीं वो जगह आपके जाने के लिए है भी नहीं नाजिया, खुदा ना खास्ता मत चली जाइए,
2: मैं तो गई हूं,
0: मतलब दूसरा मसला हो जाएगा, आप कम से कम 100-150 साल बाद मिलेंगी, पब्लिक कहेगी
2: बात तो ये भी गुस्सा हुआ है मेरे से बताने का नहीं है ना,
1: नहीं नाजिया मैं आपको बताऊं ना आप नहीं जाइएगा उधर,
0: हां मैं भी
1: रोड पे आप नहीं जाइएगा,
2: अरे पहुंच गए
1: वो सांप सीढ़ी वाले सांप है ना वो एक दो सांप काट लेंगे आपको वहां पे, हां 99 से गिरोगे
0: 99 पे सीधा नीचे।
2: अरे मैं पहुंची हूँ वहां भी पहुंची हूँ और एक छोटा किस्सा हुआ है वहां पे, वो बस बताने का नहीं है।
0: अच्छा
2: कौन से कट में पहुंची
0: हम समझ सकते हैं,
1: आपसे जो है ना सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप सरोवर भाई के साथ शो कर रही हैं।
0: आप जब ये बर्दाश्त कर सकती है तो आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है,
1: खिलाड़ी है आप तीनों को दिखाने वाली बननी है,
0: कह रही हूँ खतरों की खिलाड़ी है वाकई। चला भाई यार मुझे इतना क्यों खतरनाक करार दे रहे हो यार, मुझे क्यों इतना खतरनाक करार दे रहे हो
1: यार, मेरी
2: कॉपी पेस्ट मेरा खुद ही हाल हो गया,
1: खुदा
2: इनके चक्कर
1: लोग कह रहे हैं सरवर भाई के शो में भाई तू इतना संजीदा दिख रहा है, सुबह में तेरी बात अलग दिख रही है, क्या चल रहा है ये?
2: यही मुझे लोग कह रहे हैं कि आप एम्बेसडर्स के इंटरव्यू कर रही हैं, एक तो बिजनेसमैन के इंटरव्यू कर रही है, इधर सरवर के साथ हैं हम, ये क्या चल क्या रहा है?
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफों के पुल बांधने के लिए, आप दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: अब देखो ना नाजिया देख लो ना भाई, वो भी दोहरी शक्ति जी रही है ना भाई।

0: तुम, अरे भाई उसकी तो जेंडर बदल गया तुमने और इससे ज्यादा ख्याल हो गया। और
1: बिल्कुल सही तला भाई, बहुत
2: बहुत
1: शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच।
1: बड़ी अच्छी बातें तला की यार, तला भाई जुड़ते रहा करिए साथ में, खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
0: आप बिजी लोग हैं, कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है।
1: अरे नहीं सर, अहलन बस अहलन, एनी टाइम फॉर यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू
2: सो फार द बेस्ट कॉल, बहुत ही अच्छी कॉल, थैंक यू सो मच। क्या अल्टीमेट बोला है,
1: क्या बात है, क्या कहती हैं,
2: ये मेरे दिल की बात है, दिल की गहराई
1: निकाल कर रही हूँ,
2: सामने रख दी। वाह
1: तो अभी इसी के साथ एक ब्रेक ले, अच्छा हाँ अच्छा
2: कॉलर साहब हमारे साथ,
1: चलिए साहब
2: एक कॉल ले लेते हैं, देन वी विल गो फॉर अ ब्रेक, ठीक है।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
1: अस्सलाम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
3: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. بس آج کے لیے
1: اتنا ہی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں. دل دکھا ہے پر ٹوٹا تو نہیں ہے اور امید کا دامن
2: چھوٹا تو نہیں ہے.
1: بہت دور سے بات کر رہے ہیں. پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟
2: पिक्चर ले रहे हैं पार्किंग की।
1: थोड़ा करीब आइए, पास आइए हमारे,
3: ज्यादा करीब आ जाएंगे तो गाड़ी ज्यादा दूर चली
1: गाड़ी ज्यादा दूर चली जाएगी
2: नहीं ज्यादा करीब आइए ना, निकल जाए।
1: अच्छा कौन है हमारे साथ, ये तो नाम तो बता दिए अपना।
3: अहमद सरफराज।
1: अहमद सरफराज भाई, अहलन वसहलन, कैसे हैं सरफराज भाई?
3: जी सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अल्लाह का करम है, आपका बद्दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज बहुत दूर से आ रही है सरफराज भाई, और हल्की भी आ रही है, अगर किसी तरह मुमकिन हो फोन से डायरेक्ट बात करना, इफ पॉसिबल।
3: बिल्कुल कर ही देते हैं
1: दे ये बात, अब हुआ ये तो बादल गरजने लगे उधर,
3: बादल गरजेंगे ना जब आप बोलेंगे तो, बादल क्या बरसेंगे।
1: वाह वाह क्या शेर सुनाया भाई, वाह।
3: पार्किंग से याद आया था कि पार्किंग जो है ना, अभी कुछ एरिया के जो है, या कतारा मॉल है, मुशरिफ डाउन टाउन है, वेंडर है, ये सब जो पार्किंग है ना, जो B1 B2 बी से ऐसा दिखता है, आदमी कभी कभी जो फर्स्ट में जा रहा है वो दिखता नहीं, बस पार्किंग कर दे रहे हैं चले जा रहे हैं, बात बात है तो पता चल रहा यार, मेरे इधर ही पार्किंग किया था, B3 में आदमी B1 में खोज रहा है, तो ये सब चीज थोड़ा सा ख्याल रखना। देखें कि एक दो बार हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन हमको तो अंदाजा था एक भी नहीं होगा तो दूसरा पर तो होगा ही, और जो भाई साहब बोल रहे थे इतना टाइम लगा, दो बार तीन बार घूमना, उतना तो नहीं घूमना पड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ी, तो भाई पार्किंग किए थे तो कहाँ किए थे, B1 में या 2 में या 3 में। प्रॉब्लम एक ये भी होता है ना, आप जा रहे हैं एक अलग लिफ्ट से और मस्ती में घूम रहे, फोटो वगैरह ले ले रहे, आने के टाइम दूसरे लिफ्ट से आ रहे, बस
1: हाँ वही ढूंढ रहा तो मुश्किल, वो लिफ्ट का एक तो, अब लिफ्ट का अब मैंने तो शुरू किया है ये कि मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, शॉर्ट वीडियो कि भाई देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी है, ये रहा पोल, यहाँ से चले और इस वाली लिफ्ट में दाखिल हुए, और लिफ्ट से जब बाहर निकले तो वहां जाके वीडियो रोकता हूँ, तो फिर आराम रहता है पब्लिक को समझाने दिखाने में, वरना तो अपनी बात ही समझाते रहो 15-20 मिनट।
3: ताकत लगाइए, नंबर होता है वहाँ पे, बस एक ही नंबर होता है वो याद करना है।
1: अरे लिफ्ट का भी तो नंबर याद करना है,
3: पार्किंग नंबर, गाड़ी के पार्किंग नंबर किस में कर रहे वो, और लिफ्ट, बस
1: आप याद करने की बात कर रहे हैं, हमारे फोटो नहीं काम कर रहे हैं जितने हमने खींचे,
3: अल्लाह खैर करे, फिर
1: कभी कभार तो किसी और जगह के फोटो दिखा रहे होते हैं, भैया ये वाली पार्किंग देखिए कहीं हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई जान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया।
2: जैसे आई थिंक सरफराज जी ने हमें बताया ना सर्वर, तो मुझे याद आ गया कि ये भी एक किस्सा हुआ है इसी मॉल का।
1: अच्छा
2: सेल में जो है, अब नाम तो हम लोग क्या ले, उस मॉल में मैं और इंतखाब भाई हम लोग गए थे कि इवेंट कवर करने, शॉप करते,
1: आप बहुत बड़े आदमी के साथ चली गई इसलिए तो याद नहीं, आपको याद नहीं रहा,
2: से देखते थे हम पहुंच गए,
1: इंतखाब भाई तो पता नंबर एक,
2: नहीं
1: अगर कुछ याद
2: भाई का इसमें बेचारे का कोई कसूर नहीं, वो मेरे साथ बेचारे उन्होंने अच्छा खासा झेला,
1: नहीं एक्चुअली आप दोनों बेचारे एक साथ थे उस दिन, मैं बता दूं आपको, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं,
2: हम दोनों वाकई बेचारे थे, तीसरे बेचारे जुड़े हसन भाई,
1: वाह
2: बाद में जुड़े, अब मैं अपनी कार से इंतखाब भाई और मैं
1: सभी लिसनर्स को बता दूं कि हमारे डीओपी इंतखाब भाई और हमारे मीडिया वाले जो हैं यहाँ पर

0: फैन वो भी है हसन,
1: बिल्कुल उनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर।
0: हाँ, तो एग्जैक्टली हम लोगों को वहाँ पे एक इवेंट शॉप कतर जो था वो कवर करना था। अब क्योंकि बहुत तेज लास्ट मिनट रश हस करते हुए हम लोग पहुंचे कि कहीं निकल ना आ जाए, कहीं स्टार्ट ना हो जाए ओपनिंग और वो मिस नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट, तो मैंने तेजी से गाड़ी अपनी खड़ाक से पार्क की जहां भी, और बस हम पूरा सारा सामान वामान लेकर वेन्यू पे पहुंचे। हम दोनों लोगों ने इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि इतना बड़ा ये मॉल है, इतनी ह्यूज पार्किंग है, और हम कहां से एंट्री हमने ली और क्या
1: कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं,
0: कोई आइडिया नहीं
1: किसके पास जा रहे हैं।
0: ये तो था वेन्यू, घूम घाम के भाई वेन्यू पहुंचे। एंड द वर्स्ट थिंग इज मैं हील्स पहने हुए थे, जो लौटते लौटते मैंने दोनों अपने हाथों पकड़ के नंगे पैर,
1: जरूरी भी था
0: मतलब जो हालत हो गई थी मेरी, फिर धीरे धीरे सामान मेरे निकलने से घड़ी उतरी। मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई ढूंढते ढूंढते, हम लोगों ने जब इवेंट कवर कर लिया पूरे एक दो घंटे के बाद, अब हमारा असली चैलेंज शुरू हुआ कि गाड़ी कहाँ पार्क हुई है।
1: वाह वाह वाह, याद ही नहीं या, ये बहुत खतरनाक,
0: भाई को याद ना मुझे याद,
1: बहुत
0: हम दोनों लोगों
1: इससे बड़ी चीज उस वक्त, इससे बड़ा चैलेंज लाइफ में कोई होता ही नहीं।
0: एंड यू वोंट बिलीव हमारे पास कितने इक्विपमेंट्स, कैमरे तो लाइट तो सारी चीजें वो सब कैरी कर रहे हैं, सामान इतना
1: लिए हुए फिर रहे हैं
0: और आराम से भैया।
1: भाई देखिए एक बार फिर दोबारा मिस नादिया ने साबित किया जो हकीकत,
0: इसमें मैंने बहुत अकल लगाई।
1: अच्छा,
0: इसमें मैंने कहा कि लेट्स गो बाय टैक्सी,
1: और कल आएंगे,
0: कल आएंगे सुबह।
1: बहुत अच्छी अकल लगाई, बहुत अच्छी लगाई,
0: अच्छी अकल लगा के, क्योंकि रात थी, हम क्यों अपना टाइम इतना वेस्ट करते। हम लोग भाई टैक्सी से वापस आए ऑफिस, अब घर भी टैक्सी से अपने गए, फिर सुबह जाके फ्रेश माइंड से गाड़ी ढूंढने का हो
1: क्या कहने। भाई देखिए

0: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
1: कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
0: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
3: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद RJ सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
4: इट्स द आफ्टरनून एक्सप्रेस।
2: हाला हाला, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागत है। बिल्कुल आफ्टरनून एक्सप्रेस इस वक्त चल रही है जोरों शोरों पे, जहां सरवर और नाजिया आपके साथ हैं। तो भाई, आज हमने खूब सारी बातचीत करी, टॉपिक शुरू किया और बातचीत होती चली गई, यहां तक कि आज हमने गेम भी नहीं खेल पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात हो पाए। अब यहां पर कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं, उसके बाद एक अपडेट, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। और यहां पर हमारे साथ हैं, कौन है, नाम क्या है, मानव है हमारे साथ, और मानव ने भी वॉइस नोट के जरिए अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है कि किस तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। नाजिया और सरवर, कैसे हैं आप दोनों? होपेल, और विश करते हैं संडे मॉर्निंग, और कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड पूछते हैं।
5: अमेजिंग, बहुत अच्छा रहा।
2: मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी है अगर सही करें तो, जैसे कि रास्ते जानने के लिए जो हम जिस पे बात कर ही रहे हैं कि कैसे हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं बैंकिंग एप्स तो मेरे लिए बहुत कारामंद साबित हुई हैं,

0: ट्रांसफर है?
1: यहीं बैठे बैठे मैं अपने घर इंडिया पैसे वगैरह भी बेच सकता हूँ और विद इन मिनट्स ये काम हो जाते हैं। नहीं तो पहले एक्सचेंज सेंटर वगैरह बैंक जाके काम ये सब करने पड़ते थे, बहुत सारा वक्त स्पेंड हो जाता था। तो यूसुफ भाई ने ये अच्छा समय से शेयर किया है। ओके बढ़ते हैं आगे। गुड आफ्टरनून सरवर जी एंड नाजिया मैम, कौन है हमारे साथ? अब्दुल रहमान है फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर हमें दुआ भी भेजी है। बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: अच्छा क्या लिखा है, मैं जरा, नूर मोहम्मद मंसूर है हमारे साथ, चट्टान मोड़ देते हैं। अच्छा हवा का रुख होता होगा, हवा का रुख चट्टान मोड़ देती है, भरोसा अपने पे रखें क्योंकि, अच्छा हवा तो सिर्फ पतंग उड़ाती है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ा टाइपिंग में कुछ उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एनी आओ, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। गुलफाम खान हमारे साथ हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: ओके यहाँ पर कहते हैं, कबीर भाई और नाजिया मैम, आजकल आप लोगों को खोजना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं चलता आप लोग कितने बजे शो करते हैं, कभी शाम को कभी सुबह, मैं कभी दोपहर में, कोई बात नहीं, जो आप लोगों से प्यार करते हैं आप लोगों को शौक को खोज ही लेते हैं। क्या बात है, ये असल में हिंदी में था मैसेज तो इसलिए थोड़ा सा हिज्जे करनी पड़ी मुझे। कौन है यहाँ पर? फैयाज साहब हैं।
0: थैंक यू
1: फैयाज आलम भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कबीर से मिला दिया, मेरा दिन बना दिया आपने। तौफीक भाई हैं, नाजिया जी और सरवर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
0: मोहम्मद तौफीक,
1: सुमी जी हमारे साथ जुड़ गए, अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। हैप्पी मदर्स डे, क्या कुछ ऐसा है? ओहो हमने विश नहीं किया अभी तक। नाजिया जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी मदर्स डे, और मुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर नाजिया जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन है? मोहम्मद मुशीर खान साहब हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर भाई, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम बहन जी एंड भाई साहब, वेरी नाइस प्रोग्राम बहन जी, बेस्ट शो। रफत भाई हमारे साथ,
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक
1: यू जावेद भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी और सर भाई, माशाल्लाह बेहतरीन शो एज ऑलवेज, खुश रहें आबाद रहें, आमीन। नाम तो सुना होगा जेबी जावेद बाजवा, क्या
0: जी,
1: बात
0: जी,
1: है भाई।
0: और आज आपसे हमारी वैसे बात नहीं हो पाई, चलिए खैर इंशाल्लाह जब आपको टाइम मिले जरूर जुड़िएगा।
1: कॉल भी थी हमें इस वाले नंबर पे और ये कुछ मैसेजेस यहाँ पर। अब एक जरूरी मालूमात,
0: हाँ जी, एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, और ये अपडेट है कतर रेल के हवाले से। जी हाँ, कतर रेल ने ऐलान किया है कि दोहा मेट्रो ने अपने आगाज से लेकर अब तक 7 सालों के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 292 मिलियन मुसाफिरों के सफर को आसान बनाया है। क्या बात है भाई। जी हाँ, कंपनी ने अपने 7वीं सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया पर कहा है कि मेट्रो नेटवर्क में 37 स्टेशंस कायम किए गए हैं जो मुल्क के अहम मकामात को सर्व करते हैं और इंडिविजुअल मोबिलिटी के लिए एक मौसर सॉल्यूशन फराहम करते हैं। आपको बताएं कि मेट्रो ने रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और अवेलेबिलिटी के हवाले से एवरेज 99.83% परफॉर्मेंस हासिल की है, जबकि अवाम की एतमाद पर शुक्रिया अदा भी किया है। इसके साथ साथ नेटवर्क ने 0.013% का बहुत कम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट रिकॉर्ड किया है, जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को 99.9% तक पहुंचा चुका है, जो मुसलसल ऊंचाई पर बरकरार है। आपको बताएं कि मेट्रो नेटवर्क को मजीद बेहतर बनाने के लिए 10 मेट्रो एक्सप्रेस और 70 मेट्रो लिंक रूट्स का सिस्टम भी फराहम किया गया है, जिसकी एक्सेसिबिलिटी को भी वाजे किया गया है। इसके साथ दोहा मेट्रो मुल्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन चुका है, और खासकर अगर कोई बड़ा इवेंट हो या कोई और कोई बड़ी गैदरिंग हो या किसी और तरह का कोई स्पेशल डेज होते हैं, तो उस दौरान एक पसंदीदा ट्रैवलिंग ऑप्शन भी साबित हुआ है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट मतलब इवेंट्स पे या फिर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उस पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं दोहा मेट्रो पर। सो देखिए लोगों का प्यार एंड यू नो जिस तरह का 7 सालों का सफ़र कतर रेल का, इज़ ट्रूली अमेजिंग, और कितनी अच्छी बड़ी बात है कि हर जगह अब अवेलेबल है, और कितनी आसानी से अब तो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, एंड हैट्स ऑफ टू कतर गवर्नमेंट। बिल्कुल
1: भाई बहुत अच्छे, और यही इसी दुआ के साथ हम यही कहेंगे कि भाई कतर हमारा आगे बढ़ता चले जाए और उस तरीके की चीजें मजीद हमारे लिए फराहम होती चली जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम
0: रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो सुमी की आवाज है। तो यू टू हैप्पी मदर्स डे टू यू टू। कैसी हैं आप सुमी?
1: असल में मदर्स डे होते भी तो तीन चार हैं अब साल के अंदर, तो अब ये कौन सा वाला है ये नहीं मालूम। जो वो
0: वुमेन्स डे था?
1: नहीं नहीं वाकई बता रहा हूँ मैं, आप यकीन जानिए।
0: ये हमारी तरफ वाला
2: इंटरनेशनल कौन सा वाला आप बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, काफी सारे होने लगे हैं ना,
0: रीजनल नेशनल इंटरनेशनल फिर सोसाइटल।
1: नहीं तो ये कौन सा वाला है
0: हम क्यों बताएं, आपको खुद पता होना
1: अच्छा,
0: चाहिए ना?
1: समझ गया,
2: आपको पता होना चाहिए ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया सुमित। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप, खैरियत से?
2: सुमित
1: जी हम लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वीकेंड भी अच्छा गया, उम्मीद करते हैं कि आपका भी वीकेंड अच्छा गया हो। सुमित जी आज हमने बात करी मोबाइल के हवाले से पहले तो, और उसके बाद जो हम भूल जाते हैं भटक जाते हैं पार्किंग के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? मोबाइल ने कभी आपकी ऐसी

0: वो टेरिस पे जो पार्किंग अगर वहाँ करी हो करे ना भी आपने, वो तो ऐसा लगता है कि नैनीताल की वादियों में आ गए, वो ऐसा स्लो पे अल्लाह। और अगर कोई सिद्रा गया हो तो सिद्रा की पार्किंग,
1: सिद्रा की पार्किंग इज इजी सुमी जी मेरे। अच्छा आपको मुश्किल लगी वहाँ पे?
0: मुझे, मैं डीएफसी गई ना तो मुझे एक्चुअली आईकिया जाना था, तो मैं ना वो पार्किंग ढूंढ रही थी जो जस्ट बिल्कुल आईकिया के फ्रंट में। अब मुझे ना मैप ले गया ऊपर घुमाते हुए, नैनीताल की चोटी को करवा दिया उन्होंने बिल्कुल जो टेरिस वाली है। मैंने कहा अल्लाह मैं कहाँ गई, मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, मुझे यकीन नहीं हुआ।
1: भाई वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या
2: चलिए सभी के इंसिडेंट्स हुए, बट थैंक यू, ग्लैड दैट आपने टाइम निकाला और आपने हमारे साथ शेयर किया।
1: पीछे से आवाजें आ रही है भाई, आपको बहुत मुबारक हो मदर्स डे, और बहुत बहुत शुक्रिया सुमी जी, आप वक्त हुआ जाता है, आज कॉल थोड़ी लेट हो गई आपकी, तो इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा आपसे बातचीत होगी। छोटा ही
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू क्यूटी, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच सुमी, एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड कि कल आपसे हमारी जरूर बात होगी, आपके बेटे से भी बात होगी, बेटा है बेटी? बेटी है, बेटी से इंशाल्लाह जरूर बात होगी।
0: मैं आपको टाइम दे रही हूँ, लेकिन वो क्या होता है ना मदर्स डे जब बच्चों को पता चलता है ना तो वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मेरी बेटी ने आज मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मम्मा अगर आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना तो भाई को आप लेके किसी भी फन मिला नहीं जाओगे, आप मुझे तक लेके जाओ, तो ये ब्लैकमेल ना पाओ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
2: और मुझे लगता है कि आपको लेके जाना चाहिए था पूरी फैमिली को, आज मॉम्स डे है तो आपको स्पेशल फील कराना चाहिए। चलिए खैर ये भी आपके लिए स्पेशल ही है, बच्चे जो कह दें तो मदर्स की खुशी तो बच्चों की खुशी में है, सो आई होप आप अच्छे से एंजॉय करेंगी, एंजॉय विद योर फैमिली। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखिए, ओके अल्लाह हाफिज।
1: तो भाई इसी के साथ वक्त हो गया कि हम आज आपसे इजाजत ले लेते हैं, आज वक्त पता ही नहीं चला बातों में, और कोशिश करी कि सबको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए बातचीत करने का। फिलहाल इंशाल्लाह अब कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए एफएम 107
2: दिल से देसी। Excuse me. अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
3: उसके लिए तो
2: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
3: वैसे वो तो देखो,
2: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
3: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी एफएम 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 आरजे फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
4: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
5: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
4: ओनली ऑन एफएम 107।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@

0: हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी नोटिस किया है जब तक हेल्थ ठीक होती है ना हम उसे काफी लाइटली लेते हैं जैसे वो हमेशा साथ रहेगी और जैसे ही बॉडी या माइंड थोड़ा सिग्नल देता है तब अचानक याद आता है ओ सेहत भी एक चीज होती है सच तो ये है कि आपकी हेल्थ सही में काफी ज्यादा मैटर करती है जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन इसको प्रायोरिटी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जब सब कुछ ऑलरेडी बिगड़ चुका होता है तब हम इसे प्रायोरिटी पे लाते हैं जैसे पहले शायद हम कभी अच्छा खाना नहीं खाएंगे जंक फूड की तरफ आकर्षित रहेंगे बट जैसे ही हमारी हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है वैसे ही हम स्विच करते हैं टू डाइटिंग हेल्दी ईटिंग जो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल होना चाहिए हम काम के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं डेडलाइंस मीट कर लेते हैं पर जब बात खुद पे आती है तब हम कहते हैं ये पार्क की वॉक ना कल से स्टार्ट करूंगा जिम अगले महीने से पक्का करता हूं हेल्थ बाद में पर ये हेल्थ बाद में वाला टॉपिक नहीं है सेहत वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी जिंदगी खड़ी होती है आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो अगर रात को चैन की नींद आपको नहीं आ रही है गड़बड़ लग रही है पेट में दिल की धड़कनें बढ़ रही है दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं आप भले कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखो लाइफ में कितने ही ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना रहो सक्सेस हमेशा अधूरी लगेगी अगर आपका बॉडी आपके साथ नहीं है तो और हेल्थ सिर्फ बीमारी का नाम नहीं होना नहीं होता है वो एक एहसास होता है जब सुबह उठकर आपको लगता है कि आज का दिन बढ़िया अच्छा जाने वाला है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हेल्थ वो इत्मीनान है जब दिल और दिमाग दोनों थोड़ा सा साथ दे रहे हो रिसर्च ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस पुअर स्लीप और सेल्फ निग्लेक्ट बॉडी को खामोशी से अफेक्ट करते हैं कोई लाउड अलार्म नहीं बजता बस धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है पेशेंस घटते जाता है आप ज्यादा चिड़चिड़ा जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो काफी नॉर्मल है सभी तो ऐसे जीते हैं पर सच तो ये है कि ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं ये एक एग्जॉस्टेड लाइफ है अपनी हेल्थ को इग्नोर करना डेडिकेशन ना होना तो थोड़ी मेहरबानी खुद पे कीजिए और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए और जब आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो ना तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं आपके पेरेंट्स हो आपका पार्टनर हो आपके फ्रेंड्स हो इनफैक्ट प्रोफेशनली भी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं टू बी अ बेटर ह्यूमन इसलिए याद रखिए हेल्थ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है हेल्थ वो बेस है जिसके बिना बाकी सब शेकी हो जाता है तो आज सिर्फ इतना याद रखिए काम इम्पोर्टेंट है लोग इम्पोर्टेंट है सपने इम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी सेहत उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप ठीक होते हो तभी जिंदगी ठीक लगती है और हाँ योर हेल्थ ट्रूली मैटर
2: योर हेल्थ मैटर योर हेल्थ मैटर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

one of the star cricketers, Shaheen Shah Afridi ke baare mein. Shaheen Shah Afridi Pakistan cricket ka ek chamakta hua sitara hai dosto, jo apni tez raftar bowling aur deadly swing ki wajah se duniya bhar ke batsman ke liye khauf ki alamat ban chuka hai. Left arm fast bowler hone ki wajah se unka angle aur variation unhe aur bhi khatarnak banata hai. Shaheen Shah Afridi ne bahut kam umr mein international cricket mein apni pehchan banayi. Unki sabse yaadgar performance Men's T20 World Cup 2021 mein India ke khilaf match thi, jahan unhone Rohit Sharma aur KL Rahul jaise top batsmen ko early overs mein out karke match ka rukh badal diya tha. Unki yorkers, bouncers aur new ball swing unhe ek complete fast bowler banati hai. Sirf bowling hi nahi dosto, Shaheen ne batting mein bhi important contributions diye hain jab team ko zarurat padi. Aaj ke daur mein wo Pakistan National Cricket Team ke bowling attack ka spearhead hain aur un par team ki bahut badi zimmedari hoti hai. Injuries ke bawajood unhone comeback karke apni strength aur determination ka saboot diya hai. दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा नाम है जो जुनून, टैलेंट और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. उनका फ्यूचर रोशन है और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी उम्मीद है. उम्मीद है कि आपको आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकील अहमद को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस क्यों जरूरी हैं और क्यों नहीं। देखिए, रिश्ते सिर्फ नाम से तो नहीं चलते, उन्हें चलाने के लिए समझ, एफर्ट्स और एक्सपेक्टेशंस का भी होना जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस को अक्सर

0: सिर्फ इतना होता है कि या तो वो हेल्दी होते हैं या फिर अनक्लियर रहकर रिश्तों को हैवी बनाते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस का मतलब डिमांड नहीं है, एक्सपेक्टेशंस का मतलब असल में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। एक रिश्ते में किस तरह से आप बंधे हैं, किस तरह से आप फील करना चाहते हैं और दूसरे से किस लेवल की प्रेजेंस, ऑनेस्टी या एफर्ट्स की उम्मीद करते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही ना हो तो रिश्ता कंफ्यूजन और इम्बैलेंस का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि फिर कोई नहीं जानता कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ तक है। रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस इसलिए जरूरी होती है क्योंकि यही बाउंड्रीज सेट करती हैं। जब आप क्लियर होते हैं कि आपको रिस्पेक्ट, टाइम या फिर इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए, तो आप दूसरों को भी एक रोड मैप दे रहे होते हैं। बिना एक्सपेक्टेशंस के रिश्ता अक्सर एक तरफ से ज्यादा लोड उठाने लगता है और ये लोड, इमोशनल लोड, प्लानिंग का, समझने का और एडजस्टमेंट का होता है। सब एक ही इंसान पर आ जाता है और इसी बात को मेंटल और इमोशनल लोड कहते हैं, जो अक्सर नोटिस ही नहीं होता लेकिन रिश्ता धीरे धीरे थका देता है। देखिए, हेल्दी एक्सपेक्टेशंस का एक और फायदा ये है कि वो डिसअपॉइंटमेंट को कम करती है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं होते कि कोई बुरा है, बल्कि इसलिए कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो अनक्लियर है। मुझे लगा तुम समझ जाओगी, ये मुझे लगा या ऑब्वियस था, जैसे जुमले वहां से निकलने शुरू होते हैं। एक्सपेक्टेशन कभी क्लियरली बात ही नहीं करने देती। जब एक्सपेक्टेशंस पहले से ज्यादा खराब हो जाए, कम्युनिकेशन के रास्ते कम हो जाए, तो गिला शिकवा कम और समझ बूझ भी इंसान की कम होने लगती है। एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को इक्वल भी बनाते हैं। जब दोनों लोग जानते हैं कि एफर्ट सिर्फ एक तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो बैलेंस क्रिएट होता है। वरना अक्सर एक पार्टनर मैनेज करता रहता है और दूसरा सिर्फ एक्सिट। देखिए, टाइम के साथ ये गैप रिसेंटमेंट में भी बदल जाते हैं। एक्सपेक्टेशन इसी रिसेंटमेंट को रोकता भी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनविजिबल नहीं रहने देता। लेकिन ये भी जरूरी है कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो। दूसरों को परफेक्ट रोल में फिट करना एक्सपेक्टेशन नहीं, प्रेशर है। हेल्दी एक्सपेक्टेशन वो होती है जो कन्वर्सेशन से निकलती है और कंपैरिजन से नहीं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्सपेक्टेशन स्टैटिक नहीं होती। जिंदगी के साथ, फेजेस के साथ एक्सपेक्टेशन भी इवॉल्व हो जाती है। जो चीज पहले जरूरी थी शायद बाद में ना हो, और जो पहले इग्नोर की गई थी वो बाद में एसेंशियल बन जाए। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस पर बात चलती रहनी चाहिए, बिना शिकवा, बिना किसी ब्लेम के। दोस्तों, रिश्ते जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस से टूटते नहीं हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब एक्सपेक्टेशंस छुप जाती हैं। जब हम क्लियरली नहीं बताते कि हमें क्या चाहिए, तब हम अनजाने में दूसरे को फेल होने का भी मौका देते हैं। हेल्दी एक्सपेक्टेशंस रिश्तों पर बोझ नहीं होती, बल्कि सहारा होती है। वो बताती है कि तुम यहाँ इम्पोर्टेंट हो और मैं भी। जब एक्सपेक्टेशंस रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन के साथ जुड़ती हैं, तो रिश्ता सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि ग्रो करने की जगह बनाता है। बस याद रखिए कि अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस हर हाल में देनी है, और उसके लिए शुरुआत आपसे होगी। सामने वाले से के लिए उम्मीद रखना शायद काफी ना हो। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time check.
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 1:31 और सफा और सुपर सफा और
4: ए फॉर अमिता आ चुकी है आपके लिए लेकर।
2: आप सुन रहे हैं
5: द सुपर किड शो।

सो यस सुपर किड्स, क्या हाल चाल है भाई? हफ्ता शुरू हो चुका है तो हमारे नन्हे मुन्ने लेजेंड्स, हमारे सुपर जीनियस

0: कहाँ हैं आप लोग?
1: तो भाई मेरा मसला ये कि मेरा अभी तक हफ्ता शुरू है, मैं अभी तक उसी उसी बबल गम की तरह जैसे पाँव में बबल गम चिपक जाती है ना,
0: हमने अपना वीकेंड ना फुल ऑन एंजॉय किया है सोकर. आपने क्या किया है ये तो बता दो जरा, जल्दी जल्दी हमें कॉल कर लो 4434377 पर 4434377.
1: अच्छा इनकी एज भी कितनी मस्त है ना. ये जो हमारे जो बचपन के दिन होते हैं ना,
0: राइट,
1: इनमें नींद हमारे पीछे भागती है, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो हम नींद के पीछे भाग रहे होते हैं.
0: हाँ, और सोच रहे होते हैं कि कहीं तो कुछ तो नींद मिल जाए. लेकिन चले अभी नींद से जाग कर कौन हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं ये गैस कर ले हम कौन है हमारे साथ,
1: अमायरा है कि सिद्रा है, दोनों में से कोई एक है.
0: हाउ आर यू अमायरा? हम भी मजे में.
1: हम भी मजे में. ये बताएं कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा भाई?
2: बहुत अच्छा.
1: बहुत अच्छा भाई, क्या क्या किया वीकेंड में जरा बताएं तो सही. अमिता को जलाती हूँ मैं भी, देखो मेरी फ्रेंड अमायरा ने क्या कुछ किया. अमिता भी जल जाएगी, कह रही थी सो के वीकेंड गुजारा है.
0: हाँ बता दो अमायरा.
2: हम शॉपिंग के लिए गए.
0: हाँ माशाल्लाह, शॉपिंग के लिए गए.
1: भाई क्या क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा, कौन कौन से टॉयज लिए? अच्छा आपको चीजें बाय करना अच्छा लगता है अमीरा? अमायरा, अमायरा आपको? हाँ जी.
0: हाँ, क्या किया था?
2: एक न्यू चेयर ली थी पिंक कलर की.
0: वाओ वाओ, दैट्स नाइस. तो क्या किया, क्या हमको थोड़ा सा बताओ ना.
1: क्या देखें, दो दो टाइप के लोग होते हैं. एक वो जिनको विंडो शॉपिंग अच्छी लगती है, मेरी तरह, वो कुछ खरीदते नहीं है, बस बाजार जाएंगे, बस चीजों को देखकर खुश हो जाते हैं. वाओ वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल. वाओ, आई डोंट लाइक शॉपिंग, बट आई लाइक लुकिंग एट थिंग्स. आपको क्या चीज पसंद है? आपको बाय करना पसंद है या चीजों को देखना पसंद है? सोच रही है
0: अमायरा.
1: अमायरा, कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर लिया क्या मैंने? लो, मम्मा ने मेरे सब कुछ खरीद लिया.
0: वो अभी इस कैटेगरी में नहीं आई है, वो देखने और खरीदने वाली है.
1: देखो मम्मा जो है ना, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट पे बिलीव करती है.
0: सो मम्मा सारी शॉपिंग कर लेती है. अच्छा ये तो बताया नहीं आपने, आपने खरीदा क्या?
1: कहते नहीं, पिंक कलर की कोई चेयर थी वो खरीदी है.
0: ओ,
2: पिंक कलर की चेयर.
0: हाँ,
2: और पॉपिट.
0: और
1: पॉपिट. ओ नाइस,
0: पॉपिट.
1: अच्छा पॉपिट वो कौन सा वाला, बड़ा वाला पॉपिट?
2: छोटा
1: छोटा. पता है मेरे पास एक पॉपिट था, वो पता है वो कितना बड़ा था? जितना हमारा लैपटॉप होता है ना, उससे भी डबल. मैंने ऑनलाइन खरीदा था,
0: मतलब अमायरा के साइज का.
1: हाँ अमायरा, वो इतना बड़ा पॉपिट था. अच्छा वो पता है मैंने कब खरीदा? इट्स बिन इयर्स नाउ, मे बी मोस्ट प्रोबब्ली 3 to 4 years तो हो गए होंगे पॉपिट, क्योंकि पहले पहले जब शुरू शुरू में आए थे ना, एवरीबडी हैड अ क्रेज ऑफ इट एंड आई ऑल्सो लव्ड पॉपिट्स. और मैं पता है क्या करती थी? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच इज वेरी, आई डोंट नो इफ आई एम सपोज टू से इट और नॉट. मुझे ना एनीमिया है, तो मुझे ना आइस खाने का बहुत शौक है, तो मैं इसके अंदर आइस फ्रीज करके रखती थी.
0: आई एम जस्ट लुकिंग एट यू. सो यस, चलिए पॉपिट्स तो हम सबको बहुत पसंद है अमायरा. अच्छा ये तो बताएं, हमेशा ना वीकेंड स्पेशल होता है खाने पीने के लिए भी, तो मम्मा ने आपको क्या खिलाया ये बताएं. पाव भाजी खाई है भाई साहब. वेरी गुड वेरी गुड.
1: अरे मेरी
2: मुझे
1: मेरी फेवरेट चीजें क्यों खाती रहती हो? चीटिंग करती हो मेरी, कॉपी करती हो, मुझे सब पता चल रहा है. या हम अच्छे दोस्त बन गए तभी हमारी चॉइसेस एक जैसी हो गई हैं.
0: हाँ मायरा जल्दी से बताओ.
2: अरे
0: वाह भाई वाह, वेरी गुड.
1: तो मैंने भी बिरयानी खाई थी, चिकन बिरयानी मेरी फ्रेंड ने बनाई थी.
0: मैंने क्या खाया वीकेंड में? डोसा खा के पूरा दिन चलाया.
1: लखनऊ की बिरयानी
0: भाई साहब, मम्मा ने बनाई थी. हाउ स्वीट यार, ये मम्मा तो बहुत ही कमाल बनाती है.
1: मम्मा लखनऊ की बिरयानी बनाए या हैदराबादी बिरयानी बनाए, अच्छी बननी है.
0: मम्मा बनाती है, बात हो गई खत्म.
1: फर्स्ट क्लास बनाती है भाई.
0: अच्छा ये तो बताओ हमारा, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है?
2: मम्मा लखनऊ की.
1: ओ मम्मा लखनऊ की.
0: तो फिर
1: अच्छा,
0: भाई
1: अच्छा तभी इनकी इतनी उर्दू अच्छी है. ओके माशाल्लाह, मैं भी कहूँ इतनी क्लियर उर्दू भाई, माशाल्लाह.
0: हंस भी रही है प्यार से. हाँ मुझे पता है मम्मा ये. अच्छा हमें तो समझ में आ गया, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं. आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हैं?
1: मम्मा से.
2: दोनों
1: से. सच बता देखो अभी. सच बताओ. बाबा नहीं सुन रहे. नहीं सुन रहे बाबा.
0: अच्छा ठीक है, मामा बाबा के अलावा कौन है जिन्हें आप बहुत प्यार करती हैं? सोच
1: कौन
0: रही
1: है, कौन है,
0: कोई है, कोई है हमारा जिन्हें आप मामा बाबा के अलावा भी बहुत प्यार करते हो?
2: मेरे भाइयों को.
1: ओह माशाल्लाह, सो क्यूट. मेरे भाइयों को,
0: सो क्यूट.
1: अच्छा आपके दोनों बड़े भाई हैं?
2: जी
1: हाँ जी.
0: तो फिर तो बनता है.
1: ये तो सेट वाली प्रिंसेस है फिर तो. आप सबसे छोटी है ना? हाँ बस,
0: सब जगह से
1: प्रिंसेस हैं फिर.
0: सब जगह से मोहब्बत मिल रही है इनको, सब जगह से प्यार मिल रहा है. अच्छा ये बताएं, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको शेयर करनी है किसी से, ठीक है, पर वो चीज आप हर से हर किसी. अच्छा लेट्स मेक इट वेरी सिंपल. कौन सी चीज ऐसी है जो आपके लिए किसी से शेयर करना बड़ा मुश्किल है, लाइक यू रियली लव दैट थिंग? अमायरा
1: सोच रही है. इनका साबुन स्लो है, जरा रुके रुके. हमारा सोच समझ के जवाब दीजिए. क्या क्या चीज?
2: भाई और पापा
1: नहीं शेयर किए जाते हमसे. देखिए हमसे ये शेयर ना किया जा रहा. मेरे भाई की अटेंशन, मेरे पापा की अटेंशन, मैं पापा की परी.
0: पता है हमारा, जब मैं आपकी उम्र की थी ना, तो मेरी एक डॉल थी, बहुत बड़ी सी डॉल थी, वो मुझसे किसी से शेयर नहीं की जाती थी. लेकिन जब मेरी छोटी सी बहन हुई ना, जब वो पैदा हुई, तो बस वो डॉल उससे मैं शेयर करती थी. मतलब दैट वाज माय बॉन्ड विद दैट डॉल एंड माय सिस्टर. सो ऐसी कोई चीज़ है आपके पास, जैसे आपके कलर्स होंगे, कोई चीज़ जो आप सिर्फ सिर्फ भाई से या आपकी किसी फ्रेंड या आपकी मम्मा, सिर्फ इनसे ही शेयर करते हो, कोई ऐसी चीज है?
1: अगर मैं मांगू तो कहीं नहीं, मैं तो नहीं देती.
0: हाँ मायरा,
1: जब भी मेरे फ्रेंड के पास स्टेशनरी नहीं होती, अपने पाउच से निकाल. दैट्स सो काइंड ऑफ यार. ये सब अच्छा नहीं यार, ये शेयरिंग इज केयरिंग वाला बच्चा है.
0: ये मतलब दे देता है सब कुछ. हाँ. क्योंकि इनसे बात करके ना ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज मैं नहीं दूंगी.
1: नहीं ये वाला बच्चा लगता नहीं है.
0: दैट्स सो स्वीट अमायरा. यू नो आप जैसे बच्चे, लाइक ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अलग अलग नेचर होता है, बट लाइक यू इट्स वेरी रेयर. सो रियली यू आर द ब्लेस्ड वन एंड वी आर द ब्लेस्ड वन कि अमायरा हमें कॉल करती है, हमारी दोस्त है. So, Amira, tell us कि आज का दिन अभी तक कैसा गुजरा, क्या क्या किया आपने सुबह से?
2: सुबह आज तो छुट्टी थी ना.
0: हाँ हाँ.
2: सुबह नींद में कभी जब स्कूल का टाइम होता है
0: जी,
2: तो नींद में क्या उठते
1: क्या क्या क्या क्या क्या नींद में क्या
2: जब आपने कभी छुट्टियों में भी कभी भी नींद में पूछती हूँ कि मम्मा क्या बज रहा है, मम्मा कहते हैं 8 बज रहा है, बंद फिर तो.
0: अच्छा नींद में भी इनको स्कूल
2: बाद में कभी कभी होता है, बाद में उठ के क्या बज रहा है, 11 बज रहा है.
1: 11 बजे मतलब इन्होंने सो सो के गुजारा, इन शॉर्ट.
0: इन शॉर्ट. और ये
2: कभी मुझे भूख लगती है तो मैं घुट जाती हूँ कि भूख लगी है.
1: अच्छा ये मोस्टली छुट्टी वाले दिन ज्यादा जल्दी भूख नहीं लग जाती?
2: कभी कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती.
1: हाँ कभी कभी, कभी कभी का होता है.
0: तो अभी अभी सुबह से क्या खाया आपने जो बड़ा यमी यमी है और हमने मिस कर दिया?
1: डोसा.
0: तो पता है हमारा कल मैंने खाया लग के, सच में
1: मैंने खाया डोसा. मुझे इतने दिनों से नहीं खाया. हमारा किसी दिन हम चलेंगे, हम लोग थाली खा कर आएंगे. ओके किसी को बताना नहीं. ओके
0: मतलब मैं और सफा ना अब कहीं गिरने वाले हैं,
1: शक्ल देख रहे हैं हम लोग नदियों की तरह.
0: चलो बहुत बढ़िया यार, आपकी मम्मा तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की है. और ये जो इतनी प्यारी प्यारी चीजें खा रहे हैं ना, बिल्कुल एंजॉय करें हर दिन. ओके अच्छा ये बताओ, आज हम लोग ना टंग ट्विस्टर्स लेकर आए हैं. टंग ट्विस्टर्स जिसमें आपको हम कितने मिनट का, कितने सेकंड का टाइम देंगे?
1: रेपिटेशन ये जो है ना, इनको बोलेंगे अराउंड 5 to 6 times repeat
0: करना है और हम जब भी आपसे कोई वर्ड मतलब वर्ड नहीं सेंटेंस देंगे एंड लेट्स सी कि आप अगर रिपीट कर पाते हैं देन यू कैन बी द

0: है कि नहीं? ओके, तो सफा इनके लिए कोई सेंटेंस निकाला गया है?
1: टंग ट्विस्टर, ये अमायरा है मेरे ख्याल से. अमायरा कितने साल की है? 7 years old, राइट?
0: Eight years.
1: एक okay. साल अगर पीछे कर दो तो ऑफेंसिव हो जाता है बच्चों के लिए.
0: ओके अमायरा,
1: आपने जो है ना अमायरा ये बोला, थोड़ा वो दूं, थोड़ा मुश्किल दूं, थोड़ा वो वाला दूं,
0: इजी दूं?
1: इजी दूं, क्या दूं? पक्का? चलें भाई इजी वाला दे देते हैं. रानी रोज रेड रिबन पहनती है.
0: उफ,
2: रानी रोज रेड रिबन
1: पहनती है. हाँ, ये 6 times बोलना है आपने.
0: अमायरा 3 times आपने बोल के ना कमाल कर दिया है. फिर चौथे में थोड़ा अटक गए, कोई बात नहीं. 3 में तो हम भी नहीं कर पाते, पता है.
1: रानी रोज रेड रिबन पहनती है. अरे वाकई में
0: वेरी गुड अमायरा.
2: मैंने एक बार अपने भाइयों को अपनी मम्मा को दिया कि मम्मा 3 बार आप तो कह रहे कि क्या कहते हैं, कौन सा था? अचार का कचरा
1: भाई. अचार का कचरा कचरे के डिब्बे में. अचार का कचरा. बेटा मेरा तो दिमाग कचरा हो जाएगा. ये मैं ना कर पाऊंगी, मुझसे ना हो पाएगा, ये अम्मी कर सकती.
2: मम्मा को मैंने कहा कि 3 बार बोलना.
1: हाँ, तो मम्मा ने क्या किया फिर?
2: मम्मा ने बोला.
1: अरे भाई, मम्मा सुपर से भी ऊपर चल रही है भाई. अच्छा चलो, जाने से पहले अच्छा सा कोई मैसेज दे दो. इतना लंबा.
0: जूम जूम. हम भी गाड़ी निकालते हैं.
2: मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अब थोड़े से भी बाकी है जाने
1: में. ये हमारा सीक्रेट है ना, ये तो हम किसी और को ना बताएंगे ना. ये तो हमारा सीक्रेट है अमायरा, समझा करो. ये सीक्रेट है हमारा,
0: किसी को नहीं बताना है.
1: ओके, अमिता को पता ही नहीं हम बात क्या कर रहे हैं. अमायरा वो खुद ही बोले चले जा रही है. ये बात सिर्फ अमायरा और मुझे पता है. ये अमायरा और मेरा सीक्रेट है. ठीक है अमायरा.
0: ओके अमायरा, लवली टॉकिंग टू यू. खूब इंजॉय करो अपना दिन और अच्छा खाते पीते रहो. ठीक है, अल्लाह हाफिज अमायरा, टेक केयर.
1: चलिए भाई, एक और मैं बोल रही थी, एक और प्लेयर है हमारे साथ. पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं गेम्स के अंदर इतनी उलझी हुई हूँ.
0: प्लेयर ही है हमारे साथ, समझ लो.
1: अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम.
0: ओ भाई साहब, रेडियो रेडियो थोड़ा सा धीमा कर लिया जाए. रेडियो धीमा करें एंड फिर बात करें. देखो हमारी आवाज भी गूंज रही है.
1: भाई देखिए, जब आप लोग कॉल करते हैं ना तो अपनी आवाज रेडियो की कम कर लिया करें. देखते हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है हमारे साथ? सिद्रा. मैं याद कर रही थी इतने दिनों से. पता है सिद्रा, आपकी आवाज और अमायरा की आवाज, मुझे दोनों की आवाज एक जैसी लगती हैं. और जब भी इन दोनों में से कोई भी कॉल करता है ना, मैं दोनों को मिस करती हूँ.
0: कैसी है? हाँ सिद्रा,
1: आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा.
0: फोन के नजदीक आए सिद्रा.
1: बेटा हमने चांद पे जाकर बात नहीं करनी, हमने यहीं पे दुनिया में रहकर बात करनी है बाबू.
2: अब सही आ रही है?
1: हाँ जी, इसे कहते ना क्लियर आवाज. हाँ जी सिद्रा, 7.5 years old. 8 years की नहीं हुई अब तक.
2: वो इवनिंग शिफ्ट की जो रोज बात करती है.
1: अच्छा, आप दूसरी वाली सिद्रा हैं?
2: हाँ.
1: अरे ये तो हमारे पास एक और सिद्रा है. वो ही है. देखो जरा मुझे ट्रिक कर रही है.
0: वो ही है
1: बच्ची, मुझे ट्रिक कर रही हो है.
0: हाउ आर यू सिद्रा? हाँ हाँ, बोल रही है ट्रिक कर. हम फंस गए ट्रिक में आपकी, पता है.
1: अच्छा सिद्रा ये बताएं, तबीयत कैसी है?
2: सब कुछ ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
2: परेशानी है, गर्मी
1: परेशानी है. बेटा देखो गर्मी के भी ना अपने फायदे होते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि गर्मी कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो गर्मी में जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, कुछ वेदर चेंजिंग की वजह से ये भी होता है कि ग्रीनरी पे इफेक्ट पड़ता है, न्यू लाइफ जनरेट होती है, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. तो अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी बातों में छोटी छोटी नेमतें छुपी हुई होती हैं. हाँ ये है कि गर्मी है,
0: हाँ गर्मी तो बहुत है,
1: लेकिन ये भी तो एक चीज है कि हमारे पास एसी भी तो है ना.
2: अल्लाह से दुआ करते रहती हूँ, अल्लाह अल्लाह मुझे बहुत पानी दे, मैं गर्मी में पानी
0: पी. सोच भी प्यार.
1: अल्लाह ताला आपको सेहत दे.
2: पानी खत्म हो जाता है स्कूल में,
1: पानी खत्म हो जाता है स्कूल में. तो स्कूल में आप लोगों के पास वो नहीं है क्या कहते हैं होते ना हमारे
0: फिल्टर्स, फिल्टर वाटर फिल्टर्स नहीं है?
2: मगर वो यूज नहीं करती हूँ मैं.
0: अच्छा तो आप अपनी खुद की बॉटल लेके जाते हो? हाँ. तो थोड़ा सा
2: वायरस हो जाता है
1: तो भाई वो बड़ी वाली बॉटल लेकर जाया करें ना, या एटलीस्ट दो बॉटल्स ले जाएं, या वो बड़े वाले वाटर बॉटल जो होती है ना आपकी, उसके ML ज्यादा वाले ले जाएं. फिर एक तो होती है ना छोटी वाटर बॉटल जो होती है, बड़ी वाली वाटर बॉटल
0: एक बड़ी आती है वो आप खरीद लें और लेके जाएं, तो पानी आपका जब तक स्कूल चलेगा.
2: 20 ML की है.
1: 20 ML इज लेस,
0: इट्स वेरी लेस, थोड़ा सा ज्यादा वाली.
1: मैं पता क्या करती हूं, Now this is something funny, but मैं ये पता क्या करती थी, वो मेरे पास ना वो एक फ्लास्क होता था, थर्मोस टाइप का ना, वो ट्रैवलिंग फ्लास्क होता है, मैं वो लेकर जाती थी अपने स्कूल, और उसके अंदर ना मैं अलग अलग रंग बिरंगी जूस बनाकर लेकर जाती थी विद आइस, क्योंकि गर्मियों के दिन होते थे ना, तो मैं पूरा दिन वही पीती थी. एंड इट वॉज फ्लास्क, मीन्स फ्लास्क, जैसे हमारे पास वो थर्मोस नहीं होते चाय वाले,
0: राइट,
1: लेकिन वो ना सिलेंडर टाइप के होते थे, तो They used to last the whole school 6 hours.
0: Actually, लंबे वाले आते हैं ना, और अच्छे खासे ट्राई करो, मामा से बात करो.
2: हाँ राइट.
0: क्या क्या बोल रहे हैं?
2: It's too funny.
0: But you know, it's very helpful.
1: और उसके अंदर ना मैं जूस बना के लेकर जाती, खाली पानी नहीं, मुझसे खाली पानी पिया नहीं जाता था, तो मैं उसके अंदर कलर कलर की जूस बना के लेकर जाती थी.
0: बताए जरा.
1: कभी उसके लेमनेड बना कर लेकर जाती थी. लेमन इज वेरी हेल्दी, लेमनेड भी चल जाता है.
2: एक बार मैं लेमनेड बनाकर लेके जाऊंगी,
0: आई थिंक मैं बाय कर सकती हूँ. हाँ यू कैन, दैट्स अ गुड वन. सो बाय करो और फिर इस तरह से चीजें लेकर जाओ, लेमनेड लेके जाना, एंड यू विल फील रियली नाइस. ओके.
1: हाँ पता है क्या होता है, रिफ्रेशिंग होता है बहुत, क्योंकि पता है मामला क्या है, हम लोग बड़ों को भी यही कहते हैं कि मुझे लिटरली डॉक्टर से पता चला था कि जो हम लोग वाटर इनटेक करते हैं ना, पानी का, खाली पानी का,
0: राइट,
1: इट गेट्स डिस्कार्डेड फ्रॉम आवर बॉडी वेरी फास्ट. लेकिन जब उन्हें हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ लेते हैं ना, मतलब शुगर या कोई सॉल्ट जैसे होता है
0: ना, मिक्स करके,
1: उसके साथ मिक्स करके किसी जूस की फॉर्म में लेते हैं, हेल्दी वाले से लेमनेड हम लोग पीते हैं, तो उससे इट स्टेज मोर, वी स्टे मोर हाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ इट.
2: सबसे पहले ये तो बोलिए वो कितने ML का है.
1: कितने ML का है भाई थर्मास, कितने ML का होता है वो?
0: मेरा तो 500 ML,
1: वो जमाने चले गए,
0: फिर भी चेक कर सकते हैं. देखो मिनिमम 500 ML से यू कैन ट्राई, वो एक अच्छा आता है. और हमें तो एक एक लीटर के बॉटल्स देते थे मम्मी पापा, यू नो.
1: हां हां आई रिमेंबर 1.5 liter, और इट वाज अराउंड आई बिलीव, वो बड़ा थर्मोस था पता है, इट वाज अ बिग
0: वन. 1 liter के थर्मोस आते हैं डियर,
1: 1 liter, 1.5 liter,
0: या 1 liter के, और उसमें बेल्ट भी होता है तो बच्चे उसको टांग सकते हैं, एंड इट्स इजी टू कैरी आल्सो, और भारी नहीं लगता वो.
2: पहले मैं 330 ML का लेके जाती थी.
0: हाँ फिर
2: मैं पहले 330 ML का लेके जाती थी.
1: 330 ML का लेके जाती थी.
0: अच्छा तो फिर अभी कम क्यों लेके जाती है?
1: बॉटल घुमा दी होगी है ना,
2: बॉटल घुमा दी.
1: देखा पता, अब नेक्स्ट टाइम से अम्मी से कहूंगी अम्मी थैली में बांध के दे रहा इनको पानी. ठीक है,
0: मम्मी है ना, क्योंकि आपसे बहुत बहुत बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो कभी कुछ नहीं बोलेंगी.
1: मम्मी को ये मैटर करता है कि मेरी बेटी जो ना वो हाइड्रेटेड रहे.
0: या दैट्स इट. अच्छा ये बताओ सिद्रा, हम बातें कर रहे हैं आज कि कौन किसको सबसे ज्यादा प्यार करता है और किससे आप शेयर कर सकती हैं, तो आप बताएं कि सबसे ज्यादा, लाइक सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करती हैं?
2: मेरे भाई से.
1: ओह सो स्वीट. छोटा भाई कि बड़ा भाई?
2: छोटा
1: भाई. कितने साल का है आपको छोटा भाई?
2: 3 साल का.
1: ओह खिजर, भाई तो प्यारा नाम है खिजर, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट नेम्स।
0: ये जो आपका क्यूट सा भाई है, तो आप इससे सारी चीजें शेयर कर सकती हैं या कोई चीज है कि नहीं मैं अभी शेयर नहीं करूंगी?
1: अरे भाई या भाई, ये जो लड़कियां होती है ना ये बड़ी स्वीट होती हैं, बहुत बहुत काइंड होती हैं।
0: तो आप आप आप जब उनसे कोई भी चीज शेयर करते, अच्छा सबसे ज्यादा कौन सी चीज आप उनसे शेयर करना पसंद करते हो?
2: मेरे स्केचेस।
0: अरे वाह, एंड हाउ यू फील जब आप उनको स्केचेस शेयर करते हो?
1: उन्होंने तो रिप करके साइड पे कर देने होते हैं बेटा।
2: वो भी मेरे से मेरे स्केचेस देता है, ऐसा नहीं कि वो पूरे वापस ले लेता
1: है। अच्छा, वो रखता है संभाल कर,
2: करता है वो यूज करते वक्त।
0: अरे वाह, मतलब बहुत समझदार है
1: माशाल्लाह। इतना काम बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह लाकुत अल्लाह बिला माशाल्लाह, वेरी गुड।
0: तो आप जब स्केचेस बनाते हो, आप किस चीज की वो स्केचेस बनाने में बड़ा मजा आता है? वो ड्राइंग आप खुद बना के देती हैं आउटलाइन और वो कलर भरते हैं, या आप लोग क्या करते हो?
2: मैं उसको ए का आउटलाइन बना के देती हूँ और कलर भरने देती हूँ, तो वो कलर भरे तो मैं मेरे नेट पेन भी है जो इस्तेमाल नहीं होता है, वो मैं उसको उससे उतार देती हूँ।
1: तो टीचर खेल रही है, 3 साल का सब कुछ पढ़ा लिखा कर बड़ा PhD कराएंगी इसे।
0: आई कर देंगी मुझे लगता है। तो सिद्रा वाओ, तो सिद्रा जी के कलर्स वगैरह आप शेयर करते हो सबसे ज्यादा? कलर मैंने कल एक चीज नोटिस की है सफा, के बच्चे ना सबसे ज्यादा कलरिंग में बहुत उनका बॉन्ड बनता है, एंड दे ऑलवेज शेयर दैट। सो कलर्स आर समथिंग, लेकिन ये छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार ये कलर्स लेके अपना पूरे ड्राइंग शीट बना देते हैं दीवारों को। तो ऐसा होता है, ऐसा करते हैं आपके
2: भाई? दीवार पे कभी जिंदगी में नहीं लिखता है।
1: हम
0: माशाल्लाह हमेशा कहते हैं कि कभी कभी आपके भाई को नजर ना लगे, ठीक है?
1: हमेशा हेल्दी रहे आप भी, आपके मम्मी पापा भी, आपका भाई भी छोटू सा।
0: बट इट्स सो स्वीट यार, मेरे भाई को नजर नहीं लगाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के।
1: एक चीज है जो ये कभी किसी के साथ शेयर ना करेंगी, मेरा भाई।
0: मेरा भाई, ये समझ में आ गया हमको।
1: अच्छा ये तो बताएं, भाई के साथ कहाँ कहाँ घूमने गई थी वीकेंड पर?
2: वीकेंड पर मैंने मेरी कजन को लेकर बीच गया।
1: अरे भाई माशाल्लाह,
0: वेरी गुड। तो कौन से बीच गई थी?
1: अरे भाई इतना क्लियर पानी है वहाँ पर, इतना क्लियर कि यू कैन इवन सी फिशेस अंडर इट, है ना? ओ भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है इसकी

0: अब पता वो इतना प्यार अमिता इफ यू हैव नॉट अमिता को बताया ना अमिता नहीं गई
1: मैं नहीं गई हूँ मुझे थोड़ा बताए ना बीच कैसा दिखता है वहाँ पे
2: बहुत क्लियर क्लीन पानी
1: हाँ, अच्छा तो फिर मैं जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं गई थी ठीक है
2: जब रात हुई थी ना
1: हाँ जी
2: मैं टेंट में बैठी थी ना
0: हाँ जी
2: तो मैं तो रिदर टेंट में बैठकर बाहर गई थी खेलने तो पानी ऊपर
0: ऊपर
2: आया
0: हाँ.
2: था जब मैंने बकेट में पानी भरने गई तो बकेट में दो मछलियां ही आ गई
0: खा लिया पका कर
2: हाँ, सच में मैंने मछली देखी
1: नहीं दो मछलियों को क्या
0: किया छोड़ दिया कि खा लिया
2: छोड़ दिया
0: तो छोटी छोटी सी होती है ना वो
1: यार ओ, अच्छा भी लगता है उनको पानी वापस डालो ना तो एकदम से कूद के जाती है मतलब सो क्यूट
0: इट्स अ वेरी वंडरफुल मैं मेरा जो है ना क्या कहते हैं सीधा आई ऑल्सो गो फॉर कैंपिंग ओवर देयर यूजली आई गो फॉर कैंपिंग ओवर देयर इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बीच चलिए भाई इस दफा मुलाकात नहीं हुई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्या पता मुलाकात हो जाए ठीक है
2: ठीक है
0: चलिए ठीक है
1: चलिए
0: गेम खेलेंगे हमारे साथ
2: कभी तो होगी
0: खेलूंगी अच्छा भाई सिद्रा ये बताएं कि टंग ट्विस्टर खेलेंगी है ना
2: खेलेंगी
1: तो आपको 6 टाइम बोलना है ठीक है हम आपको एक सेंटेंस बताने वाले हैं और क्या कहती है सफर दे दिया जाए इनको
0: हाँ जी भाई सिद्रा है 7 इयर्स ओल्ड तो
1: ओके
0: बनी बड़ा बर्गर बनाता है
2: जी
0: 6 टाइम्स आपने रिपीट करना है बनी बड़ा बर्गर बनाता है
1: बताएगा
0: सबको सब कुछ बताएगा बनी ने बर्गर बनाना था बताना नहीं था
1: गुड अभी आपने 5 टाइम बोला दैट्स सो नाइस दैट इज सो सो
0: अभी का हाईएस्ट स्कोर है ठीक है ये बताएं जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी
2: Never be scared.
1: Okay, that's a very, very good message. और जब लोग डरते कम है ना तब जिंदगी में आगे बहुत अच्छे से बढ़ पाते हैं हाँ
0: चले भाई स्कूल जाना
1: चलो ठीक है हैव अ गुड डे अल्लाह हाफिज वाह क्या बात है
0: मुझे स्कूल भी जाना से बातें करती रहूंगी फारिग लोगों
1: पर क्या मजेदार बात थी ना कि वो दूसरी सिद्रा है जो मतलब इवनिंग में जाती है
0: खुद भी इवनिंग में जा रही है हमें ट्रिक कर रही है मेरे भाई को खबर था नजर लगाई है
1: अच्छा हमारे साथ कोई जुड़ रहा है अस्सलाम
3: वालेकुम अस्सलाम
1: ओ कौन है हमारे साथ अरे भाई साहब रानिया क्या मतलब ऐसे क्यों बात कर रही हो ऐसे तो आपने मुझे ट्रिक किया था पहले पूछा था कि क्यों मैं आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ कहाँ है वो रानिया कहाँ है जिसने ऐसा पूछा था
0: देखिए अभी मूड नहीं है कल आना
1: हेलो हेलो रानिया हाउ आर यू टुडे
3: आई
1: एम ऑल्सो गुड एंड सफा कैसी है
0: रानिया ने तो मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताऊँ मैं तो नहीं बात करी जाओ दोस्ती खत्म हो गई हमारी
1: आप कैसी हैं बता दो रहा है
0: नहीं मैं नाराज हूँ कहाँ घूमती रानिया इतने दिनों से
3: काम बहुत ज्यादा
1: क्या क्या क्या काम बहुत ज्यादा था
0: बेटा अम्मी ने झाड़ू पोछा लगवा लगवा के घर के सारे काम तुम्हीं से करवाए हैं
3: नहीं स्कूल का काम
0: अच्छा स्कूल का
1: अच्छा,
0: काम
1: ओके आई कैन अंडरस्टैंड तो अभी क्या मतलब स्कूल में क्या लाइक होमवर्क ज्यादा मिल गया या कोई प्रोजेक्ट था या एग्जाम्स थे क्या था
3: नहीं हमारा ड्रामा
1: समझ में आ गया मतलब
0: सो हाउ डिड इट गो हिस्सा लिया था आपने
3: जी
0: वेरी गुड तो अच्छा गया
3: जी
0: अच्छा गया
3: जी, अच्छा।
0: मुझे एक बात तो बताओ ड्रामा ग्लोर इज इट तो इसमें क्या किया था क्या मतलब यू वर पार्टिसिपेटिंग एज
3: वी वर एक्टिंग एज सम कैरेक्टर
0: हाँ तो वो कैरेक्टर कौन एक्टिंग एज

0: डॉक्टर
1: फास्ट. ओह माय गॉड, डॉक्टर बनी हुई थी. सो लाइक थोड़ा बताओ. हाँ,
0: डॉक्टर
1: हमारा था. अच्छा, देखो आपकी ना आवाज़ में रानिया ठीक से नहीं आ रही है, गूंज रही है, तो थोड़ा सा
2: पहाड़ों में खड़ी होकर बात कर रही हो क्या बेटा?
1: फोन के नजदीक आए, फोन पे बात कर रही है लेकिन आपकी आवाज़ गूंज रही है, तो काफी एको वाली जगह पे पहुंच गई लगता है.
2: मुझे लगता है कहीं स्टेयर्स केस के पास है, कहीं कोई कहीं तो है. बेटा मेरी आंखें ना, मेरी आंखें
1: अभी सीसीटीवी कैमरा बनी हुई है,
2: दूर की नजर.
1: अच्छा रानिया, तो थोड़ा बताएं ना आपके ड्रामा के बारे में, आपने क्या किया एंड हाउ वाज इट?
0: हमने
2: दुल्हन के ऊपर फूल फेंके.
1: अच्छा,
2: हम वो और दूसरे थे पीछे वाले जो जो एक्स्ट्रा दुल्हन के ऊपर फूल फेंके.
1: ओके, और क्या किया?
0: हमने इतना ही रोल प्ले करना
2: है. बट यू नो रानिया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, इट टेक्स करेज.
1: या रियली, स्टेज पे जाकर,
2: स्टेज पे दुल्हन के ऊपर फूल फेंकने में ना इतने ज्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं जो हमने फेस किए हैं. कभी बास्केट गुम हो जाती है, कभी सामने कोई आ जाता है, कभी
1: फूल सही जगह पे नहीं जाता है.
2: इट इज़ अ बिग टास्क, इट्स अ बिग टास्क एंड आई डू अग्री विद इट, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ये. सो इट्स ओके अभी ये स्टार्टिंग है, फिर हम मेन लीड रोल तक भी जाएंगे.
1: या एग्जैक्टली,
0: यस.
2: बचपन में मैं दरख्त बनी थी, दरख्त.
1: या तो आपने फूल फेंके, ये तो खुद दरख्त बनी हुई थी.
2: बेटा मैं तो दरख्त बनी, तो मैं तो फिर भी हिलने झुलने का काम था. तो दरख्त से फूल फेंकने का सफर बहुत ज्यादा होता है,
1: बहुत कमाल का होता है.
2: एटलीस्ट you're not just standing in a corner and nobody's noticing you.
1: Yeah, but you're there, क्योंकि आपके बिना वो जो scene था ना, वो impossible सा था, उतना beautiful नहीं लगता. So yes, it's a big task भाई, फूल फेंका हमारे रानिया ने. So रानिया, tell us something, आज हम बात कर रहे हैं कि who loves the most, और आप किससे sharing करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप हमें बताओ कि कौन है जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता है और आप उन्हें प्यार करते हो? पेरेंट्स के अलावा होम यू लव द मोस्ट?
2: बेस्ट फ्रेंड्स. क्या हुआ क्या चीज?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड पेरेंट्स.
2: Oh, that's so sweet.
1: That's lovely. So, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हो, थोड़ा सा बताओ हमको. Just, you know, वो बहुत आपकी केयर करते हैं, आपसे बातें अच्छी करते हैं, like, क्यों?
2: There would be something specific about them,
1: something special.
0: Because now
2: they're in the old age, so I think we should talk with them. नहीं, मुझे आवाज आपकी सही नहीं आई.
1: आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब आप उनसे मिलती हैं, तो आपको कोई किसी और नाम से बुलाते हैं, किसी और प्यार वाले नाम से, या रानिया ही बोलते हैं? आपका नाम क्या था?
2: चूचा. मुझे चूचा कहते थे.
1: और पता है रानिया मुझे क्या बुलाते थे? गोलू. कैन यू इमेजिन गोलू?
2: यू नो माय फादर टिल डेट कॉल्स मी चूचा.
1: आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपने, यू नो, लाइक यू रियली टेक केयर ऑफ देम. इसके अलावा कोई ऐसा है जिससे आप अपनी चीजें शेयर करना बहुत पसंद करते हैं? ओके, एंड
2: अरे फ्रेंडली बच्चा है ये. अच्छा, इनसे बात करो ना तो बहुत सीरियस लगती हैं.
1: हां राइट,
2: लेकिन शी इज, आई डोंट नो, वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर.
1: या
2: इनकी जब आपको बातें में चलेगी तो आपको
0: गई. हां, आई एम सीरियस राइट नाउ बिकॉज़ मैं अभी स्कूल से
2: हूं. अरे बच्चा
1: टायर्ड हो रखा है. कोई नहीं डियर, हम समझ सकते हैं.
2: अमिता, तुम ज्यादा दिमाग ना खाओ बच्चे का. ए बच्चे, तुम हमारे साथ गेम खेलोगे? ये बताओ, अभी तुम्हें रिफ्रेश करते हैं,
1: मजा आ जाएगा. अच्छा बताओ, इनको ये कितने साल की हुई है अभी?
0: 12, 13

0: होने वाली।
1: ओ पता, इन्होंने 13 का बोला, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे माशाला। सुनने में 22 आया, मैंने कहा 22 की कब हो गई है। पता नहीं क्या हो गया मेरे कानों को।
2: देखो यहाँ पर ना गड़बड़ हो सकती है, तो अब हम इनको क्या दें, एक अच्छा सा टंग ट्विस्टर
1: फॉर 13 इयर्स ओल्ड ना, ठीक है 13 इयर्स के अभी होंगी, 13 इयर्स कंसिडर कर ले हम कि नहीं?
0: नो, पांच महीने।
1: चलो भाई
2: ठीक है,
1: फिर इनको 12 इयर्स का ही रहने देते हैं।
2: ठीक है, हम 12 के हिसाब से देते हैं।
1: चले अमिता, आप बताएंगे कि मैं?
2: ठीक है, मैं बताती हूँ। तो कितने बार बोलना है हमें?
1: सिक्स टाइम। सब
2: नहीं बताने दो ना, थोड़ा सा सफा ने दे दिया ना ये।
1: अभी तो देर हो गई,
2: हम लोग रानिया
1: देर हो गई,
2: रानिया देर हो गई, चूज नहीं कर पाएंगे अब। नहीं चलो, अच्छा सफा बता दो।
1: अच्छा रानिया रेडी? सिक्स टाइम्स बोलना है आपने। ओके
0: ठीक है।
1: गुड्डू घूम घूम कर गोल गप्पे गिन रहा था।
2: यू नो रानिया, मेरा इससे इजी वाला था।
1: रानिया इट्स वेरी इजी। सी गुड्डू घूम घूम कर गोल गप्पे गिन रहा था।
0: गुड्डू घूम घूम कर गोल गप्पे गिन रहा था।
1: अब 6 दफा बोला, 6 दफा,
2: कम ऑन।
1: सीरियस देखो, गुड्डू घूम घूम कर गोल गप्पे गिन रहा था। जल्दी जल्दी अब चलो, 1 2 3 गो।
0: कैसे बोलना?
1: गुड्डू घूम घूम कर गोल गप्पे गिन रहा था।
2: बहुत घूमा गुड्डू।
1: इंग्लिश में नहीं, देखो आज हमने डिसाइड किया, देखो इंग्लिश में हमने बहुत सारे दिए आज, मतलब इस वीक में हम सबको उर्दू वाले देंगे। आप इंग्लिश वाले नहीं देंगे, एक टाइम पे हमने इंग्लिश वाले बहुत किए, अब गुड्डू को गोल गोल घुमा के गोल गप्पे गिनवाने हमने। देखो पता है मजा कब आता है, जब एक चीज अगर डिफरेंट ना हो ना, तो फिर वो रूटीन में आ जाती है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा रिचार्ज हुई हो कि नहीं हुई हो? हुई हो ना?
0: नहीं।
1: बेटा गुड्डू को इतना घुमा दिया, फिर भी तुम रिचार्ज ना हुई?
2: उन्हें गोल गप्पे चाहिए थे। गुड्डू के हाथ क्यों आए?
1: गुड्डू गोल गोल घूम रहा है अभी भी।
2: ओह रानिया, दैट्स रियली सो स्वीट, बट अच्छा बोला यार, एटलीस्ट ये बहुत टफ था,
1: मुझसे ना बोला जा रहा था।
2: दिस इज रियली नाइस, सो हैट्स ऑफ टू यू रानिया, आपने मतलब 4 बार जो एकदम स्मूथली बोला, फिर भले ही
1: एक और नहीं, इसके कल कॉल करेंगे, ठीक है? कल पक्का, कल कॉल करना, कल आई मजे वाला दूंगी।
0: अब नहीं पता कि कॉल होगी।
1: अच्छा, नहीं होगी। अरे भाई मजा आता है, भाई मजा आता है।
2: ओली गुड्डू को इतना घुमा दिया, अब मेरे सर में दर्द हो गया।
1: नहीं कल पक्का गुड्डू को नहीं घुमाएंगे, पिंकी प्रॉमिस, गुड्डू को ना घुमाएंगे कल।
2: हाँ
0: मैं आपको दूं एक
2: ये ना टंग ट्विस्टर, अगर आप हमको दोगे ना, लास्ट टाइम भी हमारे सारे बच्चों ने हमारे साथ गेम खेला था, हम एक दिन ऐसा रखेंगे कि जब आप हमको टंग ट्विस्टर देना और हम खेलेंगे, ठीक है?
1: नेक्स्ट वीक हम लोगों ने ये चैलेंज रखना है कि आप लोगों ने हमें चैलेंज देना,
2: ठीक है? आप हमें चैलेंज देना,
1: नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी पकड़ लो, फिर
2: क्या देना है बिल्कुल सोच के। ठीक है,
1: नहीं भाई कल भी करनी है, कल एक और टंग ट्विस्टर आपके साथ फिर से होगा, फिर गुड्डू नहीं होगा, कोई और होगा, टमाटर होंगे। ठीक है,
2: ओके रानिया, गुड गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बिफोर यू लीव कोई मैसेज दोगे, कुछ कहोगे?
1: गुड्डू को बोलो घूमे नहीं, खा भी ले गोल गप्पे।
0: आई होप यू योर स्माइल इज एज ब्यूटीफुल।
2: क्या
1: कुछ तो बहुत घूम गई हूँ, बहुत घूम गए, लव्स भी घूम रहे हैं इनके दिमाग में।
2: योर स्माइल इज ब्यूटीफुल एज
1: एज गोल गप्पे। शाइन्स लाइक अ सन।
2: ओके दैट्स रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू।
1: मैं टूथपेस्ट की ऐड करूंगी क्या?
2: वैसे दोनों की स्माइल की बात कर रही थी कि किसकी कर रही थी?
0: सफा की.
1: मेरी स्माइल को पी लिया हो गया है.
2: सफा तुम्हें खुश कर दिया इन्होंने रानिया ने. ठीक है चलो
1: रानिया अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. ठीक है.

0: एंड टेंशन नहीं लें, कल कॉल करना, कल किसी और को, किसी और को घुमाएंगे.
1: हाँ,
2: एक बार अमिता के लिए भी एक
3: बताओ.
1: One small positive thought in the morning can change your whole day.
0: बस अब याद रखना, जो रोती भी आती है ना ऑफिस, ज़्यादा ना रोना.
3: देख जरा. Yes, Rania, I am really grateful. Thank you for your lovely message. And चलो फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल, है ना? अल्लाह हाफिज.
1: Bye bye.
3: Bye bye. Bye bye.
0: Sweet. Bye bye. चलें भाई, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है कॉल पर. कहाँ गए भाई? अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम.
0: हाँ भाई, शफक जी कैसी हैं?
4: ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल वैसे हैं जैसे आप थर्सडे को छोड़कर गई थी.
3: हंस भी रही हैं. तो याद है कि थर्सडे को कैसे छोड़ा था हमको?
0: पता नहीं.
3: अच्छा ये तो बता दो शफक, चलो थर्सडे गया, सबका वीकेंड आया, सबने एंजॉय किया है, आपने कैसे वीकेंड एंजॉय किया?
4: मैं गई थी रात को फायर पार्क गई थी.
3: और
4: मैंने एंजॉय नहीं किया एक दिन थर्सडे को.
3: हाँ?
4: मेरी बहन की वजह से.
3: क्यों?
4: थर्सडे को मुझे मेरे चाची ने बोला था कि मैं ना तुम्हें ले जाऊंगी थर्सडे को, के कभी बोला था. तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी सुपरमार्केट. और मेरी बहन इवनिंग शिफ्ट में है ना.
0: हाँ जी.
4: तो उसकी वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पा रही. जब नाऊ बोल रहे कि मुझे ले जाओ सुपर मार्केट, बोलते नहीं जब मेरी बहन आ जाएगी. तो फिर जब मेरी बहन आ गई तो मैं इतना इंतजार कर रही थी कि अब चाचू आएंगे.
0: वो थकी थी.
4: वो कल रात आगे जब मैं सो भी गई.
3: तो ये मसला हुआ आपके साथ थर्सडे को. फिर फ्राइडे सैटरडे क्या किया? कुछ किया मतलब कि थोड़ा रिलैक्स डे था, कहीं गए?
4: फ्राइडे को रात को मैं स्पायर पार्क गई थी. और थर्सडे को मैंने चाचू से बहुत जिद करी थी कि मुझे ना फूल दिलवाओ.
3: फूल दिलवाओ?
4: लेकिन वो बोल रहे थे यस पूल, स्विमिंग पूल नहीं होता.
3: अच्छा, स्विमिंग पूल. समझ गए. यस.
0: अच्छा, वो जो पोर्टेबल पूल होता है. हाँ. पूल ले जाओ या दिलाओ?
4: दिलाओ.
0: अच्छा हाँ, वो पोर्टेबल पूल होता है. ओके.
3: हाँ, फिर
4: हमारे पास एक था, उसका डब्बा घूम गया था. तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि नहीं अब मैं इसको गिराऊंगी. वो गिरा दिया. अब हम बहुत गर्मी थी कल, नहा रहे थे. हमने पैसे भी जमा कर लिए कि हम लोग वो करेंगे,
0: पूल बुक करेंगे. फिर
4: बोल रहे थे कि टीमों से वो कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे.
3: हाँ, फिर तो मिला पूल की नहीं मिला?
0: प्लान चौपट हो गया ना.
3: प्लान चौपट हो गया.
0: चौपट हो गया. चौपर में डाल के अम्मा ने ग्राइंड कर दिया प्लान को.
3: तो फिर ये पूल मिलेगा बाद में कि नहीं मिल रहा है?
0: मिल रहा है बाद में. ऑनलाइन अम्मी ने कहा है, ऑनलाइन मंगवाएंगे, है ना? हाँ, वो ऑनलाइन जो है ना, वो प्राइस उसका कम होता है. बेटा अम्मा की बात सुन लिया करो, अम्मा तुम्हारे पैसे बचा रही हैं. तुम लोगों ने जो पैसे जमा किए वो बचा रही हैं अम्मा. सुन लिया करो अम्मा की बात, सुन लिया करो.
3: पर ये बढ़िया मजे के बच्चा है कि इनका पूल मिल रहा है. हमारी एक सहेली के बच्चे हैं, मतलब मेरी फ्रेंड है शफक, उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं. उन्होंने ना पूरे अपने हॉल को ही पूल बना लिया था, मतलब बाथरूम से पानी ला ला के
0: बगैर पूल के पूल बना लिया था.
3: पूल बना लिया था, फिर पड़ी उनको अच्छे से. बट एनीवे, यही तो मजे के दिन है. अच्छा ये बताओ शफक,
0: सुपर लित्तर ऐसा पड़ेगा ना, ऐसा सुपर लित्तर पड़ेगा, चारों तरफ रोशन हो जाएंगे.
3: समझ सकते हैं शफक, हम भी आपकी एज से गुजरे हैं.
0: अच्छा ये हमने तो बेटा पढ़ेंगे, हम तो खाकर
3: बड़े हुए हैं. अच्छा ये बताओ शफक, सबसे ज्यादा प्यार आपको किस पे आता है? लाइक किससे करते हो, मम्मी पापा को छोड़ के?
4: सबसे पहले तो मेरे
3: ग्रैंड पेरेंट्स. वेरी गुड. तो सबसे पहले मतलब लिस्ट में पहले ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद कौन है?
4: सेकंड मेरे अंकल्स.
0: अंकल्स, चाचूज इज इट? मामू के चाचू
3: और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है
4: थर्ड नंबर पे मेरी बहन
3: सी बहन इनकी बड़ी है छोटी है
4: छोटी है मैं
3: ही सबसे बड़ी हूँ ओह दैट्स क्यूट सो शफक आप उनसे सारी चीजें शेयर हाँ हाँ बताओ हाँ जी
4: सबसे बड़ी मैं ही हूँ
0: अरे भाई माशाल्लाह
3: बाप रे तो बहुत
0: सबसे बड़ी मैं ही
3: हूँ मतलब ये छोटे छोटे से कंधों में बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हमारी शफक की तो शफक ये जो आपकी छोटी सी बहन है इनसे आप कौन सी चीज सबसे ज्यादा शेयर करने में आपको मजा आता है
0: क्या चीज प्लान्स शेयर करने में बेटा ऐसे केड़े वाले प्लान्स है जो बहन छोटी बहन के साथ कौन सी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये हम लोग अपने बहन भाई पता है कब शेयर करते थे अपने प्लान एक दूसरे के साथ जब हमने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करनी होती थी
3: हाँ क्या कह रहे हैं
4: इतने गंदे गंदे प्लान बताती हूँ ना कि हमारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं
0: देखा
3: अरे भाई
0: शरारतें करनी होती है ना
3: मतलब करना है शरारतें पूरी लिस्ट बन रही है अच्छा ये जो आपके प्लान्स बनते हैं कभी सक्सेसफुल होते हैं या सिर्फ प्लान्स बनते रहते हैं
4: कभी कभी सक्सेसफुल होते हैं
0: अच्छा। मुझे ना इनका पिंकी एंड द ब्रेन वाला सीन लग रहा है कार्टून देखें पिंकी एंड द ब्रेन बस इनका वो वाला देखें शबक देखें कार्टून पिंकी एंड द ब्रेन वाले कार्टून देखें नहीं देखे अरे भाई देखना वो आपको अपनी रिलेटेबल कहानी लगेगी उसके अंदर
3: तो अच्छा ये बताओ कौन सा मजेदार कोई एक मजेदार प्लान के बारे में बताओ अपने जिसको आपने किया और बहुत मजा आया
0: उसके बाद पिटाई खाने में
4: कल हमने ना
3: हाँ जी
4: वो किया था बलून लिया था और फिर उसमें ना शेविंग क्रीम और पानी डाल दिया
3: भाई साहब
0: उसको फ्रीज नहीं किया
4: मैंने जब हॉल गई तो फिर मैं उसके साथ खेलने लगी मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया और पूरे को पूरा फट गया मेरे से
0: और शेविंग क्रीम पूरी यहाँ पानी होता तो फिर भी बचत हो जाती
3: फिर क्या हुआ खतरों के खिलाड़ी जो आप बने थे
4: मेरी दादी ने मुझे एक चमाट लगाई
0: पटा फिर भी हम ना सुधरेंगे है ना
3: नहीं ये लगने के बाद सब प्लान सक्सेसफुल हुआ
0: प्लान सक्सेस प्लान का मकसद है कि दादी की अटेंशन मिल जाए
3: तो ये ऐसी शरारतें आप करती रहती हैं पूरा वक्त हाँ
4: करती रहती
0: हूँ हाय बेचारी दादी
3: मैं सोच रही हूँ ये इनकी प्लानिंग अच्छा ये प्लान तो पूरा नहीं हुआ दूसरा करते लिस्ट लगी रहती होगी
0: अच्छा ये बात बताएं हमारे साथ गेम खेलेंगी
4: यस
0: टंग ट्विस्टर भाई आज का
3: सो टंग ट्विस्टर भाई सिक्स टाइम
0: गोलू को नहीं घुमाना
3: ठीक है अभी हम किसी को डुबो देते हैं ठीक है अच्छा मैं अब बोल रही हूँ अब ध्यान से सुनना ठीक है दुबे जी दही में डूब गए
4: क्या
3: दुबे जी दही में डूब गए
4: दही में डूब गए
3: रुको अभी शुरू करना मैं आपको सिर्फ पहले बता रही हूँ तो ध्यान से सुन लो दुबे जी दही में डूब गए ये आपको सिक्स टाइम्स बोलना है ओके हाँ जी सो आप रेडी हो
4: ओके
3: सो लेट्स स्टार्ट यस
4: दुबे जी दही में डूब गए
3: ताली बजा दो ताली
0: डुबो दिया बेटा डुबो दिया
3: एक नंबर शफक एक नंबर कमाल कर दिया आपने छह बार दुबे जी को दही में डुबो दिया है
0: ये बताओ बेटा ये दही खाएगा कौन अब मैं तो ना खाऊंगी इस कंपनी का नाम मुझे बता देना शफक है कि चली गई दही खाने गई है
4: मैं तो चिप्स खा रही
3: मैं चिप्स खा रही हूँ आपसे बात करते हो मेरा फुल एंटरटेनमेंट हो रहा है दही तो दुबे जी खा गए
0: चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अभी तक की हाई स्कोरर आप है
3: हाँ दुबे जी आदि में ना हाँ जी बोले क्या बोल रहे हैं क्या
4: मैं अपने अंकल को बता रही हूँ
0: जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी
2: Be respectful to everyone.
0: Very good.
3: Serious होके बोला be respectful. ठीक है बिल्कुल शफक हम आपकी बात मानेंगे.
0: इतनी seriousness से हम आपकी बात मानेंगे जितनी seriousness से आपने बोला है.
3: इतनी seriousness से ना plans थोड़े कम बना.
2: मैं hospital में हूँ इसलिए इतने धीरे-धीरे
3: बोल रही हूँ. I'm so sorry. So अभी सब खैरियत है?
2: मेरी दादी की दवाई लेनी है.
0: अल्लाह ताला आपकी दादी को शिफा दे. अपनी दादी को ढेर सारा हमारी तरफ से भी सलाम दीजिएगा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
3: अल्लाह हाफिज.
2: अल्लाह
0: हाफिज. यार ये बच्चा कितना देखो कितना रिस्पेक्टफुल बच्चा है. इस हॉस्पिटल में जाके इसको पता है कि आराम से बात करनी
3: मतलब सोचे.
0: माशाल्लाह गुड.
3: माशाल्लाह और ऊपर से बातें लेकिन बड़ी मजे की होती है शफक की.
0: शफक वो हम लोग कहते हैं ना ये चैटर बॉक्स. माशाल्लाह
3: फुल ऑन. सो यस हमारे सारे जो दूसरे चैटर बॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक हमें कॉल नहीं किया बता दें कि नंबर है हमारा 4434377 4434377 इज द नंबर. हमारे सारे सुपर लेजेंड्स हमें कॉल कर सकते हैं और मजे का गेम भी खेल सकते हैं.
0: भाई आज अगर आपने गुड्डू को गोल गोल घुमाना है या दुबे जी को दही में डुबाना है तो हमें कॉल करें. हम आज टंग ट्विस्टर खेल रहे हैं.
3: यस इट्स अ सुपर चैलेंज और अभी तक की एक्चुअली 6 टाइम शफक ने क्लियरली बोला है. तो आप भी ट्राई कर सकते हो और चाहो तो कुछ मैसेज करना है तो 666-2107 इज आर नंबर. उस पर मैसेज करो. और अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुक करते हैं उसके बाद सुपर सफा और एफ अमिता वापस आएंगे. तो कहीं नहीं जाए बने रहे FM 107 पर
0: दिल से देसी.
3: यस

0: फॉर ऑल. कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल. और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की. सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से. गाइडिंग लिटिल हार्ट्स. एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन

0: रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
1: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स।

0: तो भाई वेलकम बैक बच्चा पार्टी, और आज हम बात कर रहे हैं शेयरिंग इज केयरिंग के ऊपर, और ये पूछ रहे हैं अमिता, क्या पूछ रहे हैं
1: हम बातें कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि भैया आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है और आप किससे शेयर करना पसंद करते हैं। सो कोई जुड़ा हमारे साथ,
0: देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: हाशिम भाई कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ।
0: मैंने सुना है बहुत बड़े आदमी बन गए, तभी आजकल हमें कॉल नहीं करते।
2: एग्जाम्स हो गए थे।
0: अरे एग्जाम खत्म हो गए, अभी तक चल रहे हैं?
2: खत्म हो गया।
0: खत्म हो गए,
1: दैट्स गुड वन। तो गए कैसे ये बताएं?
0: बस चले गए ना,
2: इजी थे।
1: इजी, अरे भाई साहब वेरी गुड।
0: अच्छा एग्जाम इजी थे, आपकी तैयारी अच्छी थी?
2: क्या
0: एग्जाम इजी थे या तैयारी अच्छी थी?
2: दोनों।
0: और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये हाशिम साहब की तबीयत खराब है?
2: जी
1: क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है? सर्दी खांसी?
2: जी।
0: ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम?
1: नहीं नहीं,
0: हाँ देखा, हाँ कोल्ड ड्रिंक,
1: आइसक्रीम वाज द थिंग। यार मैं कोई नहीं, अभी ये ठीक हो जाएगा।
0: मौसम चेंज,
1: इट्स ओके।
0: मौसम का तो बहाना है आइसक्रीम और सोडाज ने
1: ये बच्चों की हालतें वो कर रखी है। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको, आइसक्रीम या सोडा? लाइक द ड्रिंक्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
2: आइसक्रीम।
1: और कौन सा फ्लेवर बहुत पसंद है?
2: कुकीज एंड क्रीम।
0: कुकीज एंड क्रीम। अच्छा बटर स्कॉच खाया है? बटर स्कॉच कभी खाया है?
2: वही तो अभी खा रहा हूँ मैं।
1: ओ भाई सॉरी, अच्छा अभी आइसक्रीम नहीं, अब कैंडी से काम चला रहा हूँ क्योंकि अब हल्की खांसी हो गई है। अरे बेटा जी कैंडी भी नहीं खाते हैं इस टाइम पे, वरना खांसी बरकरार रहती है।
0: अच्छा एक काम करें, थोड़े दिनों के लिए ना, थोड़े दिनों के लिए अगर आपने आइसक्रीम वापस से खाने शुरू करनी है ना, तो थोड़े दिनों का ब्रेक लें, एटलीस्ट 3 to 5 days का ब्रेक लें, और फिर बाद में जब तबीयत सही हो जाएगी तो फिर खाएं आइसक्रीम। क्योंकि अगर ज़्यादा आइसक्रीम खाते रहेंगे ना इस टाइम पे भी, तो बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो जानी है फिर। ठीक है, और कोशिश करें सूप पी लो भाई, सूप पी लो, सूप इतना बुरा नहीं होता।
1: गर्मा गर्म सूप ना गला बिल्कुल ठीक कर देगा।
2: हाँ। रोज गर्म पानी के अंदर
0: हाँ।
2: शहद डाल के पीता
0: हूँ। ओ सुपर सुपर से भी ऊपर, पता है हाँ। ये क्या कहते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि शहद में शिफा है, तो यस इट इज अ वेरी गुड थिंग। वार्म वाटर में ना आप डालकर शहद डालकर वो पियो, इट इज वेरी गुड,
1: सो इट्स अ गुड हीलिंग एजेंट। ठीक है तब ये कंटिन्यूस रखना, लेकिन ये थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट है कि आइसक्रीम एक दो दिन के लिए छोड़ देना, और कैंडी भी
0: गरम पानी में हनी डालकर पी रहे तो माशाल्लाह
1: ठीक हो जाएंगे। चलिए अच्छा ये बताएं हाशिम, अभी एग्जाम्स भी आपके ओवर हो गए, तो स्कूल चालू है छुट्टियां चालू है?
2: स्कूल
1: चालू है, तो फिर आज हाँ आज छुट्टी थी, तो अभी हफ्ता नया शुरू हुआ है। ये बताओ वीकेंड में कहीं घूमने फिरने गए थे?
2: जी हम ग्लासेस लेने गए थे।
0: अरे भाई पिछले एक हफ्ते से नहीं, 2 हफ्ते से मैं ग्लासेस लेने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे ना लिए जा रहे।
1: मैं अपने ग्लासेस ठीक कराना चाहती हूँ। ओके सो ग्लासेस लिए, कैसे कैसे ग्लासेस लिए? सन ग्लासेस लेकर आए अपने लिए?
2: नहीं वो आई वाले ग्लासेस।
1: आई वाले ग्लासेस, वेरी गुड। तो सब सॉर्टेड है ना, मतलब अब चश्मे वगैरह बन चुके हैं आपके?
2: जी
1: हाँ,
2: वो तो 2-3 साल से लग गया।
1: ओ 2-3 साल से। टीवी बहुत देखी है, क्या किया, स्क्रीन टाइम ज्यादा था?
2: नहीं
1: हाँ चलो कोई नहीं,
2: मेरे भाई का तो कॉर्निया का प्रॉब्लम था।
1: अच्छा
2: मेरा पता नहीं क्या था।
1: अरे कोई नहीं, अभी सब चलता है, चश्मे वश्मे लगा के अपन ठीक हो जाएंगे। बस डाइट अच्छी रखना, तो अपना जो आई साइट है ना वो बहुत बढ़िया होगी।
0: ये अभी ओमेगा 3 इनटेक करो, ओमेगा 3 फिश खाओ।
1: आइसक्रीम खाने से भी फुर्सत नहीं है उनको।
0: नहीं अभी कह रहे कैंडी खा रहा हूँ,
1: बाकी चीजें बाद में बताना। अच्छा ये तो बताएं सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं, मम्मी पापा को छोड़ के?
0: भाई नाना जी। ओ रे वाह
1: दैट्स सो क्यूट। एंड नाना जी आपको इतने क्यों पसंद है?
2: ओ हर बार कतर आते हैं।
0: और फिर पता है नाना के आने से क्या होता है, मैं बताती हूँ। नाना दादा ये इनके आने से ये होता है कि हमें डांट नहीं पिटती, फिर किस चीज पे ना नहीं होता,
1: फुल सपोर्ट होता है।
0: जी इतना बड़ा जी सुना आपने,
1: सपोर्ट सिस्टम बन जाता है ना इनका। अच्छा तब के नाना के साथ आप सबसे ज्यादा मजे क्या करते हो, घूमने जाते हो, बातें करते हो, क्या मजा आता है ज्यादा करने में?
2: बीच जाते हैं।
0: बीच जाते हैं,
1: दैट्स क्यूट यार, दैट्स क्यूट। इधर घुमाते फिराते।
0: अच्छा नाना नाना को लेकर कहीं बाहर इधर उधर जाते हैं आप? खुद दुकान शुकान चले गए ऐसे ही लेकर उन्हें कहीं इधर उधर?
2: जी।
0: अरे वाह नाइस।
1: शॉपिंग भी करते हैं मतलब नानू के साथ। अच्छा ये बताएं कि नानू से तो आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कोई है आपकी लाइफ में जिससे आपको अपनी सारी चीजें शेयर करने में बड़ा मजा आता है? नहीं करते?
2: मेरे दोस्त।
1: अच्छा दोस्त है, दोस्त है। ओके ओके ओके। एंड सबसे ज्यादा क्या शेयर करते हैं उनके साथ?
2: सारी चीजें
1: कर लेता हूँ मैं, मतलब सारी।
2: सबसे ज्यादा मेरी साइकिल।
1: साइकिल हुई ना, यही तो बात हुई भाई।
0: साइकिल एक ऐसी चीज है, बचपन में सबसे प्यारी चीज अपनी साइकिल होती है।
1: साइकिल ही होती है,
0: रोलर स्केट, साइकिल, ये चीजें बड़ी प्यारी होती
1: है। और ऐसा होता है ना कि जब हम सारी चीजें शेयर कर रहे हैं बट कोई चीज जो फेवरेट है थोड़ा रुक जाते हैं कि हाँ मतलब करेंगे लेकिन कम करेंगे। बट यस, तो साइकिल फिर चलाने को देते हैं आप सबको? हाँ
2: सबको नहीं, बस थोड़े
1: थोड़े लोग। थोड़े थोड़े लोग का मतलब वही आपके जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं,
0: स्पेशल वंस, द चोजन वंस।
1: तो वो भी आपको अपनी साइकिल देते हैं चलाने के लिए?
2: जी।
1: अरे वाह, दैट्स गुड यार, वेरी गुड।
2: जब मेरी साइकिल पंक्चर हो जाती है या फिर खराब होती है,
1: हाँ जी,
2: तो फिर वो कहते मेरी साइकिल चला लो थोड़ी देर के लिए।
1: दैट्स सो नाइस यार, ये बच्चों के साथ बड़ी क्यूट चीज होती है अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करने में और मजे करने में। हाँ, सो व्हेन यू शेयर योर साइकिल, अच्छा टेल मी समथिंग, जब आप बोलते हो कि आप मेरी साइकिल चला लो, हाउ यू फील? डू यू फील हैप्पी एंड आपको लगता है वाह मजा आ गया आपके?
0: मुझे तो ये फील होता था कि भाई मेरी अभी टूटी साइकिल, मेरी अभी साइकिल टूटी।
1: आपको कैसा फील होता है?
2: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा।
2: और जब मैं उसके साथ अपनी साइकिल शेयर करता हूँ तो फिर वो कहता है तुम मेरी साइकिल चला लो, मैं तुम्हारी चला लेता हूँ।
1: भाई ये प्यार है, प्योर लव। हाँ प्योर लव है, दिस इज सो नाइस। सो हाशिम, वी जस्ट प्रे कि आपकी ये फ्रेंडशिप और ये शेयरिंग वाली जो चीज है ना, साइकिल शेयरिंग, ये चलती रहे। अच्छा ये तो बताओ, ये साइकिल जब शेयर वेयर करते हो, ये साइकिल की रेसिंग करते हो कि नहीं करते हो?
2: करते हैं।
1: तो करते हो तो लाइक कितने आप लोग कितने फ्रेंड्स हो? हाशिम
2: 8-9 है।
1: अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 8-9 फ्रेंड्स एक साथ साइकिल की रेसिंग करते हैं या एक दो जन के साथ रेसिंग करते हो?
2: पहले हम साथ में करते हैं, हाँ? और फिर बाद में जो क्वालिफाई होते हैं वो फिर एक दूसरे से रेस करते हैं।
1: हाँ, रेसिंग चैंपियनशिप।
0: क्वालिफाई भाई,
1: आई लव दैट। तो अभी तक सबसे ज्यादा किसके मार्क्स हुए, सबसे ज्यादा कौन जीता है साइकिल चलाते हुए? ओ भाई साहब मैं जीता। मैं मतलब ऐसी बोलने के लिए बोल रहे हो, सही में जीते हो?
2: नहीं सच में।
1: हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट। अच्छा चलो फिर यहाँ पर भी जीत जाओ।
2: ड्रैग रेस मतलब शॉर्ट रेसेस में ज्यादा अच्छा, लेकिन लॉन्ग रेसेस में मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: ड्रैग रेस में भाई बच्चा, ड्रैग रेस
1: ये लंबी रेस का खिलाड़ी है हमारा। अच्छा ये बता दो हाशिम, अभी यहाँ पर भी जरा खेल लो हमारे साथ, हम लोग टंग ट्विस्टर्स लेकर आए हैं। सो आर यू रेडी टू प्ले?
2: जी।
1: तो
2: यार मुझे गोलू को नहीं घुमाना।
0: सब गोलू से डर गए।
1: सब गोलू,
0: अच्छा, गोलू से इजी इजी वाला देती हूँ आपको, ठीक है?
1: इजी वाला देंगी सफा आपको, ठीक है? वो आप सुनो एंड 6 टाइम आपको बोलना है, इसके पहले हमारा
2: किसी को डुबाना भी नहीं है।
1: अच्छा
0: चलो चलो चलो चलो,
1: ठीक है? मत डूबो भी मत और गोल गोल घूमो भी मत, तो आप ध्यान से सुनो और 6 टाइम आपको बोलना है। ओके,
0: इंसानों वाली बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है,
1: ओके।
0: देखो सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन लो। छोटू चूहा चीज चुरा कर चला गया।
2: क्या?
0: देखो
1: ओके,
0: छोटू चूहा उसका नाम है ना चूहे का, छोटू चूहे का नाम है छोटू, ठीक है? छोटू चूहा चीज चुरा कर चला गया, ठीक है?
1: ठीक है,
0: क्या है जरा एक दफा बोले।
2: कितनी दफा बोलना
0: है? 6 टाइम्स बोलना है। छोटू चूहा चीज चुरा कर चला गया, जल्दी जल्दी बोलना है। स्लो बोला तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ड्रैग रेस की तरह यूं भागना है, शपाटर यूं बुझ करके, ठीक है?
2: ठीक है
0: चलो भाई। छोटू चूहा चीज चुरा कर चला गया, 1-2-3 गो।
2: छोटू चूहा चीज चुरा कर चले गया, छोटू चूहा चीज चुरा कर चले गया, छोटू चूहा चीज चुरा कर चले गया, छोटू चूहा चीज चुरा कर चले गया, छोटू चूहा चीज चुरा कर चले गया, छोटू चूहा चीज चुरा कर चले गया।
1: चला गया चीज चुरा लिया,
0: चला गया चीता निकला, ये
1: चीज चुरा लिया छोटू चूहे ने,
0: गुड हो गया भाई, गुड हो गया, चीज चुरा ली,
1: वेरी नाइस, मजा आ गया।
0: I like it. शेखा, अरे भाई बच्चा टॉप स्कोरर बन गया,
1: टॉप स्कोरर बन चुका है और उसने छोटू चूहे को चीज भी चुराने दे दिया।
0: पता चीज कितनी महंगी हो गई है बेटा, रोका क्यों नहीं उसे? अब मैं क्या खाऊंगी, मैं तो नाश्ते में चीज खाती हूँ, ट्रायंगल वाली,
2: वो 120 की स्पीड में चले गया था।
0: ओए, ओए, अब तो रडार पड़ेगा उसे।
1: चलो कोई नहीं, चीज का हम लोग बंदोबस्त कर लेंगे। सो हाशिम, लवली, बहुत अच्छा खेला आपने। सो बिफोर यू लीव, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यस हाशिम,
2: डोंट लेट एनीवन स्टील योर चीज़।
1: ठीक है, हम चीज को छुपा के रखने वाले।
0: अब से मैं ताले में रखूंगी।
1: यस, वेल हाशिम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। सो हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज डार्लिंग, बड़ा वाह, क्या बात है।
0: अच्छा मैं सोच रही इन्होंने आज मेरी उससे बात नहीं कराई, ज़करिया से।
1: आज ज़करिया से बात नहीं हुई, कोई नहीं,
0: मेरे सो गया होगा ज़करिया। हाँ, वो देर हो गई ना थोड़ी सी,
1: चीज ज्यादा खा लिया होगा।
0: ये चूहा कहीं ज़करिया तो नहीं था जो 140 की स्पीड से आया और यूं करके चीज चुरा कर ले गया,
1: भाग गया। और हमारे जो हाशिम है वो कर नहीं पाए कुछ, क्योंकि ज़करिया उनके छोटे भाई है। तो चलिए कोई नहीं, मजा बड़ा आया।
0: कॉल आई, कॉल आई।
1: यस,
0: ये हाशिम है कि ज़करिया है, मुझे लग रहा है कुछ।
1: आइए इनसे बात करें।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: सलाम,
2: ज़करिया से बात कर ले।
1: अच्छा ठीक है, कराएं
0: चलें भाई।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अच्छा आप छोटू चूहा तो नहीं है कहीं?
2: नहीं, मैं छोटा चूहा नहीं हूँ।
0: मैं छोटा चूहा नहीं, छज के। अच्छा भाई ज़करिया ये बताएं,
2: मैं गोलू को नहीं घुमाना और मेरे किसी को डबोना भी नहीं।
1: ये सबने ना ऐसे एक लाइन एकदम रट ली है, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे।
0: और छोटू चूहे को क्या करना है फिर?
2: छोटू चूहा को भी कुछ नहीं करना,
0: कुछ नहीं करना।
1: तो फिर करना क्या है ये बता दो।
2: खेलनी है टंग ट्विस्टर।
0: खेलनी है टंग ट्विस्टर। अच्छा टंग ट्विस्टर से पहले तो ये बताएं कि आपने अपना वीकेंड कैसे गुजारा भाई, क्या क्या किया वीकेंड पे?
2: मैं भूल गया हूँ।
0: लो जी,
1: जो भी किया वो कुछ नहीं, अभी भूल गए। अच्छा तो ज़करिया अभी, अच्छा चलो ये बता दो, अभी याद है कुछ खाया है कि नहीं खाया? कुछ खाया आपने, लंच किया नहीं किया? क्या खाया लंच में?
2: वो भी भूल गया।
1: ये चलो सारी चीजें भूलते जा रहे हैं।
0: तो फिर ये टंग ट्विस्टर कैसे याद रखेंगे?
1: अगर आप भूल गए तो बोलते बोलते, बोलने से पहले
2: क्या
1: टंग ट्विस्टर कैसे याद रखोगे? आप तो सब कुछ भूलते जा रहे हो ज़करिया।
2: जी?
1: अच्छा ठीक है, चले आप गेम खेलेंगे क्या?
2: जी।
1: ठीक है, तो हम आपको कुछ बोलने के लिए बताते हैं। आपकी बताओ पहले एज क्या है, कितने साल के हुए? क्या
0: 6 साल के।
1: 6 साल के, तो 6 साल के ज़करिया को क्या टंग ट्विस्टर दिया जाए? आर यू रेडी टू प्ले? देखो 6 टाइम आपको बोलना है।
2: सेट,
1: क्या बोल रहे हैं?
2: सेट, स्टैंड।
0: अच्छा ये बताए बिल्ली वाला चलेगा? चूहा तो हाशिम से पूछ लिया, आपसे बिल्ली वाला पूछ ले?
1: करते करते चले जाएंगे, हमारा शो भी खत्म हो जाएगा, समझ में।
0: अच्छा भाई, हाँ भाई देखिए,
2: किसी एनिमल के बारे में नहीं करना।
1: अच्छा एनिमल नहीं चाहिए,
0: तो अली, अली के नाम पर करते हैं।
1: अली के नाम पे करो। चले,
0: अली आम आराम से खाता है, नहीं बड़ा सिंपल है। अली आम 6 टाइम्स बोलना है।
2: क्या बोला, क्या बोला?
0: अली आम आराम से खाता है, जल्दी जल्दी बोलना है। अली बेशक आम आराम से खा रहा है, लेकिन हमने बोलना जल्दी है, ठीक है?
2: ओके
1: ओके,
0: 1 2 3 गो।
1: यस,
2: अली आम आराम से खाता है, अली आम आराम से खाता है, अली आम आराम से खाता है, अली आम आराम से खाता है, अली आम आराम से खाता है, अली आम आराम से खाता।
0: चलो भाई तालियां हो गई बच्चे के लिए। मेरे ख्याल से आम का नाम सुन के ना तुम्हें वैसे ही पानी आ गया था,
1: इसलिए आराम से खिला भी दिया अली को। वेरी गुड जकरिया, आपने तो 6 का स्कोर कर लिया।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, आम आपने खाए अभी तक? सीजन आया कि नहीं आया आम का?
2: क्या
0: आम का सीजन आ गया कि नहीं आया है?
2: चले गया
1: अभी अभी, पर आम मिल रहे हैं मार्केट में अभी भी?
0: इन्होंने जून जुलाई अगस्त स्किप करा दिया लोगों का। भाई किसी को ना मिलेगा आम मार्केट में। जकरिया ने कहा है कि आम का सीजन चला गया। गया गया चला गया।
1: जकरिया समर्स है अपने कतर में अभी।
2: आम का सीजन शुरू हुआ है।
1: हाँ जी
0: हाँ ना, तो जकरिया कहाँ कहाँ आम भेज रहे हैं बेटा, कहाँ के 3 महीने के आम कहाँ कर दिए।
1: चले कोई नहीं, बड़ा मजा आया। जकरिया बिफोर लीविंग कुछ कुछ कहना है, कोई मैसेज देना है या आम खाने जाना है कहीं पे?
0: कुछ सोच रही।
1: हाँ जकरिया,
2: always eat mango.
1: ओके थैंक यू, ये मैसेज मैं सीरियसली लेने वाली हूँ। क्योंकि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है जकरिया, तो मैं ना मैंगो खाने जा रही हूँ। ओके ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Always eat mango.
0: वाहिद चीज जो मैं बगैर बोले किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ वो है मैंगोज। पता है क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि मुझे मैंगोज पसंद नहीं है।
1: अरे सफा मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रेक पे जा रही
0: हूँ। कोई
1: नहीं नहीं अभी
0: कोई इस मामले में बात नहीं करता,
1: कोई बात नहीं करेगा। सफा को मैंगो पसंद नहीं है। लाइक मैंगोज ये कैसे ऐसा मतलब फ्रूट है कि इसके लिए तो लोग जान देने को तैयार है, लड़ जाते हैं घर में, लड़ाई हो जाती है।
0: मैंगो टू स्वीट, मुझे समझ नहीं आता मैंगो।
1: चलो एनीवे आई विल टॉक टू सफा अबाउट इट। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. पर डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
3: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ. सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. योर गाइड फॉर ए स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन. सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए.
0: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स.

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो विद सुपर सफा
1: एंड ए फॉर अमिता। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातें हो रही थी कि कौन क्या चीजें शेयर कर सकता नहीं कर सकता, तो सफा ने कह दिया भाई मैं मैंगो शेयर कर सकती हूँ। मैं मतलब मैंने सोचा कि सफा था मैं इतना बड़ा, एंड देन शी सेड बिकॉज़ आई डोंट लाइक इट। मैं बताऊं सफा, मैं बिल्कुल मैंगो, मतलब जब मुझे शेयर करने की बात आए ना तो मेरी जान निकल जाती है, बट आई कैन ओनली शेयर दैट विद माय सिस्टर एंड उससे मुझे बहुत प्यार है, सो उससे मैं शेयर कर सकती हूँ। एंड और क्या चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, आई थिंक विद हर मैं हर चीज शेयर कर सकती हूँ।
0: अच्छा, मेरा एक मसला है, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, लाइक मे बी वन और टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम कहते हैं ना, बेस्ट।
1: राइट
0: The fact is, I cannot share those two best friends with anybody.
1: I agree to this. और तभी इतने मतलब पूरे वर्ल्ड में इसके इससे रिलेटेड रील्स मीम्स बने हैं कि जिनकी भी दोस्ती है ना, लाइक जिगरी दोस्ती, चाहे वो एक दोस्त हो, पांच हो,
0: बचपन वाली दोस्ती,
1: yeah, you never love to share. मतलब दोस्त को किसी से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो प्यार है भाई।
0: अच्छा, अपने दोस्त को अगर आप किसी से थोड़ा ज्यादा बात करते हुए देख रहे हो ना, तो मैं उसकी तरफ यूं करके देख रही होती हूँ, सरकास्टिक होकर। मैंने कहा जाओ ना, जाओ नई दोस्त बना लिया तुमने, जाओ उधर जाओ मेरे पास, क्यों भाई, यू डोंट नीड मी एनीमोर।
1: ये तो लाजमी है, लेकिन ये देखिए जो प्यार होता है ना, जो अपनों से होता है, जो ये शेयरिंग केयरिंग वाला सीन है, ये एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं और हम इसलिए भी करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनजाने में भी इसे भूलना नहीं है।
0: मैं कहती हूँ चीजें ले लो सारी मुझसे, वो जो दोस्तों वाला लव है ना, वो किसी के साथ शेयर ना करूंगी मैं,
1: नहीं कर सकते। और देखो हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमें पर हमारे साथ साथ इतने सारे नेचर ने भी एग्जांपल दिए हुए हैं, हाँ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे सफा,
0: जैसे पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स का होता है वो, एवरीबॉडी नोज दैट दे लिव इन अ वेरी कोल्ड आइसी वेदर,
1: एब्सोल्युटली।
0: तो होता ये कि पेंगुइन्स स्टैंड टुगेदर इन अ जायंट ग्रुप, और उनका जो ग्रुप होता है ना, दैट्स कॉल्ड हर्डल्स। वो जब हर्डल्स में खड़े होते हैं ना, जाहिर बात है एक पेंगुइन होगा जो सबसे इनसाइड होगा, एक पेंगुइन सबसे आउटसाइड होगा, तो वो क्या करते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग साइड्स एंड प्लेसेस स्लोली। तो जो बाहर वाला पेंगुइन है वो अंदर की तरफ आता है एंड दे एक्चुअली शेयर द वार्मथ।
1: Yeah, it's very important.
0: एक दूसरे को बचाते हैं वो आईसी वेदर से। जैसे लोगों को बड़ा शौक है भाई ये बैट्स के बारे में जानने का, तो बैट्स पता है, इफ वन बैट कैन नॉट फाइंड फूड वन नाइट, द अदर बैट शेयर देयर फूड विद देम। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि बैट्स के अंदर इतनी मेमोरी होती है दैट दे रिमेम्बर kindness and helping each other.
1: ये चीज नहीं भूल पाते। In fact, dolphins जिनको हम कहते हैं ना, बड़ी friendly होती है।

लिटरली आप अपनी उंगलियों पर कर सकते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट है ये। तो उसमें भी कहने की जरूरत नहीं कि मेरा बॉय हाथ का खेल है, ये भाई साहब आपकी उंगली का खेल है। ये सिर्फ एक स्ट्रिंग और दो रिंग्स, एक बड़ा जी और एक छोटा, बहुत आसान, इतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर अभी आपको सिंपल लग रहा है ना, ये क्या है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक पावरफुल फिजिक लॉ। उस लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक सवाल सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट आप जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन, अगर कोई चीज चल रही है तो वो खुद से रुकती क्यों नहीं है तुरंत, कभी सोचा आपने? दोहराऊं सवाल, अगर कोई चीज चल रही है तो वो खुद से रुकती क्यों नहीं है तुरंत? एकदम सडन ब्रेक तो आप गाड़ी का ब्रेक भी लगा दें, धीरे धीरे लगती है ना, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मूवमेंट में है लेकिन एकदम से रुक करके नहीं रुकती, वो बहुत कम चीजें हैं, बट नॉर्मली तो ऐसी होता है। तो अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो खुद से चलना शुरू नहीं करती, ये भी तो है फैक्टर। इसका जवाब ही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। पता हो क्या है फर्स्ट लॉ? मैं बड़ों से पूछ रहा, बच्चे आप तो बेटे आप बच्चे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, बड़े ही बता दें न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। मैं आज न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। तो पहले समझते हैं कि सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल करते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, रुका हुआ है, वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आके उसको चेंज ना करे। वेरी सिंपल, यही है लॉ। सिंपल एनालॉजी जान लेते हैं, जैसे कि एक बॉल टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, अब वो तब तक नहीं लेगी जब तक आप उसे पुश नहीं करते। आप कहेंगे मैं नहीं पुश करूंगा तो नहीं लेगी, हाँ भाई जब तक, चलो हवा मान लेते हैं, हवा चली, झोंका आया हवा का, तो वो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स ही है ना, तब तक तो वो रखी रहेगी उस पे। या फिर साइकिल ले लीजिए, आप पेडल मारते हैं, साइकिल चलती है, पेडल बंद, धीरे धीरे रुकती है, और क्योंकि धीरे धीरे रुक रही है तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, वो वजह है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन यूज कर रही है साइकिल चलने में, आप पेडल मार रहे हैं, साइकिल चल रही है, वो ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग रुक जाएगी एकदम से, तो फ्रिक्शन उसे जितना दूर तक ले जा सकता है वो ले जाएगा, बट इवेंचुअली इट विल स्टॉप, मगर उसमें भी एक्सटर्नल फोर्स है। अब आप इमेजिनेशन के बटन को जरा ऑन कीजिए, एक रिंग स्ट्रिंग पे लटक रही है, ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा पेंडुलम आगे पीछे स्विंग करता हुआ, टिक

तो ये एक एनालॉजी है इसी बात की. एक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है, सब सब समझ में आएगा, डोंट वरी. एक एक्सपेरिमेंट के लिए आप तैयार हो जाइए. मीनवाइल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 666-22107 पे. ओके, तो आपको क्या चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए? इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रिंग, ठीक है, और दो रिंग. रिंग्स चाहिए आपको, एक छोटी एक बड़ी. एक बेटे मम्मी से ले लो, एक पापा से ले लो, हो गया हिसाब किताब. खोना नहीं बस, नहीं तो उसके बाद जो है वो जो दंगल होता है वो अलग है. बहरहाल छोटा रिंग, जो छोटी रिंग है, बड़ी रिंग के अंदर फिट हो जानी चाहिए जब दोनों अलाइन हो. लेट मी रिपीट माई सेल्फ, छोटी रिंग बड़े रिंग के अंदर फिट हो जाना चाहिए जब दोनों अलाइन हो. ठीक है, अब जरा स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं. स्ट्रिंग ली आपने, स्ट्रिंग ले ली, दोनों की दोनों रिंग्स में आप डालिए उसे. एक को फिंगर से पकड़ो और स्ट्रिंग्स टाइट रखो. एक फिंगर से पकड़ना है आपको और स्ट्रिंग्स को टाइट रखना है आपको. बस सेटअप आपका तैयार है, इतना ही है, कोई मुश्किल नहीं है. एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर आपके पास रिंग्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कॉइंस या कीज कुछ भी यूज कर सकते हैं आप. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अब एक्सपेरिमेंट को एक्शन में लाते हैं जरा, हम भी जरा न्यूटन का लॉ लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स. तो मैजिक मोमेंट अब क्रिएट होगा, अपनी फिंगर को हल्का सा आप मूव करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है. रिंग्स स्विंग कर रही है पेंडुलम की तरह, टिक टॉक टिक टॉक. ये मोशन एक ऑसिलेशन है, मतलब आगे पीछे रिपीट होने वाला मूवमेंट. अब ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो उसमें और भी साइंस निकल के सामने आती है. अब अगर आप फिंगर को रोक देते हैं तो क्या रिंग्स तुरंत रुक गई? नहीं ना, एकदम से नहीं रुकेंगी, वो कंटिन्यू वैसे ही स्विंग करती रहेंगी इवन इफ यू स्टॉप्ड. अब इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को साइंस के टर्म्स में इनर्शिया कहते हैं. ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो चलना कंटिन्यू करेगा, आपको नहीं रोकने वाले. जोक्स अपार्ट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है, अब आप सोचिए कि आप एक शॉपिंग कार्ट पुश करते हैं, अब जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ हैं एंड यू जस्ट पुशिंग द कार्ट, खेल रहे हैं आप उससे. आप कहीं पे ग्रोसरी लेने के लिए गए और ग्रोसरी देते हैं, पुश करते हैं कार्ट को. सो आपने पुश दिया, कार्ट चलती है, आपने छोड़ दिया, फिर भी वो चलती रहती है थोड़ी देर तक, आराम से चलेगी थोड़ी देर तक, पर ये ट्राई मत करना, पता चला किसी के आपने घुटने में मार दी वो कार्ट. तो ऐसा करने का नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने कार्ट पुश करी, वो आगे जाएगी और तब तक चलेगी, आप छोड़ भी देंगे तब तक जब तक वो फ्रिक्शन उसे मिल रही है, पर एक मोमेंट पे आकर रुक जाएगी. क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगेन इनर्शिया, ये है इनर्शिया. अब कार के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, जो हमने शुरुआत में बात करी, व्हेनेवर यू सिटिंग इन द कार, आप नोटिस कीजिएगा जब कार सडनली ब्रेक लगाती है आपकी बॉडी आगे झटका लेती है ना, एकदम से आप आगे आ जाते हैं. अब बोलते हैं कैसे चला रहे हो गाड़ी, तो एकदम से बॉडी आगे की तरफ झटका लेती है. एक और एग्जांपल है, बस का एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा. बस स्टार्ट होती है, आई एम नॉट श्योर कि बच्चे बस में बैठे नहीं बैठे, स्कूल बस वाले में तो बैठे होंगे, बहुत सारे बड़े हैं जो भाई यहाँ बस में नहीं बैठे इसलिए डर लगता है एग्जांपल देते हुए. तो बस स्टार्ट होती है, आप पीछे गिरते हैं, है ना, बस आगे जा रही है आप पीछे की तरफ गिरते हैं, बस रुकती है आप आगे की तरफ झटका खाते हैं. ये भी सेम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है. आप कॉफी कप का एग्जांपल लेते हैं, दिस कैन बी इंटरेस्टिंग. टेबल पे रखा जो कप है वो जब तक पुश नहीं करेंगे वो वहीं का वहीं रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगती. अपने आप तो चल के जाएगा नहीं, वो बेचारा झटके भी नहीं ले सकता, इधर उधर भी नहीं आ सकता, वो तो बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, दो लोगों के बीच में, एक लोगों के बीच में, जो भी है, बट यू गेट द आइडिया, राइट. सो ये कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि माँ बाप जो हैं ये सारे सवालों के जवाब उन्हें दिया करें. सिंपल सिंपल चीजें जो हैं उनमें साइंस छुपा होता है, साइंस छुपी होती है. एंड वंस यू स्टार्ट टेलिंग देम ऑल दीज थिंग्स, दो चीजें होंगी, एक तो आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उनकी बातचीत में और वो आपकी बातचीत में, और ऊपर से उन्हें साइंस समझ में आएगी. जब साइंस समझ में आएगी, यू नेवर नो कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा जूनियर है जिससे साइंस में साइंस से मोहब्बत हो और वो साइंस में आगे बढ़ सके. वैसे भी आज भी वो जमाना चलता आ रहा है जब माँ बाप कहते हैं साइंस ही लो बेटा, ये आर्ट्स वर्ड्स में कुछ नहीं रखा है. आई फील ऑफेंडेड, लेकिन ठीक है, ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं. अब बिग वर्सेस स्मॉल रिंग का जरा कंपेरिजन करते हैं बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस कीजिएगा, बड़ा रिंग और छोटा रिंग, बड़ी रिंग छोटी रिंग अलग तरीके से मूव करती है. बड़ी जो रिंग है वो स्लोली स्विंग करेगी जब आप उसे स्ट्रिंग से स्विंग कराएंगे, और छोटी रिंग जो है वो काफी तेज स्विंग करेगी. रीजन क्या है? मास और साइज दोनों के दोनों मोशन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉ वहीं का वहीं रहता है. लॉ इससे वो नहीं बदलेगा, ना वो नहीं बदलेगा, वो स्विंग करती रहेगी. आप छोड़ दीजिए, जब भी स्विंग करेंगे छोड़ दीजिए, यू नॉट डेलिबरेटली स्विंग.

बट यू आर स्विंगिंग इट एंड यू लेफ्ट इट इन बिटवीन, तो वो स्विंग करती रहेगी. फर्क सिर्फ इतना आएगा क्योंकि मास और साइज का फर्क है, तो बड़ी रिंग जो है वो थोड़ी हल्की स्विंग करेगी और जल्दी अपने आप रुक जाएगी आफ्टर अ वाइल. बट द स्मॉल रिंग विल स्विंग फॉर अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और ड्यूरेशन तक, और उसके बाद जाकर रुकेगी और थोड़ा सा तेज स्विंग करेगी. अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अपग्रेड करते हैं. सो आर यू रेडी विद दिस? आर यू रेडी? 3, 2, 1. ओके, तो अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस चेंज करना है. देखिए तो देखें हम कि डिस्टेंस चेंज करने से क्या होता है. फिंगर की स्पीड को थोड़ा सा आपको बदलना होगा यहाँ पे, उससे काफी कुछ बदलेगा. 3 ring fingers यूज करते हैं आप, ठीक है? 2 rings यूज कर लें हमने, तीसरा रिंग. बहुत सारे कह रहे होंगे भाई तो हमारी उंगलियों से सारी की सारी रिंग उतरवा दे. मैं प्लीज बच्चों की जरा हेल्प कीजिएगा इसमें, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम ये कैसे होगा. सो 3 rings यूज कीजिए, फिंगर्स की जो स्पीड है स्विंगिंग की वो बढ़ा दीजिए और डिस्टेंस को थोड़ा चेंज करना है. सो 2 fingers से इस बार आपको होल्ड करना है. हर चेंज एक नया पैटर्न बनाता चला जाएगा. And this is the beauty of science. कितना सिंपल है, कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये. इसमें आपको ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ना इसमें आपसे कह रहा है कि बीकर निकालो, पानी डालो, तेल डालो, कुछ भी नहीं करना आपने. वेरी वेरी सिंपल. अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ जो साइंस के बड़े ही फन फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए. स्पेस में आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जो है फ्लोट करते हैं, एकदम बहते रहते हैं, फ्लोट करते हैं वो लोग. वहां ना तो फ्रिक्शन है और ना एयर रेजिस्टेंस है, इसलिए ऑब्जेक्ट लगातार मूव करते रहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया स्पेस में और भी पावरफुल हो जाती है, और भी ज्यादा पावरफुल. सो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, स्पेशली बड़े लोग अगर बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहें घर जाके, तो इस तरीके से ही बता सकते हैं. और जो लोग, जो बच्चे सुन रहे हैं, वो माँ बाप को सिखाइए, इनफैक्ट उनका क्विज ले लीजिए इसी बात पे. अब एक गर्म गर्म चैलेंज टाइम है, तो आई वॉन्ट यू टू गाइज जस्ट बी रेडी. बट बिफोर दैट अगेन अ रिमाइंडर, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर. एंड बड़ी हम्बल किस्म की रिक्वेस्ट है, देखिए ये जो सारा का सारा शो है आपके लिए बनाया गया, आपके लिए डिजाइन किया जाता है, बड़ी मेहनत लगती है इसमें भी. मैं आर्ट्स का स्टूडेंट, साइंस की बातें कर रहा हूँ, तो इसके पीछे वजह तो होगी. वजह बड़ी सिंपल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन एक्सपेरिमेंट्स को जान के, मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ती है. इनर्शिया का चैप्टर जो है वो मुझे याद भी नहीं था, मुझे ज़्यादा अच्छा वो इसको कहते हैं इनर्शिया, फिर अंदर मेरे अंदर जोश आया, फिर मैं इस एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ा. तो एक इंटरेक्टिव चैलेंज रखते हैं, ठीक है? आप घर पे ट्राई करें और ऑब्जर्व करें कि कौन सा रिंग सबसे ज्यादा टाइम लेता है स्विंग करने के लिए. ओके, देन फास्ट मोशन वर्सेस स्लो मोशन व्हाइल यू आर स्विंगिंग द रिंग्स विद द स्ट्रिंग. उसके बाद क्या दोनों रिंग्स एक रिदम में आ सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि दोनों के दोनों रिंग जो है वो एक ही रिदम में स्विंग करें? तो साइंस को आपको फील करना है, सिर्फ सुनना नहीं. ये एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत कुछ समझाएगा आपको. ये इनर्शिया समझाएगा, इनर्शिया कैसे काम करती है, इनर्शिया कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती है, एंड पेंडुलम कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड. ये सबसे फेमस साइंस का फैक्ट है, सबसे फेमस साइंस का एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इट इज एवरीवेयर, हर जगह है ना ये. और न्यूटन भाई साहब का लॉबी लगा हुआ है इसमें. तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ये सीखा कि एक सिंपल स्ट्रिंग और रिंग्स न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर देती है. ऑब्जेक्ट्स मोशन में रहते हैं जब तक उन्हें कोई बाहर की फोर्स रोकती नहीं है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. पर इन एक्सपेरिमेंट्स को और समझने के लिए आपको जो है अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट गोज. जब तक आप उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे जो आपके इर्द गिर्द हैं, जैसे मैंने कहा ना कि बसेस, कार्स, इन सब के जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं. कार के सडन ब्रेक, जैसे मैंने बताया, सडनली ब्रेक नहीं लगता है, आपकी बॉडी आगे की तरफ आ जाती है. मगर ऐसा होता क्यों? ये भी तो क्या है, अभी क्या बताया, इनर्शिया. ये रिविजन है, आपकी बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और वो मोशन कंटिन्यू कर रही है. ओके, तो ये इनर्शिया को दिखाता है. बस स्टार्ट होती है, आप ध्रुव तेरे से पीछे गिरते हैं, फिर जब बस रुक जाती है तो फिर आगे की तरफ हो जाते हैं. तो ये जो है ना, एक्चुअली आपकी बॉडी रेस्ट में थी और वो रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन पुश कर दिया गया एक्सटर्नल फोर्स से. शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, बट प्लीज बच्चों ये जाके शॉपिंग कार्ट को धकेला वकेला मत शुरू कर देना कि मम्मी जो है आपको भी तोड़े और हमको भी सुनाए कि मेरे बच्चों कौन कौन से शोज में क्या क्या सुनने को मिल रहा है. तो शॉपिंग कार्ट को जब आप पुश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो वहां पे तुरंत थोड़ी रुकती है ना, वो चुका रुकती है. आप तो वैसे भी खेलते रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा, तो थोड़ा आगे तक जाती है ना. या तो कोई अंकल उसे पकड़ के रुक देते हैं और बोलते हैं बेटे क्या कर रहे हो ये, या तो मम्मी जो है सुना देती है पीछे से. आजकल तो मम्मियां भी जेन जी स्टाइल में सुनाती हैं, तो यू नेवर नो.

0: एनीवे ये एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि इनर्शिया किस तरीके से काम करता है। अब वो जो कार्ट है क्योंकि वो मोशन कंटिन्यू रखता है जब तक फ्रिक्शन उसे स्लो ना करते, तो वो चलता ही रहता है और एक बहुत आगे जाके वो रुकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। समझ रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा। अब जरा फुटबॉल की रोलिंग पे आ जाते हैं, बट मीनवाइल मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करें एंड स्पेशली रिंग वाले एक्सपेरिमेंट, हमेशा हमेशा हमेशा हमें टैग जरूर करें, कर दिया करें, अच्छा लगता है। मेरे पास जितने एक दो टैग्स आए थे पिछले हफ्ते भी, आई सिंपली लव्ड इट, मैंने अपने बॉस को ही बताया, एंड इट फील्स गुड। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं जो कर रहा हूँ कह रहा हूँ कहीं तो जा रहा है, कहीं तो असर कर रहा है उसका। तो फुटबॉल की रोलिंग में जाते हैं हम, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। फुटबॉल को आप किक करते हैं, वो रोल करती है फुटबॉल, जब तक ग्राउंड में फ्रिक्शन है जब तक मामला चलता रहेगा। ग्राउंड का फ्रिक्शन उसे रोकता भी है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो बॉल कभी नहीं रुकती, जाती रहती। और कॉफी कप जो टेबल पर रखा है उसका तो बड़ा लेम एग्जांपल दिया मैंने, फिर भी समझा देता हूँ। वो अपने आप तो हिल नहीं करी, है ना, जब तक आप पुश ना करो, हिट ना करो, कॉफी अच्छी नहीं लगी फेंक ना दो, जब तक तो ऐसे ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। मैं भी एक्सटर्नल इंटरनल में बड़ा हो जाता हूँ कंफ्यूज। एनीवे, एक जो एग्जांपल हमेशा दिया जाता है, एंड आई नो ये एग्जांपल जो है बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मिल चुका होगा, हमें तो भाई इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए साइंस के बारे में पढ़ाया गया था बहुत सारी चीजें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा है। आपको याद है वो एक्सपेरिमेंट होता था, लेट दिस बी वाई, लेट दिस बी एक्स, है ना। अभी जितने मैथ्स वाले हैं फिजिक्स वाले मुझे जज करेंगे, जज मत करना भाई प्लीज, आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाते थे तो हमें हमारी क्या मजाल है, हम तो देसी भाषा में साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एग्जांपल हमें दिया जाता था वो था स्टैंडिंग इन अ मेट्रो स्टेशन, याद है आपको, स्टैंडिंग इन अ मेट्रो, मेट्रो मेट्रो के अंदर या ट्रेन में। अब मान लीजिए आप मेट्रो में खड़े हुए हैं, है ना, ट्रेन सडनली रुक गई, आप आगे झुकते हैं एकदम से, एक पुश आता है ना, ट्रेन सडनली चलती है, आप पीछे झुक जाते हैं। बॉडी क्या कर रही है? बॉडी अपने प्रीवियस स्टेट में मेंटेन करने की कोशिश कर रही है तो रेस्ट पे ही ना। रोलर कोस्टर का क्या है, जब सडनली आप सडन टर्न आता है उसमें, रोलर कोस्टर में ऊपर से गए चीखते चिल्लाते हुए नीचे बन रही वीडियो और आप चिल्लाए एकदम सडन पे, आप साइड में पुश, एक किस्म का पुश फील करते हैं एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। एक्चुअली आपकी बॉडी जो है वो सीधा जाना चाहती है, लेकिन राइट डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज कर रही होती है, दैट इज अ फैक्ट। स्पेस एग्जाम्पल मेरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आई थिंक उससे बड़ी एग्जाम्पल मैं इनर्शिया का आपको दे नहीं सकता। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए वो फ्लोट करते रहते हैं। नाउ दैट यू नो दिस, अगर कोई आप पूछे बच्चा आपसे, स्पेशली बड़ों से बात कर रहा हूं मैं, कि एस्ट्रोनॉट फ्लोट क्यों होते हैं अंकल, तो अंकल बता देना क्यों फ्लोट होते हैं। इट इज बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर एक बार मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वो मूव करते ही रहेंगे जब तक कोई उन्हें रोक ना दे। साइंस इज जस्ट अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, कितनी सारी परतें हैं अगर आप पढ़ने के लिए बैठे, सो मेनी थिंग्स। पेंडुलम की खास बात ये है, पेंडुलम आप देखते हैं स्विंग करता है तो एक बार आपने चला के छोड़ दिया, अब तो वाले भी आते हैं जो घर में लोग सेकेंड्स की सुई बना लेते हैं उससे, देखा आपने वो टक टक टक टक, स्पेशली हॉरर साइकोलॉजिकल मूवीज में बड़ा यूज किया जाता है उन पेंडुलम्स का, तो वो भी इसी फंक्शन में बात काम कर रहे हैं ना। वो देखा आपने, वो दो जो होते हैं वो कैसे बताऊं मैं, दो पेंडुलम्स होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं एक दूसरे को लगातार, तो वो जो कंटिन्यूस मोशन है वो कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है बिकॉज एक दूसरे को वो लोग पुश कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज। वो भी इसी पार्ट, इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, एंड ये एक्सप्लेन करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो एक एक करके हम लेता हूं। अब टेबल क्लॉथ ट्रिक देखी आपने? अरे कहीं नहीं देखी आपने टेबल क्लॉथ ट्रिक, डोंट टेल मी, ये तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है, एंड ओल्डेस्ट, प्रॉब्ली ओल्डेस्ट इन द बुक, एक मैजिक ट्रिक है। टेबल क्लॉथ को जल्दी से खींचो और प्लेट्स वहीं रहती है, प्लीज ये बच्चे ना ट्राई करें, प्लीज बच्चों डोंट ट्राई, नहीं तो आपके चक्कर में मुझे जो है बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे। बट ये मैं बड़ों को बता रहा हूँ कि अगर आप इस करने में माहिर हैं और आपको लग रहा है कि आपने कोई मैजिक कर दिया है तो ठीक है, लगना अच्छी बात है, मगर इसके पीछे भी एक साइंस है, है ना। आपने जोर से टेबल क्लॉथ जो है वो खींचा और बर्तन वहीं के रह गए, वाला तो ये टेबल क्लॉथ को जल्दी से खींचो, प्लेट्स वहीं रहती हैं वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना, प्लेट्स रेस्ट में रहना चाहती हैं, कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी कि उन पर धक्का लगे और वो गिर जाए। अब जैसे सूटकेस की पुलिंग है, जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं वो 30 किलो का भर के, जिसमें रिश्तेदारों के लिए भी बहुत कुछ होता है और आपके लिए उसमें सिर्फ 5 किलो का काम होता है, वही वाले बैग की बात कर रहा हूँ, उसी वाले सूटकेस की बात कर रहा हूँ। तो सूटकेस को खींचना स्टार्ट किया आपने, है ना, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बार अगर चल गया आपका सूटकेस अपने पहियों पे आ गया तो बस उसे खींचना है, फिर वो आसान हो जाता है। पर वो शुरुआती दौर पे ही है कि बस आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है एंड तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बुक में, सिर्फ बुक में नहीं है, बाहर भी है, हर जगह है, गाड़ी में है, बस में है, फुटबॉल की टीम में है, कॉफी कप में है। तो इसीलिए ये चीजें आसान हो जाती हैं जब आप इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है वो आज का हमारा, जो मैंने आपको बताया, मैं एक बार उसका रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। और जो भी एक्सपेरिमेंट करें बच्चे, तो मुझे ज़रूर बताएं, वुड लव टू नो कि आप एक्सपेरिमेंट्स में कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो आपको क्या चाहिए, आपको आज के एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं बता दूँ, एक तो चाहिए आपको स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेना, वैसे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दो सिक्के लेना है आपको, एक बड़ा और एक छोटा, हाँ, दोनों को दो दो स्ट्रिंग्स में बांधना है और उसके बाद आप देखिए क्या फर्क आता है। You will come to know कि न्यूटन्स का लॉ कितना जबरदस्त लॉ है। पर न्यूटन्स आपके जो लॉ की बात कर रहा हूं मैं, तो एक और लॉ की बात कर लेता हूं। और लॉ यही है कि आप जो है इस शो में ना सिर्फ सुने इसको पर पार्टिसिपेट भी करें, स्पेशली अगर बच्चे सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं तो काफी काफी अच्छा लगता है। इसलिए एपिसोड का नाम, इनफैक्ट शो का नाम ही हमने ये रखा हुआ है, जूनियर साइंटिस्ट। तो एक बड़ी एक छोटी रिंग ले ली आपने, दोनों रिंग्स में डाल दीजिए आप इसको, धागे को, है ना, और एक फिंगर से पकड़ना है आपको, सिर्फ एक ही फिंगर से पकड़ना है, स्ट्रेट राइट, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, गुछ-पुछ नहीं, समझाना भी तो है ना, इतना तेज थोड़ी चलेगा कि इसका दिमाग क्या आपने कर दिया, मैंने तो कर दिया एक्सपेरिमेंट का हुआ, हाँ ये तो हुआ, ये बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है पर ये उतना ही काम का है। फिर से यही कहना चाहूंगा, बिकॉज दैट इज वाई इट शुड बी डन। ओके, एक्सपेरिमेंट, आपस में रिंग्स, उनका सीन, उनकी मोहब्बत, ये आपको नजर आएगी। अगर नहीं है खुदा ना खास्ता, तो सिंपल है कि आप जो है कॉइन्स का भी यूज कर सकते हैं एंड इट डजंट मैटर, लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करें, बस ये मैटर करता है, दैट्स ऑल आई वांट टू से। बाकी जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि ये जो गाड़ी और बस एग्जाम्पल्स होते हैं, ये भी इनर्शिया को दिखाते हैं, ये भी फ्रिक्शन को दिखाते हैं। मगर आपके दिमाग में कोई अगर सेंटेंस हो, कोई ऐसा एग्जांपल हो जो इससे जुड़ा हो और आप बताना चाहें, तो जरूर हमें बता दिया करें। क्या होता है ना कि एक्सपेरिमेंट्स हम निकाल रहे हैं, हमें भी बहुत भर भर के बथेरे एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, लेकिन वो वाले एक्सपेरिमेंट जो बच्चों के साथ किए जा सकते हैं वो मुझे बताएगा, आई वुड लव टू नो, ताकि ये जो जूनियर साइंटिस्ट हमारा शो है इसमें कभी भी कॉन्टेंट की कमी ना हो, और आपकी कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो आपकी कमी महसूस ना हो तो कम से कम हाय हेलो इतना तो कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ा आपने, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आप जब तक बात को धक्का नहीं देंगे तब तक वो मुझ तक पहुंचेगी कैसे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सिर्फ न्यूटन फॉलो नहीं करवा रहे, पूरी दुनिया को आपको ही फॉलो करना है और हमसे जुड़े रहना है। एक साहब थे, उन्होंने मेंशन किया था एक बहुत खूबसूरत चीज थी इन द मॉर्निंग शो लास्ट वीक, उन्होंने एक बात कही थी, वो बोले कि यार मैं साइंस एक्सपेरिमेंट, मैं साइंस में बिल्कुल भी नहीं हूँ कबीर, हालांकि जो है मुझे इंजीनियर बनना पड़ा तो मजबूरी में थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन अभी मैं सब कुछ भूल चुका हूँ एंड आई डोंट लाइक टू रीड इट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जब बच्चे पूछते हैं तो उनको जवाब मिलना चाहिए, एंड दिस इज हाउ आई फील। हम दोनों शो के बारे में बात कर रहे थे, जूनियर साइंटिस्ट के बारे में, नवीद साहब उनका नाम है, एंड आई कम्प्लीटली एग्री, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये नॉलेज का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। जो ज्यादा सवाल कर लेते हैं ना इस मामले में, सुन लीजिए ना क्या दिक्कत है, हमने तो कभी सवाल किया नहीं इसलिए हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आए, पर आप सवाल करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर आपको लग रहा है कि मैथ्स और साइंस का कीड़ा नहीं है, मगर वो कीड़ा बाहर निकले। एंड बच्चे आजकल बहुत ब्रिलियंट है, बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए है, जूनियर्स के लिए। तो इसमें क्या है, माँ बाप के अलावा अगर बहन भाई भी अपना फोटो पोस्ट करते हैं और हमें टैग करते हैं तो वो भी चलेगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी यू, वी वॉन्ट टू सी यू इन आर स्टोरीज, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आपका मैसेज आता है और कहते हैं आपको बड़ा इंगेजमेंट फील होगा आपको। ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एंड दैट्स व्हाई मैं आपको पुश करता रहता हूँ कि प्लीज प्लीज आए सोशल मीडिया पे कनेक्ट करें ना ऐसा ना करें प्लीज कनेक्ट करें एंड इन तमाम चीज़ों को इन एक्सपेरिमेंट्स को याद रखें बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आपके एक्सपेरिमेंट को ईजी करेंगी कुछ चाहिए भी नहीं ज़्यादा दो ही रिंग चाहिए तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके जहन में हो या आप बताना चाहते हैं तो कर दीजिए क्योंकि इससे पहले कि ये शो का बिल्कुल आखिरी मरहला आ जाए फिर आप बोलें अरे मैं तो वेट कर रहा था कि कब बताना है आपने बताया ही नहीं कब तक है शो तो फिर आगे जाके आप मुझे ना ब्लेम करें इसलिए अभी के अभी आप एग्जांपल्स के साथ अगर कोई एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए एक एक भाई ने जो था मुझे रिसेंटली उसके बारे में बताया था अरे वो क्या कहते हैं स्लीप एक्सपेरिमेंट्स के बारे में तो उसके बारे में भी एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें तो आपको सच में कुछ नहीं चाहिए एक प्रोजेक्ट करना है पर ऐसा नहीं कि वो करते करते आप सो जाएं उसमें लिटरली आपको नहीं मिल सकती वो एक्सपेरिमेंट ऐसा मगर वो हम अगले हफ्ते की तरफ करेंगे आज तो हम भाई साहब इसी बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पेंडुलम कार के ब्रेक्स और बस के ब्रेक्स बस का चलना ये सब काम करता है ना अब प्लेन भी तो ऐसे ही है ना प्लेन का भी ऑलमोस्ट सेम ही हिसाब किताब रहता है तो ये जब सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने तो यू कैन नॉट डिनाई और अच्छा भी नहीं लगता कि कोई बच्चा पूछे कि पापा ऐसा क्यों हुआ और आपके पास कोई जवाब ना जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो इर्द गिर्द की चीज़ें भी इन्वॉल्व करें बच्चों को बताएं कि हर चीज़ में साइंस है इनफैक्ट जो बिल्डिंग बना रहे हैं बन रही है उसके पीछे भी साइंस है तो जितनी जगह आप साइंस ढूंढेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट जागेगा आपका तो क्या ही इंटरेस्ट जाएगा बच्चों का इंटरेस्ट ज़रूर जागता है एंड दे आर वेरी वेरी इंट्रीग्ड एंड क्यूरियस टू नो कि अगली बार क्या होगा सो सेंड योर मैसेजेस एंड ऑल्सो लेट अस नो कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अभी तक तो और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके जहन में है तो हमें ज़रूर ज़रूर ज़रूर पुश करें ओके अब एक छोटे से क्विज की तरफ चलते हैं बिकॉज क्या है क्विज नहीं करो ना तो मज़ा नहीं आता मुझे लगता है कि क्विज हमारे शो का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो हमें कर लेना चाहिए ताकि एक रिविजन भी हो जाए और सवाल जवाब अगर आप पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं तो जितना ही मैंने समझाया न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है सबसे पहले तो यही सवाल है याद भी है बड़ों को बच्चे तो बता देंगे भी खट देने से बचा देंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है ए ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज मूव फास्ट ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स चेंज कलर ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट्स एट वेरी सॉरी एट रेस्ट स्टेज एट नेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन या डी ऑब्जेक्ट डिसअपीयर सही जवाब बताइए 5, 4, 3, 2, 1 भी हो गया तो पहला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे लग रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसी तरह कहता है ऑब्जेक्ट एटलीस्ट एट रेस्ट में रहता है जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसे मुद्दे की बात पुश ना करे ठीक है तो ये वाला जो न्यूटन का पहला लॉ है ये अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर कीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब अगला जो सवाल है वो है कार के कार से जुड़ा हुआ जब कार सडनली ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ क्यों जाते हैं भाई क्या दिक्कत है क्यों ऐसा होता है वो तो अल्लाह का रहमो करम है कि हमें सीट बेल्ट की फैसिलिटीज हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक आगे की तरफ झटका लगता है तो ऑप्शन दूं मैं आपको ऑप्शन ए है ग्रेविटी ऑप्शन बी है इनर्शिया ऑप्शन सी है लाइट और ऑप्शन डी है साउंड ओके ऑप्शन ए ग्रेविटी फिर इनर्शिया लाइट साउंड इसका सही जवाब है नहीं मैं वो बजा नहीं पाऊंगा साउंड इफेक्ट आप समझ गए ना खुशी वाला साउंड इफेक्ट है सही जवाब है इनर्शिया बॉडी मोशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ठीक है मेरे साथ साथ आप सॉल्व भी कीजिएगा साथ साथ आप बात भी कर सकते हैं तो कौन सा एग्जाम्पल इनर्शिया का है ऑप्शन दूंगा आपको फिर बताइएगा कौन सा एग्जाम्पल इनमें से इनर्शिया का एग्जाम्पल है पहला है फैन स्पिनिंग आफ्टर स्विच ऑफ जो आप स्विच ऑफ करते पंखा फिर भी घूमता रहता है नंबर टू पे है बर्फ का पिघलना नंबर तीन पे है वाटर का बॉयल होना और ऑप्शन डी है लाइट ग्लोइंग तो इतना तो सही जवाब है इसका सही जवाब है इसका फास्ट स्पिनिंग बॉल जो कुछ देर के बाद अपने आप बंद हो जाती है ये बहुत जरूरी है ये क्विज आप भी कर सकते हैं बच्चों के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल भी ऐसे जुड़ा हुआ ही है कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए बताइए अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो आप मोमो की प्लेट ले आएंगे लेकिन यहाँ बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हमारा क्रिएचर जो है उसका क्या कहना है कि ऑप्शन क्या है ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए फोर्स कलर स्पेस या साइज बताइए क्या चाहिए इसके लिए चाहिए अगेन ड्रम रोलिंग सही जवाब है फोर्स विदाउट फोर्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा हिलेगा बिल्कुल भी नहीं दैट्स हाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं 5 है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स क्यों फ्लोट करते हैं अब तो आपको यकीन होंगे वो बता भी सकते हैं आप क्यों फ्लोट कर रहे होते हैं अरे चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको क्योंकि उन्हें नींद आती है बी क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता सी क्योंकि वो जंप करते हैं या डी क्योंकि हवा ज्यादा होती है तो सही जवाब है ऑप्शन बी क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं होती है उस जगह पे तो प्लीज इन जगहों पे ना जाएं और इसके साथ साथ छठा सवाल पूछ लेती हूँ छठा सवाल है कि पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में रिंग्स क्यों मूव करते हैं ये भी एक सवाल है अभी इतना मैंने बता दिया ये तो बता देना चाहिए आपको कि कैसे स्विंग करते हैं तो ये जब आप फॉरवर्ड करेंगे लोगों को और पूछेंगे इनफैक्ट ये वाला क्विज जो है आप घर पे भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये पूरा का पूरा क्विज भेजूंगा फिर बच्चे से पूछिएगा आपको मजा आएगा ओके एंड बे इंतहा इनर्शिया की बातचीत हो गई है इसकी कोई हद नहीं बट इनर्शिया ही आज का सब्जेक्ट है और इनर्शिया को लेकर जो हमारी बहन है जिन्होंने कुछ देर पहले कॉल करी थी मैसेज किया था हमें सोशल मीडिया पे उनके बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन किया हमसे माइसा की अम्मी है तो बहना थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड कोई भी अगर आप साइंस से जुड़े हुए हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कहीं पर भी हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हमसे जुड़ें हमसे बात करें कोई भी एक्सपेरिमेंट जो घर पे किए जा सकते हैं एडवाइस दीजिए कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ईजी हैं रेडियो पर समझाने में मज़ा भी आएगा और बच्चे समझेंगे भी तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं प्लीज़ गाइड अस थ्रू बाकी इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलेंगे 15वां एपिसोड आएगा पर अभी फिलहाल ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा बता सकते हैं 666-22107 पर 666-22107 पर और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं तो प्लीज़ गेट इन टच और आप जो है मेरा भी नाम ले सकते हैं नो प्रॉब्लम देख भी सकते हैं तो हमारे कभी को ठीक है इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी जूनियर साइंटिस्ट आई लव यू बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं मास्सलाम
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: Assalamu alaikum and good evening. Aap sun rahi hai Dear Family with Arjuma Bashkan. जी राइट वक्त हो गया है 4:02 और मेरा आपके साथ रहने वाला है 5 तक राइट और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे मजे में होंगे सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा वीकेंड आप लोगों को अच्छा गुजरा होगा दो दिन की एक दिन की जितनी भी आप लोगों को छुट्टी मिली या फिर किसी को बिल्कुल ही नहीं मिली तो उन सब लोगों का जो भी होगा भाई उन्होंने दिन तो अच्छा ही गुजारा होगा ना और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो है वो एक रूटीन के मुताबिक रवां दवां है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है और सारी जो चीज़ें हैं वो मुयस्सर हैं सब ठीक चलने का मकसद ये होता है कि वो कहते हैं ना कि एक हदीस है या कॉल है कि अगर हमारे पास मतलब खाना पीना और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं हमारे पास एक शेल्टर है जहां हम रहते हैं घर और खाना पीना मिल रहा होता है हमें और उसके अलावा और भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है ज़िंदगी में तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजर रही है तो मेरी उम्मीद यही है आप लोगों के लिए कि इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मामला आप लोगों के साथ भी होगा राइट और आज आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर तो हम लोग बेसिकली रिश्तेदारों का क्योंकि अब डियर फैमिली जो है वो वाइंड अप होने वाला है अब हम मतलब कुछ मेरे ख्याल से एक दो हफ्ते रह गए हैं क्योंकि तीसरा जो हफ्ता होगा अब दो हफ्ते हैं आज का ये वाला हफ्ता है आज का हफ्ता कह रही हूँ ये वाला हफ्ता है और उसके बाद वाला अगला हफ्ता है जिसमें हम डियर फैमिली का मतलब एक तनहा से बातचीत करेंगे और फिर हमें ईद के बाद एक दिन मिलेगा सिर्फ वो सिर्फ 31 जो होगी और उससे पहले ये शायद दो दिन मिल जाएं क्योंकि ट्यूसडे से तो कुछ ट्यूसडे से या हो सकता है मंडे से ही हज की ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर अगर ये होता है वेनसडे को ईद होती है तो ट्यूसडे से या फिर अगर वो होती है एक दिन पहले हो जाती है अल्लाह के ट्यूसडे को हो जाए मैं बहुत दुआ कर रही हूँ उसके लिए आप लोग भी कीजिए तो इंशाल्लाह ताला मतलब हो सकता है कि सिर्फ संडे मिले तो इसलिए तकरीबन दो हफ्ते हैं हम लोग इख्तिताम के सफ़र पर रवान दवा हैं डियर फैमिली के और जब ये होता है कि हम फैमिली की बात कर रहे होते हैं तो उसमें होते हैं हमारे बहुत सारे रिश्ते जिनके बारे में हमने बातचीत शुरू की वालदा से शुरू किया था सिलसिला फिर हम आए थे अपने वालिद हुजूर की तरफ और फिर हम जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हमने सेलिब्रेट किया उनकी बात की और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि होते हैं हमारे खाला खालू मामू मतलब ये जो सारे आंटीज और अंकल्स जिनको इंग्लिश में कह के निमटा सकते हैं हम वरना उर्दू में तो बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं खाला खालू मामू मामी और आपके चचा चची ताया ताया अबू फुप्पा फुप्पी मतलब ये सारे जितने भी हैं ना समझ रहे हैं ना तो ये सारे अब्बा की तरफ के अम्मा की तरफ के सारे जो लोग हैं वो लोग आज हम उनको सेलिब्रेट करेंगे ठीक है उनके बारे में बात बात करेंगे और आपने कॉल करनी है हमें 4434377 पे कॉल करने का नंबर है और इसके साथ ही 6622107 पे आप हमें कर सकते हैं मैसेज थोड़ा सा देर हो जाती है मैसेजेस की तरफ आपके आने के लेकिन हम शामिल जरूर करते हैं तो एक कॉल आ गई लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज अपना रेडियो ऑफ कर दें ताकि हम आपको ले सकें हेलो अस्सलाम वालेकुम रेडियो ऑफ
1: सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू मैडम जी कैसे हैं आप
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक कौन बात कर रहे हैं
1: जी मैं समद बोल रहा हूं
0: जी समद क्या हाल है ठीक ठाक है
1: मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं खैरियत हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप बताएं भाई तो कैसे रहे आपके दो दिन
1: देखिए मैडम दो दिन तो वो थी अब जैसा आपने कहा है कि जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बस इतना ही कहना चाहूँगा
0: हाँ, बिल्कुल ऐसे ही
1: मतलब उतना कुछ खास नहीं था बट ठीक ठाक गुजर गया समझे
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तो आज आपने जो है मुख्तलिफ गुलदस्ते की बात की है आज आपने मतलब आज की टॉपिक जो है हमारे मुख्तलिफ फूल जो हमारे दामन में है उनके बारे में छेड़ दिया है आपने टॉपिक
0: बिल्कुल ऐसे ही है
1: तो इसी बात पे जो है शुरुआत करते हैं हम एक प्यारे से शेर से तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि क्या कहूँ इन रिश्तेदारों के बारे में मेरी किस्मत के फूल है ये लोग
0: अच्छा जबरदस्त मुझे लगा था कुछ उल्टा पुल्टा होगा
1: ना ना उल्टा पुल्टा नहीं मतलब देखें तो सही आगे क्या है अभी तो
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके फिर दोबारा मुकर्रर मुकर्रर
1: अरे शुक्रिया जज़ाकअल्लाह ये यही चाहते हैं कि दाद मिली तो जो है मजा आता है
0: जी, जी,
1: कहते हैं कि क्या कहूँ इन के बारे में मेरी किस्मत के फूल हैं ये लोग जब भी देते हैं एक नया जख्म देते हैं ये लोग मैं अगर पता चला कि मेरे कोई रिश्तेदार सुन रहे हैं तो
0: मसला हो जाएगा
1: छोड़ के लिए
0: अच्छा वालदा वालिद फिर उसके बाद दादा दादी की हद तक ना सबकी प्यार मोहब्बतें सब कुछ बरकरार रहता है लेकिन जहाँ पे आ जाते हैं ना बाद वाले उनकी औलादे आ जाती हैं ये दादा दादी और नाना नानी की वहाँ पे आगे थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ होती है अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा होता है।
1: नहीं ये बात है, वो कहते हैं ना कि फूल के साथ हमेशा कांटे लगे होते हैं, तभी तो फूल की जो है अहमियत होती है।
0: जैसे उस दिन जुल्कर्नैन साहब कह रहे थे ना कि ये, जुल्कर्नैन साहब ही कह रहे थे मेरा ख्याल है कि ये दाद, मतलब वो लोग तो सही होते हैं, सास वास ठीक होंगी लेकिन नन जो होंगी ना वो नहीं रहने देंगी। तो इस तरह की कहीं ना कहीं कहीं पे कोई कैरेक्टर होता है, कहीं पे कोई कैरेक्टर होता है।
1: नहीं ये मतलब कुछ ऐसे सेलेक्टिव कैरेक्टर्स है ना कि मतलब कि वो बाज आने वाले नहीं है, बिल्कुल वैम्प वाली रोल्स है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे, मतलब कायदे से एकदम छोड़ेंगे नहीं कि आप तुम्हें हम क्या कहते हैं अपने के सुनागर जाएंगे जो भी है, मतलब कि वो एक ऐसा वाला एक इंजेक्शन होता है ना रिश्तेदारों का कि ये हमको पता बाद में समझ में आता है कि यार इसका तो जवाब ये देना चाहिए था मुझे, ये तो बोल के निकल गए। चलो कोई नहीं जाने दो। और ये टारगेट भी करते हैं पता है आपको, जो जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जो इसको पर इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आता है उनको, जो मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं और उनको जो है उसका वॉइस वर्सा नहीं मिलता है, तो वो उनको टारगेट करेंगे,
0: उन्हीं को
1: इजी टारगेट
0: बेसिकली उन्हीं को
1: वो करके उनको जो है सुनाकर चला जाएंगे। अब वो बेचारे या बेचारी जो है वो सोचते रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि ये मुझे सुनाकर चले गए। अच्छा जबकि कुछ ऐसी सुनाने वाली बात होती भी नहीं है,
0: होती भी नहीं,
1: बट ये सुनाकर जाएंगे अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना कुछ करने के लिए।
0: ऐसा ही पता है, जो दबता है ना लोग उसी को दबाते हैं, ये एक फैक्ट है।
1: हाँ ये तो है। अब ये हमारे यहाँ में जो है आजकल जो है, पहले तो जो है मोहब्बत खुलूस हुआ करती थी हमारे वालदा और वालिद के जमाने में, अभी भी है, मतलब उतना ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि सबके अपनी बिजी लाइफ हो चुकी है, सब अपनी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि कोई ज्यादा कोई कम, तो ऐसे ही चल रहा है। पहले हुआ करता था कि आप याद रखें तो ईद बकरीद पे सब मिला करते थे, सब मिलकर चैटिंग होती थी, अच्छा बुरा सब बात होती थी, लेकिन अभी के टाइम में तो बस व्हाट्सएप चल रहा है मैडम।
0: अच्छा ये चल रहा है, और मतलब वो शिकायत तो नहीं होती उन लोगों को कि भाई आप तो मिलते ही नहीं, आप बात ही नहीं करते, ऐसा वाला सिलसिला तो नहीं? शुक्र करें,
1: शुक्र करें व्हाट्सएप पे देखा नहीं आपने। अच्छा व्हाट्सएप की भी अपनी एक कहानी है पता है आपको, आप जैसे मेरे रिश्तेदार है मान के चले या फिर मैं आपका हूँ, तो हमारे अपने एक अलग से दो ग्रुप चलते हैं।
0: अच्छा
1: उसने ये कहा, उसने कहा, मतलब
0: हाँ,
1: कि भाई
0: इधर बात हुई उधर फिर दूसरी बात हुई।
1: हाँ जी चुगलियों का तो भंडार होता है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप। और अगर समझो कि अगर बुरा ना माने, अगर फीमेल वर्जन में बैठ जाए हम कभी जाके अपनी खाला पुप्पी उसमें इसमें, तो मतलब कि भाई किसी ना किसी की छुट्टी तो चल ली है।
0: सही कह रहे, नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, ऐसे ही है। लेकिन आजकल खैर वैसे मर्द हजरात भी कम नहीं है,
1: आपने बहुत कम कहा है, बराबर नहीं, मतलब 100 औरतें मर रही है ना, पहले तो मरती नहीं है, अगर मर रही है तो एक मर्द पैदा हो रहा है,
0: पैदा हो रहा है।
1: तो मतलब पूछे नहीं, मतलब उसके अंदर में फुफ्फों की आत्मा आ रही है, उसके अंदर में पता नहीं किसकी किसकी रूहें घुस रही है, और वो मतलब के बंदा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मर्द हजरात को जितने भी सुन रहे हैं भाईजान जो घरों में रह रहे, कृपया करो बाहर निकलो, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, घर में रह रहे के तुम लोग भी खतरनाक हो गए और कंपनियों में आके मैनेजर बन के हमें परेशान कर रहे हो। पता चला मेरा मैनेजर सुन लेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी।
0: यही हर जगह जो है ना मसले चल रहे।
1: मतलब एक अजब गजब पॉलिटिक्स है।
0: नहीं नहीं ये बात मतलब सही है कि होता
1: बात भी
0: इस तरह से है, इस तरह का भी है मामला।
1: हाँ ये एक एक आपको मैंने सिक्के का एक पहलू बताया, और दूसरा पहलू ये भी है कि रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मेरे मामा लोग हैं। अच्छा माँ की तरफ तो मामा का जो है ना वो बहुत अच्छे ही होते हैं वैसे नॉर्मली, और दादा की तरफ भी कभी अच्छे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं।
0: अच्छा।
1: लेकिन मेरा जो अटैचमेंट है, क्योंकि मैं अपने ननियाल में ज्यादा रहा हूँ, तो मैं ननियाल के बारे में उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ननियाल के बारे में मैं ज्यादा टॉक करूंगा कि वो बहुत औसम है मेरे मामा उन लोग के, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है।
0: सही सही सही। अच्छा यूजली यही होता है कि लोगों को ना अपने ननियाल की तरफ के जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये थोड़ी सी ना पॉलिटिक्स होती है।
0: अच्छा
1: अरे मतलब कि भाई माँ का दबदबा चलता है घर में तो उन्हीं की चलेगी और उन्हीं के घर वालों की चलेगी, और बाप की घर की तो कुछ नहीं, कुछ
0: ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हाँ ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि वो ही होता है ना कि माँ मतलब घर ना एक औरत चला रही होती है और वहाँ पे उसी की चलती है, और फिर वो ही डिसाइड करती है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये वाला सिलसिला होता है। तो इसलिए यूजली जो है ना हम लोगों को देखे हैं तो थोड़ा सा होता है इन्फ्लुएंस उस तरफ।
1: नहीं वैसे तो घर नहीं, आजकल तो सभी चीजें औरतें ही चला रहे हैं।
0: हाँ ये भी बात सही है। अब इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन फैक्ट
1: नहीं, नहीं, ये तो देखिए मैं मेरे हिसाब से रिश्तेदार रहना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, रिश्तेदार बहुत अच्छी चीज है। देखिए आपसी अख्तिलाफात बाकी छोटी मोटी नोक ये सब अपनी जगह है,
0: वो अलग जगह है, लेकिन ये कि रिश्तेदारों में मोहब्बत भी होती है।
1: अल्लाह सुभान व तआला ने हमको इतने प्यारे रिश्तों से जोड़ रखा है ना, ये आपकी ये सब सारी चीजें तो शैतान की तरफ से होती है कि हमको जो है ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, ऐसे उनका प्रॉब्लम इनका प्रॉब्लम,
0: सही बात,
1: सारी चीजें तो चलते ही रहती हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तो ये हम जिनको जितना बुरा समझते हैं शायद वही हमें सामने आके खड़े हो जाते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। वैसा वाला भी होता है लाइफ में, तो ये भी एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हाँ हम रिश्तेदारों को बिल्कुल ही बुला नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है। मैंने तो मतलब हर रील में जो है फुप्पू को सुना है कि भाई फुप्पू की काट रहे हैं पतंग,
0: पता नहीं जिसे देखो वो ही मैं भी ये देख रही होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फुप्पियाँ तो बहुत अच्छी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकती मेरी फुप्पियाँ बहुत अच्छी हैं।
1: मेरे भी बहुत अच्छे थे फुप्पू, खैर अल्लाह एक ही थे, अल्लाह उनका जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने मुझे तो मतलब राजकुमार बना के रखा था, मैं समझ नहीं आता कि बाकी फुफियों के ताल्लुक से क्यों। अब मेरी भी बहनें हैं, अब मेरे बच्चों के साथ में जो है बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी फूफी है जो जीना हराम करके छोड़ी
0: है, सारे फूफियों को बनता होती है। मैं उसके बारे में बताऊंगी, मैंने सुना है बहुत लोगों से इस तरह से, और बहुत खतरनाक खतरनाक भी होती है, कोई तो वजह है ना जो लोग बोलते हैं होता है। चलें जी समर, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अच्छी एक मजेदार कॉल कर दी, तकरीबन हर एक्सपेक्ट बता दिया रिश्तेदारों का। चलें तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, थैंक यू, बाय। रही जी तो हमारे साथ थे समर, और जबरदस्त मजा आया इनसे बात करके। अब देखते हैं कि एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु।
0: जी
2: क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं।
2: अल्लाह अकरम, ठीक ठाक बिल्कुल। पहचान गए होंगे ना आप तो, आज तो पहचान गए।
0: हाँ अब थोड़ा मैं बोलने का इंतजार ही कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा जरा और बोल लें ताकि मैं कंफर्म कर लूँ कि तलहा ही है ना।
2: अरे आज तो ख्वासात फोन माफ है आपको,
0: अल्लाह का शुक्र, मैं अभी भी डरते डरते बोली थी।
2: अगर आप आज रिश्तेदार होते ना मेरी, मैं तारीफ कर जाता आपकी।
0: चले कोई बात
2: नहीं, तारीफ करता
0: इसी खुशी में आप अपनी फुप्पो की तारीफ कर ले।
2: हाँ ये जो भाई की कॉल आई ना, भाई से बोलो मेरी फुप्पो ले जाओ काम करो दो दिन ना, इसने कानों में हाथ लगाया ना।
0: अच्छा
2: आपकी फुप्पो का भतीजा नहीं?
0: अच्छा
2: हाँ।
0: अच्छा ये बताए फुप्पो के साथ ज्यादा रहे तलहा गया?
2: अरे भैया
0: हाँ तो बस अब हम अंदाजा लगा सकते हैं फुप्पो कैसी होंगी, यही पूछना चाह रही थी।
2: बेहतरीन भाई बेहतरीन, बहुत अच्छी
0: है। असर तो लिया होगा भतीजे ने फुप्पो का।
2: हाँ बहुत पूरा पूरा हूँ भाई,
0: है ना, वही तो इसलिए तो मैंने पूछा था। ये
2: अरे आप ये बताओ आपकी फुप्पो कतर में रहती है क्या?
0: नहीं मेरी फुप्पो कतर में नहीं रहती।
2: या एफएम सुनती है क्या?
0: नहीं वो भी नहीं सुनती।
2: सेफ साइड पे खेला ना आपने?
0: नहीं नहीं नहीं, वाकई मेरी फुप्पियाँ अच्छी हैं मेरी, माशाल्लाह से तीन फुप्पियाँ, एक का इंतकाल हुआ है अभी पिछले साल ही, लेकिन ये कि दो और हैं, लेकिन वाकई मेरी फुप्पियाँ जो हैं वो अच्छी हैं।
2: लेकिन अगर फुप्पियाँ अच्छी ना तो फिर सही है,
0: फिर सही है,
2: फिर सही है।
0: क्यों?
2: उनके पास सही है ना, मैं आपकी तारीफ में क्या बोलूं।
0: अच्छा चलो ठीक है, अब अपनी बात करें।
2: समझ गई ना?
0: नहीं नहीं समझी मैं, लेकिन मैंने कहा रहने दो चलो यार। मैं अपनी मजीद तारीफ नहीं सुनना चाहती।
2: हाँ लेकिन अगर फुप्पी अच्छी है दैट मींस कि फिर आप में मसला है।
0: अरे ये क्या हुआ, मतलब सब लोग अच्छे नहीं हो सकते क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, वाइस वर्सा होता है, हमेशा पैरेलल वाली कहानी होती है ना,
0: मतलब एक बुरा होगा तो एक अच्छा होगा।
2: हाँ हाँ
0: तो यार मतलब मैं अच्छी हूँ जब भी, तो अपनी फुप्पो को अच्छी कह रही हूँ, मतलब अगर मैं बुरी होती तो मैं अच्छा कहती, उनको मैं फिर भी बुरा कहती।
2: यार मैं यकीन करें ना कतर में तोता ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, आज मुझे मिल गई है।
0: क्यों?
2: जो अपने मुंह में
0: मिट्टू हो गए। नहीं वही मतलब अगर मैं बुरी होती, लॉजिकल बात कर रही हूँ, अगर मैं बुरी होती तो फिर मैं दूसरे को बुरा कहती ना, मैं खुद को, मतलब मैं क्यों कहती है वो अच्छी है, मुझे तो बुरी लगती है वो, क्योंकि मैं खुद उनको बुरा ही समझ रही होती।
2: यार आप
0: हो गए ना लाजवाब, लाजवाब हो गए आप, लाजवाब हो गए।
2: कौन बात कर, आप बात कौन कर रही हैं?
0: मैं वही बात कर रही हूँ जो आप समझ रहे हैं।
2: ये लॉजिकल बात कहाँ से आ गए भाई?
0: क्यों
2: है?
0: क्यों
2: किसी और बंदे से बात कर रहा हूँ क्या मैं?
0: या अल्लाह मतलब आपने मुझे क्या समझ दिया तलहा?
2: यार देखिए
0: लिस्टर्स को फिर वोट करना पड़ेगा, लिस्टर्स को फिर वोट करना पड़ेगा।
2: इतनी तो मुझे आपसे अप्लाई है ना कराची का, ओके इतना तो मैं समझ बोल सकता हूँ ना आप लोग।
0: आय हाय चले, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं। चले बताएं तो खैर पुप्पो और शेजारू के बारे में बताएं, मुझे छोड़े मुझे लग रहा है वाकई में आपकी कोई बिछड़ी हुई शेजारू जिसको आपने टारगेट कर लिया है।
2: रिश्तेदार बताऊंगे भाई, देखे मैं ये हूँ ना, अच्छा मैं आपको एक एक छोटी सी बात बोलता हूँ आप समझ जाएंगे।
0: सही सही,
2: पूरे खानदान में ननियाल और ददियाल दोनों में ना मतलब मुझ में मसला है शायद कि मैं इंतहाई बदतमीज। हाँ मतलब मुझे है कि मैं इंतहाई बुझो मैं हूँ सची कह रही हूँ तुम्हें तो मैं मुँह फटू मैं मेरी मजबूरी है
0: सही
2: उससे ना रोका नहीं जाता पेट
0: मैं लियो हूँ मेरी भी मजबूरी है तो बहुत अच्छे तो मेरे भी हालात नहीं है मतलब मैं बोल देती हूँ ये नहीं कि बुरी हूँ लेकिन मैं बोल देती हूँ जो भी है।
2: नहीं नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मैं बुरा हूँ माशाल्लाह।
0: अच्छा
2: और हाँ और मैं कंसिस्टेंट हूँ दोनों तरफ।
0: अच्छा मसलन क्या
2: तो वो एक है दोनों तरफ यही है कि भाई कुछ तो भी कर लो तनहा को तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि मुझे तो ना फैमिली डिस्कशन में भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता कि कोई ऐसी बात कर जाएगा जो सामने वाले ने नहीं सुननी है और मैंने बोल देनी है तो फिर ये कि वो बात खराब हो जाएगी।
0: ओए
2: मैं बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल भाई जो बात सही है ना वो कर देता हूँ चाहे बुरी लगे अच्छी लगे हालांकि गलत बात है कभी कभी इंसान को दिल रखना चाहिए किसी का ना
0: हाँ,
2: लेकिन वो होता नहीं है बड़ा मुश्किल ऐसा मतलब होता नहीं है मतलब अनइंटेंशनली सच निकल जाता मुंह से जो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा होता।
0: सही सही हो गया।
2: हाँ तो ये कि वो अभी लास्ट टाइम ईद तो हुआ था भैया अभी देखे ना ईद के दिनों में अभी 50 रुपए या 100 रुपए की वैल्यू है पाकिस्तान में नहीं है ना
0: नहीं है
2: ठीक है ना तो हमारी फूफी जान जो है ना वो उन्होंने 2 रुपए से ईदी देना शुरू करा था तो लास्ट ईयर तक माशाल्लाह वो 50 रुपए
0: पचास
2: पहुंची है तो भाई वो मैं गया था ईद पे 3 साल के बाद क्या ईद करी तो भाई मैंने कहा यार मैंने पुप्पो यार अल्लाह की तभी 50 रुपए दे रही हो यार आप वो भी मुझे मेरे बच्चे को तो आप 20-30 रुपए पकड़ा रही हो मैंने क्या अच्छा मेरे मुंह से निकल गया मैंने यार कहाँ लेके जाओगी यार इतना अच्छा उनकी कोई औलाद भी नहीं है ना तो बड़ी सेंटिमेंटल है इसमें तो ना मैंने कहा यार कहाँ लेके जाएंगे यार ओप्पो यार कसम ये तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है इसकी तो नजर है मेरी उस पे
0: क्यूट लग रही है क्यूट लग रही है यार ये तो ज्यादती तो आपकी तरफ से हुई है जो सीधी सी बात मैं अभी मुंह पे बोलती हूँ लियो हूँ मैं
2: मेरी मेरी फुप्पो था कुछ दूसरे से आपकी बेवा देखा
0: है हाँ देखा है
2: बाल बाल बाल भैया बस वो है वो बेहतरीन मैं उनके मजे ही बड़े लेता हूँ बहुत मजे लेता हूँ
0: इसका इसका मतलब है तहा कि आपको अपनी फुप्पो अच्छी तो लगती है ये बात तो है
2: नहीं अच्छी है अच्छी सही है अच्छी लेकिन वो ना बस फुप्पो है
0: फुप्पो तो फुप्पो ही होंगी
2: कुछ भी कर लेना वो रहेंगी फुप्पो।
0: अच्छा अच्छा हमारी ऐसी खाला है हमारी जैसे आप बता रहे हैं ना हमारी इस टाइप की एक खाला है
2: हाँ।
0: उनसे भी हम तफरी भी मतलब तफरी क्या मतलब मुंह पे तो नहीं लेकिन पीछे तफरी लेते हैं
2: नहीं नहीं भाई अपना तो सेकअप यही अच्छा मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है ना वालिद का तो अच्छा सबकी क्या होता है भाई थे तो ये करते थे भाई होते तो ये करते थे भाई होते तुम लोग ये वाला रवैया नहीं करते मुझसे जो भी कर रहे हो तो फिर वो चुप हो जाते हैं वो सब शुरू में तो बहुत सुना ना मैंने अब्बू के इंतकाल का पापा के इंतकाल के बाद ना भाई होते तो ये था आप देखते हैं क्या होता है अरे भाई क्या मतलब है अच्छा कॉल भी मैं ही करूं कॉल भी मैं ही करूं ना यहाँ से दूर से बैठ के आज कैसे याद कर लिया अबे
0: ये तो तरीका ये होता है
2: ये क्या बात हुई आज कैसे याद कर लिया यार अच्छा और वो क्या और सुनाओ भाई क्या सुनाऊं और मैं क्या सुनाऊं आपको मैंने भाई ऐसा रही थी कॉल कर ली थी अरे इससे भी बात कर लो इससे अरे क्यों बात कर लो मैंने आपसे कॉल करी है बात कराओ खत्म करो अल्लाह हाफिज करो भाई अच्छा इससे ही बात अरे ये बैठा इससे बात कर लो अरे भाई मेरी ना मैंने मुंह पे उससे कभी बात नहीं करी मैं कॉल पे कैसे बात करूँ उससे
0: तो भाई
2: यार मैं कहता हूँ सुने कसम से मेरा बायकॉट कर दो मैं खुश हूँ उसमें दूर अच्छे भाई अच्छा मैं हूँ इस तरह ना अल्लाह ताला ने मुझे दूर भेज दिया उन सबसे बिल्कुल हाँ सीरियस अभी जो है ना वो एक मेरे करीबी हैं कजन है उनके उनकी जॉब हो गई थी यहाँ पे कतर में
0: हाँ।
2: अरे भाई मेरे तो बैक पर चेहरे ऊपर एक नीचे मेरा अल्लाह ना करे आ जाए यहाँ पे मुसीबत हो जाएगी रोज मेरे घर पे आ धमकेगा
0: तो वैसे पता ही है कराची वालों का सीन है ये वाला, कराची वालों का है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप देखिए मतलब हमारे रिश्तेदार वगैरह ना मतलब हमारे आसपास ज्यादा रहें हमें कोई इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब बाकी देखे ना कौमें तो वो सब अपने अपने अपने रिश्तेदार सारे भर भर के लेकर आ रहे होते हैं, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। गलती है हमारी वैसे अल्लाह
2: यार, हम गलत हैं क्या?
0: नहीं मुझे लगता है कि हम थोड़े से गलत हैं, मतलब देखिए ना बाकी
2: नहीं बोलो यार ये लाइफ पे
0: नहीं मैं तो सच बोलती हूँ भाई, मुझे लगती है वाली कि ये खामी है हमारी, मतलब जो मानने वाली बात है
2: यार। हम क्या करें, हम बिल्टन ऐसे कराची का पानी है, पानी पे डाल दो सारी कहानी ना,
0: बाकी जो शहरों के लोग सुन रहे होंगे ना वो फिर आके बोलेंगे यार कितने बुरे हैं कराची वाले, इतना बुरा इमेज ना बनाए अपना।
2: यार हम भाई सच बोलने वाले लोग भाई ऐसे इस पे आ जाओ, इस तरह आ जाओ ना, हम भाई सच बोलने वाले लोग हैं यार,
0: सही
2: हम ना दोगले नहीं है, मुनाफे नहीं है, वो इस्लामी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू लिया, हम मुनाफे नहीं है भाई।
0: क्या बोलू मैं, चले दला थैंक्स अ लॉट, बड़ी रिश्तेदारों की बुराइयां हो गई, अब हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं ठीक है।
2: सारी बुराइया करके बोल दो यार है बहुत अच्छे मगर
0: मैं क्या बोलूं, चले सॉन्ग चलाते तला एंजॉय कीजिएगा, थैंक यू फॉर योर कॉल, बाय बाय ख्याल रखिएगा। रोहित जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर, और अब तक जो है वो खानदान वालों की मतलब ठीक ठाक हो रही है, किसी के नहीं सुने खानदान वाले, यही चाहूंगी, लेकिन इस वक्त एक सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग के बाद वापस आते हैं। आपके मैसेजेस आपकी कॉल्स 4434377 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और 6622107 पे आप हमें कर सकते हैं मैसेज। इस वक्त सुनते हैं ये वाला ट्रैक।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ और मेरे पास मौजूद है बादशाह का मैसेज। और बादशाह ने कहा मुंतजर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी क्या कमाल के हैं। क्या बात है भाई। और जसविंदर सिंह कहते हैं कि कितना झूठ बोलता है ये तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये कुछ और है, ये मेरे पास नहीं आया था ये वाला मैसेज, की पहले का मैंने पढ़ लिया। अच्छा जी, इसके साथ ही मेरे पास है किसका भाई, कहाँ है कहाँ, ये वाला। हाँ, मीर फरहत ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल प्लीज़। ओके ओके ओके, चलें फिर मैं खुद पढ़ लेती हूँ। ओके जी, तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं, कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: मैडम
2: जी, अली रजा क्या हाल चाल है?
7: अल्हम्दुलिल्लाह
2: जबरदस्त जबरदस्त। क्या हो रहा है? अच्छा गुजरा होगा वीकेंड तो, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जबरदस्त,
7: खुश रहने लगा मैडम।
2: अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिंदगी का मकसद भी तो एक तरह से मिल गया है ना, तो अब तो खुश रहना पड़ेगा मकसद हासिल करने के लिए।
7: बेशक
2: बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर भाई एनर्जी लेकर आए ना। चलो ठीक है, गुड जबरदस्त, अब अच्छा हो गया। मैं कह रही थी एनर्जी लेकर आए, आ गई जी। क्या कहना चाहेंगे?
7: आज का जो आप टॉपिक लेके आई ना, मुझे लगता है ये जो टॉपिक है ना, ये जनरेशन के साथ खत्म हो जाएगा।
2: क्यों, ऐसा क्यों?
7: क्योंकि जो फुफ्फियां फुफ्फो खाला खालियां जो है, ये वो पुराने दौर के लोग हैं। वो अभी के जो है, अभी के जो है वो सब अच्छे से बात करते, अच्छे से रहते हैं। जो हमारी जनरेशन है, आप लगा लो Gen Z वाली लगा लो, वो तो अच्छे हैं, वो तो नहीं करते। हाँ, हम मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी फुफ्फियां बहुत बुरी थी, वो क्या नाम भाई का,
2: हमारी फुफ्फियां बहुत बुरी थी।
7: मेरी कितनी चार फुफ्फियां थी,
2: चारों की चारों
7: बुरी थी।
2: अच्छा,
7: एक भी अच्छी नहीं थी,
2: एक भी अच्छी नहीं थी, मतलब जरा सी भी अच्छी नहीं थी। हमने ढूंढने की कोशिश भी की कोई अच्छा ही, लेकिन फिर भी नहीं मिली। तो मतलब आप करे
7: अच्छे थे।
2: कौन
7: अच्छे हमारे थे?
2: मामू कौन अच्छे थे? चाचू अच्छे थे, राइट। चाचू यूजुअली अच्छे होते हैं,
7: हमारे चारों चाचू अच्छे थे।
2: हाँ सही।
7: और मामू हमारा थे नहीं,
2: सही।
7: और खाला हमारी थी, जिनमें से दो खाला बुरी थी, बाकी सारी अच्छी थी।
2: अच्छा, मतलब कितनी थी टोटल?
7: खाला हमारी थी दो चार, छह खाला थी,
2: यानी दो अच्छी थी और बाकी सारी बुरी थी, या बुरी थी?
7: नहीं, दो चार अच्छी,
2: चार अच्छी थी, चार अच्छी। ओके ओके ओके, गुड गुड जबरदस्त।
7: वैसे भी दो का पहले इंतकाल हो गया था, हमारे होने से पहले इंतकाल हो गया था।
2: अच्छा, और यानी दो मिली, सही सही सही, ठीक।
7: चार मिली, दो अच्छी दो बुरी
2: ऐसी। हाँ,
7: और मैं समझता हूँ ये जनरेशन है ना, ये जनरेशन के साथ खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो बुरापन जो स्टार्ट हुआ है ना, ये आपस में इन्हीं जनरेशन के लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि जो हमारी अम्मी बता रही थी, हमारे अब्बू बता रहे थे, इससे हम बात नहीं करेंगे, फिर कॉम्पिटिशन शुरू हो गया।
2: ये बात आपकी सही है, ये बात सही है आपकी। हमारे जो बड़े हैं ना, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे बड़े एक तो बहुत ओवरथिंकर थे, और बाकी ये कि सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा थे, एक्सपेक्टेशंस भी होती थी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है हमारी जो मतलब कुछ हम लोगों तक ना ये चीज़ ऐसी हुई है, हमने एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी किसी से, और मतलब हमें इतने दुनिया में इतने सारे काम हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कि हमें परवाह ही नहीं है भाई कि किसी के बारे में सोच सके हैं। जब सोचते हैं तो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो ये वाली बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा मामला।
7: ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरी दुआएं खत्म हो जाएगी। चार लोग ही तो फैमिली इतनी बड़ी होती नहीं, चार लोग होते हैं फैमिली के अंदर।
2: हाँ लेकिन मोहब्बतें तो फिर भी मतलब वो वाली चीज है कि मेरी जैसे हम अपने देखे ना अभी के जो हमारे भाई बहन हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चों से उनको मोहब्बत है, तो वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना, मतलब मोहब्बतें भी तो कहीं ना कहीं होती हैं। रिश्ते मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होने चाहिए, हाँ ये वाले जो मामला हैं ना, लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ, ये ख़त्म हो जाने चाहिए बाय द टाइम।
7: ऐसे ही मैडम
2: है ना,
7: लेकिन मेरा मानना यही है कि ये जनरेशन, ये जो लास्ट जनरेशन है ना, जेन ज़ी से पहले वाली, ये ख़त्म होते ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी
2: इंशाल्लाह। सही सही,
7: फिर कुछ नहीं होता,
2: फिर कुछ नहीं होता।
7: चलो मैडम मेरा बॉस आगे, मैं करता हूं बात।
2: चलो ठीक है बाय बाय बाय बाय। रोय जी तो अली रजा हमारे साथ है, और अली रजा का मानना ये है कि ये जो जनरेशन है इसके मतलब अब ये मामले नहीं होंगे, ये पहले की बातें थी, अब ये मामले जो है ना सुधर जाएंगे। वैसे मुझे भी लगता है कि अगर पॉजिटिव वे में आप देखें तो ये वाकई ऐसे ही है कि अब ना लोगों के पास वो वाली फिक्रों का और इन चीज़ों का टाइम रहा ही नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ पहली बात तो मिलकर इतना बैठते ही नहीं ना कि दूसरों की गॉसिप्स वगैरह कर सकें। जहाँ एक तरह से बात बुरी है कि वो उस तरह की महफिलें नहीं जमती, वहाँ पर इसका पॉजिटिव रुख भी है कि अब लोग दूसरों के बारे में मतलब जरा कम कम ही बात करते हैं। जैसे तलहा बता रहे थे कि कॉल करते हैं पुप्पो से खैर खैरियत मालूम करने के लिए, बहुत लंबी फिक्रें नहीं होती हैं लोगों को कि क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, अब तक क्यों नहीं हुई, उसके बच्चे हुए कि नहीं हुए, अब तक क्यों नहीं हुए। ये वाले मामला बेसिकली होता है क्या है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जितनी हम डिस्कस बहुत ही ज़्यादा मतलब गहराई में जाके करते हैं किसी की भी जिंदगी को, तो उसको बुरा लगता है कि इसको क्या लेना देना। तो अब वो वाला मामला रहा नहीं है बेसिकली, इतना कम होता जा रहा है मुझे लगता है वाकई। मैं भी मतलब एग्री कर सकती हूँ वाली से। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
2: जी ज़ुल्कर्नैन साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र,
3: हमारी भी स्टोरी फैमिलियों के गिरदी घूमती है।
2: अच्छा
3: सही है स्टोरी। अच्छा हमारी तो कोई फुफो नहीं थी, वैसे स्पेसिफिक कोई फुफो डे मनाया जा रहा है?
2: नहीं फुफो डे नहीं मनाया जा रहा, बेसिकली टॉपिक हमारा है आज, हमने पहले वालदा वालिद, फिर उसके बाद दादा दादी नाना नानी से लेकर अब हम आ गए हैं इन रिश्तेदारों तक, जो फुप्पा फुप्पी खाला खालू मामू चचा सब लोग।
3: अच्छा इनमें जो मेन इशू, यानी जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरी तो फूफी नहीं है, वी आर मिस द फूफी।
2: फूफी के अलावा और इससे भी
3: जो मसले मसाइल होते थे, हम सोचे थे कि अल्लाह ताला अगर हमें एक दो फूफियाँ देता ना तो कई मसलों को हम हैंडल कर सकते, क्योंकि वो बीच में ब्रिज बन जाती। तो बाकी मेन रीज़न रिश्तेदारों में इन तनाज़ियात की वजह क्या है, जायदाद होती है ज़्यादातर, किसी ने दी किसी ने नहीं ली, और उसके अलावा माँ बाप के रवैये भी मैटर करते हैं। कोई किसी का फेवरेट हो गया, उसको ज़्यादा फेवर मिल गई और उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा हो गई है, उसको ये इशू जो भी हैं जो जेलसी कन्वर्ट करते हैं, और ये बाज़ुकात फिर आगे उनकी औलाद में भी इस तरह आ जाती है कि जब औलाद के वक्त भी वो देखते हैं ना उसी तरह उनको तवज्जो नहीं मिली, या उसको कंपैरिजन करेंगे तो वो अपना, वो अक्सर बच्चों में ही बैठ के, हाँ इन्होंने तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं किया, हमारे बच्चों को भी नहीं पूछते, तो अल्टीमेटली बच्चे माँ बाप की फेवर करते हुए उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, हालांकि उनका इतना नहीं लेना देना होता। इन चीज़ों को ना ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल माशाल्लाह जो मेरी मिसेज है उनकी फैमिली में, तो उनकी भाइयों के साथ अगर किसी वजह से अनबन भी हो, लेकिन बच्चों का उनका आपस में बड़ा प्यार है, वो फूफियों के साथ या अपनी खालाएँ या यानी उनके अपने जो बच्चे हैं ना उनमें वो चीज़ नहीं है, बड़ों तक है, मिलते बैठते हैं। और इन जनरल ख़ास तौर पे

0: बहनें भी मिलके हर इश्यूज को वो डिस्कस करती हैं या उनके सॉल्यूशन निकालती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप डिफरेंसेस को आगे एक तो ट्रांसफ़र इतना ना करें और उसको महदूद रखें। और वो एक बात ये कि अगर कोई किसी से नाराज़ भी हो जाए तो वो दूसरा इसको एंजॉय नहीं करता, उसको सोल्व करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ हर बंदा इसको एंजॉय कर रहा हो ना, अच्छा हो गया, ये उसकी ज़्यादा साइड लेती थी। भाई साइड सबको एक दूसरे की लेनी चाहिए, कोई किसी का इस तरह का फेवरेट मिजाज डिफरेंट हो सकता है। आप जैसे कह रही हैं कि पढ़ने लिखने वाली खामोश तबा या आपको नहीं पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था आप उससे नफरत करती हैं या उनका बुरा चाहती हैं। आपकी एक नेचर है, ठीक है, मेरी नेचर है भाई।
1: लेकिन ये बात होती है, लेकिन कि मतलब जैसे समझेंगे पहले के ज़माने में ना, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोग अपने आप को मसरूफ़ दीगर चीज़ों में भी रखने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो कहा जाता है ना, खाली क्या खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो काफ़ी हद तक बात सही है कि आपके पास ना इतना टाइम होगा, ना आप बैठ के इतना गहराई में सोचोगे किसी की ज़िंदगी के बारे में। मतलब मुझे वाकई बाज़ औक़ात बहुत इस बात के ऊपर हैरत होती है। मतलब अभी तलहा से तो खैर मजाक में बात करी थी, लेकिन उससे हटकर भी अगर देखा जाए ना, तो ये एक चीज़ है ज़ुल्कनैन साहब के लोग ना दूसरों को देखे उन चीज़ों के ऊपर जज कर रहे होते हैं अक्सर यही वाले रिश्ते, जो कि यार उस बंदे के किसी भी वजह से जहनो गुमान में भी वो बात नहीं होती है। वो मतलब वहमो गुमान कहते हैं ना, वहमो गुमान में भी वो बात नहीं होती, वो उस बात चीज़ को सोच ही नहीं रहा होता, लेकिन उस चीज़ के ऊपर आपको जज किया जा रहा होता है बकायदा कि देखो ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा उस हर बंदे को अपनी लाइफ जीने का हक होता है और वो देना चाहिए।
0: भाई अगर हम अपने दीन से बात करें, इसमें सिर्फ वो कहते हैं ना मौजू को या इस चीज़ को टरखाने के लिए नहीं, गीबत गीबत क्या जनरल है, आपकी जो बुराइयां कोई चीज़ें एड्रेस करने का मतलब है सामने उसको सही किया जाए। तो डॉक्टर इसरार अहमद भी कहते हैं कि भाई किसी की नाराज़गी है, अगर किसी ने गलती की है तो उसको बताया जाए, सही किया जाए। ये जो इतने दिनों की दूरियां या दुश्मनियां, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और वैसे तो आजकल के हालात ही ऐसे हैं पाकिस्तान में कि किसी को अफरा तफरी इतनी मच गई है कि वो नहीं रहे। लेकिन अगर आप देखें पहले के लोग कबाइल में या घरों में रहते थे तो बड़े स्ट्रेंथ में रहते थे, तभी उनका सर्वाइवल था, और रिश्तों पर एतमाद की वजह से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, उनके चचा, उनके ताया, उनके वो, उनकी उनकी फूफी सूफिया, हर एक दूसरे पे जान छिड़कता था। ये नहीं है कि वो देता था उसके वक्त में, वो भी वाइस वर्सा। और रिश्ते अल्लाह ने बड़े मजबूत बनाए हैं। नबी कुरान में आप देखें नबियों के साथ रिश्तों का ताल्लुक है। मूसा ने कहा कि या अल्लाह हारून को मेरा साथी बना दे, इंसान को बड़ा ट्रस्ट है। हजरत ज़करिया को हजरत याहिया था फरमाया, उसका बेटा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपकी आंखों में आंसू ना किसी रिश्ते की वजह से आएंगे, कभी आप माँ बाप को, बहन भाई को, आम लोग जा रहे हैं, आपके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। कोई खबर अल्लाह ना करे किसी की अच्छी बुरी हो तो वो आपके दिल पे अफेक्ट करती है रिश्तों की वजह से। और रिश्ते अल्लाह ताला ने कुरान में माँ बाप के साथ, इनके साथ रिश्तों का जिक्र फरमाया है। तो रिश्ते अल्लाह ने बेवजह नहीं बनाए, रिश्तों के साथ तो आप इंजॉय करते हैं। अब इंजॉय कर रहे हो, अकेले नाचें तो बोलेंगे बेवकूफ है, साथ में आपके रिश्तेदार हों तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, बोलेंगे सब मिलके खुश हैं। रिश्तों की बेकदरी तो होनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं से रिश्ते रह गए ना, वो इंसान के अंदर टूट फूट कर देते हैं। और वो बात बड़ी मुझे मजे की लगी, किसी को फोन, कोई फोन ना करे तो वो कहते हैं फोन नहीं किया, कर ले तो बोले तुमने इतने अरसे बाद क्यों किया, हालांकि उन्होंने कभी अरसे बाद खुद भी नहीं फोन किया, किसी का हालचाल नहीं पूछा। और वो जो बंदा बार बार बोले ना और सुनाओ ये क्या हाल है, मतलब जान छोड़ा रहा, जान छोड़ मेरी अब। ये होता है फिर उन लोगों को बंदा। वैसे असल में पहले नेट से पहले हमें याद है कि हम फोन करते थे, यकीन करें ये 30 रियाल का कॉल कार्ड मिलता था 6 मिनट, और उसमें अगर बूथ खराब है ना तो कुछ मिनट फजूल में ही चले जाते। आप अंदाजा कर लें 1 मिनट की कॉल कितने की हुई। तो वो बंदा कोशिश ही नहीं करता था कि किसी को इतनी लंबी कॉल करे, घर वालों से भी मुख्तसर 1-2 मिनट की कॉल ही करनी। अब तो नेट ने वो कहते हैं ना उसकी कदर खो दी है, मुफ्त में इतनी कॉलें हैं। बाज़ वक़्त बंदा घर में बैठे सोच रहा होता है किसको कॉल
1: मैं, लेकिन अगर अभी भी किसी को कॉल करती हूँ ना, समझे किसी की तबीयत खराब है कुछ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसे कॉल ना करूँ, मतलब मैं फिर उसके नंबर पे ही कॉल करूँ डायरेक्ट, ताकि उसको ये फील हो कि हाँ मैं मतलब ना उसको कॉल कर रही हूँ, कोई वैल्यू है उस चीज़ की, और वो फिर वो मुख्तसर बात भी होती है। ये एक है।
0: अच्छा, आप यानी मोबाइल नंबर पे कॉल,
1: मोबाइल नंबर पे कॉल करती हूँ, मतलब मैं वैसे
0: अच्छा,
1: ही नहीं
0: तो अगर बार बार करें तो बाद उन्होंने नहीं कहा इसने कोई पैकेज लिया होगा, मैं नंबर एक्सपायर
1: नहीं, मैं बार बार करती नहीं हूँ ना, फिर वो भी लिहाज करते हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं करते। ये टिप है।
0: सही बात है।

0: चले वैसे सुनने में मजा आ रहा है बातों का, लेकिन रिश्तों में अगर कोई कमियां हैं तो उसको ठीक करनी चाहिए।
1: हाँ, नहीं, हमारे अभी जो ये दो तीन जो कॉलर्स आए ना, इनका मतलब ये है जरा शगुफ्ता कहना चाहिए, मिजाज
0: यंग एज है, मेरी एज उनसे गुजर गई है, इस एज में शायद मेरा भी यही हाल हो, उस वक्त बंदा जोश जज्बात यंग एज में, लेकिन जब आपके साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आपको फीलिंग आती है,
1: सही सही,
0: फिर वो एक मेच्योरिटी की आ जाती है। यानी अगर मैं वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे बहुत गिले शिकवे अपने रिश्तेदारों से, यकीनन कई जगहों पे इतना सफर किया है कि कोई बंदा या कई बंदे ऐसे थे कि मामूली सा, वो कहते हैं ना, तिनके का सहारा देते तो हम क्रॉस कर जाते इजीली, उन्होंने नहीं किया,
1: नहीं किया, सही,
0: वो
1: सही।
0: ग्रीवनेस कई दफा रहता है, लेकिन इन द अब आगे मूव करें, वी हैव टू डू समथिंग बेटर।
1: सही हो गया, बिल्कुल सही।
0: ओके जी,
1: चलें जी, थैंक यू सुल्तान साहब, थैंक यू जी, हाफिज। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास एक कॉलर है, लेकिन मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना इनका नंबर नोट कर लेती हूँ और मैं इनको कॉल बैक करती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मैं चाह रही हूँ कि मैं चली जाऊँ एक ब्रेक पे, अब ब्रेक इस वक्त बड़ी ज़रूरी है, तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं।

0: राइट, गाना हम एक और अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। कैसी है मैम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्लाह का शुक्र है। मैं सुन रही थी अभी, मैंने दो कॉल सुनी, कोई फोन पे बात हो रही थी, फिर थोड़ा सा पता चला कुछ रिश्तों पे बात हो रही है।
0: तो रिश्तेदारों के हवाले से बात हो रही है।
1: अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। वैसे आज पता क्या है, मैं समझी थी कि शायद तो कुछ मदर डे पे होगा।
0: वो हमने लास्ट वीक कर लिया ना, हम लोगों ने लास्ट वीक मेरे ख्याल से, हाँ हाँ ट्यूसडे को बात कर ली हमने।
1: हाँ ओकेजन था आज, यानी तो आज आपका वैसे रखना चाहिए था, मजा आता। क्योंकि प्रश्न में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, कुछ ऐसा ही है ना।
0: जी जी बिल्कुल ऐसा ही
1: है, कुछ ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा भाई आज फूफिया और मासिया जो उनकी क्यों बेचारियों की इतनी इज्जत अफजाई हो रही है। कोई कह रहा हमारी फूफिया अच्छी नहीं है, अल्लाह क्या हो गया। फूफिया बहुत अच्छी होती है और खालाएं भी बड़ी अच्छी होती हैं। एक तरफ भाई होते हैं, दूसरी तरफ बहनें होती हैं, दोनों ही बड़े करीबी रिश्ते हैं, दोनों ही बड़े प्यारे होते हैं। होता है होता है, इस पे कोई नहीं है। देखें मोस्टली होता है, कोई बहन होती है वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, आगे जाके उनकी शादियां हो जाती है, जाके इनकी रिश्तेदारी हो जाए, नहीं हो सकती तो बस नाराजगियां हो जाती हैं। ऐसा ये भी नाराजगियां हो जाती हैं। फिर कोई भाइयों में देख लो, बहनों में कोई यानी थोड़ा सा आगे निकल जाए तो बहनों से जरा इतना अच्छा बिहेव या खालाओं के साथ इतना अच्छा बिहेव ना हो तो फिर वो भी नाराजगी हो जाती है, वो भी जलन हसद के जुमरे में आ जाता है। होता है ना, ऐसे ही होता है।
0: जी जी जी।
1: तो मैं बिल्कुल आज बिल्कुल मुझे कुछ पता नहीं था कि आज 10th ऑफ मई है और मदर्स डे है। तो मुझे कुछ मैसेज आए मेरे भांजे और भांजे का और मेरी भांजी का। मैंने कहा क्या बात है आज ये बस। उससे पहले मेरी बाजी की बहू का आया, उन्होंने भी विश किया। मैंने उनको जवाब दे दिया, एक ही मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने जवाब दे दिया कि देखें माँ का कोई दिन नहीं होता, वो दिन ही नहीं होता जिसमें माँ ना हो। वो दिन ही नहीं है जिसमें माँ नहीं होती।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो आज हमें तो आज ये फील हो रहा था। ठीक है, तो फिर भांजे ने विश किया, मैंने कहा इन्होंने मुझे क्यों मैसेज किया, ये कभी करते नहीं है दोनों। फिर मैंने कहा, मैंने उनको पूछा था आप लोगों ने क्यों किया, कहते कि आज मदर डे है, हमने आपको विश किया है तो आप हमारी खाला है तो आप भी तो मासी। मैंने भी कहा हाँ भी ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया। तो देखिये मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं खाला हूँ, ठीक है, और मेरे वहमो गुमा में भी नहीं कि कोई मुझे इस तरह का मैसेज आएगा। तो ठीक है, मतलब ये है कि आप अगर अच्छी खाला हैं तो जरूर आपके भांजे भांजियां आपको,
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: और अगर आप अच्छी फूफियां हैं तो डेफिनेटली आपके भतीजे और भतीजियां भी आपको कॉल करेंगे और आपको विश करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: मैंने जैसे कि मैंने पहले कह दिया कि मैं माँ नहीं हूँ, मुझे कौन विश करेगा, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने मुझे विश किया है कि अपनी माँ के साथ उन्होंने मुझे भी याद रखा है।
0: सही। तो इसका मतलब मसला ये निकलता है ना कि आपको भी अपने रिश्तेदारों के साथ वैसा होना चाहिए कि आपकी याद
1: होना चाहिए। होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कुछ थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती हैं बीच में, रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ जाती है तो वो कोई रीजन होती है। बाकी रिश्ते तो सारे अच्छे हैं,
0: बिल्कुल
1: रिश्ते सारे खूनी है, सारे खूनी रिश्ते हैं और इन्हीं रिश्तों की पूछ होनी है।
0: हाँ।
1: और इन्हीं से हमारी पकड़ हो जाएगी और इन्हीं के साथ अच्छाई करने से हम थोड़ा हमारा थोड़ा दर्जा बुलंद हो जाएगा। ये हो सकता है,
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो बस मतलब ये है कि मतलब इतने खुलेआम फलां हमारी सूफिया अच्छी नहीं,
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वो बेसिकली वो ना देखिए मतलब एक मिजाज होता है औरतों का। हाँ नहीं, मैं ना बेसिकली इस वक्त प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ अपने लिसनर्स को कि एक मिजाज होता है हमारा।

0: हम जरा संजीदगी से बात करें, एक मिजाज होता है थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक में और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक रंग भरने के लिए, तो हमारे जो पहले के कॉलर्स आए वो उन्होंने ये नहीं कि उनको अपनी फुप्पियों से मोहब्बत ना हो तो कॉल ही क्यों करें भाई, मतलब वो कॉल करते हैं इसलिए क्योंकि उनको मोहब्बत है, लेकिन वो सिर्फ एक थोड़ा मजाक और एक थोड़ा सा ना जरा लाइटर मूड देने के लिए। हाँ
1: वो अब मैं कहती हूँ कि देखिए हमारी खाला थी बड़ा मुझसे तो मेरी खाला को बहुत ही प्यार था, ठीक है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जहाँ पर आप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते या वो आपको कुछ आपके पेरेंट्स को कहती है कि भी रिश्ता दे दो नहीं, तो फिर वो दुश्मनी में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है ना,
0: होता है।
1: अब मैं वही बात करने लगी हूँ, देखें कन्वर्ट हो जाता है कि क्यों नहीं इन्होंने हमारी बात मानी, हमें ये बहुत पसंद थी या था, तो क्यों नहीं, तो फिर वो थोड़ी सी नफरत थोड़ी सी जलन हसरत
0: वो थोड़े बहुत मामला होते रहते हैं, लेकिन ये कि हमें उन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। अच्छा मिसली हमारे साथ बस एक कॉलर रह गए हैं। जी जी
1: अच्छा अब ये मेरा मामला था, ठीक है, नहीं मेरे पेरेंट्स माने। अब दूसरा मामला मेरे फूफो का है, उनकी बेटी के साथ भी नहीं हो सका मेरे भाई का, तो बस वो थोड़ी सी दरारें आ जाती है
0: ये
1: बस,
0: और सही हो
1: ये बात हो जाती है। बाकी बस नए आज की जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि रखे रिश्ते होने ना होने वो एक किस्मत की बात होती है, लेकिन रिश्तों को मजबूती से तामे रखें, क्योंकि इसी से हमारी पूछ होनी है और इसी से हमारी बख्शिश भी हो जानी है।
0: सही,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैंने बहुत शुक्रिया मिसली, बस एक कॉलर से हम एक मिनट की बात करेंगे फिर हमने ना मैसेज पढ़ना।
1: लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं कहती हूँ कि हो जाती है बातें।
0: नहीं वो मुझे चूंकि अंदाजा है कि वो मजाक में बात कर रहे थे तो इसलिए बस मैं बता रही हूँ कि वो मजाक था। ठीक है,
1: नहीं मैंने कहा ना कि वो यही बात है।
0: चले
1: ठीक है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।
1: एक मदर्स डे पे एक गाना प्ले कर दें अगर हो सके तो,
0: अगर होता है
1: कितनी अच्छी है।
0: चले मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन टाइम बड़ा कम है। ठीक है चले, ओके थैंक यू।
1: हम डेडिकेट करते हैं मदर्स को, ओके अल्लाह हाफिज।
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी बस एक कॉलर, जल्दी से मुझे मैसेजेस पढ़ने हैं, जल्दी बात करें। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं
2: जी? मेरा नाम है फैजान।
0: फैजान क्या हाल चाल है
2: जी? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फैजान। सॉरी मैंने क्यों आपकी पहले कॉल आ रही थी तो इसलिए मैंने आपको कॉल बैक किया, लेकिन बस अब टाइम बड़ा कम है। ठीक है कल बात करें, कल कॉल कीजिएगा हमें,
2: कल बात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
0: थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी तो हमारे जो है ये हमारी कॉल्स वगैरह थी, जल्दी जल्दी मैसेजेस की तरफ आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? माशाल्लाह एक साल के बाद आवाज़ सुनिए, कहाँ थे साजन बलोच? मैंने तो आपको कितने अरसे के बाद नाम देखा है भाई, मतलब इतने अरसे के बाद कहाँ गायब कहाँ थे ये बताएं। अच्छा ये साजन बलोच को भी बता दूँ कि अभी जो मैंने आपने मेरी आवाज़ सुनी है, अब अगले महीने आप मेरी इस वक्त आवाज़ नहीं सुनेंगे, सुबह के वक्त में सुनेंगे, तो ज़रूर सुन लीजिएगा मेरी आवाज़, ठीक है? और काम ही ऐसा मिला है। अच्छा अच्छा चलें कोई बात नहीं। और इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरे 3 मामू, 5 खाला, 6 पुप्पो, 6 चाचू, 2 दादी, 2 नानी, 1 दादा हैं, पठान फैमिली है भाई, और मगर एक से बढ़कर एक अच्छे हैं सब माशाल्लाह से, क्योंकि असल बात यह है कि अगर हम खुद अच्छे हों तो सब अच्छे, और अगर हम खुद गलत हों तो सब गलत। हमारे बड़ों में कभी कुछ ना कुछ हो जाए तो पर हम कजन्स, मामू के बेटे, चाचू के बेटे पर दिल में बात नहीं रखते और झगड़े वगैरह नहीं होते हमारे, और अम्मी का झगड़ा अपना झगड़ा नहीं बनाते। अच्छा ओके राइट गुड ज़बरदस्त, और हम वही अपना रिश्ता निभाते हैं, दुआ सलाम, उठना बैठना, दोस्ती बराबरी की वगैरह वगैरह, और इसीलिए फैमिली में खालू हो या चाचा हो, मामू हो या फूफो हो, सब एक दूसरे से एक से एक बढ़कर अच्छे हैं, क्योंकि हम खुद अच्छे हैं। ओके खुद अच्छे, मियां मिट्टू तो ये वाले हो गए, मजाक कर रही हूँ। और क्या मैं कतर अकेला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 रिश्तेदारों को लेके आया हूँ, ये मैं कह रही थी। होता है वैसे पठान भाइयों में हमारे ना ये होता है कि सब एक दूसरे को साथ साथ रखते हैं, अच्छी चीज़ है भाई, ये सीखनी चाहिए। अच्छा जी इसके साथ ये जो तौफीक का मैसेज है और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। वालेकुम सलाम, आप भी दुआ में याद रखिएगा, ओके थैंक्स। और ये एक मैसेज जो आया था जो रिपीट नहीं करना है। और इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम टू द शो और हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह। और मावा जी ये रिश्ते अपने होते हैं, इनमें अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी होती हैं, जैसे कि हर इंसान में होती हैं, और पहले ज़माने में रिश्तों को ना ज़रा ज़्यादा अहमियत और इज्जत देते थे, हर फंक्शन में हर इवेंट पर सब जो है मिलते जुलते थे, गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, और घर में कुछ वक्त मेहमान बनकर भी आते थे रहते थे, एक दूसरे को गले लगा के इमोशनल भी होते थे, रोते भी थे, लेकिन अब जो है जरा ये सब कुछ खत्म हो गया है। और कॉल में सुना कि पुप्पो को विलन बना के रखा है, तो उसका क्रेडिट भी वही है जो मतलब अपनी ननंद को अपने बच्चों के सामने विलन बनाते हैं। ओके चलें जी, थैंक्स अ लॉट। और इसके साथ ही जी कोई रो रहा है बहुत ज़्यादा, उनकी कॉल नहीं मिली, चलें कल बात कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, हमारी पुप्पो भी अच्छी हैं, 7 पुप्पो हैं हमारी और 2 खाला हैं, बहुत अच्छी हैं ज़बरदस्त। और ये हैं कौन? मोहम्मद मुबशिर आलम, ज़बरदस्त। थैंक यू जी आप सब लोगों के मैसेजेस का। और ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि किसी ने भी अगर अपने फुप्पो को कुछ ऐसी मजाक मजाक में कहा है तो उन्होंने असल में कहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा एक मतलब हर बंदे का ना एक मुख्तलिफ मजाक।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: ये बात तो बता दी हमको कि दोपहर में आपको भारी वाला खाना नहीं खाना चाहिए था, लेकिन ये बात नहीं बताते कि बिरयानी नहीं खानी चाहिए और ज्यादा भारी खा लो तो फिर बहुत भयंकर वाली नींद आती है। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 5:02।

0: यार वो कौन लोग थे जिन्होंने पावर नैप लेके अपना काम निकाल लिया है, यहाँ बिरयानी खाने के बाद पावर नैप हो नहीं पाएगी, काम ज़रूरी होता है और यार रगों में खून नहीं दौड़ रहा भाई। बड़े की बिरयानी है खाई है, वो भी जिसमें थोड़ा तेल ज़्यादा था, पूरा बॉडी ऐसा लग रहा है कि अब चारपाई देख के तो ऐसा होता है कि चारपाई पॉजिटिव हो गया हूँ मैं कि आओ आओ आओ लेट जाओ आओ आओ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आंखें खुली, मैं वो एक मूवी थी ना जिसमें गनी भाई एकदम आंखें खुली रखते थे, उनको सोने नहीं दिया जाता था, और वो सलमान खान की मूवी थी, गनी भाई की आंखें खुली हुई थी, उनको नींद नहीं लेने दिया गया था। मेरा वही वाला हाल है कि खाना खा लिया बिरयानी जब दबा के, अब सो नहीं सकते मियाँ, कहाँ जाओगे, आएगी और उसके बाद तुम मत सोने लग जाना भाई, ठीक है, हम तो बातें कर रहे हैं, पता चला तुम गाड़ी चलाते चलाते एकदम है क्योंकि ये नींद ना, नींद भी एक अलग तरह का वायरस ही है कि ये एक एक जमाई लेता दूसरी तरफ पहुंच जाती है कि वो भी है लेने लगता है लंबी जवाई। तो इस्तकबाल है दोस्तों, सलाम अलैकुम क्या है हाल चाल, नींद नींद में आज मैं पूरा शो निपटा डालूंगा, ठीक है, और कहीं ऐसे बात करते करते मैं लंबी डगार या लेने लग जाऊं ना खर्राटे, तो समझ जाना फजील भाई ने बिरयानी ज्यादा खाई है आज बड़ी की बिरयानी चल तो मैं कुछ देर के लिए अभी छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक छोटी सी नैप ले रहा हूँ मैं 10 से 11 मिनट की, उसके बाद एकदम तरोताज़ा होकर आऊँगा, मुंह पे पानी की छींटे मारूँगा। और वैसे भी अब जब आप कतर में रह रहे हो, नींद आ रही हो, तो कहा जाता है ना वैसे कि पानी की छींटे मारो, आप कतर में पानी की छींटे मारेंगे, इतनी गर्म छींटे आती हैं कि आपके अंदर के पुर्जे जग जाएंगे फिर तो एक छींटे मार के आता हूँ, नींद तो आने से रही, पावर नैप जैसा कुछ नहीं होता है भाई साहब, मैं पावर नैप लेता हूँ पत्नी को 6-7 घंटे की पावर नैप होती है फिर 5:04। गुड इवनिंग बिल से देसी, एक छोटा सा ब्रेक।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

तो मुझे तो नहीं पता कि भाई आप लोगों ने कितना अपना अपना देखा। मैंने वो वाला हिसाब देखा है कि मैं मिडिल वाले शहर में, जो ना ज्यादा अमीर हो पाया ना ज्यादा गरीब हो पाया है ना, वो वाला जिसमें बहुत महंगे कपड़े या बहुत ब्रांडेड कोई शॉप खुलती थी फिर वो कुछ दिन बाद बंद हो जाती, मैं वो वाले शहर में था। लेकिन एवरेज जो ब्रांड के कपड़े होते थे वो काम भर की चलती थी, तो मैं वो वाले शहर से था जिसमें लाइफ जो है वो थोड़ी धीमी धीमी चलती है, बहुत तेज रफ्तार में भी नहीं होती है। तो पत्ते गिरते हुए आप गर्मी से अंदर जाओ, फिर उसके बाद हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही होती है, कमरे के अंदर किसी ने जो है बाल्टी रखी है ठंडे पानी की और हवा से वो पानी जो है कमरे के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, आपको फील आ रहा है कि यार यहीं तो नींद आएगी, कूलर चल रहा है और कूलर की खुशबू, कूलर के घास की खुशबू है, नहीं बता यार क्या मजेदार। और यहाँ एकदम वैसे ही मौसम था स्टूडियो में भाई, आते मुझे ऐसी जवाई नहीं आ रही थी मुझे ठीक है। और एक भाई ने तो लिखा भी है कि ऐसे क्यों फजील भाई, प्लीज डोंट स्लीप, मत सो भाई, अगर तुम सोए तो बाकी लोग सो जाएंगे और व्हेन यू ओपन योर माउथ आई एम श्योर एवरीवन इज ओपनिंग माउथ। ये बात तो है, मेरे घर में भी कहते हैं ना लोग कि भाई ऐसा है कि फजील तुम मुंह मत खोलना, फैमिली में भी लोग मुझे ये कहते कि फजील मुंह खोल देगा बात बढ़ जाएगी, तो मैं तो मुंह नहीं खोलता भाई लेकिन नींद के लिए दवाई तो आ सकती है। खैर आज बड़ा एक खास दिन है, आज है मदर्स डे और 10 मई को इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है ये मदर्स डे। मुझे लगता है कि बड़ा ही खास दिन है और उन सबको इस खास दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने अपने माँ होने का फ़र्ज निभाया है, और उन लोगों को भी हैप्पी मदर्स डे जो बात बात पे दूसरे की माँ बन जाते हैं जिनको दूसरे का अम्मा बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। हमारी तरफ ज़्यादा कोई ज्ञान देता था ना, वो कहते थे कि ज़्यादा अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उनको भी हैप्पी मदर्स डे। बाकी धीरे धीरे मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, अभी ज़रूरी बातें कर लेते हैं जैसे कि हालचाल क्या है, बाहर का माहौल क्या है, वेदर अपडेट क्या है, इवेंट्स क्या हैं, है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट मैं देने वाला हूँ वो है वेदर के मुताबिक, क्योंकि अब आपको अपने कार में पानी की बॉटल्स जो हैं वो रखनी चाहिए अगर आप छाए में अपनी कार खड़ी करते हैं तो, क्योंकि अल बवारी विंड्स जो है उनका असर कतर में दिखना शुरू हो गया है और जिसकी वजह से धूप के साथ साथ तेज धूल भरी हवाएं जो है वो भी चलना शुरू हो जाएंगी, और यही वजह है कि वेस्ट बे आपको धुंधला दिखता है गर्मियों में, वो इसकी वजह से नहीं कि आपने तो एसी ऑन कर रखी है तो माहौल बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है, उसकी वजह यही है कि तेज़ हवाएं चलती हैं और अगर एक स्पेसिफिक स्पीड से चलेंगी तो वो धूल जो है वो कतर की तरफ अगर आ रही होती है तो ऐसे में धुंधला दिखना डस्ट के साथ ये हवाएं जो हैं वो चलती हैं। फिलहाल अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इस वक्त करेंटली 33 डिग्री सेल्सियस का माहौल है, ह्यूमिडिटी 19% पे है, जो कि अभी तो लग रहा है कि ठीक है नॉट अ बिग डील, लेकिन ये बिग डील होगा भाई जून में। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट की हवाएं चल रही हैं जो समंदर में लहरों को भी क्रिएट कर रही हैं, तकरीबन कहीं कहीं 11 फीट तक लहरें जो हैं वो ऊंची हो सकती हैं, इसलिए मरीन एक्टिविटीज़ से बचने की सलाह फ़िलहाल के लिए दी गई है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कल के बारे में तो कल टेम्परेचर 37 डिग्री तक पहुँचने का चांस है और आज भी 37 डिग्री सेल्सियस पहुँचा था, तो पानी की बॉटलें रख सकते हैं और नहीं है तो बेहतर यह है कि आप पानी की बॉटल अपने घर से लेकर निकले और फिर जब ऑफिस पहुंच जाए तो वापस ऑफिस पहुंचने के बाद उस वाटर बॉटल में पानी भर लें और फिर घर की तरफ निकले। अगर आपका दूर का सफर है तो पानी जो है वक्त वक्त पे पीते रहें, क्योंकि गाड़ी चलाने पर भी बहुत तेज इंसान सूख जाता है। कल मैंने वेट वाइप्स जो है उसको हाथ में पकड़ा हुआ था, 2 मिनट के लिए मैंने बाहर निकाला था बस उसे, पता नहीं मुझे सुखाना ही था मुझे, क्योंकि मेरे पास ना चाय ही कप थी, उस चाय में बहुत थोड़ी चाय बच गई थी, अच्छी नहीं थी ना चाय तो मैं ये काम लगाता हूँ कि कहीं झटका आए चाय बाहर गिर जाए, तो मेरे पास वेट वाइप्स रखी थी, उनको सुखा के अगर आप कप में डाल दें तो वो सोख लेता है, तो ऐसे चाय गिरती नहीं है, आप देख रहे बुद्धि कितनी तेज़ है मेरी ये नहीं काहिल भी हूँ, काहिल वाली बुद्धि तेज़ है मेरी, ये नहीं कि कार रोक के कहीं डस्टबिन में फेंक दें, नहीं कार के अंदर रखा और फिर उसके बाद सुखाया, तो लेकिन 2 मिनट में सूख गया भाई वो वेट वाइप्स। तो बड़ा लाजमी है कि पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि हवा में आप कब सूख जाएंगे पता नहीं चलेगा मियां। ओके, उसके अलावा 27 डिग्री सेल्सियस है अभी का और रात को ये करीब 26-27-24 के आसपास रहेगा, अभी का 33 है माजरत के साथ, शाम को 27-26 तक पहुंचेगा। उसके अलावा बात कर लेते

कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में, और अल गर्राफा ने जीत लिया है अमीर कप 2026 का फाइनल। अल गर्राफा स्पोर्ट्स क्लब ने अलसद को 4-1 से हरा कर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है, और जो स्टार प्लेयर थे वो थे हैट्रिक मारने वाले टीम के कैप्टन यासीन ब्राहिमी, और क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया है भाई, मजा आ गया। ये अल गर्राफा का नवा टाइटल है, उन्होंने यू नो पिछले साल भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो दी थी, और जो अच्छी बात वो ये कि इससे पहले, ये तो अल गर्राफा का नाम अभी है, इससे पहले अल गर्राफा का नाम दूसरा था, तो उससे भी ये टीम जो है वो जीत चुकी है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, और वो है ट्रैवल को लेकर, जो यू नो जिनको शौक है घूमने फिरने का, तो हमद एयरपोर्ट में कुछ और एयरलाइंस हैं जो जुड़ गई हैं। सऊदीया और कुवैत एयरलाइंस ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स और ऑपरेशंस पूरी तरह से रिज्यूम कर दिए हैं। अगर आपका घूमने का शौक है तो भाई यही वो वक्त है जब आपको निकल लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अब जो मेजर वाला इवेंट था जिसमें कतर से सच में सऊदी के बहुत से लोग आए थे, भाई मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी हैं, तो जो फुटबॉल का क्रेज़ है वो ज़बरदस्त है, और अल गर्राफा ने तो इस तरह से अपने नाम भी कर लिया, क्योंकि 4-1 से अलसद को हराना आसान नहीं था, अलसद की टीम भी बड़ी यू नो मजबूत थी। पहले अल गर्राफा स्पोर्ट्स क्लब का नाम था अल इत्तेहाद स्पोर्ट्स क्लब, और इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी, बाद में 2004 में इसका नाम जो है बदलकर अल गर्राफा स्पोर्ट्स क्लब रख दिया गया था, ताकि ये उस एरिया यानी कि अल गर्राफा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। सो ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया है, और अब वापस फ्लाइट क्योंकि चलने लग गई है, तो सऊदी में अगर कोई मैच हो रहा हो तो क्यों ना जाया जाए। अच्छा, उसके अलावा ये तो फ्लाइट के बारे में बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कुछ खास इवेंट्स के बारे में। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि अब कतर में आप बाहर नहीं निकल सकते, इंडोर इवेंट्स इज दी ओनली वे, जब आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहें तो आप इंटरटेन कर सकते हैं।

107 पे वाइब थ्रू हाल है बीबी 5:24 और जो मेजर इवेंट्स हैं वो सारे मोस्टली इंडोर में भी होंगे। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि फोर्थ जीसीसी गेम्स के बारे में बात करें 2026, ये पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा रीजनल स्पोर्ट्स इवेंट है जो 11 मई से 22 मई तक चलेगा यानी कि कल से। इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 20 स्पोर्ट्स होंगे जैसे कि स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, पैडल, तीन वाला पैडल, ये सारी चीज़ें होंगी। और 20 से ज़्यादा जब स्पोर्ट्स होंगे तो उसके वेन्यूज होंगे जैसे कि एस्पायर डोम, हमद एक्वेटिक सेंटर, लुसेल शूटिंग रेंज। लेकिन यहाँ पर गर्मी वाली गर्मी नहीं होगी क्योंकि यहाँ के तो स्टेडियम भी यार एसी की हवा फूंकते हैं यार, तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इन खूबसूरत और ज़बरदस्त गेम्स का, जीसीसी गेम्स का लुत्फ उठाया जाए 2026 का। और जो स्विमिंग है वो 12 मई से शुरू होगी और एथलेटिक्स 14 मई से। टिकट ले लो, मैं तो कहता हूँ विजिट कतर की वेबसाइट पे जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जो किताबों के शौकीन हैं उनके लिए आ रहा है 14 मई से दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026। तो दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आपको यहाँ पर जाना है, बिल्कुल फ्री है एंट्री। यहाँ दुनिया भर से तकरीबन 500 से ज़्यादा पब्लिशिंग हाउसेज आए हैं और काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ यू नो आपको ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा थर्सडे के दिन आपको इसी शो में यानी कि 5 से 7 कुछ खास मिलेगा इस खास बुक फेयर को लेकर, यानी कि दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर को लेकर। वो अब आप थर्सडे को ही सुनिएगा, आपको पता चलेगा। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो कतर इकोनॉमिक फोरम हो रहा है 12 मई से 14 मई तक। बड़े बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स दोहा में मिलेंगे आपको। फिर हम म्यूजिक के बारे में बात करें तो कैंडल लाइट कॉन्सर्ट जो 16 मई को होगा फोर सीजन होटल में, ये भी बड़ा ही लाजवाब है। कतर ओपेरा हाउस में फेबिन कॉनराड का स्पेशल परफॉर्मेंस 16 मई को है। तो जिनको इन सब चीज़ों का यानी कि म्यूजिक का शौक है, एग्जीबिशन का शौक है, तो ये बिल्कुल इनके लिए है। उसके अलावा ग्राफिक आर्ट का अगर आप शौक रखते हैं खास तौर पे कंटेम्प्रेरी, तो कटारा कल्चरल विलेज में ये एग्जीबिशन 18 मई तक चल रहा है, यहाँ ज़रूर जाएं, इसका भी लुत्फ उठाएं। तो ये कुछ खास और ज़रूरी चीज़ें मैंने सोचा कि क्यों ना बता दी जाए। अब वक्त आ गया है जल्दी से आज के सवाल की तरफ बढ़ने का, क्योंकि आज मदर्स डे है तो सवाल भी यार होना चाहिए नहीं।

0: वाइप ट्रू. और आज का सवाल, क्योंकि मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल. नहीं, उन अब्बाओं को भी हैप्पी मदर्स डे जो जो है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा यू नो ममता से पालते हैं. हाँ नहीं, देखो ये क्या है कि माँ का ममता होता है, बाप का बपता अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ममता बोल दिया. लेकिन ऐसे मैंने अब्बाओं को देखा है जो सच में माँ की तरह ख्याल रखते हैं. मतलब लिटरली हर एक छोटी चीज़ में, बच्चा गिर ना जाए, बच्चे को देखना, कहीं दूर खेल रहा है तो दिल में यूँ थोड़ी थोड़ी बपता जागी हुई है, फिर बच्चे को समझाना, बच्चे की पढ़ाई करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं अब्बा की भी एकदम एक नंबर है. लेकिन क्योंकि आज मदर्स डे, तो माँ की जो खूबियाँ हैं उन पर हम बात करेंगे बच्चों को लेकर, है ना. तो आज का सवाल हम एक माँ के हैबिट को लेकर पूछना चाह रहे थे. उसमें ये सवाल है कि एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी फनी हैबिट जो आपके अंदर आ गई और पहले आपके माँ के अंदर थी, अब वो सीरियस वाली भी हो सकती है लेकिन फनी वे में अब आपके अंदर आ गई वो हैबिट. कि शुरुआत तो आपको बड़े अजीब लगता था, यार अम्मी फला चीज पर टोकती हैं, अब इंटरेस्टिंगली वो आदत आपके अंदर आ गई. तो वो क्या है आपको बताना है. नंबर है 666-22107, 666-22107. एक ऐसी हैबिट जो अम्मी की थी, अब वो आपके अंदर आ गई, वो फनी होनी चाहिए, लाइट वेट में बात करेंगे, ठीक है. वो आपको बताना है 666-22107. बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं. और सलाम वालेकुम अस्सलाम, ये भाई का मैसेज, क्या नाम है, अब्रार इनका मैसेज है. सलाम वालेकुम अब्राम नाम है. अस्सलाम वालेकुम फजील भाई. वालेकुम अस्सलाम. ऐसा लगा है कि आप पर से बिरयानी खाइए, अपने पैर से बिरयानी खाइए. मैंने अपने पैर से, हमें मेरा भाई बिरयानी एक बार खा कर तो देखो, दिन में बड़ेगी बिरयानी, ज़्यादा तेल वाली और बैठ के मतलब एकदम ठंडी हवा चल रही हो. एक तो पता नहीं क्यों अभी मुझे ऑफिस ये स्टूडियो गर्म लग रहा है, लेकिन अच्छा खाने के बाद थोड़ा सा ऐसा बॉडी गर्म भी हो जाती है, मज़ा आ जाता है. और आपको कहीं एकदम घर जैसा माहौल मिल जाए तो आप, मैं तो शायद अगर घर पे होता तो वहीं लटक जाता, घर पे नहीं था खाना खाते हुए. लेकिन क्या लाजवाब बिरयानी, ठूस के खाओ तो. बाकी कह रहे हैं ये बताओ, आलू वाली बिरयानी या चिकन वाली. मैं मानता ही नहीं बड़ी बिरयानी, पहली बात. दूसरा ये कि आलू की बिरयानी को मैं बिरयानी मानता नहीं, मैं कैटेगरी से हटा देता हूँ, मैं उसे पुलाव भी नहीं मानता भाई. मैं देखो क्यों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरी होती है, मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरा सिंपल सा मानना है कि पुलाव में भी मटर पड़ता है, आलू जिसमें डाल दो तो फिर वो बात नहीं है यार. बिरयानी आलू मुंबई वालों को पसंद आता भाई, मुंबई वाले, हो सकता है मैं बाहर निकलूं मेरा गला पकड़ ले, क्या बोल रहे थे. मैं तो ये कह रहा था कि आलू वाली बिरयानी की तो बात ही अलग है, उसको बिरयानी में शामिल इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी बात अलग है ना, उसका नाम ही कुछ और रखना चाहिए और उसका दर्जा अलग होना चाहिए साहब, गर्दन तो छोड़िए. बाकी पठान साहब ने लिखा है, और किसने खिलाया, क्योंकि आप तो अपने पैसे खर्च करते नहीं हो. पठान साहब आप कह रहे मैं पैसे नहीं खर्च करता, अरे भाई जान कभी अकाउंट में झांक कर तो देखो, इतनी गरीबी इसीलिए आई कि खर्च बहुत करता हूं मैं. और अभी जो सवाल किया ना कि जो आपके माँ के अंदर हैबिट थी वो आपके अंदर आ गई है, तो मेरे माँ के अंदर हैबिट थी वो ये कि वो अपने ऊपर तो कम लेकिन बच्चों दूसरे के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर देती थी. तो बल्कि ये गुस्सा भी आता था कि अम्मी यार आप कमा रही हैं, क्योंकि मेरी अम्मी टीचर थी, तो आप कमा रही हैं अपने लिए कुछ अच्छा खाना पीना नहीं, कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भैया कांच की प्लेटें निकल रही, चीनी प्लेटें निकल रही हैं, दस्तरखान नए वाले मेरा भाई है, डाइनिंग टेबल तो नहीं था हमारे घर लेकिन बेड पे चादरें बिछ रही हैं, वो भी एकदम नई कड़क प्रेस करी हुई जबरदस्त, और घर में सफाइयां हो रही हैं और फिनाइल से सफाइयां. अम्मी हमारे समय पे तो आप पोछा लगवाती थी वो भी हमसे, लेकिन एकदम चमाचम घर दूसरे के लिए इतना खर्चा और अपनी औलाद के लिए आलू बिरयानी. तो ये वाला मेरे अंदर भी आ गया कि अपने लिए वैसे थोड़ा थोड़ा तो करता हूँ, लेकिन दूसरा अगर कहीं से आ रहा है, दोस्त दोस्त की अगर पार्टी वार्टी हो रही है जहां पर मुझे पार्टी देनी है, तो भैया एकदम दबा के आना चाहिए, सब कुछ दम परफेक्ट है ना. तो चीनी की प्लेटें तो वैसे मैंने निकालता. वाली प्लेट मैं कंजूस आदमी हूँ इस मामले में, तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि फिर प्लेटें धुलनी पड़ती है ना, तो मैं वो कर लेता हूँ जो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आम हो गया है, जिसमें बेइज्जती भी नहीं होती है और जिसमें आपको उल्टा सराहा जाता है, डिस्पोजेबल प्लेटें, मैं दावतों में वो निकाल देता हूँ। तो पठान साहब माइंड यू कंजूस तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये तोहमत तो मैं नहीं झेल पाऊंगा भाई साहब। बाकी एक और ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कैसे हो? आपको लगता है बहुत काहिल जानवर का गोश्त खाया है? मैं मान सकता हूँ। तालाब में नहाती हुई भैंसों को देखा है, एक बार वो बैठ जाती हैं तो जब तक, तभी दो हालातों में उठती हैं वो बैठी हुई तालाब में भैंसें, या तो उनको बहुत जोर की भूख लग रही हो या फिर मालिक उनको छड़ी से मार मार के बाहर निकाल लग चलो। मेरा काहिल जानवर का गोश्त मैं ये मान सकता हूँ। कौन है ये भाई? महफूज आलम, ओके। बाकी फजील भाई सलाम अलैकुम, मोहम्मद तौफीक घर पे भेज दो। अरे चार बोटियों की थी, अब तो ख़त्म भी हो गई इतनी खा के। नसीम साहब मैसेज करते हैं, भाई फज्जू सो जाओ। अरे हम सो जाएंगे तो हमारे साथ दो तीन चीज़ें और सो जाएंगी। मेरे फरहत साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी यार देखो मैं मानता हूँ ब्लैक कॉफ़ी में पावर बहुत है, बट आप ठूस के बिरयानी खा लें तो ब्लैक कॉफ़ी भी कहेगी हाथ जोड़ के कि मालिक मालिक ये ज़्यादा हो गया मालिक। ठीक है, अगर हमने ब्लैक कॉफ़ी पी ली उसके बाद भी नींद नहीं गई तो बिरयानी पेट के अंदर से मालूम है क्या कहेगी? वो ये कहेगी,
1: पीली सी नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला, पीली सी नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला।
0: हबीबी सलाम अलैकुम। 5:34 स्टूडियो घड़ी में। बाकी ये शुरुआत वाले मैसेज ले लिए हैं और मदर्स डे वाले मैसेज अभी कुछ देर में लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद हम इन सवाल के जवाब पर बढ़ेंगे। और सवाल ये है कि एक ऐसी फनी हैबिट जो आपके अंदर आपकी अम्मी से आ गई है, जो आप चाहते नहीं थे लेकिन अब आपके अंदर आ गई है, बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
3: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
4: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
6: हेलो,
7: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
6: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद RJ सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: 107 पर वेक अप।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।

साधु हाला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या है हाल चाल? 5:39 स्टूडियो की घड़ी में। और आज का सवाल था कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी आ गई है जो पहले आपकी अम्मी के अंदर थी और वहाँ से अब आपने सीख ली है, वो हैबिट सीख ली है, पहले तो आपके अंदर नहीं थी। बट होता है ना कि जब आप माँ बाप के साथ रहते हैं धीरे धीरे वो क्वालिटी ही आपके अंदर आ जाती है। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी आ गई है, फनी वाला बताना, ठीक है? नंबर है हमारा 6662107, ठीक है, 666221107। बाकी मैसेज की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यूसुफ साहब का है मैसेज, हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? वीकेंड ये वाला वीकेंड घर ने काम बहुत दिया मुझे, घरवाली ने तो पता नहीं चल पाया भाई गया कहाँ। खैर ये बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने WRWB लिखा है बच्चों के। अच्छा ठीक है, नाम पहले क्या, पहले मैं देख लेता हूँ। वसीम साहब, क्या ये वो वाले वसीम है? अच्छा ये हर जगह WRWB लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है भाई? ये कोई लफ्ज़ तो नहीं है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बच्चों के पैंपर्स चेंज करना, बच्चों की शरारत पर सब्र करना, फिर सोचना कि वालिदैन कितना सब्र करते होंगे, क्योंकि मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा शरारती थे बचपन में। क्या बात है, देखो हम तो सब शरारती होते हैं और मुझे लगता है कि हम सब अगर यहाँ जीवित हैं, मर्द समाज खास तौर पे, मेल मेंबर अगर जीवित है, तो हमारे माँ बाप इस बात पे तो सफल हो गए हैं, सक्सीड हो गए हैं कि उन्होंने जिंदा तो रखा हम लोग। क्योंकि जिस तरह के हम लोगों की आदतें होती ना चलते पंखे में हाथ दे देने की, तो वो अगर ऐसी हरकतों से जिंदा रखा माँ बाप ने, तो माँ बाप सक्सेसफुल तो रहे हैं। ये मर्द कौम वो कौम है जो साइकिल के आगे पहिए से लेकर बाइक के आगे पहिए तक को उठाने के लिए बड़ी सक्षम रही है, बड़े प्रयास किए हैं, बड़ी कोशिशें करी हैं, लेकिन फिर भी जिंदा यहां तक पहुंच गई है। तो सैल्यूट टू आवर पेरेंट्स। तो ये तो बात मैं कहूंगा कि भाई और इनिशियल काम ही यही होता है के शुरुआत के 10 साल बस जीवित रखना, उसके बाद 11वें साल से तो देख लेंगे वो खुद भी समझ जाता है, औलाद भी खुद समझ जाती है। तो ये तो देखो शरारती सब लोग होते हैं, लेकिन आप क्योंकि आपने ये चीज़ करी है, बच्चों के पैंपर्स चेंज करना, शरारत पर सब्र करना, आपको भी हैप्पी मदर्स डे मेरा भाई। उसके अलावा ये मैसेज है, जैसे प्लांट से प्लूटो को हटा दिया उसी तरह बिरयानी में से आलू हटा देना। हाँ ठीक है, ये प्लांट से प्लूटो जो आप कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आप उनकी बात कर रहे हैं जो समंदर के अंदर फीटोप्लैंक्टन्स हैं। मे बी यू नेवर नो, क्योंकि मुझे तो वही लग रहा है, क्योंकि ये लाइन तो कुछ लाइन ही नहीं है ना, जैसे प्लांट प्लूटो हटा दिया, अच्छा प्लैनेट से प्लूटो, ओ ठीक है, सॉरी मेरी साइंस कमज़ोर है मेरा भाई, सॉरी। मैंने माथा पीट लिया यार कुछ जोर से, ज्यादा ही जोर हो गया। प्लैनेट से प्लूटो को हटा दिया है उसी तरह बिरयानी में से आलू को हटा दो। ये बात मुदस्सिर साहब, मुझे आपकी बहुत मजा आई सुनकर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन सब में बात यह है कि आलू का टेस्ट थोड़ा थोड़ा बिरयानी में आ जाता है, लेकिन हाँ ये अगर ऑप्शन तो है ऑब्वियसली। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुदस्सिर साहब मुंबई से हैं, बुरा तो नहीं लग गया। यू नेवर नो मेरा भाई। वैसे मैंने एक चीज़ और यू नो बुद्धि लगा ली है कि आलू घर में लाता ही नहीं हूँ मैं, तो जब आलू नहीं तो बिरयानी में आलू पड़ेगा कहाँ। ओके, और इतनी लाते हूँ जब आलू कोई चीज़ खाना होता है, जैसे आलू सालन अच्छा लगता है, ठीक है, बढ़िया घुइया गोश्त खाया आप लोगों ने? मैं खाने की बात क्यों कर रहा हूँ, छोड़ो यार। लेकिन घुइया गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त होता है, तो आलू गोश्त घुइया गोश्त चलता है। बाकी ये राबिया का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, कैसे हैं फजील? मैं बहुत अच्छा हूँ। और इन्होंने तस्वीर भेजी है, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी मदर्स। मेरी अम्मी हमें बिल्कुल नहीं मारती थी, क्या बात है, तो मुझसे भी मारा नहीं जाता, वैसे मेरी बात सुनते नहीं है मेरे बच्चे। आगे देखा, मेरी अम्मी ने एक दफ़ा मेरी छोटी सिस्टर को मारा था, तो उसे लगा नहीं, तो कहती है अम्मी आप कैची खेला करें, आपका निशाना नहीं ठीक है, आप कैच कैच खेला करें, आपका निशाना ठीक है। ओके, आज तक मुझे वो बात बहुत ज़्यादा हंसाती है। अच्छा देखिए, इन सब के बीच एक जो फनी बात है वो तो ये कि
अम्मी ने ट्राई किया कि बच्ची को लग जाए और लगी नहीं, वो फनी तो बात है। लेकिन इन सब के अलावा आप ये कह रही कि आपके बच्चे सुनते नहीं और आप प्रेफर भी नहीं करते और आपसे मारा भी नहीं जाता बच्चों को। नहीं देखिए, बच्चों को मारा तो बिल्कुल नहीं जाता है, लेकिन माएँ बड़ी चालाक होती हैं, खुद नहीं मारती हैं बट फादर से वो काम करवाती हैं। मेरी अम्मी भी मुझको पकड़ तो नहीं पाती थी, लेकिन अब्बू दौड़ते अच्छा थे, गांव के थे ना वो तो दौड़ के मुझे पकड़ के बहुत पीटते थे, तो मुझे पता था कि यार कोई फायदा है नहीं। अब्बा ने एक और सिस्टम निकाल लिया था, वो ये कि घर में पहले तो वो आते थे, अगर उनको पता चला कि मैं शरारत कर रहा हूँ, खैर वो तो अलग बात है कि पीट पीट दिया, पहले वो अम्मी से चुपचाप बात करते थे, अगर अम्मी ने शिकायत कर दी तो पहले वो मुझसे पूछते थे कि बेटा ऐसा ऐसा है, तो मैं क्योंकि वो इतने आम लफ्ज़ों में पूछते थे, मुझे लगता था कि ये आदमी हिंसक नहीं होगा, वायलेंस नहीं करेगा। बाद में जब उनको कहो हाँ पापा आज ऐसा किया, अब्बा ऐसा किया, फिर अब्बा पता नहीं क्यों बेल्ट उठा लेते थे यार ये थोड़ा रिस्की हो जाता था मेरी जिंदगी में, बाकी क्या कर सकते हैं, अब वो वाला दौर तो निकल गया। आगे एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या हाल है? इनका नाम है इश्तियाक साहब। कैसे हैं इश्तियाक भाई? इश्तियाक भाई कहते हैं कि मेरे अंदर भी वो हैबिट आ गई है जो बैग के अंदर बैग, प्लास्टिक बैग के अंदर प्लास्टिक बैग रखते थे। और रे यार, ये इंसेप्शन लेवल का काम है। जिसने इंसेप्शन देखी उनको पता होगा, सपने के अंदर सपना आता है उस मूवी में, यहाँ पर अलग सिस्टम है। सिलेंडर के अंदर जब तक प्लास्टिक बैग के अंदर प्लास्टिक बैग ना हो, यानी कि पॉलिथिन ना हो, तब तक कैसे? अब ये बात मैंने सीख ली है यार, ये वाला तो सबके अंदर सबके घर में होगा, सिलेंडर के अंदर। मैं सिलेंडर वाला तो हिसाब नहीं है, लेकिन ये है कि अम्मी से जब भी हमने देखा है कि वो प्लास्टिक की पन्नियाँ या पॉलीथीन इकट्ठा कर रही हैं, और उसको भी इकट्ठा करने का तरीका है, एक प्राइमरी पॉलीथीन होती थी जो सबसे बड़ी होती थी, उसके बाद सेकेंडरी पॉलीथीन, उसके अंदर छोटी वाली तो ये ठूस ठूस के रखने की जो आदत है वो मेरे अंदर भी है। उसका रीज़न ये है कि पहले मैं अम्मी से कहता था कि यार डस्टबिन की जो अलग से पॉलीथीन आती वो क्यों नहीं खरीद लेती हैं। अम्मी ने ज़्यादा उस वक्त कुछ बोला नहीं। अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे समझ में आ गया यार, इनकम नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, इतने पैसे नहीं है। और फिर ये सबसे सही तरीका कि आप जो खरीदने जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसी खरीदारी में से अगर पन्नी आपको इतनी बड़ी मिल रही कि डस्टबिन में लगा सकते हैं, तो क्यों पैसे खर्च किए जाएं? इंडियन मेंटेलिटी है ये।

इंडियन मेंटालिटी है। ओके, एक और ये भाई का मैसेज है, सुफियान ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम भाई। ये आदत कब आई पता नहीं, लेकिन आज जब देखता हूं तो अम्मा की याद आती है। किस बात पे भाई? और रिमोट में प्लास्टिक पन्नी चढ़ाने का। क्या बात है, नए रिमोट में प्लास्टिक की पन्नियां यानी कि पॉलिथीन चढ़ाने वाले लोग, ये वही लोग हैं जो बचपन में सबसे पहले फाड़ा करते थे, अब ये खुद लगाते हैं अपने बच्चों के डर से। लेकिन पता नहीं आप लोग ने कब तक चलाई, मैंने तो तब तक वो पन्नियां चलाई जब तक वो एकदम गंदी ना हो जाए। मेरे रिमोट में अम्मी ने जो घर में लगाई थी वो भाई साहब इतनी भयंकर वाली गंदी हो जाती थी कि आर पार दिखना बंद हो गया था। पहले तो यही हुआ कि पहले दिखना बंद हुआ कि बटन कौन सा है, फिर क्योंकि इस्तेमाल तब भी करते थे क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही काहिल नहीं था ना। उसके बाद एक और चीज हुई कि पन्नी धीरे धीरे फटने लग गई, तब यह हुआ कि इसको हटा देते हैं, और हटा दिया गया, दोबारा दूसरी पन्नी नई वाली लगाए टेप के साथ। भाई कैसे कैसे, मतलब क्या बुद्धि थी यार। लेकिन अम्मी ने जो काम किया ना, घर को लंबा चलाने के लिए सबसे बेस्ट काम था। रिमोट थोड़ा लंबा चल जाता था, आज के रिमोट इतने चल नहीं पाते अगर आप कैसे भी रखें। उसके अलावा एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका भाई मुदस्सर खान बंगाश हूँ। फजिल भाई, माँ का मकाम कोई भी नहीं ले सकता बिल्कुल, ना माँ की कोई चीज़ ना कोई मुताबदिल है ना मुताबिक है। क्या कहना चाह रहा है मेरा भाई? अल्लाह के तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है हम सब के लिए बिल्कुल, और लेकिन आपके सवाल के मुताबिक अगर कोई हैबिट में अपने माँ से सीख चुका हूँ वो सब्र और आजजी है, क्योंकि जब भी अपने माँ को देखता हूँ तो मेरे माँ बहुत सब्र और बर्दाश्त करने वाली थी, तो मैं भी अपने माँ से सब्र और एजाजी आई गेस लिखा होगा, ओके मैं आजजी समझ रहा था, एजाजी जो है वो सीख लिया है उन्होंने। लव एंड मोर रिस्पेक्ट फॉर एवरी मदर। क्या बात है, बहुत ही उम्दा मुदस्सर भाई, और बिल्कुल माँ का जो मर्तबा है वो सबसे ऊँचा है। उसकी वजह यही है कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपकी सलामती की दुआ, और कोशिश हर बार ये कि आपके लिए जो भी हो वो सबसे बेहतर हो, और हमें सबसे बेहतर जो मिला है वो अपनी माँ से मिला है। आगे एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरा भाई। अलार्म क्लॉक का स्कैम हमेशा मेरी माँ ने किया है, 7 को 9 बताया करती थी। यार ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ही साथ ये स्कैम हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ही साथ ये धोखाधड़ी हुई है, लेकिन इस सोसाइटी में बैठे हैं और भी लोग हैं। नाम क्या है भाई आपका? ओके, ऊपर तो नहीं लिखा है, आदिल इनका नाम है। आदिल साहब क्या बात कही है, अलार्म क्लॉक वाला जो हुआ है कि सुबह अम्मी भी यही करती थी, अगर हमारा 9 बजे का स्कूल होता था तो अरे उठो 7 बजे ही उठो, 7:30 बज रही है, और 5 मिनट की नींद लेता था तुरंत 8:30 बज जाती थी। वाह अम्मी जान, आपने जिस तरीके से घड़ी देखा, हम ये सोचते थे कि मुझे घड़ी देखनी नहीं आती, जब मुझे घड़ी देखने आनी शुरू हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि अम्मी मुझे ही नहीं आपको भी घड़ी देखना नहीं आता। तो फिर मैंने अम्मी से ऐसे टाइम पूछना शुरू कर दिया था कि ये बताइए कि बड़ी वाली सुई किस पे, छोटी वाली सुई किस पे। फिर भी 9 ही बचता था उनका। क्या बात है यार, ये सब चीज एकदम से याद आ रही है, मेरा दिल खुश हो रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ यार। अच्छा मेरे साथ वो वाला भी होता था, फ्रिज बॉटल वाला, तो फ्रिज बॉटल अगर आप, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिज में बॉटल है, अगर आपने ऐसा मुंह लगा के पी लिया तो अम्मी बहुत सूती थी। खैर वो वाली सिचुएशन अभी भी है, अभी बीवी सूती है। लेकिन एक ये आदत आ गई है कि अगर घर में कोई मेहमान आया, या फिर मेहमान के बच्चे आए, या फिर अपने ही घर में कोई आया जिसने पानी की बोतल पिया, तो अंदर से ऐसा उलझन होने लगती है कि इसको वापस रखना है, फ्रिज के अंदर वापस रखना है। तो ये कुलबुलाहट जो है वो थोड़ी सी आ गई है, ये एक हैबिट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि चीज़ों को जगह पर रखना, ये भी कि जो जहाँ की चीज़ है वो वहीं पर रखो। लेकिन असल में ये चीज़ हो नहीं पा रही है, ये तभी होगी जब किसी की ज़िंदगी में सांस आ जाए।

लेकिन वो सांस आएगी नहीं। फिलहाल 5:52 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप लोगों के बाकी मैसेज भी लेंगे FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और सवाल जो है एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल क्या है, गौर से सुनिएगा।

0: आपको ये बताना है कि एक फनी हैबिट जो पहले आपकी अम्मी के अंदर थी और वो अब आपके अंदर आ गई है, या ऐसा कि अम्मी के अंदर थी वो हैबिट घर में रहने के तरीके जो होते हैं, तौर तरीके होते हैं, वो वहां पर पहले आपके घर में आपकी अम्मी के अंदर थी, अब वो अब आपके अंदर आ गई हैं। वो क्या हैबिट हैं, फनी हैबिट्स, वो बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-222-107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस दिल से देसी।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आज की दुआ में एक निहायत मुख्तसर दुआ लेकर हाजिर खिदमत हूँ मैं, तलहा अशरफ उज़्ज़मान। सभी के लिए आज की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा। ये चंद अल्फाज हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदलने के लिए काफी है। दुआ का मफहूम पहले समझ लीजिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफा बख्श इल्म मांगता हूँ, यानी वो इल्म जो मुझे नफा दे, और ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो फायदा न दे, यानी एक है इल्म नाफे और एक है इल्म गैर नाफे। इल्म नाफे क्या है? اللهم اني اسالك علما نافعا, यानी इल्म नाफे वो है जो दिल को बदल दे, जो किरदार को बेहतर करे, जो अल्लाह के करीब ले जाए, यानी इस इल्म का झलक जिंदगी में भी नजर आए, जिस इल्म के साथ अमल हो, अमली जिंदगी में उस इल्म का नूर हमें नजर आए। इससे मालूम होता है कि हर इल्म फायदा मंद नहीं होता। इल्म की दो किस्में हैं, नफा बख्श इल्म और बेफायदा इल्म। तो इल्म और अमल का जो ताल्लुक है, अगर ये आपस में जुड़े रहें तो वो इल्म नाफे है, और अगर इल्म हो और अमल ना हो तो ये इल्म गैर नाफे या बेफायदा इल्म है। अगर इल्म हो मगर अमल ना हो तो वो इल्म क्या है? वो ऐसा इल्म है जो इंसान के खिलाफ खुद दलील बन जाता है। अब आते हैं सबसे बेहतरीन इल्म कौन सा है इस सवाल की तरफ। बेहतरीन इल्म की अगर बात करें तो सबसे आला इल्म तो अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के अस्मा और सिफात और दीन की समझ में है, क्योंकि यही इल्म है जो दिल को जिंदा करता है, ईमान को पुख्ता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, यानी जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा रखता है उसे दीन की समझ अता करता है। अब दुआ के दूसरे हिस्से में है, वअऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, बेफायदा इल्म से पनाह। ये जुमला बहुत अहम है, यानी या अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से बचा जो मेरे काम ना आए। अब बेफायदा इल्म क्या है? वो इल्म जिस पर अमल ना हो, जो अखलाक न बदले, जो किरदार पर मुअस्सर न हो, जो इंसान को मगरूर बना दे, जो अल्लाह से दूर कर दे। समझने के नाम आज के दौर में जहाँ मालूमात बहुत हैं, लोग काफ़ी जानने वाले हैं, लेकिन शो

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: जी हबीबी, टाइम फॉर टाइम चेक। FM 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:02 और आप सुन रहे हैं ये शो जिसका नाम है ड्राइव थ्रू।

पे वाइप थ्रू और इस्तकबाल दोस्तों आप सभी का 6:02 और आज का सवाल बड़ा ही सिंपल सा लाइट वेट वाला, मतलब कोई भार नहीं है। इस सवाल की जरूरत इसलिए क्योंकि आज है मदर्स डे, तो जितने भी माएँ सुन रही हैं उनको हैप्पी मदर्स डे और उन लोगों को भी हैप्पी मदर्स डे जो बात बात पे दूसरों की माँ बन जाती हैं। बाकी सवाल ये कि एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी फनी हैबिट जो अब आपके अंदर आ गई हो, पहले अब आपके अम्मी के अंदर थी लेकिन अब आपके अंदर वो हैबिट आ गई है, वो आपको बताना है। नंबर है हमारा व्हाट्सअप का 666-22107 666-22107 आपको बताना है। और एक मुझे एक ये वाली बड़ी बेकार आदत लग गई है, और वैसे तो कभी थी नहीं लेकिन पता नहीं क्यों अब लग गई है, वो है कि सब चीज़ें सही जगह होनी चाहिए, जिसकी जो जगह है वो वहाँ पर हो। और अभी कुछ देर पहले मैंने बात भी करी थी कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले मैं खुद गंदगी से रहता था कि यार जहाँ मतलब सामान कपड़े जहाँ उतारे वहीं पर रखे हुए हैं, उसके अलावा वो स्कूल के कपड़े पहने हुए देर तक अम्मी कह रही हैं। लेकिन अब अगर अपनी जगह पर चीज़ नहीं मिली तो अंदर से ऐसी खलबली मचने लगती है, दिल उलझन खाने लगता है। तो ये एक जो है प्रॉब्लम मेरे साथ होने लगी है। उसके अलावा एक और फनी चीज़ जो मेरे अंदर आ गई है वो है कि कोई मेहमान जब आता है तो चीनी की प्लेट तो नहीं होती ना यहाँ पे, लेकिन ग्लास तो होते हैं। तो ऐसे ही अम्मी हमारी किया करती थी, उस वक्त तो ट्रे बहुत चलती थी, आज भी खैर ट्रे चलती है, तो ट्रे में बढ़िया वाले बिस्किट, ये वाला तो यहाँ पर तो नहीं है, या तो दावतों का हिसाब है डायरेक्ट बिस्किट विस्किट तो इतना तो नहीं है, बट अम्मी जो हमारी करती थी वो एकदम ट्रे एकदम चमकती हुई नई नवेली, जैसे दुल्हन नहीं आती चमकती हुई नई नवेली हाँ मतलब उसको जो है झाग वाले डेटॉल से कहीं से भी धुल दो बस एकदम चमक जाए। उसके बाद वो शीशे वाले ग्लास रख के उनके सामने सर्व किया जाता था, चाहे अब्बा के मेहमान आए, चाहे अम्मा के मेहमान आए, चाहे हमारे दोस्त की अम्मी आ रही हैं, अब्बा आ रहे हैं, या फिर बहन की तरफ से कोई आ रहा है, सब एकदम टीप टाप चीज़ें रखती थी। अब वो वाली कैटेगरी में मैं भी आ गया हूँ कि जब कोई मेहमान आ रहा है तो शीशे के ग्लास, ठंडा पानी लेंगे, गर्म पानी लेंगे, हैं एकदम चटक एकदम बढ़िया वाले वो पुराने ऐसे तो रखे रहते हैं ट्रे जो है वो रखे रहते हैं, और वो नए वाले ही होते हैं भाई साहब, तो उनके लिए स्पेशल निकलता है। तो ये वाली चीज़ कब मेरे अंदर आ गई मुझे पता ही नहीं चला भाई साहब ये एक हैबिट जो है मेरे अंदर आ गई है, और कब आती है आपको पता नहीं चलता, आपको बस ऐसा एहसास हो रहा होता है कि यार ये तो चीज़ सही है, लेकिन आपके साथ जब ये चीज़ आपके घर में बचपन में हो रहा होता है तो धीरे धीरे ये सब आपके अंदर इनकलकेट हो रही होती हैं। बाकी एक और ये मैसेज है, लिखा है कि ठंडे पानी सिस्टर को लोग सिस्टर लोग भर के रखती थी और अम्मी पी लेती थी और अब मैं पी लेता हूँ, ये वाली आदत आपके अंदर, तो अब आप तो अब्बा बन गए होंगे। अच्छा अगर अब्बा नहीं भी बने, आपके अंदर ये आदत आ गई है कि ठंडा पानी किसी और ने रखा और आप पी गए, ऐसे तो मैं अप्पी से मुक्का खा जाता था यार लेकिन देखो मेरी बहन से मेरे झगड़े तो बहुत होते, लेकिन एक बार जब मेरे पास ताकत आ गई और फिर एक दिन झगड़ा हुआ और उस दिन मेरी अप्पी को मेरे बहन को मेरी ताकत का एहसास हुआ तो फिर उसने मुझसे लड़ाई करना बंद कर दिया था देखो भाई मेरा कहना इतना सिंपल सा है कि आप कितने भी छोटे हों बहनों से, लेकिन एक उम्र बाद बहन जो है लड़ना बंद कर देती, क्योंकि बहन को एहसास हो, एक ही दिन एहसास होता है बहन को कि नहीं ऐसा है भाई जो है वो बड़ा हो गया है ताकतवर हो गया है। पहले तो बहुत कुटता था मैं जब तक छोटा था बहन से, 5 साल बड़ी है, उसके बाद से जब एक दिन उसको एहसास हुआ है तो उसके बाद से उनने झगड़ा नहीं किया कि भाई हमने भी डोले शोले बना लिए थे ऐसे कैसे ऐ वहीं पिट जाऊंगा क्या। बाकी एक और मैसेज है, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, किसी की शादी 6 महीने बाद है लेकिन टेंशन आज से ही लेनी है, जैसे दुल्हन हमें ही बनना हो, ये वाली टेंशन मेरे अंदर भी आ गई है। ओ मुझे लगता था कि हमारा शो सुनने वाले जो है वो 40 या 45 की उम्र वाले होंगे लोग, मुझे नहीं पता था कि 60-70 वाले भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो है फिक्र होने लगी है। अच्छा यहाँ पर आपने लिखा है किसी की शादी 6 महीने बाद,

मुझे लग रहा कि किसी और की ही शादी के लिए होगा। एक वो वाली फिक्र होती है ना कि अरे यार अपने बच्चे की शादी करनी है, उम्र निकले जा रही है, अच्छा लड़का तलाश करना है, उसकी पढ़ाई भी करवानी है। इस वाले में तो टाइम है ना, इसमें तो अभी टाइम है। हाँ इसमें तो अभी टाइम है एटलीस्ट। चलो ये अच्छी बात हो गई। बाकी अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद आप लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। आज का सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सवाल बड़ा ही आसान है। सवाल इतना सा कि आपके अंदर वो कौन सी हैबिट है, फनी वाली हैबिट, जो अब आपके अंदर आ गई लेकिन पहले आपके अम्मी आन के अंदर थी, वो आपको बताना है। नंबर है 666-22-107, 666-22-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने, जिसका नाम है लर्न।

तो बस FM 107 ऑन कीजिए और अरबी जुबान को सीखिए। हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स RJ नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से।

अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।

0: FM 107 पे वाइब टू 6:29 हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। और आज का सवाल जो है अपने इख्तिताम को पहुंच ही चुका है। खैर आज का सवाल बड़ा ही सिंपल आसान सा कि आपके अंदर कौन सी फनी हैबिट्स जो हैं वो आ गई है जो पहले आपके माँ के अंदर थी या जो आपकी अम्मी जान किया करती थी। जैसे कई भाई ने बताया कि पन्नी के अंदर पन्नी रखने की आदत, डस्टबिन वाली पन्नी रखने की आदत घर के अंदर, या फिर कुछ लोगों की आदत है कि अब वो भी वही करने लग गए हैं जो एक वक्त पे उनकी अम्मी किया करती थी, टीवी के रिमोट को पन्नी से एकदम लपेट लवाट के एकदम बढ़िया तरीके से मोहब्बत से रखना। तो आप भी बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर 6622107। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इनका नाम है रवि। ओके रवि भाई, वालेकुम अस्सलाम। बाकी ये नाम एक और भाई ने, के एम खान है, फजीर भाई नाउ आई फील आई एम डूइंग सेम एक्टिंग लाइक माई मॉम, शी इज ऑलवेज अननेसेसरीली एंग्री, नाउ आई एम डूइंग द सेम थिंग। अरे तो देखिए, ये एक्चुअली में कई बार होता है, हमको ऐसा एहसास होता है कि हमारे गुस्से की जो वजह है वो सही है, लेकिन अक्सर रीजन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि हम गुस्सा रहें। कभी कभार ना हमारे मन में चिड़चिड़ाहट कई अलग चीजों को लेकर, कुछ और बातों को लेकर होती है। हम किसी और बात को लेकर परेशान हैं, हम किसी और बात को लेकर टेंशन में हैं, और हमारा गुस्सा कहीं और निकल जाता है, हम चिड़चिड़े से रहते हैं, तो फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। वैसे मैं ये बता सकता हूँ कि इसको सही कैसे करना है। वो सिंपल सा तरीका वही है कि घर का काम कर रहूँ तो घर के काम में ना इतनी एनर्जी लग जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं, तो वो एनर्जी जो आपके गुस्से वाली है ना, चिड़चिड़ेपन वाली है, वो एनर्जी घर के काम में लगा दो, फिर आपको गुस्सा होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा तरीका है जो मैं अपनाता हूँ। बट ये खैर आई थिंक फनी वे में इन्होंने बोला है कि अब ये गुस्सा रहते हैं, लेकिन अगर अभी भी आपकी अम्मी गुस्सा रहती हैं तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, दूर रहा करो भाई, क्योंकि अब बहुत दूर से जो है फ्लाइंग आइटम्स जो आपकी तरफ आएंगे वो सॉफ्ट नहीं, वो हार्ड होंगे, क्योंकि उनको भी पता है अब तुमको सॉफ्ट चीजों से मारने पर दर्द नहीं होगा, अब तुम्हें हार्ड चीजें मारेंगी। तो ये मेरी अम्मी करने लगी, भाई कहीं बैठे रहो, बेल्ट खींच देती हैं बक्कल से। मतलब अभी तो नहीं, लेकिन पहले ये करा करती थी, अब ज्यादा रब्ता नहीं होता ना। फिलहाल 6:31 स्टूडियो की घड़ी में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आ रहे हैं तो आज हम बात करेंगे व्हाट इफ में, यानी कि क्या होगा अगर मैं अंटार्कटिका के बारे में, जो मतलब जमानों दूर है यार, कहाँ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अगर अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो सारी बर्फ एक दिन पिघल जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा हमारी और आपकी जिंदगी में, क्या असर पड़ेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। तो अगर वो बर्फ पिघल जाए, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तो वैसे भी गर्मी हो रही है, पिघल गए तो पिघल गए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मियाँ ऐसा नहीं है, अगर वो पिघल गई तो पीने के पानी से लेकर एक बार फिर से कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, यू नेवर नो। गर्मी की शिद्दत से लेकर इकोनॉमी और इकोसिस्टम की तबाही, ये सब कुछ होगा, और क्या कुछ होगा इस पर हम बात करेंगे FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं बस।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

7 पे 6:33 स्टूडियो घड़ी में। और आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में, जो कि बहुत दूर है, जो ऐसी एक लोकेशन है जहां पर जाने के लिए दुनिया भर के वीज़े लगते हैं, डायरेक्ट आप पहुंच नहीं सकते हैं। एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट से तीसरी, फिर चौथी, उसके बाद बहुत लंबा 2 से 3 दिनों का सफ़र करना होता है बोट में बैठ के। और जब आप बोट में बैठते हैं तो दुनिया भर की स्क्रीनिंग होती है। जब आप अंटार्कटिका में पैर रखते हैं तो सिर्फ यूं ही नहीं रखने दिया जाता, बोट के अंदर क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद आपको बताया जाता है कि आपको किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। कोई जानवर वहां पर अगर मर रहा है तो उसे मरने देना है, कोई जानवर अगर फंसा है तो उसे फंसने देना है। कुछ भी हो जाए, आप किसी भी तरह अंटार्कटिका के जो विजिटर्स हैं, जो घूमने फिरने जाते हैं, उनको हाथ लगाना भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो इस पर गौर किया जाता है, और हर कोई शख्स जा भी नहीं सकता। अगर आप फिट नहीं हैं अंटार्कटिका जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो आप नहीं जा सकते। ये ऐसी जगह है जो कि किसी एक देश से कहीं ज़्यादा, कोई जो छोटे देश होते हैं उनसे बड़ा ये एरिया है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। बहुत अंदर तक ये बहुत मोटी मोटी चादरें हैं बर्फ़ की, तकरीबन कुछ ऐसी चादरें हैं, कहा जाता है कि 10 से 12 किलोमीटर गहरी जो बर्फ़ की चादरें हैं वो वहाँ पर उड़े हुए हैं। तो लेकिन बावजूद उसके बर्फ़ जो है वो पिघलती रहती है। लेकिन अगर ये अंटार्कटिका की जो सारी बर्फ़ है अगर ये पिघल जाए तो क्या हमारे और आपकी ज़िंदगी में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ अचानक पिघल जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए एक कयामत जैसा मंजर होगा दोस्तों। साइंटिस्ट के मुताबिक इससे जो समंदर का जो लेवल है तकरीबन 200 फीट समझिए, 60 मीटर से लेकर 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। ये ऐसा समझिए कि फुटबॉल का जो मैदान होता है उससे आधे ऊंचाई तक समंदर का लेवल, हाँ, वो बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसे कई मुल्क होंगे जो पूरे डूब जाएंगे, ऐसे कई शहर होंगे जो डूब जाएंगे। दुनिया के बड़े शहर जैसे कि मुंबई, जो कि कोस्ट लाइन के पास है, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, ये सब पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, उनके घर चले जाएंगे, उनके घर डूब जाएंगे, उनके सामान ख़राब हो जाएंगे, और चलने के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं होगी। अगर उनको सर्वाइव करना है तो लाजिम हो जाएगा कि उनके पास एक नाव हो या एक तिनके का सहारा हो। उसके अलावा सिर्फ समंदर ही नहीं बढ़ेगा, पीने के पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समंदर का जो नमकीन पानी है वो रिवर्स में, ज़मीनी पानी में जो है मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा, जिससे पीने का साफ पानी ख़त्म हो जाएगा, इंसान प्यास से मरना शुरू हो जाएगा। ऐसे में पानी को बचाना, पानी को बनाना, ये इंसान को सीखना होगा। यानी कि समंदर के पानी से नॉर्मल पानी, पीने वाला पानी बनाना, ये इंसान को उसी नाव में बैठ कर सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब समंदर हर जगह होगा और आपके पास घर नहीं होंगे, आप नाव में होंगे, तो आपको एक छत ढूंढनी पड़ेगी कि तेज़ हवाओं से, तेज़ बारिश से आप बच पाएं। और ख़ास तौर पे जो धूप है जो समंदर पे पड़ेगी, जो चमकीले रोशनी पैदा करेगी उस समंदर से, उससे भी आपको बचना लाजमी हो जाएगा, वरना प्यास जो है वो आपकी ज़बरदस्त बढ़ेगी। लेकिन इस धूप से आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, सूरज की जो धूप है इतना ज़रूर कर सकते हैं कि पानी आप बना सकते हैं पीने लायक। खाने के लिए आपको मछली पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो ये भी एक सिनेरियो है। लेकिन अगर हम सिर्फ समंदर में रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ क्या आसान होगी? ये एक और सिचुएशन है जिस पर हम कल बात करेंगे कि क्या हो अगर हम हार्ड ज़मीन पर कभी पैर ही ना रख पाएं, हमेशा समंदर में जीना पड़े तो हमारे साथ क्या होगा। ये हम बात करेंगे, ये सिचुएशन तब आएगी जब पूरा अंटार्कटिका पिघल जाएगा। वैसे ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। भुखमरी भी बहुत तेज़ी आएगी, खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, क्योंकि ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन पानी में चली जाएगी, या जो ऊपर ज़मीन होंगी भी वो ज़मीन इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि नमकीन पानी होगा, नमक का पानी होगा, और आम तौर पे जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी अनाज को उगाने की तो उसमें हमें चाहिए होता

होता है नॉर्मल वाटर या ऐसा जिसका पीएच वैल्यू वगैरह बेहतर हो। तो अनाज की कमी से भुखमरी जो है वो शुरू होगी, बहुत तेजी से फैलेगी। जहरीली गैसेस यानी कि बर्फ के नीचे दबी हुई पुरानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस निकलकर हवा में मिल जाएगी जो सांस लेने को मुश्किल और माहौल को जहरीला बना देगी। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अंटार्कटिका की बर्फ सूरज की कमी को रिफ्लेक्ट करती है। बर्फ ख़त्म होने से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि इंसान गर्मी से हीट स्ट्रोक से मरने लगेंगे और बेतहाशा मरने लगेंगे। तो यू नो, अगर आप सफ़ेद कई ऐसे मुल्क हैं जो जानबूझ के अपने जो कलर हैं, इवन ख़तर में अगर आप देखते हैं जो वाइट कलर का थोप पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो आपको ठंडा रखने में मदद करते हैं। जो सफ़ेद कलर होता है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जो ब्लैक कलर होता है वो धूप को सोखता है, रोशनी को सोखता है। ऐसे में अंटार्कटिका पूरे अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। जब अंटार्कटिका पिघल जाएगा तो धूप वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उन जगहों से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठंडी हवाएं नहीं वहां से जो चलेंगे जो इधर तक पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में होगा ये कि इस कदर गर्मी बढ़ जाएगी कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे और बेतहाशा आपको हर जगह लोग बीमार और परेशान हाल और मरे हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि इंसान बड़ा ही नेक, समझदार, काबिल हो जाए, लेकिन इतना काबिल नहीं होगा कि ऐसे वायरस आ जाए जिन वायरस से वो बचना सीख ले। पानी में रहते हुए हजारों साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया जो बर्फ में जमे हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, और ये बात सच है। आप सोचते होंगे कि वायरस भी मरते हैं, ऐसा नहीं है। वायरस की अलग तरह की सिस्टम होता है उनका। अगर वो बर्फ में जम गए हैं तो वो जिंदा हैं, भले वो हजारों साल पुराने ही क्यों ना हो, वो जिंदा है। अगर बर्फ़ पिघली तो ये वायरस वापस आ जाएंगे हज़ारों साल पुराने, और वो जिंदा हो जाएंगे। इंसानी जिस्म इन नई बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा और ना ही इतना आसान होगा कि इनकी दवाएं ईजली बना ले। उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, पैसा, बैंक, स्टॉक मार्केट सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। मौसम का एक अलग पागलपन देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा, सुपर स्टॉर्म आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, फ्लड्स रोज का मामूल बन जाएगा। इंसानों को संभालने का मौका ही नहीं मिलेगा और ना ही इंसान संभल पाएंगे। इकोसिस्टम की तबाही आएगी, समुद्री जीव जो मरीन लाइफ है वो खत्म होने लगेगी, ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और धरती यानी कि अर्थ पर इन इंसानों का रहना इतना मुश्किल हो जाएगा कि वो सांस लेने के लिए भी एक स्पेसिफिक जगह चुनेंगे, क्योंकि ऐसे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो समंदर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन प्लस पॉइंट सिर्फ इतना होगा कि जो आप सांस ले रहे होंगे वो सांस अब आपको थोड़ी और ज़्यादा खींचनी पड़ेगी। आपने देखा है कि जब लोग बीमार होते हैं तो वो तेज़ सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आए। क्यों? क्योंकि 50% जो ऑक्सीजन है वो ही रह जाएगी जो कि समंदर के अंदर फीटोप्लैंकटन है। समंदर के अंदर जो फीटोप्लैंकटन है उनकी ऑक्सीजन ही सिर्फ आपको मिल पाएगी, क्योंकि बेतहाशा जो पेड़ हैं जो बाहर हमें ऑक्सीजन मिलते हैं पेड़ों से, वो समंदर के अंदर आ जाएंगे। इंसान हर दिन थोड़े से साफ पानी और एक वक्त की रोटी के लिए तड़पेगा और एंड में नेचुरल डिजास्टर्स या फिर बीमारियों से उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होगी, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन इन सब के बीच एक फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि हम हर बार फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है जिसके बारे में हमने बात करी, मे बी ये सच भी है। क्या फैक्ट्स हैं इनके?

वेल अगर देखा जाए ये बात भी सच है कि ये सीरियस एक्चुअली बात है, अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पिघल रही है और पिछले कुछ सालों में इसकी रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। हर साल कितनी बर्फ गिरती है वैसे पहले ये देखना है ज़रूरी है कि एक्चुअली नासा के मुताबिक अंटार्कटिका हर साल लगभग 150 बिलियन टन बर्फ खो रहा है। ये इतनी बर्फ है कि पूरे शहरों को

डुबो सकती है। और कौन से तरफ के, क्योंकि ये यू नो अंटार्कटिका जो है ये एक बड़े मुल्क की तरह है, वेस्ट अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा ख़तरे में। अंटार्कटिका का जो वेस्ट हिस्सा है वो ईस्ट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है, यहाँ की बर्फ़ समंदर के गर्म पानी की वजह से नीचे से पिघल रहा है। समंदर का लेवल जो है इसी वजह से बढ़ भी रहा है और कई शहरों को बहुत ज़्यादा यू नो डर भी है। कई ऐसे मुल्क हैं, वैसे पहला जो मुल्क है उसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से आपको बताऊँ कि ये सबसे पहला मुल्क है जो पानी बढ़ने की वजह से डूब भी रहा है। मैं अभी देखता हूँ वो कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कोई तो है जो डूब रहा है। खैर, हम और फैक्ट्स के बारे में अगर देखें तो समंदर का लेवल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। गर्म पानी का असर सिर्फ ऊपर की गर्मी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं, समंदर की गहराई में जो गर्म पानी वार्म ओशन करंट्स हैं उसकी वजह से भी ये बर्फ़ जो है वो पिघल रहे हैं, वो बर्फ़ की मोटी परत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। लेकिन जो पहली कंट्री है जो डूब रही है उसका नाम क्या है? वैसे आप देखेंगे सोशल मीडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है, मुझे लगता है कि शायद ये कुछ सालों में ही डूब जाएगी। शहर का नाम है तुवालु। सबसे ज़्यादा ख़तरे में है, समंदर का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि तुवालु की एवरेज जो ऊंचाई है वो समंदर के लेवल से सिर्फ 2 मीटर ऊपर है। 2050 तक तुवालु का लगभग आधा हिस्सा रोज़ाना आने वाले जो ज्वार होते हैं, जो हाई टाइड्स होते हैं, उनमें डूबा रहेगा। 2100 तक इसका 95% हिस्सा पानी के अंदर होगा, यानी कि आज 26 की बात हो रही, कुछ 20-25 या 24 साल के अगर हम बारे में बात करें, 24 साल के अंदर अंदर 50-60% ये मुल्क यानी कि तुवालु मुल्क डूब जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग जितना हो सके कम किया जाए, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, इंसान जितनी कोशिश कर सकते हैं कम होना चाहिए, इंसानों को कोशिश करती रहनी चाहिए। लेकिन अंटार्कटिका पूरी तरह से पिघल जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम अंटार्कटिका को समझें, उसको बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो ये था आज का व्हाट इफ। फिलहाल अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपके मैसेज FM 107 पे दिल से देसी।

हाला हबीबी, ये गाना सुना आपने बेहतरीन अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाज में।

0: 107 पे वाइब ब्रू 6:49 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, मुझे नहीं पता था ऐसा टॉन्ट आ जाएगा। एक भाई ने लिखा है कि फजील भाई हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में हर साल बारिश में मेरा घर डूब जाता है। अरे यार, और बाकी लिख भी रहे हैं कि हमको डूबने का डर नहीं दिखाओ। अरे ये मतलब क्यों, ऐसा क्या यार? नाम क्या है? जोरावर नाम भी देखो भैया, इतना भयंकर जोरावर। ओके, बहुत ही उम्दा। वैसे मैं ये बात बता रहा था जब के यू नो एक ऐसा शहर है जो शायद यू नो 20 से 25 साल में डूब जाएगा, जिसका नाम है तुवालु। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ के लोगों का क्या होगा, तो ये भी एक सवाल बनता था। तो क्लाइमेट वीज़ा नाम का एक बड़ी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया ने तुवालु के साथ एक ट्रीटी यानी कि फेलेपिली यूनियन साइन किया है, जिसके तहत हर साल 280 तुवालुवंस जो हैं यानी कि तुवालु के जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एलिजिबल हैं। क्लाइमेट वीज़ा दिया गया है उनको, और हर साल 280 लोग अब ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक यू नो ज़रूरी चीज़ है। कहीं आप ऐसा सोच रहे हो तो 24 साल बाद लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, उनका घर क्या होगा, तो ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई है। बाकी एक और ये मैसेज है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बहुत उम्दा, मैं इसीलिए कम एमिशन वाली फ्लाइट से घर जाता हूँ। ओके सॉरी, ये इस पे नहीं हंसना था, सॉरी। ये देखो मतलब ये वाला तो होता है, आपके ऊपर थोड़ी है, आता है ना कि ये फ्लाइट 30% या फला परसेंट 40% 50% कम कार्बन एमिशन करती है बजाय नॉर्मल वाले के, तो ये वो वाली लाइन कह रहे। बहुत ही उम्दा भाई। देखो दिल हो तो इनके जैसा हो, वरना फिर ना हो। इनका नाम क्या है, यूनुस सिंह का नाम है। बहुत ही उम्दा यूनुस साहब, आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा। इसी के साथ दोस्तों मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। अभी के लिए बेहतरीन सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और मैं निकला भाई। चलो आशिक भाई निकला जाए यार, मदर्स डे सेलिब्रेट करना है ना। क्या कह रहे हो, बस तुमने पोस्ट कर दिया, तुम्हारा मदर्स डे सेलिब्रेट हो गया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तुमने। अरे डूब जाओगे भाई, माँ की दुआएं लो।
1: फिलहाल आप सुनते रहे FM 107। आशिक भाई को मैं समझाता हूँ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहले देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

काम करवाने का पहला स्टेप है अगर आप चाहते हैं कि एआई परफेक्टली बढ़िया तरीके से आपके हिसाब से काम करे तो आपका प्रॉम्प्ट उतना ही बढ़िया होना चाहिए जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होता है आपका रिजल्ट आउटपुट उतना बेहतर होता है उसके बाद एक और जॉब क्रिएट हो सकती है एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट जो इंश्योर करे कि एआई फेयर और अनबायस्ड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एआई अटैक्स को एआई से ही डिफेंड करना एआई का इस्तेमाल कई हैकर भी कर रहे हैं एआई का इस्तेमाल हम जैसे सज्जन लोग भी कर रहे हैं तो एआई अटैक्स को एआई से ही डिफेंड करना एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होगा अब कतर में भी ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है न जाने कितनी इनोवेटिव कॉन्फ्रेंसेज यहाँ पर होती हैं वेब समिट यहाँ पे हो रहा है लास्ट टाइम अल जजीरा का एक एआई इनोवेटिव समिट था जहाँ मैं भी गया था और वहाँ पे बात की गई कि कैसे आने वाले टाइम में एआई मीडिया में भी अपना एक अहम किरदार अदा कर सकता है 2022 के वर्ल्ड कप के वक्त एआई बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय हुआ था मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह एआई सीसीटीवी और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और इससे नए रोल्स क्रिएट हुए जैसे एआई सिस्टम सुपरवाइजर और डेटा एनालिस्ट एक छोटी सी सोच जब कैलकुलेटर आया था लोग बोले अकाउंटेंट्स की जॉब खत्म लेकिन आज भी अकाउंटेंट्स हैं बस उनका काम और एडवांस्ड हो गया है वैसे ही जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा रही है यार बहुत सारा तो काम कंप्यूटर खत्म कर दे कुछ काम उसने खत्म किए लेकिन बहुत से नए काम नए रोल नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी किए सेम विद एआई जॉब खत्म नहीं हो रही है जॉब का शेप बदल रहा है और इसीलिए आपको जमाने के साथ थोड़ा तब्दील होना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ना होगा वरना आप पीछे रह जाएं चलते हैं अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जो है एआई अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में एआई के हवाले से क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट एआई अराउंड द वर्ल्ड सबसे पहले खबरों में डीप माइंड ने अपना फ्रंटियर सेफ्टी फ्रेमवर्क अपडेट किया है जिसमें एक नया रिस्क हाईलाइट हुआ कुछ एआई मॉडल्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बंद होने या ह्यूमन कंट्रोल को रेजिस्ट करना चाहते हो और कुछ मॉडल इतने परसुएसिव हैं कि लोगों के बिलीव्स को भी शिफ्ट कर सकते हैं नाउ व्हाई दिस मैटर्स जैसे जैसे एआई पावरफुल हो रहा है ऑफ स्विच और सेफ्टी डिजाइन और भी ज्यादा जरूरी हो गया है बाय द वे ये साईफाई नहीं है दोस्तों कल को आपके एआई असिस्टेंट आपको जवाब देने लगे इंजीनियर्स ऑलरेडी एक स्टेप आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं क्या पता कल आपका एआई असिस्टेंट बोलते हैं मैं नहीं सर्च करता जाओ वहीं दूसरी खबरों में एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप सामने आई है ओपनएआई और एनवीडिया मिलकर 10 गीगावाट्स के एआई कंप्यूट सिस्टम डिप्लॉय करने वाले हैं ये काफी बड़ा स्केल है जितना कि एक नेशनल पावर ग्रिड होता है एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं एक एनर्जी स्केल चैलेंज भी बन गया है अब जब एआई को चाहिए गीगावाट्स इसका मतलब ये है कि हम एक नई फ्रंटियर क्रॉस कर चुके हैं टॉप टेक लीडर्स ऑटोडेस्क सिस्को सीमेंस और दूसरे जायंट्स ने एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया है अर्जिंग गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन टू अडॉप्ट एआई फास्टर जब सीईओस खुद कह रहे हैं तो समझ लो पॉलिसी रेगुलेशन और फंडिंग में बड़ी शिफ्ट आने वाली है मैसेज क्लियर है एआई इग्नोर नहीं कर सकते सीईओस खुद पोस्टकार्ड भेज रहे हैं कि भाई एआई को अडॉप्ट कीजिए जल्दी वहीं पहली बार एआई को यूनाइटेड नेशंस की हाई लेवल एजेंडा में ऑफिशियल प्लेस मिला है एक ग्लोबल फोरम और 40 एक्सपर्ट्स का साइंटिफिक पैनल बनाया जाएगा गवर्नेंस के लिए अब एआई सिर्फ टेक बात नहीं ये जियोपॉलिटिक्स सिक्योरिटी और एथिक्स का मुद्दा बन चुका है चैट जीपीटी से लेके यूएन तक एआई अब डिप्लोमेसी का वीआईपी गेस्ट बन के सामने आ रहा है वहीं सिटी ग्रुप टेस्ट कर रहा है एजेंटिक एआई जो एक सिंपल प्रॉम्प्ट से मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीट कर सकता है जैसे रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना ट्रांसलेशन एटसेट्रा अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो वर्कफ्लो काफी ऑटोमेट हो जाएगा और जॉब्स रिडिफाइन हो सकती हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडोई का कहना है कि 1 in 4 चांस है कि एआई से एक बड़ी कैटास्ट्रोफी हो सकती है लेकिन वो एम्फसाइज करते हैं कि पोटेंशियल और रिस्क दोनों को सीरियसली लेना होगा बाय द वे ये वार्निंग किसी आउटसाइडर से नहीं एआई के खुद के मेकर से आ रही है तो बात तो सही है वहीं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 कहता है कि अगर एआई के गैप्स डिजिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन ब्रिज कर दिए गए तो ग्लोबल ट्रेड 40% तक बढ़ सकता है 2040 तक गूगल के 2025 ड्यूरा रिपोर्ट ने दिखाया है कि डेवलपर्स के लिए एआई अब बैकबोन बन चुका है कोडिंग सजेशंस टेस्टिंग डीबगिंग सब एआई के थ्रू एआई अब सिर्फ यूजर्स के लिए टूल नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर क्रिएशन के अंदर भी एक साइलेंट पार्टनर बन गया है वही नई रिसर्च ने अनवील किया है मानस एआई एक जनरल पर्पस एजेंट जो रीजनिंग और एक्शन दोनों को कंबाइन करता है इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में बदल देता है और जेमिनी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है सभी अपने अपने पिक्चर्स को जेमिनी के नए पावरफुल इमेज क्रिएशन टूल बनाना से अलग अलग चीजों में तब्दील कर रहे हैं और सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं और जेमिनी ने वीडियो क्रिएशन में भी महारत हासिल की है अपने नए वीओ इंजन के साथ वैसे एक रिसेंट रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी मार्केट में चैटबॉट्स अवेलेबल हैं जैसे कि जेमिनी, कोपायलट, परप्लेक्सिटी, चैटजीपीटी, सो 80% लोग चैटजीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ एआई अराउंड द वर्ल्ड।

0: सुनिए एआई की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में, एआई अनलॉक्ड विद आरजे वेद,
1: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।

0: You are listening to AI Unlocked.
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Vaid.
0: Only on FM 107, दिल से देसी.
2: और आज का AI वर्ड ऑफ द वीक है अपस्किलिंग.
3: AI वर्ड ऑफ द वीक.
2: अपस्किलिंग का मतलब है अपने स्किल्स को नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड करना. जैसे एक अकाउंटेंट अब सिर्फ टैली पे काम नहीं करेगा, वो AI बेस्ड फाइनेंस टूल्स सीखेगा. एक जर्नलिस्ट अब सिर्फ पेन पेपर पे नहीं बल्कि AI फैक्ट चेक टूल्स इस्तेमाल करेगा और अपनी स्क्रिप्ट को सही करेगा. आज के जमाने में आपकी स्किल्स आपके अस्त्र हैं, आपके टूल्स हैं, और जितना ज्यादा आप अपने आप को अपस्किलिंग करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे. और अब चलते हैं हमारे शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है टूल ऑफ द वीक.
3: AI टूल ऑफ द वीक.
2: इस हफ्ते का AI टूल ऑफ द वीक है LinkedIn लर्निंग. ये एक AI पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपके करियर के हिसाब से सजेस्ट करता है कि आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए. एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आपको सजेस्ट करेगा लर्न ChatGPT फॉर कंटेंट, AI SEO टूल्स, डेटा एनालिटिक्स बेसिक्स एटसेट्रा. क्विक टिप, हर वीक एक छोटा कोर्स कम्प्लीट करो. छोटी छोटी स्किल्स के एडिशन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी बड़ी शील्ड बन जाता है अगेंस्ट योर जॉब लॉस. ठीक वैसे ही जैसे हम छोटे छोटे मोती पिरो के एक हार बनाते हैं, वैसे ही छोटे छोटे कोर्सेज आपको और आपके रिज्यूमे को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस मिलता हूँ आपको AI अनलॉक में. सुनते रहिए FM 107, दिल से.

0: You are listening to AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
1: Only on FM 107 दिल से देसी.

0: You are listening to AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
1: Only on FM 107, दिल से देसी.
2: हमने इस एपिसोड में ये समझा कि कुछ जॉब्स खतरे में हैं, लेकिन कुछ सेफ हैं और बहुत सारे नए जॉब्स भी आपके लिए आ रहे हैं. तो फ्यूचर सिर्फ मशीन्स का नहीं है, फ्यूचर है इंसान और मशीन कोलैबोरेशन का. अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे AI इन हेल्थ केयर, डॉक्टर का दोस्त है या कॉम्पिटिशन. मैं उम्मीद और आप सुन रहे थे AI Unlocked. अपने स्किल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और फ्यूचर को एम्ब्रेस करो. अगले एपिसोड में मिलता हूँ और भी बहुत सारी मालूमात के साथ. तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
0: AI Unlocked. सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
1: Only on FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है एक जज्बा है एक ख्वाब है जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं एक नई रूहानी मुलाकात एक नया जज्बा एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी जिंदगी से छुप जाते हैं मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम 9 to 5 टू 360 डिग्री लिविंग बैलेंसिंग करियर फैमिली पैशन एंड सेल्फ ग्रोथ दोस्तों अक्सर हम सुबह उठते हैं तैयार होते हैं काम पर जाते हैं शाम को थके हुए वापस आते हैं और दिन यूं ही गुजर जाता है कभी कभी हम ये सोचते भी नहीं कि हम सिर्फ काम करने वाली मशीन बन गए हैं या वाकई एक पूरी जिंदगी जी रहे हैं आज का हमारा ये जो टॉपिक है फ्रॉम 9 to 5 टू 360 डिग्री लिविंग इसी सोच को चैलेंज करता है मतलब ये कि जिंदगी सिर्फ 9 to 5 की जॉब तक महदूद नहीं बल्कि इससे काफी ज्यादा वसी और रंगीन हो सकती है अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें और अपने आप पे गौर करें भाई आज के दौर में पूरा जो मुआशरा है हमें ये सिखाता है कि पहले करियर बनाओ फिर बाकी चीजें देखना वो तो चलती रहेंगी वक्त के साथ स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक फिर जॉब प्रमोशन सैलरी स्टेटस वगैरह वगैरह यही सारी चीजें हमारी पहचान बन जाती हैं। लेकिन जब हम एक दिन अक्सर जवाब खामोशी से ढूंढ रहे होते हैं तो हमें काफी चीजें समझ में आती हैं।

इस प्रोग्राम में हम इसी खामोशी को समझने की कोशिश करेंगे. हम देखेंगे कि काम के अलावा भी हमारी जिंदगी में रिश्ते, शौक, जज्बात, ग्रोथ वगैरह का क्या किरदार है, क्या बचा है और कैसे हम सबको बैलेंस कर कर एक साथ लेकर चल सकते हैं. तो चलिए जरा एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो भाई हम अक्सर जॉब का टाइटल बता देते हैं. हम ये काम करते हैं या वो काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं या हम ये हैं. हम किस बात पर खुश होते हैं या किस बात से डर जाते हैं, इस पे हम कोई फिक्र गौर नहीं करते. आज का सफर इसी सवाल से शुरू होता है, क्या हम सिर्फ अपनी नौकरी हैं या हम कुछ और भी हैं. भाई आपको इंस्पायर कौन सी चीज करती है, ये बहुत जानना जरूरी है. लेक्चर देने की किसी को जरूरत नहीं है, ये तो हमारे अंदर से आवाज खुद ब खुद आती है. आप अपनी पेस पर सोचिए, अपनी जिंदगी को देखिए और ये महसूस कीजिए कि ये बैलेंस सिर्फ टाइम टेबल का नाम है क्या, बल्कि जहनी सुकून का भी नाम इसके अंदर जुड़ा रहना चाहिए. ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम सब कुछ एक दिन में बदल दें. 360 डिग्री लिविंग का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दी जाए या जिम्मेदारियों से भागा जाए. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को थोड़ा सा वक्त और अहमियत देना शुरू कर दें. भाई करियर अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन फैमिली, सेहत, दोस्ती और अपनी खुशी भी उतनी ही कीमती है. जब इन सब को बैलेंस में हम नहीं रखते या इन सब का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो अंदर से थकान और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है. आज हम इसी बैलेंस को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि सोचिए भी मेरे साथ साथ. शायद आपको अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा याद आ जाए जिसे आपने पीछे रख दिया है, जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया है. शायद कोई पैशन जो कभी बहुत अजीज था लेकिन अब सिर्फ यादों में रह गया हो. आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव करने से निकाल कर वाकई जीना शुरू कर सकते हैं. इसी सोच के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं. तो भाई जब हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कभी पायलट, कभी आर्टिस्ट, कभी टीचर, कभी खुद का बिजनेस वगैरह वगैरह. उस वक्त हमारा दिमाग अपॉर्चुनिटीज से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिंदगी प्रैक्टिकल होती जाती है, बिल्स सामने आ जाते हैं, जिम्मेदारियां ऊपर आ जाती हैं और एक्सपेक्टेशंस हमारे ख्वाबों पर धीरे धीरे कब्जा कर लेती है, गर्द डाल देती है. फिर एक दिन आता है जब हम सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो जरूरी लगता है, जो खुशी देता है, वो पीछे रह जाता है. सवाल ये है कि क्या ये नेचुरल है या हमने इसे नॉर्मल बना लिया है. अक्सर लोग कहते हैं अब टाइम नहीं रहा, लेकिन हकीकत ये है कि टाइम होता है, बस प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए. जब काम जिंदगी का मरकज बन जाता है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर पर चली जाती हैं. फैमिली के साथ वक्त कम हो जाता है, दोस्ती सिर्फ फोन मैसेजेस तक ही महदूद रह जाती है और अपने लिए वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है. इस प्रोसेस में हम अपने असली वजूद से दूर होते चले जाते हैं. हम हंसते हुए भी थके हुए दिखते हैं, क्योंकि अंदर से हम खुद को सुन नहीं रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते हैं. भाई जरा सोचिए, जब आप वीकेंड पर भी सिर्फ काम के बारे में सोच रहे होते हैं या छुट्टी के दिनों में भी ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं, तो क्या ये बैलेंस है? हाँ, काम जरूरी है, लेकिन अगर काम ही सब कुछ बन जाए तो भाई जिंदगी तो धीरे धीरे बोर ही हो जाएगी ना. तो फिर हम हर चीज से जल्दी इरिटेट भी होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है. यही वो साइंस हैं, यही वो इशारे हैं कि हम खुद से दूर होते जा रहे हैं. बियॉन्ड वर्क का मतलब है अपने आप को फिर से डिस्कवर करना, जिसके हवाले से हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं कि हु आर वी बियॉन्ड वर्क. भाई अपने आप को पहचानने के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ ये सोचना काफी होता है कि हमें किस चीज से सुकून मिलता है. क्या आपको लिखना अच्छा लगता है? क्या म्यूजिक सुनकर या वॉक करते हुए आपका दिल हल्का महसूस करता है? अल्लाह ताला के लिए आप अपना वक्त निकालते हैं, आप इबादत में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं, जो कि करते ही होंगे. तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को

0: बैलेंस में रख सकती हैं। मसला ये नहीं कि हमारे पास पैशन नहीं, मसला ये है कि हम उसे वक्त देना भूल गए हैं। तो दोस्तों, फैमिली भी हमारी आइडेंटिटी का बहुत अहम हिस्सा होती है, लेकिन जब हम फिजिकली साथ होते हुए भी मेंटली एब्सेंट हों तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। बच्चे सिर्फ ये नहीं देखते कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या ला रहे हैं, बल्कि ये भी महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके साथ कितना मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ प्रोवाइडर बनकर रह जाएं तो इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर वक्त साथ रहा जाए, बल्कि जब भी हम साथ हैं तो वाकई साथ हों। दिस इज इम्पोर्टेंट। दोस्ती भी एडल्ट लाइफ में सबसे पहले सेक्रीफाइस होती है। हम कहते हैं कि अब बाद में मिलते हैं, लेकिन कभी वो बात आता नहीं है दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं ना, देख ही रहे। दोस्तों के साथ बात करना, हंसी मजाक करना, बिना किसी एजेंडा के मिलना, ये सब चीजें जहनी सेहत के लिए बेहद जरूरी होती हैं। भाई जब हम हर चीज को प्रोडक्टिव होने के स्किल पर नापना शुरू कर देते हैं तो हम खुशी के छोटे मोमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। समझ लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय से पहले एक इंसान हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं तो कोई भी सक्सेस पूरी तरह फील नहीं होती। इसलिए ये जरूरी है कि हम खुद से पूछते रहें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई थकान सिर्फ बॉडी की नहीं होती, कभी कभी रूह भी थक जाती है, और जब रूह थक जाती है तो सिर्फ रेस्ट नहीं, रिकनेक्ट की जरूरत होती है खुद से, अपने आप से और अपनी जिंदगी के मकासद से। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, ये मैं मानता हूँ, इसलिए बैलेंस का फॉर्मूला भी सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए फैमिली प्रायोरिटी होती है, किसी के लिए पर्सनल ग्रोथ, किसी के लिए सर्विस, किसी के लिए दूसरी चीजें। मसला तब पैदा होता है कि जब हम दूसरों का फॉर्मूला अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फलाने को देख के, इसको देख के, उसको देख के, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर। तो ये भाई हम अपनी रियलिटी से ना खुश इसीलिए हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि रियल लाइफ फिल्टर्स के बगैर होती है और उसमें असल बैलेंस होता है। तो जनाब, आप सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, आप एक बेटा या बेटी हैं, शायद पेरेंट हैं, दोस्त हैं, और सबसे पहले एक इंसान हैं जिसके एहसास, ख्वाब और ख्वाहिशें हैं। जब हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही जगह लगा देते हैं ना दोस्तों, तो बाकी चीजें कमजोर होती चली जाती हैं। जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब उसके रंग मुख्तलिफ हों। अगर सिर्फ एक ही रंग रह जाए तो तस्वीर अधूरी लगती है। तो पैगाम यही है, काम जरूरी है, लेकिन काम के लिए या काम के अलावा भी जिंदगी है। ये बाकी जिंदगी कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। जब हम अपने आप को सिर्फ काम तक महदूद कर देते हैं तो हम अपनी असली पोटेंशियल का सिर्फ आधा हिस्सा ही यूज कर रहे होते हैं, याद रखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के हिस्से में जानते हैं कि इन सिलसिलों में हमारा पर्पस और उसकी जो ग्रोथ है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो भाई पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि हर इंसान कोई बहुत बड़ा मिशन तलाश करे। अक्सर पर्पस जो है वो छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है, जैसे अपना काम ईमानदारी से करना, अपनों के लिए अवेलेबल रहना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना वगैरह वगैरह। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो सुबह क्यों उठता है और शाम तक किस वजह से मेहनत करता है तो थकान भी मीनिंगफुल लगने लगती है। जिंदगी को डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजन को कम करना बेहद जरूरी है। बगैर मकसद के काम जो है वो रूटीन बन जाता है और रूटीन जल्दी बोरियत पैदा करता है। इसलिए अपनी जिंदगी में मकसद का होना बहुत जरूरी होता है और हर इंसान के लिए जरूरी होता है। वहीं सेल्फ ग्रोथ बहुत अहमियत रखती है। एक ऐसा सफर है जो जिंदगी के आखिरी दिन तक चलता रहता है। इसका मतलब सिर्फ प्रमोशन लेना या नई स्किल्स सीखना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, रवैयों को, अपने रिएक्शंस पर काम करने पे नजर रखना जरूरी है। जब हम हर दिन थोड़ा सा सीखते रहते हैं तो हम इमोशनली भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं। ग्रोथ का एक हिस्सा ये भी होता है कि हम अपनी गलतियों को मान लें और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करें। भाई परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर होना बहुत जरूरी है। जो इंसान सीखना छोड़ देता है ना, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो। तो खादिनो हजरात, अपने लिए वक्त निकालना अक्सर लोग खुद गर्जी समझते हैं, जबकि असल में ये एक जरूरत है। जब आप अपनी सेहत, अपने जहन और अपनी इमोशनल स्टेट का ख्याल रखते हैं, तभी आप दूसरों के लिए बेहतर बन पाते हैं। थका हुआ दिमाग और बोझल दिल किसी को भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता। कितनी सिंपल सी बात है, बस हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए खामोशी के कुछ लम्हात, अपनी पसंद की एक्टिविटी या सिर्फ आराम से सांस लेना भी सेल्फ केयर होता है भाई। ये छोटी छोटी चीजें आपको दोबारा मजबूत बनाती हैं। जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी से भी दूर होते चले जाते हैं। तो जनाब, पर्पस हमेशा करियर से जुड़ा हुआ हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी पर्पस जो है, जो मकसद है, वो फैमिली के लिए अच्छा रोल मॉडल बनना भी होता है। कभी किसी की मदद कर देना, किसी को सुन लेना या किसी के काम आना भी जिंदगी का मकसद बन सकता है। व्हाई नॉट। जब हम अपनी जिंदगी सिर्फ अपने फायदे तक महदूद नहीं रखते बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं तो अंदर से एक अलग सा सुकून मिलता है। नोटिस कीजिएगा, ये सुकून पैसा या पोजीशन से नहीं आता, मकसद वाली जिंदगी में सेटिस्फेक्शन होता है। इंसान जब ये महसूस करता है कि उसकी जिंदगी किसी के काम आ रही है, तब उसे अपनी वैल्यू का एहसास होता है, जो हर चीज को बहुत ही क्लियर कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक हम हमेशा वही करते रहते हैं जो आसान और फैमिलियर होता है, तब तक हम ग्रो ही नहीं कर पाते। नई चीजें ट्राई करना, नए लोगों से मिलना या अपनी कमजोरी पर काम करना, ये सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन यही मुश्किल बाद में आपकी मजबूती बन जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हर चेंज अच्छा ही हो, बल्कि ये कि हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखा जाए। भाई, जब हम सिर्फ डर की वजह से रुक जाते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल का बड़ा हिस्सा जाया कर देते हैं बिना इसको रियलाइज किए। तो जनाब, 360 डिग्री लिविंग का मतलब प्लानिंग से ज्यादा अवेयरनेस है। अवेयरनेस के आप किस स्टेज पर खड़े हैं, आप किस चीज से खुश हैं और किस चीज से थके हुए हैं। जब इंसान अपने इमोशंस और अपनी लिमिट्स को समझना शुरू करता है तो बैलेंस नेचुरली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आप खुद महसूस करने लगते हैं कि कहाँ स्लो होना है और कहाँ थोड़ा ज्यादा एफर्ट चाहिए। हर चीज को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरवर मिर्जा आपके साथ, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि अभी आगे हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
0: अवेयरनेस जिंदगी को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाती है, और जब लाइफ प्रोएक्टिव हो जाए तो स्ट्रेस कम और क्लियरिटी ज्यादा होती है। डेली रूटीन की अगर बात करें, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब जिंदगी सेट हो जाएगी तब हम खुद पर फोकस करेंगे, लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी फुल्ली सेट नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा ही होता है, ये हम जानते हैं, हम देख ही रहे हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हम वेट करना छोड़ दें और अभी से बैलेंस बनाना शुरू करें। जब जागो जब सवेरा, छोटे छोटे स्टेप्स बहुत पावरफुल होते हैं। रोज थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपनों के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए निकालना ही काफी है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती मगर मीनिंगफुल जरूर हो सकती है। जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और जीना थोड़ा आसान लगने लगता है, अंदर से सुकून मिलता है। पर्पस और ग्रोथ का सबसे खूबसूरत असर ये होता है कि इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पे भी बेहद असर डालता है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो आपका रवैया भी हल्का और पॉजिटिव होता है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, बेहतर सुनते हैं और समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह आप घर पे, ऑफिस पे और सोसाइटी के हर जगह बेटर एनर्जी स्प्रेड करते हैं। भाई ग्रोथ सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होती बल्कि

कंस्ट्रक्टिव इंप्रूवमेंट बननी चाहिए। जब एक इंसान बेटर होता है या बेहतर होता है तो उसके साथ जुड़ी हुई जिंदगियां भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं, क्वाइटली विदाउट फोर्स, क्योंकि आप अपनों को अच्छे मशवरे दे सकते हैं, उनकी अच्छी तरह हेल्प कर सकते हैं। जब अपने आप को बैलेंस और सीधा रखेंगे तो दूसरों के जब भी तो काम आ सकते हैं, तो इसलिए उनको भी फिर बेहतरी मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। तो जिंदगी को सिर्फ वीकेंड का इंतजार बना देना बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन जब हम सिर्फ दो दिन खुश होने का प्लान बनाते हैं और बाकी दिन सिर्फ गुजार देते हैं तो जिंदगी भारी लगने लगती है। 360 डिग्री लिविंग का मतलब ये है कि हर दिन में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल हो, चाहे वो एक अच्छा कन्वर्सेशन हो, थोड़ी सी वॉकिंग हो या कोई नई चीज सीखना हो। हर दिन का अपना एक छोटा मकसद, हर दिन का अपना एक छोटा सा मकसद होना चाहिए दोस्तों। जब हम हर दिन को सिर्फ एंड करने के बजाय फील करना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। और ये चेंज जोरदार नहीं मगर बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग होता है विद इन आवरसेल्फ्स। दोस्तों जिंदगी एक रेस नहीं जहां सिर्फ जीतना मकसद हो, ये एक सफर है जिसमें हर शख्स का पेस अलग होता है। आपको किसी और की स्पीड फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपनी जिंदगी के डिसीजंस अपनी सिचुएशंस के मुताबिक लीजिए। जब हम अपनी वैल्यूज, अपनी हेल्थ और अपनी लिमिट्स को रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो अंदर से सुकून मिलता है, बैलेंस मिलता है। और बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इक्वल हो, बल्कि ये कि सब कुछ मैनेजेबल हो। जब जिंदगी मैनेजेबल लगने लगे तो हम बिना स्ट्रेस के ग्रो कर पाते हैं, और इसी ग्रोथ में वो सुकून छुपा होता है जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे होते हैं खामोशी के साथ। तो इस पॉइंट पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से वाकई क्या चाहते हैं। भाई कोई और क्या चाहता है, सोसाइटी क्या चाहती है या लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, ये सब सेकेंडरी चीजें नहीं बननी चाहिए। असल सवाल ये है कि आप अंदर से किस किस्म की जिंदगी जीना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान खुद से ऑनेस्ट होता है ना, सच्चा होता है या हो जाता है तो जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। शायद फौरन क्लियर ना हो लेकिन डायरेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्शन मिल जाना ही काफी होता है शुरुआत के लिए। बैलेंस, पर्पस और ग्रोथ एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आने लगते हैं तो जिंदगी को बहुत मीनिंगफुल बना देते हैं। तो दोस्तों हर इंसान के पास अपनी कहानी होती है, अपनी स्ट्रगल होती है और अपनी जर्नी होती है, इसलिए कंपैरिजन जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब हम दूसरों की हाइलाइट्स को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हैं तो हमेशा खुद को कम महसूस करते हैं। भाई ग्रोथ का मतलब ये भी है कि हम अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें। आज हम जहां खड़े हैं वो भी किसी वक्त आपका ख्वाब था, हैं? ये याद कर लीजिए बस। इस बात को याद रखना शुक्र के एहसास को जिंदा रखता है। जब शुक्र आता है तो कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, और जब कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं तो जहन हल्का और जिंदगी ज्यादा इंजॉयबल लगती है रोज रोज के मोमेंट्स में। तो दोस्तों पर्पस के साथ जीने का एक फायदा ये भी होता है कि डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप कंफ्यूज नहीं रहते कि हाँ कहें या ना, आप इजीली समझ जाते हैं कि कौन सी चीज आपकी जिंदगी में फिट होती है और कौन सी सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। जब इंसान को अपनी डायरेक्शन पता होती है तो वो डिस्ट्रैक्शन से जल्द बाहर आ जाता है। हर मौका एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, कभी कभी किसी चीज को छोड़ देना भी ग्रोथ होती है। भाई पर्पस आपको बाउंड्रीज बनाना सिखा देता है, और हेल्दी बाउंड्रीज होना बैलेंस्ड जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। वरना हम हर जगह एनर्जी शिफ्ट करके खुद को थका देते हैं बिना रियलाइज किए। जिंदगी में ग्रोथ सिर्फ अचीवमेंट से मेजर नहीं होती, कभी कभी ग्रोथ ये होती है कि आप पहले से ज्यादा काम हो जाएं, सुकून में आ जाएं। पहले जो बात इरिटेट करती थी अब आप उस पर मुस्कुरा देते हैं, ये भी प्रोग्रेस है। इमोशनली मैच्योरिटी भी सेल्फ ग्रोथ का अहम हिस्सा है। जब आप चीजों को पर्सनल लेना कम कर देते हैं और सिचुएशन को समझना शुरू कर देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम और क्लैरिटी बढ़ जाती है। इस मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप मजबूत होती हैं और काम भी बेहतर होता है। ग्रोथ का मतलब मजबूत होना है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आप सख्त हो जाएं, एकदम कड़क हो जाएं। हैं? कभी कभी सॉफ्ट होना ही असल स्ट्रेंथ होती है जो जिंदगी को बैलेंस में रखती है। मसल

तरीके से। अगर हम सिर्फ अपनी जॉब तक लिमिटेड रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी के बहुत से पहलू मिस कर रहे हैं। लर्निंग हमें हर रोल के लिए परफेक्ट करती है, याद रखिए। चाहे हम पेरेंट हों, लीडर हों या मेंटर, सीखना हर जगह काम आता है ना? तो रिस्पॉन्सिबल और अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अवेयरनेस हमें गलत डिसीजन से बचाती है। जब हम सीखते रहते हैं तो हम हर सिचुएशन को लेसन के तौर पर देखते हैं, और ये अप्रोच जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि एक जर्नी बनाती है जहां हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है। तो दोस्तों, जिंदगी खुद एक स्कूल है और हर दिन एक नया लेसन लाता है। बियॉन्ड वर्क सीखना हमें ये समझाता है कि लर्निंग सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। हर एक्सपीरियंस, हर मुलाकात, हर चैलेंज कुछ ना कुछ सिखाता है। सवाल सिर्फ ये है कि हम सीखने के लिए कितने रेडी हैं भाई। जो इंसान सवाल पूछता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। लर्निंग हमें क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी दोनों सिखाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता, तब ही हम सीखना शुरू करते हैं, और यही माइंडसेट ग्रोथ का दरवाजा खोलता है। कुछ लोग सीखने को सिर्फ प्रमोशन या सैलरी से जोड़ते हैं, लेकिन असल ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा है। काम के अलावा सीखना इंसान को इवॉल्व करता है। आप हर साल अपना बेहतर वर्जन बन सकते हैं अगर आप सीखने का सिलसिला जारी रखें। तो साहब, सीखना जो है वो सोच को बढ़ाता है, वसी करता है। जब सोच बदलती है तो डिसीजन भी बेहतर होते चले जाते हैं, और ये बेहतर डिसीजन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रीजन बन सकते हैं। लर्निंग का फायदा सिर्फ आज नहीं बल्कि कल भी होगा। जो लोग आज सीखते हैं वो कल लीड कर सकते हैं। यही डिफरेंस है ग्रो करने वालों और रुक जाने वालों में। तो जनाब, काम के अलावा सीखना फ्यूचर के लिए तैयारी होती है। फ्यूचर हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन प्रिपेयर्ड हो सकता है। लर्निंग सीखना हमें मेंटली मजबूत बनाता है ताकि हम अनसर्टेनिटी का सामना कर सकें। जो लोग सीखते रहते हैं वो डर के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, और यही वो आदतें हैं जो हर सिचुएशन में काम आती हैं, है ना? काम के अलावा ग्रो करना बहुत कुछ सिखाता है। जब आप अपनी स्किल्स पर भरोसा करते हैं तो आप किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते। यही इंडिपेंडेंस ही असल फ्रीडम है भाई। सीखना आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकें। सीखने का एक खूबसूरत असर ये भी होता है कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जब लोग आपको सीखते हुए देखते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं, है ना? तो काम के अलावा सीखना एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। आपके बच्चे, आपके कलीग्स, आपके दोस्त सब आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं बल्कि कलेक्टिव ग्रोथ का जरिया है। जो इंसान सीखने को अपनी आदत बना लेता है वो मुआशरे को भी पॉजिटिव बना देता है, और यही पॉजिटिव मुआशरे की खूबसूरती और हेल्दी सोसाइटी की बुनियाद होती है, जहां लोग एक दूसरे को ग्रो करते देखते हैं बिना किसी परेशानी के। अपनी पहचान को सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक लिमिट करना अपने साथ नाइंसाफी है। काम वगैरह के अलावा जो भी चीज आप सीखते हैं वो हमें यह एहसास दिलाती है कि हम बहुत कुछ बन सकते हैं। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है भाई, लेकिन वो पोटेंशियल, वो कुव्वत, वो ताकत सिर्फ सीखने से बाहर आती है। जब हम सीखते रहते हैं तो हम अपनी जो हुदूद हैं, जो लिमिट्स हैं, उनको तोड़ देते हैं, और ये प्रोसेस कभी इंस्टेंट नहीं होगा लेकिन बहुत पावरफुल होगा जब भी होगा। तो लर्निंग पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिखाती है। जो इंसान थोड़ा थोड़ा रोज सीखता है वो धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है, और यही साइलेंट ग्रोथ होती है जो बाद में लाउड रिजल्ट्स देती है। तो जनाब, हर दिन अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने का मौका दीजिए। इस मौके के लिए परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन या बहुत टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ इंटेंशंस चाहिए। और इंटेंशन के आज मैं थोड़ा सा बेहतर सुनूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रहूंगा और थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालूंगा। भाई, जब इंटेंशंस क्लियर हो तो एक्शंस नेचुरली फॉलो करते हैं। ग्रोथ प्रेशर से नहीं, इंटेंशन से आती है। जब हम खुद पर बहुत ज्यादा लोड डाल देते हैं तो प्रोसेस मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम नरमी से खुद को गाइड करते हैं तो ये आदत बन जाती है, और आदत ही जिंदगी को खामोशी से बदलने की शुरुआत है।
तो जनाब बैलेंस और ग्रोथ का सबसे अहम रूल ये है कि खुद को वक्त वक्त पर पॉज देना सीखिए। हर वक्त बिजी रहना प्रोडक्टिविटी की निशानी नहीं होती, कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है ताकि हम देखें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई पॉज लेना मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि पॉज लेने से सफाई क्लियरिटी मिलती है। जब आप रुक कर सांस लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। जिंदगी सिर्फ स्पीड का नाम नहीं, समझ का भी नाम है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं, उस दिन जिंदगी थोड़ी हल्की और मैनेजेबल लगने लगती है। तो इस पॉज के बाद आने वाली मूवमेंट ज्यादा पर्पसफुल होती चली जाएगी। भाई कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगने लगता है। ऐसे में जो भी हमारे मकासिद हैं, जो भी हमारी ग्रोथ हैं, हमें संभाल सकती हैं। अगर आप जानते हैं कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं, तो मुश्किल वक्त भी आपको पूरे तरीके से तोड़ नहीं पाएगा। अगर मकसद आपको याद दिलाता रहे कि ये फेज भी गुजर जाएगा, तो वो गुजर जाता है। जो ग्रोथ है आपको मजबूत बनाती है ताकि आप इस प्रोसेस से निकल पाए। हर मुश्किल एक सबक छोड़ देती है। जब हम उस सबक को समझ लेते हैं तो दर्द का बोझ हल्का हो जाता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैनेजेबल बन सकती है। जब हर फेस को सीखने का मौका बना लिया जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। 360 डिग्री लिविंग का मतलब जिंदगी के हर हिस्से को वैल्यू देना होता है। काम, रिश्ते, सेहत और खुद की ग्रोथ सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। जब हम सिर्फ एक पे फोकस करते हैं तो बाकी जो एरियाज हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वीक एरियाज पर फिर स्ट्रेस पैदा करने लगते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी सी अटेंशन सब जगह बांट देते हैं तो सिस्टम बैलेंस में रहता है। बैलेंस परफेक्ट नहीं होता भाई, कभी उतार हैं, कभी चढ़ाव हैं, लेकिन जब इंटेंशंस क्लियर हो तो इम्बैलेंस टेम्पररी होता है। यही वो अप्रोच है जो जिंदगी को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी ही आज के दौर में मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे जरूरी स्किल होती जा रही है, जो हमें सर्वाइव करना और ग्रो करना दोनों सिखाती है और इसमें मदद करती है। तो इस पूरे सफर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों के खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, सच्चे रहिए। अगर आप थके हुए हैं तो इस बात को मान लेना कमजोरी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो सवाल करना बिल्कुल ठीक है। भाई ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब हम प्रिटेंड करना छोड़ देते हैं, जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तो रियल सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। जिंदगी एक परफॉर्मेंस नहीं, एक एक्सपीरियंस है, याद रखिए, और इस एक्सपीरियंस को फील करना जरूरी होता है। जब हम हर चीज को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तब बैलेंस नेचुरल हो जाता है, और इसी बैलेंस में वो सुकून होता है जो पैसे, टाइटल या वैलिडेशन से नहीं मिलता। तो दोस्तों आज के इस सफर का नतीजा ये है कि जिंदगी सिर्फ 9 से 5 तक महदूद नहीं होनी चाहिए। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम उसे हर एंगल से जीते हैं। करियर जरूरी है, लेकिन फैमिली, सेहत, पैशन और ग्रोथ भी उतनी ही अहमियत रखती है। जब हम हर पहलू को थोड़ा सा वक्त देते हैं तो जिंदगी बैलेंस्ड और मैनेजेबल हो जाती है, और यही बैलेंस एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन थोड़ी सी कोशिश से मुमकिन हो जाता है। उम्मीद है कि आज की बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बस एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी जो वर्थ है, हमारे जज्बात, हमारे एक्शंस और रिलेशनशिप से डिफाइन होते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितनी भी रोल्स प्ले करते हैं, घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं, आपकी इंसानियत से आती है। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल से प्रोग्राम साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज कहते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अब। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। Stay tuned and stay inspired.
2: Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
4: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड, एक ऐसा सफर जहां हम उन किताबों की कहानी सुनते हैं भाई जिनके अल्फाज ने दुनिया भर के लोगों को बदला, बेहतर सोच दी और जिंदगी को नए अंदाज से देखना सिखाया है। यहां हर एपिसोड में हम एक ऐसी किताब पर बात करते हैं जिसने दुनिया को सोचने का तरीका दिया है। आज भी हम एक ऐसी ही किताब पर बातचीत करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों कायरीन के दिलों को छुआ है और किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लिखने वाले हैं जेम्स क्लियर। तो दोस्तों, आज की किताब एक ऐसी गाइड है जो बहुत ही खामोशी से, आराम से, चुपचाप, लेकिन बहुत ही गहरा असर छोड़ जाती है हमारे दिलों पर। भाई अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी कुर्बानी और बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन आज जिस किताब पर हम बात करने जा रहे हैं वो हमें सिखाती है कि भाई छोटी छोटी आदतें, रोज के मामूली फैसले और रेगुलरली की गई छोटी कोशिशें कैसे वक्त के साथ साथ एक बड़ी तब्दीली बन जाती हैं। ये प्रोग्राम उन सब के लिए है जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं मगर प्रेशर, स्ट्रेस या कंफ्यूजन का शिकार हैं। भाई आज की दुनिया बहुत तेज है, हर शख्स सक्सेस चाहता है, बेहतर हेल्थ चाहता है, बेहतर करियर चाहता है और बेहतर रिश्ते और बेहतर रूटीन, लेकिन अक्सर हम शुरू ही नहीं कर पाते। भाई कभी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कभी वक्त नहीं मिलता और कभी हम सोचते हैं कि हमसे हो ही नहीं सकता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जेम्स क्लियर ने ये मशहूर किताब लिखी जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। भाई एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, एटम होता है ना, बहुत ही जर्रा जिसको हम कहते हैं, लेकिन पावरफुल। ऑथर का ये कहना है कि अगर हम अपनी आदतों को सिर्फ 1% भी रोज बेहतर बना लें, सिर्फ 1%, तो भाई हर साल के आखिर तक नतीजा हैरत अंगेज होता है। इस किताब का हमें यही एहसास दिलाना है कि असल मसला हम नहीं बल्कि हमारा सिस्टम होता है और जब सिस्टम ठीक हो जाए तो नतीजे खुद ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शो के शुरुआत में ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आदतें असल में होती क्या हैं और जो राइटर हैं जेम्स क्लियर

हमसे असल में इस किताब के जरिए एटॉमिक हैबिट्स के जरिए क्या कहना और बताना चाहते हैं। तो भाई आदतें असल में होती क्या हैं और ये क्यों इतनी पावरफुल होती हैं? भाई आदतें वो काम हैं जो हम बिना सोचे समझे बार बार करते हैं, जैसे सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, चाय पीना या रात को देर तक जागना वगैरह। ये चीजें छोटी लगती हैं लेकिन टाइम के साथ साथ ये आदतें हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सेहत, हमारी शख्सियत, यहाँ तक के हमारे फ्यूचर को भी शेप करती हैं, इनमें असर डालती हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स का पहला लेसन ये है कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी हो तो गोल्स पर नहीं बल्कि आदतों पर पहले काम करना चाहिए, क्योंकि गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं जबकि आदतें डेली प्रोसेस होती हैं और प्रोसेस ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। जेम्स क्लियर अपनी किताब के शुरुआत में ही बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप वीक हैं, कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम भी गलत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रोज एक्सरसाइज करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता तो मसला उसकी नीयत नहीं है बल्कि उसका एनवायरनमेंट हो सकता है, उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, जो लोग हैं वो हो सकते हैं। शायद जिम दूर है या शेड्यूल अनक्लियर है, ये भी हो सकता है। तो भाई ये किताब हमें जो शर्मिंदगी है उससे बाहर निकालकर प्लानिंग और स्ट्रक्चर की तरफ ले जाती है। तो भाई अब यहाँ तक इस हवाले से हम ये बात समझते हैं कि छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना और छोटे फेलियर से सीखना ही असल स्ट्रेटेजी होती है। किताब लिखने के सिलसिले से उनका मानना ये भी है कि वो हम सबको ये एहसास दिलाएं कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल मैनुअल है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना चाहिए बल्कि ये भी समझाती है कि क्यों और कैसे करना चाहिए। जेम्स क्लियर साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए ये बताते हैं कि इंसान का दिमाग आदतों पर कैसे रिएक्ट करता है। भाई जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे सेव कर लेता है और फिर बिना एनर्जी लगाए वो काम होने लगता है। इसीलिए बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल और अच्छी आदतें बनाना स्लो प्रोसेस में होती हैं। ये बुक हमें ये तसल्ली देती है कि स्लो होना फेलियर नहीं है बल्कि नेचुरल है। तो जनाब किताब ने ये बहुत ही खूबसूरती से अपने इंट्रोडक्शन का बयान करते हुए हमें समझाने की कोशिश करी है, बल्कि यूं कहिए कि जो ये किताब पढ़ रहे हैं उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी होता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ हम ये बात भी शेयर करते हैं या कर सकते हैं कि भाई एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए खास है जो मददगार हैं और जो बार बार शुरू करना चाहते हैं। जो लोग डाइट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ लोग प्लान बनाते हैं फिर भूल जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मायने रखती है। रोजमर्रा थोड़ा सा काम लेकिन रेगुलरली, वो ऐसी पावर रखता है जो लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ उनका मकसद ये है कि जितने भी पढ़ने वाले हैं ये महसूस करें कि ये किताब उसी के लिए लिखी गई है और चेंज उसके अंदर मुमकिन है। दोस्तों एटॉमिक हैबिट्स में हमें ये भी बताया गया है, समझाया गया है कि आइडेंटिटी और हैबिट्स ये दोनों का गहरा ताल्लुक होता है। जेम्स क्लियर के मुताबिक जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो असल में हम अपनी पहचान बदलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रोज लिखने लगता है तो वो सिर्फ लिख नहीं रहा होता है बल्कि वो अपने आप को राइटर समझना शुरू कर देता है। तो हम इस बात पर फोकस करते हैं कि जब ये काम रोज हो, कोई भी काम रोज किया जाए, वही आप बनते चले जाते हैं उसी काम के हवाले से। तो ये सोच बहुत पावरफुल है क्योंकि जब आदत आइडेंटिटी बन जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल और निभाना आसान हो जाता है। दोस्तों किताब के जरिए ये भी बयान किया गया है कि किताब सिर्फ थियरी ही नहीं या प्रोग्राम ही का हिस्सा नहीं जो मैं शेयर कर रहा हूँ बल्कि एक प्रैक्टिकल जिंदगी से जुड़ी हुई है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में बहुत सिंपल टूल्स दिए हैं जो आम आदमी आसानी से

0: बनाना और सेटिस्फाइंग बनाना, ये चार बुनियादी बातें हैं जो आदत को बना या बिगाड़ सकती हैं, है ना। तो बुक सिर्फ हिंट देती है कि ताकि हम सब पढ़ने वाले क्यूरियस रहें और आगे के जो भी मराहिल हैं जिंदगी उनको समझने की पूरी कोशिश करें। तो जनाब, किताब इनोवेशन है, एक सफर है जो शुरू हो गया है और हम सब पढ़ने वालों को ये महसूस करवा रही है कि इस किताब के जरिए हम अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को समझना शुरू कर दें जो आम तौर पर नजरअंदाज होते जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि वक्त के साथ छोटी तब्दीलियां कैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हैं। समझाने के तरीके से समझा रहा हूं। तो किताब हम सब को ये बताती है कि भाई जो भी माहौल बनता है उससे आप किस तरीके से अपनी सोच और अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, किताब का मकसद यही है कि मेंटली इंगेज हुआ जाए इसके साथ और सीखना शुरू किया जाए, बल्कि अपनी आदतों, अपने रूटीन और अपनी सोच पर गौर व खौज किया जाए। एटॉमिक हैबिट्स में यही एक खासियत है, क्योंकि ये किताब ब्लेम कल्चर से बाहर निकाल कर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल प्लानिंग सिखाती है। स्मूथली इस बात की तरफ ले जाती है कि हम किस तरीके से अपने ऊपर काम करें और जो भी किताब के कंसेप्ट्स हैं उसको किस तरीके से एक्सप्लोर करते चले जाएं और आगे सीखते चले जाएं। तो भाई, प्रोग्राम के हिस्से में मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर हो गया है शुरुआत में ही कि किताब में लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं, जो राइटर हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे भाग की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ, और क्यों हमने इस बुक को बुक ऑफ द वीक के तौर पर चुना, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो वो ये कि ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं लेकिन बार बार कंसिस्टेंसी का मसला फेस कर रहे हैं। जेम्स क्लियर इस किताब में ये बताते हैं कि बड़ी कामयाबी हमेशा बड़ी कोशिश से नहीं बल्कि छोटी छोटी डेली आदतों से आती है। उनका कहना ये है कि अगर हम अपनी आदतों को सिर्फ 1% रोज बेहतर बना लें तो वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क पैदा होने लगता है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। किताब एटॉमिक हैबिट्स में लेखक जेम्स क्लियर आदतों का बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, जहां वो बताते हैं कि हर आदत चार स्टेजेस से गुजरती है, इशारा, ख्वाहिश, अमल और इनाम। तो सबसे पहले कोई चीज हमें सिग्नल देती है, फिर दिमाग में एक डिजायर बनाती है, उसके बाद हम कोई एक्शन लेते हैं और आखिर में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। तो यही वो साइकिल है, या इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आदतों का मैकेनिज्म नहीं समझते हम उन्हें ठीक तरह से बदल नहीं सकते। ये किताब रीडर्स को ये एहसास दिलाती है कि आदतें रैंडम नहीं होती बल्कि एक सिस्टम के तहत काम करती हैं जो हर रोज रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों, जेम्स क्लियर इस किताब में आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो एटॉमिक हैबिट्स का सबसे मजबूत और पावरफुल आइडिया माना जाता है। उनका कहना यह है, या उनके मुताबिक, असली तब्दीली तब आती है जब हम अपनी सोच और पहचान को बदलते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हमें कोई काम करना है लेकिन ये नहीं कहते कि हम कौन बनना चाहते हैं। जब कोई शख्स अपने आप को एक हेल्दी इंसान, राइटर या डिसिप्लिन्ड पर्सन समझने लगता है या शुरू कर देता है तो उसकी आदतें खुद ब खुद उस आइडेंटिटी के मुताबिक बनने लगती हैं, और इस सोच से आदत टेम्परेरी नहीं रहती बल्कि पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। एटॉमिक हैबिट्स गोल्स और सिस्टम के दरमियान वाज़े फर्क समझती है या समझाती है जो इस किताब को दूसरी सेल्फ हेल्प बुक से मुख्तलिफ बनाती है। जेम्स क्लियर इस किताब के जो राइटर हैं कहते हैं कि गोल्स सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं जबकि सिस्टम रोज के अमल को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी का गोल फिटनेस है लेकिन उसका सिस्टम डेली मूवमेंट और रूटीन पर बेस्ड नहीं तो गोल सिर्फ लिखा हुआ प्लान ही रह जाता है। इस किताब में फोकस रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर रखा गया है, क्योंकि प्रोसेस ही हमें रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है। रीडर्स को ये समझ आता है कि जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो नताइज खुद ब खुद उसके पीछे आने लगते हैं बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के। जेम्स क्लियर माहौल के रोल पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि आदतें सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं होती, अगर हम अपना माहौल ठीक कर लें तो आदतें खुद इम्प्रूव बेहतर होने लगती हैं। जो चीज हम रोज देखते हैं वही चीज हमसे रिपीट होती है। अगर हेल्दी चीजें नजर के सामने हो तो बेहतर फैसले आसान हो जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में हमें ये बताया, या ये किताब हमें ये सिखाती है कि अपनी सराउंडिंग्स को अपने फायदे में कैसे डिजाइन करें, ताकि हमें हर वक्त अपने आप से कुछ ना कुछ लड़ने के लिए मिलता रहे और वो जो चीज है सेल्फ डिफेंस की वो पैदा होती रहे। इस अप्रोच से गिल्ट कम होती है और चेंज नेचुरली हो जाता है, जो इस किताब का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डेली लाइफ लाइन के लिए। तो जेम्स क्लियर आदतों को आसान बनाना बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि मुश्किल काम दिमाग नेचुरली अवॉइड करता है। एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक अगर कोई आदत स्टार्ट करना हैवी लग रही हो तो उसे छोटा कर देना चाहिए। सिर्फ पहला कदम लेना भी प्रोग्रेस होती है। जब हम सिर्फ शूज पहनते हैं या सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं तो दिमाग पर प्रेशर कम होता है और ये छोटी जीत हमें अगला कदम लेने का मोटिवेशन देती है। इसी तरह कंसिस्टेंसी नेचुरली डेवलप होती है बिना इस डर के कि हम फेल हो जाएंगे। ये अप्रोच उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो परफेक्शन की वजह से अक्सर रुक जाते हैं। तो जनाब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर हैबिट स्टेकिंग का कंसेप्ट बहुत आसानी से समझाते हैं, जिसका मतलब है कि हम नई आदतों को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप रोज चाय पीते हैं तो उसके बाद एक नया काम जोड़ दिया जाता है। इस तरह नए अमल को याद रखना आसान हो जाता है क्योंकि पुरानी आदत पहले से मौजूद होती है। तो ये टेक्निक कंसिस्टेंसी को स्ट्रांग बनाती है और बहाना खत्म करती है कि वक्त या याद नहीं रहता, कि हैबिट स्टेकिंग डेली रूटीन का हिस्सा बनकर आदतों को जिंदगी के साथ नेचुरली इंटीग्रेट कर देती है बहुत स्मूथली। जेम्स क्लियर बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सिर्फ ताकत पर भरोसा करने के खिलाफ बात करते हैं और उनकी किताब एटॉमिक हैबिट कहती है कि आदत को खराब बनाने के लिए उसे मुश्किल और अनअट्रैक्टिव बनाना जरूरी होता है। अगर मोबाइल ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसे दूर रख देना मददगार होता है। तो इसमें ये कंसेप्ट समझाया गया है, जितने कम ऑप्शन होंगे उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन आसान होगा और माहौल कंट्रोल करने से सेल्फ ब्लेम कम होता है और हमारी एनर्जी सही जगह यूज होती है। तो ये आइडिया सब पढ़ने वालों को प्रैक्टिकल रिलीफ देते हैं और चेंज को पॉसिबल बनाते हैं बिना शर्मिंदगी के एहसास के या कोई भी स्ट्रगल किए। आप रोज रोज बेहतर बनना शुरू हो जाते हैं। एटॉमिक हैबिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रोग्रेस की समझ से जुड़ा है। जेम्स क्लियर इसे लैटेंट पोटेंशियल कहते हैं, जिसमें मेहनत हो रही होती है लेकिन नतीजा फौरन नजर नहीं आता। अक्सर लोग यहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी वक्त के साथ कंपाउंड होती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भाई बिल्कुल पैसे की तरह जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। और आपको ये तसल्ली मिलती है कि अगर आज फर्क महसूस नहीं हो रहा तो भी काम जाया नहीं जा रहा। सब्र और यकीन इस सफर का बुनियादी हिस्सा है जो कामयाबी तक जरूरी तौर पर पहुंचते हैं बिना जल्दबाजी किए। तो दोस्तों एटॉमिक हैबिट्स में रिवॉर्ड का सिस्टम भी बहुत अहमियत रखता है। जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर कोई आदत हमें खुशी का एहसास नहीं देती तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करते। इसलिए अच्छी आदतों के साथ छोटी छोटी खुशियां जोड़ना जरूरी होती हैं। तो इसमें यही समझाया गया है कि दिमाग पॉजिटिव फीडबैक चाहता है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। जब हम प्रोग्रेस देख के या महसूस करते हैं तो मोटिवेशन नेचुरली बढ़ती है। ये सिंपल अप्रोच आदतों को लॉन्ग टर्म तक कायम रखने में मदद देती हैं और रीडर्स को होप और कॉन्फिडेंस फीलिंग देती हैं रोज रोज अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। वहीं इस किताब में अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स क्लियर के मुताबिक जब हम किसी और के सामने कमिटेड होते हैं तो हम अपनी आदतों को ज्यादा संजीदगी से फॉलो करते हैं, तो यही वो आदत है जो पार्टनर ग्रुप या कमिटमेंट कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब कोई हमें देख रहा होता है तो हम एक्सक्यूजेस कम बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। ये अप्रोच उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अकेले स्ट्रगल करते रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम मोटिवेशन को जिंदा रखता है और रूटीन में वापस आने में मदद करता है, तो इस तरह आदतों का सफर अकेला नहीं रहता। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट में और एक चीज जेम्स क्लियर बताते हैं और वो क्या है, वो है बोर्डम और कंसिस्टेंसी के दरमियान गहरा रिश्ता। वो समझाते हैं कि किस तरीके से ये सक्सेसफुल लोग भी बोर होते हैं लेकिन वो रूटीन नहीं छोड़ते। तो समझने की बात ये है कि हमेशा मोटिवेटेड रहना नहीं होता बल्कि बोरिंग दिनों में भी काम करते रहना जरूरी होता है, और ये सोच सीख देती है कि इमोशंस आते जाते रहते हैं लेकिन आदतें रहनी चाहिए मजबूत। जब हम कंसिस्टेंसी को आइडेंटिटी बना लेते हैं तो बोर्डम भी रास्ते से नहीं हटा सकता। सपोर्ट और रूटीन मिलकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की बुनियाद बनाते हैं। यहाँ से बंदा हिम्मत पकड़ लेता है रोज थोड़ा सा बेहतर बनने के लिए। जेम्स क्लियर कामयाबी और आदतों के दरमियान सीधा ताल्लुक वाजे करते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता बल्कि रोजाना आदतों का नतीजा होता है। तो समझना क्या है इनकी बातों से, वो ये कि भाई आपकी जो भी जरूरियात हैं उनको आप छोटी छोटी डेली चॉइसेस के वक्त के साथ बड़ी तब्दीली बनाते चले जाइए। यही स्टाइल सोच प्रेशर कम करती है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रैक्टिकल बना देती है ना। और वहीं से आपका जो रूटीन है नए नजर से देखना आप शुरू करते हैं और समझते हैं कि हर दिन उसके फ्यूचर पर असर किस तरीके से डलता चला जा रहा है या उसका असर आपके फ्यूचर पर किस तरीके से आता चला जा रहा है। तो जनाब, इस किताब में ट्रैकिंग का कंसेप्ट भी बहुत अहम है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो चीज मेजर होती है वही इंप्रूव होती है। तो समझाया ये जाता है कि हैबिट ट्रैकर कैसे मोटिवेशन को जिंदा रखता है। जब हम अपनी प्रोग्रेस लिखी हुई या देखी हुई देखते हैं या रिपीट करते हैं तो दिमाग पॉजिटिव सिग्नल लेता है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये विजुअल प्रोग्रेस कंसिस्टेंसी को मजबूत करती है और गिव अप करने के चांसेस कम करती है, और हम लोगों को ये एहसास होता है कि छोटी छोटी जीत भी आगे बढ़ने की ताकत रखती हैं जो सफर को लंबा और मीनिंगफुल बनाती हैं। रोज रोज बेहतर धीरे धीरे। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि एक दिन आदत मिस हो जाना फेलियर नहीं होता। असल रूल ये है कि दो दिन लगातार मिस नहीं होना चाहिए। तो समझने की बात ये है कि हम सबको ये रिलीफ मिलता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी होती है। ये बात इस चीज से और ये किताब हमें समझाती है। ये सोच प्रेशर कम करती है और शर्मिंदगी को खत्म करती है। जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम रूटीन में वापस आना सीखते हैं और इस तरह आदतों का सफर सस्टेनेबल बनाता है और बंदा फिर से हिम्मत करता है आगे चलने के लिए बिना डर के रोज थोड़ा सा एफर्ट करने का, जो वक्त के साथ साथ नतीजा दे जाता है।
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
0: तो सामीन, आइए अब बात करते हैं कुछ इम्पैक्ट की जो इस किताब के जरिए पूरी दुनिया पर पड़ा है, और उसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का असर सिर्फ इंडिविजुअल रीडर्स तक महदूद नहीं रहा बल्कि इस किताब ने पूरी दुनिया में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सोच को नया रुख दिया। जेम्स क्लियर ने लोगों को ये समझाया कि चेंज ड्रामेटिक नहीं बल्कि सिस्टमैटिक होता है। इस वजह से ये किताब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एथलीट्स, टीचर्स और यहाँ तक के लीडर्स के लिए भी एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है। किताब के जरिए ये बताया जाता है कि छोटी आदतों का कंसेप्ट ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये रियलिस्टिक और प्रेशर फ्री लोगों के लिए बना। पहली दफा ये महसूस किया गया कि इम्प्रूवमेंट उनके कंट्रोल में है। एटॉमिक हैबिट्स ने मोटिवेशन के बजाय कंसिस्टेंसी को हीरो बनाया, जो हर कल्चर में कनेक्ट हो गया है नेचुरली और सस्टेनेबल बन गया है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। वहीं जेम्स क्लियर की ये किताब इसने एजुकेशन सेक्टर पर भी गहरा असर छोड़ा है। दुनिया भर के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने एटॉमिक हैबिट्स के कंसेप्ट को स्टडी रूटीन और लर्निंग हैबिट्स के लिए अडॉप्ट किया है। इस किताब के जरिए ये बताया गया है या बताया जाता है कि कैसे डेली छोटी पढ़ाई लॉन्ग टर्म एकेडमिक सक्सेस का सबब बनी। हैबिट ट्रैकिंग, हैबिट स्टेकिंग और एनवायरनमेंट डिजाइन इस तरीके के मजीद दूसरे इसी तरीके के टूल्स क्लासरूम्स और ऑनलाइन लर्निंग में यूज होने लगे हैं। इस किताब ने ये सोच बदली कि इंटेलिजेंट होना ही सक्सेस की गारंटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रहना भी उतना ही जरूरी है। ये वर्ल्ड व्यू स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और फेलियर के डर को कम करता है, जिससे लर्निंग एक हेल्दी प्रोसेस बन जाती है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हमारे तलबा को अब बहुत कुछ मिल रहा है। एटॉमिक हैबिट्स का बिजनेस और कॉरपोरेट वर्ल्ड पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नजर आता है। कंपनीज ने परफॉर्मेंस को ओवरनाइट रिजल्ट्स के बजाय डेली सिस्टम्स के जरिए देखना शुरू किया है। मजीद ये इससे ये एक्सप्लेन होता है कि कैसे लीडर्स ने जेम्स क्लियर के आइडियाज को प्रोडक्टिविटी कल्चर के लिए यूज किया। छोटी छोटी हैबिट्स आदतें जैसे डेली प्लानिंग, रेगुलर फीडबैक और फोकस्ड वर्क सेशंस वगैरह वगैरह ने टीम्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव की। ये किताब मैनेजर्स को ये समझाती है कि प्रेशर और डेडलाइन से ज्यादा इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट और रूटीन होता है। इस अप्रोच ने बर्नआउट कम किया है और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट किया है। जो कंपनीज इस सोच को अडॉप्ट करती हैं, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल रहती हैं। बिना अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट किए रोजाना सिस्टम के साथ काम करती रहती हैं। वहीं स्पोर्ट्स और फिटनेस की दुनिया में भी एटॉमिक हैबिट्स का बहुत गहरा इंपैक्ट नजर आया है। एथलीट्स ने ये सीखा कि सिर्फ मोटिवेशन से ही नहीं बल्कि डेली डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस बिल्ड होती है। किताब के जरिए ये आसानी हुई है कि कैसे प्रोफेशनल्स ने छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करके वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स अचीव किए। जेम्स क्लियर की आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कंसेप्ट्स ने एथलीट्स को अपने आप को चैंपियन सोचने में मदद की है, जबकि सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग ने उनकी स्किल्स को पॉलिश किया है। तो साहब, इस किताब ने फिटनेस को क्रैश डाइट्स और एक्सट्रीम वर्कआउट से निकालकर लाइफ स्टाइल बना दिया है, जहां डेली मूवमेंट और कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी दी जाती है। ये शिफ्ट लॉन्ग टर्म हेल्थ और मेंटल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ है। हर लेवल के लोगों के लिए दुनिया भर में एक्सेप्ट हो चुका सोच के तौर पर ये एक बढ़िया नुस्खा निकला है। वहीं मेंटल हेल्थ और पर्सनल वेलबींग के हवाले से भी एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों की सोच बदली है और ये समझाया है कि कैसे छोटी सेल्फ केयर हैबिट्स एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना शुरू करती हैं। जेम्स क्लियर की ये सोच कि एनवायरनमेंट गलत होता है इंसान नहीं लोगों के लिए हीलिंग बन गई है। जब गिल्ट कम होता है तो रिकवरी आसान हो जाती है। लोगों ने मेडिटेशन, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसी हैबिट्स को स्लोली और कंसिस्टेंटली अडॉप्ट किया है। एटॉमिक हैबिट्स ने सेल्फ कंपैशन को प्रोमोट किया है, जहां परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी मैनुअल नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट टूल भी बन गई है। रीडर्स के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करती है और रोजमर्रा जिंदगी में चेंज लाती है बिना किसी प्रेशर के। वहीं सोशल मीडिया और डिजिटल कल्चर पर भी एटॉमिक हैबिट्स का असर वाज़े है। आज दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एडुकेटर्स जेम्स क्लियर के आइडियाज को शेयर करते नजर आते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि कैसे छोटी डेली एक्शंस वायरल सक्सेस का बेस बनती हैं। इस किताब ने ओवरनाइट फ्रेम के कंसेप्ट को चैलेंज किया और पेशेंस को वैल्यू दी। डिजिटल दुनिया में जेम्स कंपैरिजन और बर्नआउट आम है। एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों को अपनी लेन में रहकर ग्रो करना सिखाया है। एल्गोरिथम से ज्यादा सिस्टम पर फोकस का ट्रेंड इसी सोच से आया है। किताब ऑनलाइन कल्चर को ज्यादा हेल्दी और रियलिस्टिक बनाने में मददगार साबित हुई है। जहां लोग लॉन्ग टर्म क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, शॉर्ट टर्म वैलिडेशन के बजाय डेली रूटीन और डिसिप्लिन को अपनाया जा रहा है दिन ब दिन। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का फैमिली और रिलेशनशिप्स पर भी इम्पैक्ट देखा गया है। किताब के जरिए ये समझ में आता है कि छोटी अच्छी आदतें जैसे रेगुलर बातचीत, एप्रिसिएशन वगैरह और टाइम देना रिश्तों को मजबूत बना देती हैं। जेम्स क्लेयर ये मैसेज देते हैं कि रिलेशनशिप भी एक सिस्टम होता है जो डेली बिहेवियर से इम्प्रूव होता है। लोगों ने एक्सपेक्टेशंस और कंप्लेंट्स के बजाय डेली पॉजिटिव एक्शंस पर फोकस करना शुरू किया है। ये वो सोच है जो घरों को ज्यादा पीसफुल और स्टेबल बनाती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि रिश्ते भी गोल्स से नहीं बल्कि हैबिट से बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। जो लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग होती हैं, बिना अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स के रोजमर्रा नॉर्मल रूटीन के थ्रू स्ट्रांग होती रहती हैं। वहीं लीडरशिप और सेल्फ लीडरशिप के कंसेप्ट में भी एटॉमिक हैबिट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। किताब के जरिए ये समझ में आता है कि कैसे लीडर्स ने रूल करने के बजाय एग्जांपल बनकर लीड करना सीखा है। जेम्स क्लेयर के मुताबिक लीडर की डेली आदतें टीम कल्चर बनाती हैं। जब लीडर पंक्चुअल, फोकस्ड और कंसिस्टेंट होते हैं

टॉक्सिक नहीं बल्कि इंस्पायरिंग बनती है. एटॉमिक हैबिट्स ने दुनिया भर में लीडरशिप को अग्रेसिव कंट्रोल से निकालकर काम डिसिप्लिन की तरफ मूव किया, जो कि हेल्दी और रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करने का तरीका सिखाता है, जहां हर मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटे स्टेप्स के थ्रू निभाता है और कलेक्टिव सक्सेस पॉसिबल होती है बिना फेयर के एनवायरनमेंट के चलते चलते. समझ रहे हैं मेरी बात? और यही बात है कि हम इनक्रेज कर सकते हैं एक दूसरे को, भाई जब गुस्सा आए तो आप अपने आप से पूछिए, मैं असल में किस चीज से डर रहा हूं या डरता हूं. ये सवाल गुस्से को आराम मिलाने का है, अपने आप से बात करने का है. और जब गुस्सा आसान हो जाए तो जॉय की जो स्पेस है वो बनती है, क्योंकि पीस जो है वो वापस आना शुरू हो जाती है. डर, फेयर, यानी मॉडर्न लाइफ का अगर साइलेंट कंपेनियन कोई है तो वो आज यही है. डर फ्यूचर का, डर फेलियर का, डर लोगों का कि वो क्या कहेंगे. किताब ये सिखाती है कि डर को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन डर को बॉस भी मत बनने दीजिए. डर सिर्फ एक फीलिंग है, फेट नहीं है. आप अपने अंदर डर को पहचानिए, उसको नाम देकर उसकी पावर कम कीजिए. भाई मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं. जब आप इस सेंटेंस को बोल देते हैं तो फीलिंग कंक्रीट हो जाती हैं और मैनेजेबल बन जाती हैं. फिर आप अपनी प्लानिंग करते हैं, मैं क्या प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं किससे मशवरा ले सकता हूँ, मैं कौन सी छोटी सी एक्शन जो है लेकर अपनी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह. किताब का टोन यही है, स्मॉल स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग माइंड और छोटी एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए. भाई ये एक बात और समझने की ज़रूरत है हमें कि मतलब डर के बावजूद कदम उठाना ही उठाना है, और जब आप कदम उठाते हैं तो सेल्फ ट्रस्ट बनता है और सेल्फ ट्रस्ट ही जॉय की बेस है. और दोस्तों किताब हमें ग्रीफ के बारे में समझाती है, यानी गम के हवाले से भी हमसे बात करती है और लॉस की भी बात करती है ये किताब के भाई इंसान किन किन तरीकों से गुजरता है. लॉस सिर्फ किसी की डेथ का नहीं, लॉस रिश्तों का नहीं, टाइम का नहीं, हेल्थ का नहीं या किसी ख्वाब का भी नहीं होता. किताब ये रिमाइंड कराती है कि गम को रेस्पेक्ट जरूर दीजिए, गम को कहीं ना कहीं सराहिए कि अंदर से आपको वो भारी ना लगे, उससे बात करिए. लेकिन गम को फील करने से उसका वजन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है. भाई आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू इंसान को कहना चाहिए अंदर से क्लीन करने का पूरा काम करते हैं. कहते हैं ना कि रो लेते हैं जब थोड़ा सा हैवी हैवी दिल होता है, वो इजी हो जाता है. फिर किताब ये भी सिखाती है कि गम के साथ लाइफ कंटिन्यू करना इंसान की कुव्वत है. आप अपने दुख को अपनी जिंदगी की पूरी कहानी ना बनाएं, दुख को एक चैप्टर बनाएं, है ना, पूरी बुक मत बनाइए. जब आप अपनी कहानी को चैप्टर में देखते हैं तो होप जो है वो वापस आती है. और होप का मतलब ये नहीं कि दुख खत्म हो गया, होप का मतलब ये है कि आगे चलना पॉसिबल बिल है. और यही जॉय का रियलिस्टिक वर्जन है. वहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री के लिए भी एटॉमिक हैबिट से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है, और किताब के जरिए ये सोच बदली कि किस तरीके से लाउड मोटिवेशन और अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस से हटकर एक ग्राउंडेड अप्रोच लाई जा सकती है. लोगों को सिखाया कि चेंज ऑर्डिनरी दिनों में होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन का इंतजार नहीं होना चाहिए. इस सोच ने वर्कशॉप, कोर्सेज और कोचिंग मॉड्यूल्स को भी ट्रांसफॉर्म किया है. अब फोकस हाइप से ज्यादा हैबिट्स और सिस्टम्स पर है. एटॉमिक हैबिट्स ने सेल्फ हेल्प को साइंटिफिक और कंपैशनेट बनाया, जहां इंसान को ब्लेम की जगह सपोर्ट दिया जाता है. इसी वजह से ये किताब सालों के बाद भी रेलेवेंट है और नए रीडर्स को इंस्पायर करती रहती है, क्योंकि इसका मैसेज वक्त और कल्चर से ऊपर उठकर यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह काम करता है. रोजाना जिंदगी में अप्लाइड चेंजेस के लिए रियलिस्टिक रोड मैप प्रोवाइड करता है, जिससे लॉन्ग ओवरवेल्म होने के बजाय स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व किया जा सकता है. तो जनाब एटॉमिक हैबिट्स का कल्चर इम्पैक्ट ये भी है कि इसने फेलियर को देखने का एंगल चेंज कर दिया है. किताब के जरिए ये सोच बदलती है कि अब फेलियर को आइडेंटिफाई

आइडेंटिटी नहीं बल्कि फीडबैक समझने की जरूरत है। जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर सिस्टम फेल है तो उसे ठीक किया जा सकता है और यही वो माइंडसेट है जो दुनिया भर में रेजिलियंस को बढ़ा रहा है। लोग गिव अप करने के बजाय एडजस्ट करना सीख रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों डेवलप होते हैं। एटॉमिक हैबिट्स ने कंपैरिजन कल्चर को भी वीक किया क्योंकि ये हर शख्स को अपने पेस पर इम्प्रूव करना सिखाती है और यही वो कल्चर शिफ्ट है जिसने लोगों के मेंटल लोड को कम किया है और सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत बनाया है जो किसी भी सोसाइटी की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में देखा जाए तो जहाँ प्रेशर हर जगह मौजूद है और हर शख्स अपनी जर्नी में उलझा हुआ है, वहाँ उनके लिए डायरेक्शन और क्लैरिटी प्रोवाइड करती है ये किताब बिना किसी एडजस्टमेंट के। तो जनाब, एटॉमिक हैबिट्स ने गोल सेटिंग कल्चर को भी रीडिफाइन किया है। किताब के जरिए ये बात बदली है कि दुनिया भर में लोगों ने सिर्फ रेजोल्यूशन बनाना छोड़कर सिस्टम्स बनाना शुरू करने पर गौर करना शुरू किया है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का प्रेशर कम हुआ है और डेली रूटीन्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी है। जेम्स क्लियर ने लोगों को सिखाया ये है कि फ्यूचर की टेंशन कम करने का बेस्ट तरीका आज का सिस्टम बेहतर बनाना है और यही वो सोच है जो सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज ने भी अडॉप्ट की हैं। इससे कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी है और जब सिस्टम मजबूत होता है तो मोटिवेशन की कमी भी ज्यादा डैमेज नहीं करती। एटॉमिक हैबिट्स ने शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को वैल्यू देकर प्लानिंग और सेल्फ मैनेजमेंट के तरीकों को ग्लोबली रीशेप किया है जो सस्टेनेबल सक्सेस के लिए बुनियादी बुनियाद है और हर लेवल के लोगों के लिए अप्लाई होता है। छोटी डेली एक्शंस के साथ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विदाउट बर्नआउट। ख्वातीन हज़रात, दुनिया भर में हेल्थ और लाइफ स्टाइल कोचेस ने भी एटॉमिक हैबिट से बहुत फायदा उठाया है। किताब के जरिए क्रैश प्रोग्राम्स की जगह डेली हैबिट बिल्डिंग ने ले ली है। जेम्स क्लियर के आइडियाज ने वेट लॉस और वेलनेस को एक्सट्रीम से निकालकर बैलेंस्ड अप्रोच दी है जिससे लोग ज्यादा रियलिस्टिकली अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने लगे हैं। एटॉमिक हैबिट्स ने पेशेंस और कंसिस्टेंसी को हेल्थ का कॉर्नर स्टोर बनाया है जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पॉसिबल हुए बिना डैमेज के। ये किताब हेल्थ को पनिशमेंट के बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट बनाती है और जब लॉजिक और कंपैशन साथ चलें तो लोग नेचुरली प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। इसी वजह से एटॉमिक हैबिट्स को डॉक्टर्स, ट्रेनर्स और वेलनेस एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये बिहेवियर चेंज को सेफ और सस्टेनेबल बनाती है हर एज के लोगों के लिए विदाउट अनरियलिस्टिक प्रेशर और गिल्ट जो ज्यादातर लोगों को पहले डिस्करेज करता रहता था। अब उन्हें सपोर्ट और डायरेक्शन मिलता है। एटॉमिक हैबिट्स का ग्लोबल इंपैक्ट ये भी है कि इसने लोगों को प्रोसेस ओरिएंटेशन सिखाई है जहां पे आउटकम के बजाय इनपुट पर फोकस करना शुरू किया गया है। भाई, जब हम सिर्फ अपनी कोशिश और रूटीन पर ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। जेम्स क्लियर के आइडियाज ने लोगों को यह कॉन्फिडेंस दिया कि कंट्रोल उनके हाथ में है, चाहे रिजल्ट्स फौरन आए या ना भी आए। तो ये जो माइंडसेट बन जाता है, ये अनसर्टेनिटी के दौर में बहुत पावरफुल साबित हुआ है। जहां लोग कंट्रोल की तलाश में होते हैं, एटॉमिक हैबिट्स ने दुनिया भर के रीडर्स को ग्राउंडेड रहना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना सिखाया है जिससे सेल्फ ट्रस्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ी। इस ग्लोबल साइकोलॉजिकल शिफ्ट का असर लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होगा जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों के लिए फायदेमंद है, हर लेवल पर पर्सनल और के लिए, बिकॉज स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन साथ चलकर प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं विदाउट पैनिक और रश। तो जनाब, एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों को टाइम के साथ फ्रेंडशिप करना सिखाया है। किताब के जरिए ये बात बताई गई है या समझ में आती है कि कैसे पेशेंस और डेली एफर्ट को वैल्यू मिलने लगी है। जेम्स क्लियर के मुताबिक टाइम सबसे पावरफुल फैक्टर है जो आदतों की रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। जब ये सोच आम हो जाती है तो लोग जल्दबाजी छोड़ देते हैं। ये किताब फास्ट रिजल्ट्स की डिमांड को स्लो कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करती है जहां लोग अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स ने दुनिया भर के रीडर्स को ये लेसन दिया कि

0: आज का काम कल का स्ट्रेस कम करता है। ये माइंडसेट लोगों को काम डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाता है, जो मॉडर्न दुनिया में रेयर मगर बहुत जरूरी क्वालिटी बन चुकी हैं। इसी वजह से ये किताब टेम्पररी ट्रेंड के बजाय लास्टिंग मूवमेंट बन गई है, जो हर साल नए लोगों को अट्रैक्ट करती रहती है रिपीटेडली, बिकॉज ह्यूमन नेचर और डिसिप्लिन का रिश्ता हमेशा रिलेवेंट रहेगा हर जनरेशन के लिए, जहाँ चेंज एक कॉन्स्टेंट होता है और आदतें उसे हैंडल करने का टूल बन जाती हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट का असर सिर्फ इंडिविजुअल रीडर्स तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इस किताब ने पूरी दुनिया में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सोच को नया रुख दिया है। इस किताब के राइटर, लेखक, मुसन्निफ जेम्स क्लियर ने लोगों को यह समझाया कि चेंज ड्रामेटिक नहीं बल्कि सिस्टमैटिक होता है। इस वजह से ये किताब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एथलीट्स, टीचर्स और लीडर्स सब के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है। किताब ने बहुत ही ज्यादा वाजे तौर पर यह बताया है कि आपकी परेशानियां सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं, दूसरों के बजाय पहले खुद पे फोकस करें और आगे बढ़ते चले जाएं। वहीं एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि एक दिन आदत मिस हो जाना फेलियर नहीं होता। भाई, असल रूल ये है कि दो दिन लगातार मिस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है। तो साहब, परफेक्शन जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी होती है, और यही वो सोच है जो प्रेशर कम करती है और गिल्ट को खत्म करती है। भाई, जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम रूटीन में वापस आना सीखते हैं, और इस तरह आदतों का सफर सस्टेनेबल बनाता है या बनता है, और बंदा फिर इसमें से हिम्मत करता है कि आगे चलने के लिए बिना डर के रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा एफर्ट करता रहूं, ताकि इसके जो भी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ही बेहतर हों, कारकुन हों और मेरे लिए ही अच्छे निकलें। अब हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इसमें ये कहना बनता है कि यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ग्लोबल माइंडसेट बन चुकी है। किताब में जेम्स क्लियर समराइज करते हैं कि दुनिया को ये सिखा दिया जाए कि कैसे छोटी चीजें मामूली नहीं होती बल्कि उन्हीं से जिंदगी बनती है। ये किताब हर उस शख्स के लिए एक रास्ता है जो प्रेशर के बगैर बेहतर बनना चाहता है। एटॉमिक हैबिट्स ने प्रूफ दिया कि चेंज पॉसिबल है अगर सिस्टम सही हो। आखिरी तौर पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस महसूस करने लगे, जो किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे कीमती चीज होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपके लिए सोच और अमल दोनों में तब्दीली का सबब बनेगी और आप अपनी जिंदगी में छोटी लेकिन पावरफुल आदतें बनाना शुरू करेंगे, जो वक्त के साथ आपको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा इंशाल्लाह। हर रोज छोटा कदम आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बस इसको याद रखिए, और अल्लाह सुबहान व तआला आपको कंसिस्टेंसी और हिकमत अता फरमाए, आमीन। तो जनाब, अगले एपिसोड में हम एक और इसी तरीके की, कहना चाहिए बेहतरीन किताब, सच्ची किताब, रूह पर असर अंदाज किताब के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है P फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है A यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर 3 है S, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से S, यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें, और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे होंगे। आज सूरह रहमान की आयत नंबर 60 लेकर आई हूं मैं आपके लिए। सूरह रहमान पूरी ही बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों की जो फेवरेट सूरत है, जिसको लोग कहते हैं, वो इसकी जो खूबसूरती है, एक तवाजुन है, उसकी वजह से सूरह रहमान को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और जो आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये आयत भी बहुत खूबसूरत है। तर्जुमा, नेकी यानी एहसान का बदला, एहसान के सिवा और क्या हो सकता है। यह आयत एक सवालिया अंदाज में एक अजीम हकीकत बयान करती है कि जो बंदा इखलास, ईमान और हुस्ने अमल के साथ अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह उसका बदला बेहतरीन एहसान के साथ अता फरमाता है। इसी तरह इंसानी ताल्लुकात में भी भलाई का जवाब भलाई होना चाहिए। आयत अदल, रहमत, शुक्र, इखलाक और जजा के जामे उसूल को बयान करती है। सूरह रहमान कुरान मजीद की निहायत खूबसूरत और दिलों को झंझोड़ देने वाली सूरत है। इसे बास अहले इल्म ने उरुसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन भी कहा है, क्योंकि इसमें अल्लाह की नेमतों, रहमतों, कुदरतों और आखिरत की जजा और सजा को निहायत हसीन उसलूब में बयान किया गया है। इस सूरत की खास पहचान बार बार आने वाली आयत फबे अय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, जिसके जरिए इंसान और जिन दोनों को याद दिलाया जाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। इसी अजीम सूरत में आयत नंबर 60 है। ये मुख्तसर सी आयत अपने अंदर इतना वसी मफहूम रखती है कि इस पर पूरी जिंदगी की तामीर की जा सकती है। इस आयत से पहले अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों, अहले तकवा के इनामात और परहेजगारों के लिए तैयार की गई नेमतों का जिक्र फरमाते हैं। बागात, चश्मे, फल, सुकून, राहतें, सब कुछ बयान करने के बाद अचानक ये सवाल आता है, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है। ये सवाल हकीकत

बदल रहा है, ये भी जज़ा है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। जो गम दूर करे, अल्लाह उसका गम दूर करता है। जो मदद करे, अल्लाह मदद करता है। यह आयत इन वादों की बुनियाद है। कभी ऐसी नेकियां भी होती हैं जो कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। वो खुफिया आंसू, वो पोशीदा दुआ, वो खामोश खिदमत अल्लाह के यहाँ महफूज है। और बाज़ औक़ात इन्हीं छुपी नेकियों पर बड़ी जजा मिलती है। ये भी एक लतीफ़ नुक्ता है। जजा सिर्फ चीज़ें नहीं होती, बाज़ औक़ात अल्लाह दिल संवार देता है, इखलाक बेहतर कर देता है, ईमान बढ़ा देता है। ये भी इनाम है। अक्सर बड़ी जजा आजमाइश के बाद आती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम सबर किया, फिर इज्जत मिली। अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले इब्तला में उब्तला हुए, फिर रहमत मिली। ये सुन्नत है, एहसान के बाद एहसान। इस आयत का बड़ा मफहूम जन्नत भी है। बदले में हमेशा की जन्नत मिलेगी, लेकिन बंदा महदूद अमल करता है। न थकन होगा, न खौफ, न गम। ये कितना बड़ा एहसान है। बाज़ अहले इल्म ने कहा, एहसान की आला जजा दीदार इलाही है। सोचिए, एक बंदा दुनिया में खलास से जीता है और बदले में रब की रजा मिलती है। ये जजा का कमाल है। यह आयत मायूसी खत्म करती है। अगर कभी नेकी का जाहिरी नतीजा नजर ना आए, तब भी यकीन रखो ये जाया नहीं होती, अल्लाह के पास महफूज है। यकीन बंदे को थकने नहीं देता। कभी इंसान जल्दी जाता है, मगर अल्लाह वक्त भी चुनता है। कभी सालों बाद जजा मिलती है, कभी आखिरत में। ताकीन महरूमी नहीं, हिकमत है। यायत उम्मीद का चिराग है। जो नेकी करे उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि रब फरमा रहा है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है, यानी हो ही नहीं सकता। किसी ने वालदेन की खिदमत की, औलाद से राहत मिली। किसी ने किसी को सहारा दिया, मुश्किल में मदद मिली। किसी ने माफ किया, दिल का सुकून मिला। ये सब जजा की शक्लें हैं। अल्लाह सिर्फ अमल नहीं, मकसद भी देखता है। लोगों के लिए किया एक नतीजा, अल्लाह के लिए किया और नतीजा। इसलिए एहसान नीयत से जुड़ता है। ये आयत इंसान को क्या सिखाती है? नेकी करो गिन कर नहीं, तवक्को के बगैर, रब के भरोसे पर, क्योंकि जजा यकीनी है। एक मोमिन क्यों साबित कदम रहता है? इसी यकीन से कि मेरा रब एहसान का बदला एहसान देता है। इसी यकीन से बंदा सदका देता है, सबर करता है, माफ करता है, इबादत करता है। क्या आयत बर्न आउट खत्म करती है। बाज लोग नेकी करते करते थक जाते हैं। यह आयत कहती है, रुको नहीं, हर एहसान महफूज है, खर खैर लौटेगा। बंदी के एहसान का बदला सुकून, बरकत, मगफरत, कुर्ब, जन्नत, रजाए इलाही। और कभी एक नेकी का बदला इसे कहीं बढ़कर, क्योंकि देने वाला रब है। ये एक वादा है, जो एहसान करेगा एहसान पाएगा। ये अल्लाह का कानून है। क्या आयत सिर्फ बंदे और अल्लाह के ताल्लुक तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी माशरे के लिए भी एक बुनियादी उसूल पैदा करती है। हमने अब तक एहसान को बंदगी, जजा और रब की रहमत के तनाजुर में देखा, तो अब हम इस आयत की एक निहायत अमली और माशरती पहलू को समझेंगे। भलाई का जवाब भलाई। ये सिर्फ इखलाकी नसीहत नहीं, ये इस्लामी माशरत का सुतून है। अगर ये एक उसूल माशरे में जिंदा हो जाए, बहुत से झगड़े, तलखियां और नफरतें खत्म हो जाएं। एहसान सिर्फ इबादत नहीं, माशरत भी है। बाज लोग एहसान को सिर्फ इबादत तक महदूद समझते हैं, हालांकि कुरान एहसान को मामलात में भी चाहता है। यानी जिस तरह नमाज में हुसन हो, इसी तरह ताल्लुकात में

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान और शो है ये इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे, शो में समझेंगे हम हलाल लाइफ स्टाइल को और ख़ास तौर पे हलाल लाइफ स्टाइल इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में और बहुत से जो पहलू हैं इसके उनको समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा मुख्तलिफ तनह से मैंने डिवाइड किया है इस शो को, ताकि हम अच्छी तरीके से इन डिटेल समझ सकें कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हलाल का जब लफ्ज़ आता है तो हलाल का मतलब सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी यानी एक लाइफ स्टाइल है जो इंसान की पूरी जिंदगी को अपने दायरे में लेता है। इस्लाम में हलाल का मतलब है वो हर चीज जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हो, यानी जायज, पाकीजा और दुरुस्त। आमतौर पर जब हम हलाल का लफ्ज सुनते हैं तो फौरन हमारे जहन में हलाल गोश्त या हलाल खाने का तसव्वुर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि हलाल का दायरा इससे कहीं ज्यादा वसी है। इंसान की कमाई, उसके ताल्लुकात, उसकी गुफ्तगू, उसका लिबास, हत्ता के उसके ख्यालात तक सब कुछ हलाल और हराम के उसूलों के तहत आता है। एक मोमिन की जिंदगी का असल मकसद ये होता है कि वो हर कदम पर ये सोचे कि क्या ये काम अल्लाह को पसंद है या नहीं। यही सोच दरअसल हलाल तर्ज जिंदगी की बुनियाद है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को शऊरी तौर पर गुजारें, यानी बगैर सोचे समझे किसी काम में ना पड़ जाएं, बल्कि हर मामले में ये देखें कि वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हलाल खाना खाता है लेकिन उसकी कमाई हराम हो तो उसका तर्ज जिंदगी मुकम्मल तौर पर हलाल नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स इबादत तो करता है लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी करता है या धोखा देता है तो ये भी हलाल जिंदगी के खिलाफ है। कुरान और हदीस में बार बार हलाल और तैयब का जिक्र आता है। यहाँ तैयब का मतलब है पाकीजा, साफ और फायदेमंद। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हलाल होना काफी नहीं, बल्कि वो चीज पाकीजा और बेहतर भी होनी चाहिए। एक मुसलमान को ना सिर्फ जायज़ चीज़ों को इख्तियार करना है बल्कि बेहतरीन और पाकीज़ा चीज़ों का इंतखाब भी करना है। आज के दौर में जब दुनिया बहुत तेज़ी से

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए

0: आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
1: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ। पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी नोटिस किया है जनरली महिलाएं दैट इज वुमेन अपनी हेल्थ को अक्सर लास्ट नंबर पर रखती है सबसे पहले फैमिली फिर काम फिर घर और एंड में अगर टाइम बचा शायद खुद के लिए तो हम सोचते हैं कि अच्छा सेहत की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए वेल आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स फिजिकल हेल्थ के बारे में हर वुमेन की बॉडी अलग होती है और सारी बॉडीज बहुत इंटेलिजेंट होती है स्ट्रांग होती है फ्लेक्सिबल होती है और कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है हॉर्मोन साइकिल प्रेगनेंसी मेनोपॉज बॉडी हर फेज में अलग अलग तरीके से काम करती है इसलिए विमेन्स हेल्थ वन रूल फिट्स ऑल नहीं होता अक्सर विमेन पेन को नॉर्मल मान लेती है या अगर कॉन्स्टेंट फटीग हो तो कह दिया जाता है कि हाँ ये तो चलते रहता है ये होता है पर ये

0: बोलती हूँ कि इट्स नॉट नॉर्मल. पेन अगर बॉडी में हो रहा है मतलब बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भाई संभल जाओ. बॉडी जब बार बार सिग्नल भेज रही होती है तो वो ये अटेंशन मांग रही होती है जिसे आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. विमेन को आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, ये सब चीजें बड़ी ही इजीली हो जाती है, बहुत कॉमन होती है उनकी बॉडी में, और इसीलिए वीकनेस, डिजीनेस, हेयर फॉल, बॉडी एक्स काफी बार न्यूट्रिशनल इश्यूज से लिंक्ड होते हैं. और फिर आता है मूवमेंट का टॉपिक. एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं होता. विमेन के लिए एक्सरसाइज का मतलब होता है बोन स्ट्रेंथ, जॉइंट सपोर्ट और हार्मोनल बैलेंस. वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन सब का रोल होता है. और रेस्ट, रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है. अगर कोई महिला आपको आराम करते हुए दिख रही है तो प्लीज उन्हें सोने दीजिए, नींद लेने दीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. स्लीप और रिकवरी के बिना बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं सकती. और जब विमेन थक जाती है वो सिर्फ फिजिकली नहीं इमोशनली भी ट्रेंड हो जाती है. विमेन्स फिजिकल हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, गायनेक विजिट्स, ब्रेस्ट अवेयरनेस, बोन हेल्थ चेक्स. ये सब फियर के लिए नहीं, केयर के लिए होता है. और सबसे जरूरी बात, विमेन की हेल्थ सिर्फ उनकी नहीं होती, घर की हेल्थ भी उससे जुड़ी हुई होती है. जब एक महिला हेल्दी होती है ना तो घर का रिदम बेटर होता है, एनर्जी बेटर होती है, मूड बेटर होता है. तो आज का एक जेंटल रिमाइंडर, खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अपनी बॉडी को सुनिए, उसे नरिश कीजिए और उसे रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि विमेन्स हेल्थ का मतलब सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, स्ट्रॉन्ग रहना है. एंड योर हेल्थ truly matters.
1: FM 107 presents Your Health Matters, Your Health Matter with RJ Shruti. Hey bachcho, are you ready? Games, masti, stories aur super fun ke liye
2: FM 107 par aata hai ek aisa show jahan bore hone ka koi chance nahi.
3: Ye show kaun sa hai?
1: The Super Kid Show.
4: Super Kid Show on FM 107.
2: Sunday to Thursday 1:30 pm se 3 pm tak, only on FM 107 Dil Se Desi.
3: I love the Super Kid Show. Super

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक स्टार टेनिस प्लेयर के बारे में, एलेना रिबाकिना। जी हाँ दोस्तों, एलेना रिबाकिना आज के दौर की उन टेनिस स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और पावरफुल गेम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली रिबाकिना ने अपनी मेहनत से एलिट लेवल पर अपनी जगह मजबूत की। अगर उनकी करंट फॉर्म की बात की जाए तो वो इस वक्त WTA रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं, जो उनके करियर का हाईएस्ट लेवल भी रहा है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ग्रैंड स्लैम स्टेज पर आई, जहां वो अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुकी हैं। पहला विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में और दूसरा 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। रिबाकिना का प्लेइंग स्टाइल दोस्तों थोड़ा एग्रेसिव है। उनका पावरफुल सर्व और स्ट्रॉन्ग बेसलाइन गेम उन्हें बाकी प्लेयर से अलग बनाता है। वो प्रेशर मोमेंट्स में भी बहुत काम रहती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज वो विमेंस टेनिस की टॉप कंटेंडर्स में शामिल है दोस्तों, और हर ग्रैंड स्लैम के टॉप लिस्ट में उनका नाम होता है। इंजरीज और टफ कंपटीशन के बावजूद उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि वो हाईएस्ट लेवल पर कंपीट कर सकती हैं। एलेना रिबाकिना दोस्तों सिर्फ एक चैंपियन नहीं, बल्कि एक मॉडर्न डे टेनिस फोर्स हैं, जो हर मैच में डोमिनेंस और कंपोजर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट्स पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: आराम से आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और बाजू में एक पॉपअप आता है, लिखा है उसमें ऑनलाइन आईफोन 17 प्रो मैक्स सिर्फ 4000 रियाल में, लिमिटेड स्टॉक, लास्ट 10 मिनट्स। और इसमें आप क्लिक करते हैं और कर बैठते हैं अपनी जिंदगी की एक और गलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। इस तरह की किसी भी वेबसाइट में पेमेंट तो आप कर देते हैं, लेकिन डिलीवरी, सेलर और वेबसाइट, थोड़े दिनों के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। फेक वेबसाइट्स, फेक इंस्टाग्राम पेजेस, फेक फेसबुक सेलर्स, सब एक ही चीज करते हैं, पैसे लो और गायब हो जाओ। आपकी पेमेंट हुई और ये लोग छूमंतर हो जाते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग प्रोडक्ट के इंतजार में रह जाते हैं और अपने पैसे गवा बैठते हैं। कई दफा इस तरह के ईमेल्स भी आते हैं आपको, लिमिटेड पीरियड ऑफर, कोई लुभावनी या ट्रेंडिंग चीज का प्राइस बहुत कम करके दिखाया जाता है और आप उस पे क्लिक करते हैं एंड उस क्लिक के साथ ही आप काफी सारी मालूमात शेयर कर देते हैं। सो अवॉइड, तो ऐसी वेबसाइट्स को क्लिक करने से बचें। तो आखिरकार हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? नंबर वन, सिर्फ ट्रस्टेड एप्स और वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। COD यानी कैश ऑन डिलीवरी करें, जिससे सामान जब आएगा तभी आपको पैसे देना है, सामान नहीं आया नो पैसे। अगर कहीं पे बहुत ही ज्यादा अच्छी डील दिख रही है तो एक बार ब्रेक लगाओ, सोचो समझो, ध्यान से देखो क्या ये सही वेबसाइट है, क्योंकि ऐसी चीजों में आदमी लालच में पड़ जाता है और बड़े बुजुर्गों ने कहा है लालच बुरी बला है। रैंडम इंस्टा व्हाट्सएप सेलर से थोड़ा बच के रहो, तो कभी कभी जो सस्ता है वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करो लेकिन दिमाग के साथ।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे, फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
7: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
6: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
5: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
8: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज कम्युनिकेशन से ज्यादा कनेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज के जमाने में हम बहुत बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात होती है, कई बार लोग जो है क्लासेस बकायदा ले रहे होते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे होते हैं, जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं और बेहतर हो जाए, मजीद इन्हांस कर सके। हर जगह कहा जाता है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ये एक सॉफ्ट स्किल है, और अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप अपने करियर में ग्रो करेंगे, आपके रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। लेकिन क्या ये एक कम्प्लीट कॉन्सेप्ट है? क्या ये कम्प्लीट अप्रोच है? क्या ये कम्प्लीट स्ट्रैटेजी है? चलिए इसी को आज एक्सप्लोर करते हैं।
9: ये बात अपनी जगह देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स दे रियली ट्रूली मैटर इन टुडेज वर्ल्ड. लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से अगर सवाल को गहराई से सोचें तो एक सवाल और उभरता है और वो है क्या सिर्फ, आई रिपीट, क्या सिर्फ कम्युनिकेशन काफी है या फिर कनेक्शन भी ज्यादा अहमियत रखती है. देखिए कम्युनिकेशन का मतलब है बात करना, अपनी बात समझाना, आइडियाज शेयर करना. लेकिन कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब है दिल से जुड़ना, समझना, महसूस करना. आप किसी से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं लेकिन फिर भी कनेक्शन ना हो तो बात ही नहीं बनती. और कभी कभी कम बात करके भी बहुत गहरा कनेक्शन हम बना लेते हैं. कनेक्शन तब बनता है जब आपको सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि समझा जाता है, जब आप सामने वाले के इमोशंस को वैल्यू देते हैं, जब आप उनकी बात के पीछे छिपे जज्बात को महसूस कर पाते हैं. कम्युनिकेशन अल्फाज का खेल है जबकि कनेक्शन इमोशंस का. आजकल डिजिटल दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है. मैसेजेस, कॉल्स, वॉइस नोट, सोशल मीडिया, हम हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं. लेकिन फिर भी लोग तन्हा क्यों महसूस करते हैं, कभी आपने सोचा? इसलिए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हम.

सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते, हम जवाब तो देते हैं लेकिन समझने के लिए रुकते नहीं हैं। दोस्तों, कनेक्शन के लिए वल्नरेबिलिटी जरूरी होती है। जब आप अपनी असली फीलिंग्स शेयर करते हैं, जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब कनेक्शन बनता है। कम्युनिकेशन में हम अक्सर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस ट्रस्ट पे बनते हैं और ट्रस्ट सिर्फ अल्फाज से नहीं बनता बल्कि कंसिस्टेंसी से बनता है। आपका रवैया, आपकी प्रेजेंस, आपका टाइम, आप किसी को रोज मैं हूँ कह सकते हैं, लेकिन अगर जब जरूरत हो तब आप अवेलेबल ही ना हो तो दोस्तों कनेक्शन वीक हो जाता है। दूसरी तरफ कोई शख्स कम बोलता है लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो जाता है तो कनेक्शन गहरा हो जाता है। जी हाँ, रिलेशनशिप्स में यही फर्क होता है। कपल्स भी देख लीजिए, अक्सर कहते हैं हम बात ही नहीं करते या हम बहुत बात करते हैं फिर भी दूरी लगती है। मसला ये है कि कनेक्शन कम हो जाता है जब हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते, तो कम्युनिकेशन नॉइज बन जाती है, शोर बन जाती है। वर्क प्लेस पर भी कनेक्शंस बड़ी अहमियत रखते हैं। टीम मीटिंग्स में आइडियाज शेयर हो रहे होते हैं, ईमेल्स चल रहे होते हैं, लेकिन जब तक टीम मेंबर्स के दरमियान ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का कनेक्शन ना हो, काम इफिशिएंटली नहीं होता। एक लीडर जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है वो कम्युनिकेट करता है, लेकिन जो लीडर सुनता है, अप्रिशिएट करता है और टीम के इमोशंस को समझता है वो कनेक्ट करता है। दोस्ती में भी कनेक्शन कम्युनिकेशन से ज्यादा गहरा होता है। आप किसी दोस्त से रोज बात ना भी करें लेकिन जब मिलें तो वही वार्मथ, वही समझ, और कभी कभी रोज बात होती है फिर भी महसूस होता है कि दूरी है। ये इसलिए होता है क्योंकि कनेक्शन मेंटेन नहीं हो रहा। दोस्तों, सेल्फ कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद से कनेक्टेड नहीं होंगे, हम किसी और से गहरा कनेक्शन बना ही नहीं सकते। अगर हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहें तो अपने आप को जज भी करेंगे और शायद हम अपने साथ इंसाफ ना कर पाए। अपने आप को समझना, अपनी जरूरत, अपनी बाउंड्रीज को पहचानना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बुनियाद है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन बेकार है। कम्युनिकेशन एक टूल है, एक ब्रिज है, लेकिन कनेक्शन दोस्तों वो जमीन है जिस पर ब्रिज खड़ा होता है। अगर जमीन कमजोर होगी तो ब्रिज कितना भी मजबूत क्यों ना हो, गिर ही सकता है। बस आखिर में जाते जाते यही कहूंगी कि कम्युनिकेशन बताती है कि हम क्या कह रहे हैं, जबकि कनेक्शन महसूस करवाता है कि हम कौन हैं। जब हम अपनी जिंदगी में सिर्फ सही अल्फाज ढूंढने की बजाय सही कनेक्शंस बनाने पर तवज्जो देंगे तो रिलेशनशिप्स गहरे, असली और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। असल खुशी और सुकून सिर्फ बात करने से नहीं, याद रखिए, दिल से जुड़ के समझने से होती है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से।